मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के आश्विन माह की 23वीं तिथि, तदनुसार 15 अक्टूबर सन 2026 सुबह के 5:55

दशमलव 6 मीटर्स यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। आज गुरुवार है। शक संवत 1948 के आश्विन माह की 23वीं तिथि, तदनुसार 15 अक्टूबर सन 2026 सुबह के 5:55 और 40 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की पहली सभा आरंभ होती है।

मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम आरंभ हो गया है। नमस्कार लखनऊ। और ये क्या, आप अभी तक सो रहे हैं? तो उठिए, जाके आंखें खोलिए, नींद को त्यागिए, बिछौना छोड़िए और उस परम पिता परमेश्वर का सबसे पहले आभार व्यक्त कीजिए कि उन्होंने आपको एक और खूबसूरत सा दिन दिया है जिसमें ना जाने कितनी ही संभावनाएं, कितनी ही खुशियां, कितनी ही ऊर्जा छुपी हुई है। तो बस उठिए, फटाफट से बिस्तर छोड़िए और नींद को छोड़िए और आज के दिन के लिए तैयार हो जाइए और ट्यून इन कीजिए आकाशवाणी लखनऊ, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं सूचना, शिक्षा और मनोरंजन से भरपूर अनेक कार्यक्रम दिन भर आपके लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे अभी की, और अभी कार्यक्रम आरंभ हो गया है नमस्कार लखनऊ। और आज नमस्कार लखनऊ में आपके साथ हूँ मैं, नंदिनी मिश्रा। स्वीकार कीजिए नमस्कार नंदिनी का। सुबह की 6 बजने वाले, आइए आपको सुनवाते हैं हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर एक सभा को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री लेह स्थित कोशुक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डे पर 640 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नए यात्री टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित 298 किलोमीटर लंबे निमू पदुम दारचा सड़क मार्ग का लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी 9 मेगावाट की हनु लघु जल विद्युत परियोजना और 66 किलोवाट की डबल सर्किट दाह हनु खालसी ट्रांसमिशन लाइन का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी लेह के सिंधु घाट में भारत के पहले पेट्रोगिल्फ संरक्षण पार्क और हिम सरोवर परियोजना के अंतर्गत 40 गांवों में विकसित 40 जल निकायों का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने IDBI बैंक के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की भी घोषणा की। श्री वैष्णव ने कहा कि दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंतर्गत अब 79 वर्ष तक की आयु वर्ग के लिए सहायता राशि 375 रुपए और 80 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए 625 रुपए होगी।
1: दिव्यांगजनों के लिए जो पहले 80% थ्रेशोल्ड था डिसेबिलिटी पेंशन में एलिजिबिलिटी के लिए, उसको आधा करके 40% पर भी अब दिव्यांग पेंशन दिया जाएगा। पहले दिव्यांग पेंशन 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को ही दिया जाता था, अब जन्म से ही दिव्यांगजन को पेंशन में कवर किया जाएगा। 27 लाख दिव्यांगजन लाभार्थी होंगे। टोटल लाभार्थियों की संख्या बढ़ के करीब 3,20,00,000 हो जाएगी।
0: केंद्र सरकार ने दक्षिणी हिंद महासागर मत्स्य समझौते SIOFA में भारत के शामिल होने को मंजूरी दे दी है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अनुसार इस समझौते से भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में मछली पकड़ने के अवसर बढ़ाने में मदद मिलेगी। सरकार ने गन्ना किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच करने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति का गठन कर्नाटक और महाराष्ट्र के गन्ना किसानों के प्रतिनिधियों के साथ केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री तथा केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री की बैठक में लिए गए निर्णयों के बाद लिया गया है। मंत्रालय ने बताया कि समिति किसानों के प्रतिनिधियों, चीनी मिल संघों, राज्य सरकारों और अन्य विशेषज्ञों सहित सभी संबंधित पक्षों से विचार विमर्श करेगी। दिल्ली सरकार ने नगर निगम के स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए 1,370 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। ये राशि सीधे विद्यार्थियों के खातों में भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि 5 लाख से अधिक विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म और स्कूल बैग के लिए 70 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जारी की गई है। इस अवसर पर उन्होंने 10 AI और रोबोटिक्स लैब, 1,500 प्रिंटर, साइंस ऑन व्हील्स और 60 क्रोमबुक जैसी शैक्षिक सुविधाओं की भी शुरुआत की। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने सऊदी अरब में रह रहे सभी भारतीय नागरिकों से स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। दूतावास ने कहा है कि हवाई हमले की स्थिति में घरों के अंदर रहें और मौजूदा घटनाक्रम से संबंधित वीडियो या समाचार प्रसारित न करें। रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान संचालन अभी भी निलंबित है। वहीं दम्माम, जेद्दा और मदीना से उड़ानें जारी हैं। वेस्टइंडीज ने कल रात हैदराबाद में खेले गए चौथी T20 क्रिकेट मैच में भारत को 24 रन से हरा दिया। वेस्टइंडीज के 248 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत 19 ओवर और 3 गेंद में 9 विकेट पर 223 रन ही बना सका। वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने मात्र 50 गेंदों में 102 रन बनाए, उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में एशियाई खेल 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल से बातचीत करेंगे। जापान के आईची नागोया में संपन्न एशियाई खेल में भारत चौथे स्थान पर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। नमस्कार लखनऊ में श्रोताओं, समाचारों के बाद अब बात कृषि की। तो आज की कृषि चर्चा में जौ की उन्नत खेती के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं डॉक्टर राम प्रताप सिंह।

0: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, रबी के मौसम में जहां जौ उत्पादन की योजना है आपकी, तो इसकी उन्नत कृषि तकनीक क्या है, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं फसल वैज्ञानिक डॉक्टर राम प्रताप सिंह साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जौ उत्पादन की क्या कुछ संभावना है रबी में?
1: किसान भाइयों नमस्कार। रबी में जौ उत्पादन के लिए बात इसलिए करनी आवश्यक है कि वर्तमान में जौ की खपत स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बेहतर हो रही है और गेहूं की अपेक्षा जौ को समावेश करके आटा तैयार करके लोग उसका प्रयोग कर रहे हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि 2020-21 में जो हमारा एरिया था उत्तर प्रदेश का 1.57 लाख हेक्टेयर,
0: यानी 2.25 लाख हेक्टेयर
1: उत्तर प्रदेश में जौ बोया गया था 2020-21 में, और 2021-22 में 1.65 लाख हेक्टेयर गया। इसलिए देखा जाए तो इसका महत्व तो बढ़ रहा है, इसका एरिया बढ़ रही है और आच्छादित एरिया किसान कर रहे हैं।
0: तो ढेर सारी संभावनाएं हैं जौ उत्पादन की, और इसकी कीमत भी अच्छी मिल रही है।
1: कीमत अच्छी मिल रही है, इसको यज्ञ से लेकर के पूजा पाठ तक इसका अच्छा। देखिए आप, अभी त्योहार बीत रहा है, कोई जहाँ पर हमारा अग्निहोत्र होता है, जहाँ पर कोई पूजा होती है, यज्ञ होती है, वहाँ पर जौ एक पैकेट 15-20 रुपए में 100 ग्राम में बिक रहा है।
0: और स्वास्थ्य के लिए
1: स्वास्थ्य
0: फायदेमंद
1: के
0: है।
1: लिए उतना छिलका रहित भी छिलका भी।
0: डॉक्टर साहब, खेत का चुनाव और खेत की तैयारी में क्या कुछ खास है?
1: खेत के चुनाव में अच्छे जल निकास की क्षमता भूमि में होनी चाहिए और दोमट भूमि इसके लिए बहुत बेहतर होती है।
0: और खेत की तैयारी?
1: खेत की तैयारी में अगर कल्टीवेटर से खेती करते हैं तो 2 बार कल्टीवेटर चलाकर पाटा चलाकर के इसकी बुआई सीड ड्रिल से करें तो अति उत्तम, अन्यथा लाइन सोइंग ही सर्वश्रेष्ठ बिजाई की विधि मानी जाती है।
0: और उचित नमी की दशा में बुआई करें?
1: उचित नमी की दशा में अगर हमारा पानी खेत में नमी है तो बिना खेत के पलेवा दे करके बुआई करें उचित नमी पर। यदि नमी नहीं है तो खेत में नमी बना करके ही बुआई करना चाहिए।
0: डॉक्टर साहब, प्रजातियां कौन कौन सी हैं? क्योंकि कुछ छिलका रहित प्रजातियां आ गई हैं, कुछ छिलका वाली प्रजातियां हैं, और माल्ट के लिए भी जौ की बहुत सारी प्रजातियां
1: जी,
0: हैं।
1: इसीलिए जौ का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। छिलका रहित प्रजातियों में सबसे बेहतर प्रजाति DWRUB, जिसका 42 क्विंटल पर हेक्टेयर पैदावार है, जो 116 दिन में तैयार हो जाती है,
0: यानी 2.5 एकड़ में।
1: जी, DWRB 3070 है, ये भी बहुत अच्छी प्रजाति है। उपासना हमारे नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की प्रजाति है, जिसके नरेंद्र जौ 5 कहते हैं, 35 से 45 क्विंटल पर हेक्टेयर है और 115 से 120 दिन में पक के तैयार हो जाती है। गीतांजलि है, 25 से 27 क्विंटल पैदावार है, जो 90-95 से 100 दिन में तैयार हो जाती है। ये हमारी छिलका रहित प्रजातियां बेहतर हैं।
0: और छिलका सहित?
1: छिलका सहित प्रजातियां हैं, प्रखर है आपका, DWRB 137 है, DWRB 123 है, RD 2849 है, DWRB 101 है, BH 969 और BH 946, BH 902, यह प्रजातियां उत्तम प्रजातियां इसलिए मानी जाए कि पैदावार बहुत बेहतर होती है और 130 से 132 दिन में पक्के तैयार हो जाती हैं। इनकी पैदावार 55 क्विंटल पर हेक्टेयर तक निकाली गई है, लेकिन सामान्य तरीके से देखा जाए तो 45 से 50 क्विंटल तक इनकी पैदावार प्रति हेक्टेयर निकल जाती है,
0: यानी लगभग 20 से 22 कुंतल प्रति एकड़ पैदावार है इनकी।
1: बड़े आराम से निकल जाएगी अगर उचित ढंग से तकनीकी खेती करेंगे तो। इसमें कई चीजें आती हैं, तकनीकी में बीज की मात्रा आती है, नमी की प्रचुर मात्रा आती है, सिंचाई की सुविधा आती है,
0: इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे आगे। लेकिन जो माल्ट वाली प्रजातियां जो व्यावसायिक दृष्टिकोण से काफी अच्छी हैं
1: जी,
0: उनके बारे में भी डॉक्टर साहब बताएं।
1: ये है DWRB 137, DWRB 101, DWRB 123, DL 88, DWR 28,

0: और रितंभरा, यह जो प्रजातियां हैं माल्ट के लिए बहुत बेहतर प्रजातियां, और 40 से 45 कुंटल के बीच में इनकी पैदावार पर हेक्टेयर होती है।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे जौ उत्पादन की उन्नत तकनीक के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: हाँ, हमारा मोबाइल नंबर 94 50 76 38 23, 9450763823।
1: डॉक्टर साहब, आज कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो आज की कृषि चर्चा में श्रोताओं, आपने जाना जौ की उन्नत खेती के बारे में। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर राम प्रताप सिंह और आपसे बातचीत कर रहे थे डॉक्टर सुशील कुमार राय। इसी के साथ हमारी आज की कृषि चर्चा यहीं संपन्न हुई और अब बारी है सुविचार की। आज के सुविचार का विषय है शारदीय नवरात्रि। स्वर एवं आलेख डॉक्टर धनीराम अवस्थी का।

सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा के स्मरण मात्र से लौकिक जगत के नाना विध कष्टों का नाश होता है और अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति होती है। महिषासुर के अत्याचारों से जब वसुंधरा पर लोग त्राही त्राही करने लगे, देवलोक में भी उसके अत्याचारों की गूंज सुनाई पड़ने लगी, तब देवताओं ने मिलकर जिस परम शक्ति का आवाहन किया, वह शक्ति पुंज नारी के रूप में अवतरित हुई। उसके नव रूपों की आराधना नवरात्रि के अवसर पर भक्तगण श्रद्धा एवं विश्वास के साथ करते हैं। भगवती दुर्गा समस्त अलौकिक शक्तियों से सुसज्जित हैं। इनकी आराधना से समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। दुर्गा की आराधना जो भी भक्तगण भक्ति भाव से करते हैं, कवच अर्गला और कीलक के मंत्रों का नियमित रूप से पाठ करते हैं, उन्हें भगवती मनोवांछित वर प्रदान करती हैं। जो भी मनुष्य नवरात्रि के अवसर पर 9 दिनों तक भगवती के 9 रूपों का पूर्ण आस्था के साथ ध्यान करता है, उसे यह पराशक्तियां साकार रूप में अपनी उपस्थिति का आभास कराती हैं। देवी के 9 रूपों को प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंधमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकीर्तिताः। इन नामों के साथ हम भगवती को सादर नमन करते हैं। संपूर्ण वर्ष में दुर्गा की पूजा 4 नवरात्रियों में की जाती। इनमें शारदीय नवरात्रि एवं चैत्र नवरात्रि में देवी की पूजा धूमधाम के साथ होती है। शेष 2 नवरात्रियों को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। साधक गण इनमें भी भगवती की उपासना कर दुर्गा के 13 अध्यायों एवं नवार्ण मंत्र का जप करने से भगवती की असीम कृपा प्रत्येक नर नारी को प्राप्त हो। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता, मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। भगवती की परम शक्तियां विषधर नागों, शत्रुओं, दस्यु और दावाग्नि बड़वाग्नि से भी अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। शूल और खड़ग से भी भगवती हमारी रक्षा करने में पूर्ण क्षम हैं। समस्त दिशाओं में भगवती की शक्तियां सर्वत्र व्याप्त हैं। विद्या, धन धान्य, पुत्र पौत्र

0: आदि सुख भगवती की अनुकंपा से प्रत्येक साधक को सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। भगवती के स्वरूप का सत्य एवं निष्ठा के साथ ध्यान करने से सर्वविध मंगल तो होता ही है, साथ ही उस परम शक्ति का आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त होता है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते नारायणी नमोऽस्तुते।
1: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे सुविचार शारदीय नवरात्रि, आलेख एवं स्वर डॉक्टर धनीराम अवस्थी का। और अब नमस्ते लखनऊ में हम आगे बढ़ते हैं और प्रवाहित करते हैं आज की भक्ति धारा, आरंभ करते हैं आज की आराधना।

हम सभी जानते हैं इस समय नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। ऐसे में माँ के 9 दिनों में माँ के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना होती है। प्रत्येक दिन माँ का अलग स्वरूप होता है और आज नवरात्रि का 5वां दिन है। आज माँ के स्कंद माता स्वरूप की पूजा अर्चना होती है। भगवान कार्तिकेय, जिनका एक नाम स्कंद भी है, उनकी माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। माता सिंह पर विराजमान रहती है। इनकी 4 भुजाएं हैं, 2 हाथों में कमल का फूल पकड़े हैं और 1 हाथ में गोद में बैठे हुए बालक स्कंद को थामे हुए हैं और 4था हाथ वर मुद्रा या अभय मुद्रा में रहता है। इन्हें पद्मासना, विद्यावाहिनी, माहेश्वरी और गौरी के नाम से भी जाना जाता है। माँ का ये स्वरूप ममता और शक्ति दोनों का प्रतीक है। इनकी उपासना से भक्तों को सुख, शांति, मोक्ष और संतान प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इनकी साधना से भक्त का विशुद्ध चक्र जागृत होता है।

भक्ति का मूल्य दिखावे में नहीं, आंतरिक भाव में होता है। भक्ति भाव परिणामों की चिंता छोड़ भक्त को उसके भगवान तक पहुंचाता है।

भक्ति वो भाव है जिसमें ना पाने की चाह ना बचने की याचना होती है, होता है तो केवल स्वीकार और समर्पण।

इसी भक्ति रचना के साथ और इस शुभेच्छा के साथ कि माता रानी आप सभी श्रोताओं का आज का दिन अति उत्तम बीते, आप पे सब पे उनकी कृपा बनी रहे, आप सदैव स्वस्थ और प्रसन्न रहे, आपको अपनों का साथ मिले और आप एक सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण करने में अपना संपूर्ण सहयोग प्रदान करते रहे। इसी शुभकामना के साथ अब हमारी आज की आराधना यहीं संपन्न होती है।

मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। आज लीजिए सुनिए इसका भाग 324। इसमें आज प्रस्तुत करने जा रहे हैं लंका कांड का वो प्रसंग जिसमें श्री हनुमान और भरत जी के मिलन का प्रसंग आता है।

सुमेरु पर्वत को हाथों में लिए अयोध्या नगरी के ऊपर से जाते हुए हनुमान का विशाल रूप देखकर भरत ने अनुमान किया कि ये कोई राक्षस है। उन्होंने धनुष की प्रत्यंचा को कान तक खींचकर बिना फल वाला बाण मारा। बाण लगते ही राम राम हे रघुनाथ कहते हुए हनुमान पृथ्वी पर आ गिरे। हे राम हे रघुनाथ की ध्वनि सुनकर भरत दौड़कर उनके पास आ पहुंचे। हतप्रभ होकर वो हनुमान से सब कुछ जान देना चाहते हैं, किंतु उनकी मूर्छा न टूटते देख उदास हो उन्हें छाती से लगा लेते हैं।

वो श्री राम के प्रति अपने प्रेम और समर्पण की दुहाई देते हुए कहते हैं, यदि श्री राम के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो और श्री रघुनाथ मुझ पर प्रसन्न हो तो ये वानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। कोसल पति श्री रामचंद्र की जय कहते हुए हनुमान उठ बैठते हैं। श्री राम, सीता और लक्ष्मण की कुशल की भरत की जिज्ञासा के उत्तर में हनुमान उन्हें सारी कथा संक्षेप में सुना देते हैं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। गायक कलाकार थे सुरेश वाडकर और श्रीकांत परगांवकर और संगीत निर्देशन था सतीश भाटिया का। आज आपने सुना इसका भाग 324। इसी के साथ श्री रामचरितमानस से कान संपन्न हुआ।

एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। आप सुनेंगे सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को शाम 6:30 से 7:20 के मध्य कृषि कार्यक्रम। प्रायोजक नमामि गंगे एवं राज्य स्वच्छ जलापूर्ति उत्तर प्रदेश। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। संस्कृत समाचार आइए आपको सुनवाते हैं अपने दिल्ली केंद्र से।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य दृश्य श्रव्य परान्तर्जालीय माध्यमेन लद्दाख राज्ये प्रायः 50-300-kotirupyakanam पञ्च प्रमुख विकास परियोजनानां उद्घाटनं राष्ट्राय समर्पणं विधास्यति। एतासां परियोजनानां उद्देश्यं सम्पर्क व्यवस्थायाः सुदृढीकरणं ऊर्जा सम्बद्ध आधार

उनकर और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, आज की तारीख है 15 अक्टूबर और ये दिन समर्पित है एक ऐसी सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली आदत को, जो न केवल हमें बीमारियों से बचाती है बल्कि स्वच्छता और सामाजिक जागरूकता का भी प्रतीक है। जी हाँ, आज है वैश्विक हाथ धोने का दिवस, यानी ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। ये दिन हर साल हमें एक बुनियादी लेकिन जीवन रक्षक संदेश देता है कि सिर्फ एक छोटी सी आदत हमारी और हमारे परिवार की सेहत को सुरक्षित रख सकती है। एक तरफ जहां हम बड़ी बड़ी बीमारियों से बचने के लिए दवाओं और इलाज पर निर्भर रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ हम ये भूल जाते हैं कि संक्रमणों से बचने का सबसे पहला और आसान उपाय हमारे हाथों में ही है, वो है हाथ साफ रखना, यानी कि साफ हाथ। हमारे हाथ दिन भर कितनी ही सतहों को छूते हैं, दरवाजे के हैंडल, मोबाइल फोन, नोट, सिक्के, रेलिंग, बस की सीटें, कीबोर्ड और न जाने क्या क्या। इनमें से कई सतहों पर बैक्टीरिया, वायरस और अन्य सूक्ष्म जीवाणु घंटों या दिनों तक जीवित रह सकते हैं। जब हम इन हाथों से अपनी आँखें, नाक या मुंह छूते हैं तो ये रोगाणु सीधे हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और यहीं से कई प्रकार की बीमारियां जन्म लेती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार साबुन और पानी से नियमित रूप से हाथ धोने से डायरिया जैसी बीमारी को 30% और श्वसन संक्रमण को लगभग 20% तक कम किया जा सकता है। क्या आपको पता है कि दुनिया भर में हर साल लाखों बच्चों की मृत्यु केवल गंदे हाथों से फैलने वाले संक्रमणों के कारण होती है? ये सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं है, वयस्कों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों, सभी को इसका खतरा होता है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों और भीड़भाड़ वाले स्थानों में जहां स्वच्छता की स्थिति चुनौतीपूर्ण होती है, वहां इस एक आदत का पालन करना पूरे समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है। जरा सोचिए, अगर हर व्यक्ति दिन में 5 प्रमुख अवसरों पर हाथ धो ले, शौच के बाद, खाना बनाने से पहले, खाने से पहले, बच्चों को खाना खिलाने से पहले और बाद में, और बाहर से घर लौटने पर, तो संक्रमण की कड़ी यही टूट सकती है। लेकिन सवाल उठता है, क्या केवल पानी से हाथ धोना काफी है? नहीं, साबुन से हाथ धोना जरूरी है। साबुन हाथों पर मौजूद चिकनाई और उसमें चिपके हुए कीटाणुओं को हटाने में सहायक होता है, साथ ही ये उन्हें इस तरह से खत्म करता है कि वे शरीर में प्रवेश ही न कर पाए। कम से कम 20 सेकंड तक हाथों को रगड़ते हुए धोना और नाखूनों, अंगुलियों के बीच और कलाई तक सफाई करना, ये आदर्श तरीका है। अगर कहीं पानी उपलब्ध नहीं है तो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर एक अच्छा विकल्प हो सकता है, खासकर सार्वजनिक स्थानों पर या यात्रा। ध्यान ही कुछ और होती है। आज के इस दिवस का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत स्वच्छता तक सीमित नहीं है, ये सामाजिक और वैश्विक स्तर पर साफ सफाई की संस्कृति को बढ़ावा देने का आह्वान भी है। जब स्कूलों में, दफ्तरों में, अस्पतालों में और सार्वजनिक स्थानों पर साफ सुथरे हाथों की आदत को बढ़ावा दिया जाएगा, तभी ये एक स्थायी स्वच्छता संस्कृति बन पाएगी। आजकल के समय में जब संक्रमण और वायरल बीमारियां आए दिन चुनौती बनकर सामने खड़ी हैं, जैसे कोविड-19 हो या मौसमी फ्लू, तब ये आदत जीवन की सुरक्षा का सबसे पहला कवच है। हम सभी ने महामारी के दौरान हाथ धोने के महत्व को जितनी गहराई से समझा, शायद पहले कभी नहीं समझा था। उस सीख को भूलना नहीं है बल्कि जीवन का हिस्सा बनाना है। श्रोताओं, इस आदत को अपनाना जितना आसान है, इसे भूल जाना उतना ही सामान्य भी है। इसलिए हमें बार बार खुद को और अपनों को याद दिलाना होगा, हाथ धोना है क्योंकि जीवन की सुरक्षा हमारे ही हाथ में है। बच्चों को ये सिखाना जरूरी है कि ये कोई मजबूरी नहीं बल्कि स्वास्थ्य का उत्सव है, और बड़ों को ये समझना होगा कि हाथ धोना केवल बाहर की गंदगी को हटाना नहीं, भीतर के अनुशासन और जागरूकता को जगाना भी है। इस वैश्विक हाथ धोने के दिवस पर आइए हम संकल्प लें कि हम इस छोटी सी आदत को अपनी दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा बनाएंगे। केवल
खुद नहीं बल्कि अपने परिवार, बच्चों, पड़ोसियों, सहयोगियों और समाज को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि जब एक समाज मिलकर स्वच्छता को अपनाता है तो बीमारियां पीछे हट जाती हैं। मैं नीना सोनकर आपसे यही विदा लेती हूं, इस विश्वास के साथ कि आज की चर्चा आपने सिर्फ सुनी नहीं बल्कि

0: मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है नमस्कार लखनऊ, और आज नमस्कार लखनऊ में आपके साथ हूं मैं नंदिनी मिश्रा। फिलहाल बात स्वास्थ्य की, सेहत से जुड़ी, तो आइए सुनते हैं आज की स्वास्थ्य चर्चा।
1: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं नीना।

0: की महसूस की। अगली बार फिर मिलूंगी एक नए विषय के साथ जो हमें स्वस्थ, जागरूक और जीवन के प्रति सजग बनाए। तब तक साफ हाथों से जीवन को छुएं और स्वस्थता के संदेश को फैलाते रहें। नमस्कार श्रोता।
1: तो दोस्तों आपने जाना कि जीवन में अगर स्वस्थ रहना है तो हाथ धोते रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार लखनऊ में अब बात आज दिन भर में अपनी विभिन्न सभाओं में जो हम आपके लिए कार्यक्रम लेकर आए हैं उनके बारे में अब आपको संक्षेप में जानकारी दे दें। आज रात 8 बजे सुनिएगा हिंदी कार्यक्रम। इसमें राजेंद्र कुमार सिंह से की गई भेंटवार्ता सुनवाई जाएगी। विषय होगा आत्मनिर्भर भारत, आर्थिक संप्रभुता। आपसे भेंट करेंगे डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी। शाम 7:30 पर कार्यक्रम होगा खेल जगत। इसमें रचना गोविल से बातचीत का विषय होगा एशियाई गेम्स और भारत। आपसे बातचीत करेंगे डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी। सुबह 9:15 पर जिले की हलचल में आज सुनिएगा महोबा और मिर्जापुर जिलों के बारे में। सुबह 9:30 पर उर्दू कार्यक्रम आज आकाशवाणी लखनऊ की पेशकश होगा। इसमें समाध फरमाइएगा खसूसी कार्यक्रम कैंपस डायरी। अब से थोड़ी देर में यानी सुबह 7:10 पर विविधा में मेरे यानी नंदिनी मिश्रा के साथ आज का विषय है राष्ट्र सपूत डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। दिन में 1:15 पर बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम घर आंगन। दिन में 2:30 पर विज्ञान और किसान कार्यक्रम में डॉक्टर अमरीश सिंह यादव से की गई भेंटवार्ता सुनिएगा। विषय होगा मटर उत्पादन की उन्नत तकनीक। आपसे बातचीत करेंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। हमारी दूसरी सभा आरंभ होती है शाम 5 बजे और शाम 5:10 पर युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी। इसमें आज उत्कर्ष सिंह की वार्ता सुनिएगा कंटेंट क्रिएशन, नए करियर की संभावना। शाम 5:45 पर कार्यक्रम होगा नई उड़ान। शाम 6:30 पर लोकायतन में राकेश कुमार सिंह की वार्ता सुनिएगा स्मार्ट गांव और सामुदायिक भागीदारी। शाम 6:50 पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम आप सुन सकते हैं किसान वाणी। इसमें आज की बात के तहत डॉक्टर शुभम सिंह राठौर से की गई भेंटवार्ता सुनिएगा रबी सब्जियों की उन्नत कृषि तकनीक। आपसे बातचीत करेंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:30 पर और रात 10:30 पर आज सुनिएगा पंडित सीआर व्यास का ख्याल गायन। रात 8:10 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा मौसमी दत्ता के गाए कुछ देवी भजन। और लोकगीत के कार्यक्रम लोक रंग में सुबह 9:50 पर और दिन में 2:45 पर आज सुनिएगा रिंकी विश्वकर्मा के गाए अवधि लोकगीत। ये थी संक्षिप्त रूपरेखा आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की और अब से थोड़ी ही देर में सुनेंगे आज की विविधा।

दोस्तों, आज की विविधा राष्ट्र सपूत डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण परिवार में जन्म लेने वाला बच्चा, जिसके पास ना धन की दौलत थी

ये ना कोई बड़ा राजनीतिक सहारा। एक दिन भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंच सकता है। एक ऐसा बच्चा जो कभी अखबार बांटकर अपने परिवार की मदद करता था, आगे चलकर भारत के मिसाइल कार्यक्रम की पहचान बना और करोड़ों देशवासियों के दिलों में बस गया। दोस्तों, ये कहानी है उस राष्ट्र सपूत की जिसने भारत को सपने देखना ही नहीं, उन्हें साकार करना भी सिखाया। नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम।

15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में जन्मे अबुल फकीर जैनुलाद्दीन अब्दुल कलाम का बचपन आर्थिक सीमाओं के बीच बीता। उनके पिता जैनुलाद्दीन नाव से जुड़ा काम करते थे और माता आशियम्मा एक सरल संस्कारी महिला थी। परिवार के आर्थिक सहायता के लिए बालक कलाम ने अखबार बांटने का काम किया, सुबह की जिम्मेदारियां और फिर पढ़ाई। उनका जीवन आसान नहीं था, लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसा सपना था जो परिस्थितियों से कहीं बड़ा था। उन्हें उड़ते हुए विमान आकर्षित करते थे। विज्ञान के प्रति यही जिज्ञासा उन्हें एरोस्पेस इंजीनियरिंग तक ले गई। वे भारतीय वायुसेना में पायलट बनना चाहते थे, लेकिन उनका चयन नहीं हुआ। सोचिए, जिस सपने के लिए आपने मेहनत की हो, जब वही पूरा ना हो तो कैसा लगता है? लेकिन कलाम ने असफलता को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उन्होंने अपने ज्ञान और प्रतिभा को देश की सेवा का माध्यम बना लिया। यही उनकी पहली बड़ी सीख थी। मंजिल बदल सकती है, लेकिन अपने उद्देश्य के प्रति समर्पण नहीं। डॉक्टर कलाम ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो में भारत के स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व में SLV-3 ने जुलाई 1980 में रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी के निकट कक्षा में स्थापित किया। यह सिर्फ एक उपग्रह का प्रक्षेपण नहीं था, ये उस भारत की उड़ान थी जो अपनी तकनीक के दम पर अंतरिक्ष में अपनी जगह बना रहा था। इसके बाद रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO में उन्होंने स्वदेशी मिसाइल विकास कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों के विकास में उनके योगदान ने उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया की पहचान दिलाई। वर्ष 1998 के पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षणों में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका उद्देश्य था भारत की वैज्ञानिक और रणनीतिक क्षमता को मजबूत करना। और फिर आया 25 जुलाई 2002 का दिन। एक वैज्ञानिक ने भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, लेकिन राष्ट्रपति भवन पहुंचकर भी कलाम के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी पहचान उनका पद नहीं।

उनकी सादगी रही। वे बच्चों से मिलते, विद्यार्थियों के सवाल सुनते और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे। इसीलिए वे केवल राष्ट्रपति नहीं, जनता के राष्ट्रपति कहलाए। डॉक्टर कलाम का विश्वास था कि भारत का भविष्य उसके युवाओं के हाथों में है। वे चाहते थे कि हमारा देश विज्ञान, शिक्षा, तकनीक और नैतिक मूल्यों के बल पर विकसित राष्ट्र बने। उनकी पुस्तक विंग्स ऑफ फायर लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बनी। भारत सरकार ने वर्ष 1997 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। लेकिन उनके जीवन का सबसे भावुक पक्ष ये था कि सर्वोच्च पद पर पहुंचने के बाद भी उनका मन विद्यार्थियों के बीच ही रमता था। 27 जुलाई 2015 को शिलोंग में भारतीय प्रबंधन संस्थान में विद्यार्थियों को व्याख्यान देते समय वे अचानक गिर पड़ी और उनका निधन हो गया। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के बीच था, जीवन का अंतिम क्षण भी ज्ञान बांटते हुए आया। आइए उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि केवल शब्दों से नहीं अपने कर्मों से दें, क्योंकि राष्ट्र का भविष्य केवल इतिहास में लिखे महान लोगों से नहीं बनता, बल्कि आज के उन नागरिकों से बनता है जो कल के भारत का निर्माण करने का साहस रखते हैं।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
1: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
0: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
1: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
0: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
1: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। नेल्सन मंडेला।
0: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
3: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।
4: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। सरकार ने 11 लाख से अधिक रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस देने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 2031 तक जारी रखने को भी मिली स्वीकृति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित वाराणसी दौरे की तैयारियों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री के संभावित कार्यक्रम स्थलों का किया स्थल

0: लिए निरीक्षण।
1: पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा के विमोचन में शामिल हुए मुख्यमंत्री, कहा प्रत्येक ग्राम पंचायत में पुस्तकालय विकसित करने की दिशा में काम कर रही है सरकार। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 3 महीने के भीतर ग्राम पंचायतों के चुनाव कराने का दिया आदेश। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11,40,000 से अधिक रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों का उत्पादकता आधारित बोनस देने को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी त्योहारों से पहले गैर राजपत्रित रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर बोनस दिया जा रहा है।
2: रेलवे के करीब 11,40,770 कर्मचारियों के लिए परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस, 78 दिनों का बोनस कैबिनेट ने अप्रूव किया। ये दीपावली का उपहार है रेलवे के सभी कर्मठ कर्मचारियों के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं। करीब 2,009 करोड़ रुपए का टोटल बोनस है।
1: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 2026-27 से 2030-31 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने को भी स्वीकृति दे दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंतर्गत अब 79 वर्ष तक की आयु वर्ग के लिए सहायता राशि 375 रुपये और 80 वर्ष तथा उससे अधिक आयु वर्ग के लिए 625 रुपये होगी।
2: दिव्यांगजनों के लिए जो पहले 80% थ्रेशोल्ड था डिसेबिलिटी पेंशन में एलिजिबिलिटी के लिए, उसको आधा करके 40% पर भी अब दिव्यांग पेंशन दिया जाएगा। पहले दिव्यांग पेंशन 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को ही दिया जाता था, अब जन्म से ही दिव्यांगजन को पेंशन में कवर किया जाएगा। 27 लाख दिव्यांगजन लाभार्थी होंगे। टोटल लाभार्थियों की संख्या बढ़ के करीब 3,20,00,000 हो जाएगी।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आईडीबीआई बैंक के पुनर्गठन को भी मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल वाराणसी में हिस्सा लिया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने भारत सेवाश्रम संघ के उल्लेखनीय कार्यों के बारे में चर्चा की।
3: देश और धर्म के लिए मरेंगे, देश और धर्म के लिए जी रहे, ये तो जज्बा है। यही जज्बा तो विपरीत परिस्थितियों में भारत को भारत बनाया हुआ, यही जज्बा है जो दुनिया की तमाम संस्कृतियों को नष्ट करती है। लेकिन भारत आज भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत का दर्शन कर रहा है।
1: मुख्यमंत्री ने वाराणसी बलियाखंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से प्रदेश विधान परिषद चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में कल वाराणसी में आयोजित शिक्षक स्नातक सम्मेलन को भी संबोधित किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित वाराणसी दौरे की तैयारियों की समीक्षा की और संभावित कार्यक्रम स्थलों का स्थलीय निरीक्षण भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग लोगों को मात्र 52 रुपए प्रति किलो की रियायती दर पर चीनी उपलब्ध कराएगा। उपभोक्ता लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान परिसर में स्थित चीनी निगम और सहकारी चीनी मिल संघ के चीनी विक्रय केंद्र से उक्त दर पर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की उपस्थिति में उनकी आत्मकथा भारतीय गणतंत्र की विजय गाथा मेरा जीवन मेरा संघर्ष का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में विमोचन किया। समारोह को संबोधित करते हुए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि वर्ष 2017 में सरकार बनने के बाद प्रदेश को नई ऊर्जा मिली है।
4: वर्ष 2017 में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद प्रदेश में विकास के कार्यों को, कानून व्यवस्था को और सुशासन को एक नई ऊर्जा मिली। योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प किया है।
1: इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से प्रदेश में प्रत्येक ग्राम पंचायत में पुस्तकालय विकसित करने की दिशा में काम किया जा रहा है।
0: हर ग्राम पंचायत में लाइब्रेरी।

0: बन रही है, डिजिटल लाइब्रेरी भी बन रही है। 57,600 ग्राम सचिवालय बन गए हैं। सचिवालय में एक रूम केवल और केवल लाइब्रेरी का है, गांव के बच्चे वहां पर जाके अब पढ़ते हैं।
1: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रदेश में ग्राम पंचायतों के चुनाव 3 महीने के भीतर कराने का आदेश दिया है। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि निवर्तमान ग्राम प्रधान प्रशासक के रूप में अपना कार्यभार संभालते रहें। न्यायमूर्ति अजीत कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रीड़वा ने बताया कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची में पंजीकरण से छूटे हुए पात्र नागरिकों और पहली बार मतदाता बनने वाले युवाओं के नाम सम्मिलित किए जाने के लिए प्रदेश में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत 17 और 24 अक्टूबर को प्रत्येक बूथ में एक विशेष कैंप का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र जनसेवा से देश सेवा रहा है। सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। विशेष श्रृंखला में आज हम जानेंगे कि प्रधानमंत्री संग्रहालय ने किस तरह इस दृष्टिकोण को साकार किया है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया था, जिसमें देश के सभी प्रधानमंत्रियों के काम और देश के विकास में उनके योगदान को दर्शाया गया है। यह संग्रहालय दिखाता है कि कैसे भारतीय लोकतंत्र ने समाज के हर वर्ग के नेताओं को राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के अवसर दिए हैं। दो भवनों में फैला यह आधुनिक डिजिटल संग्रहालय भारत के राजनीतिक इतिहास, लोकतांत्रिक परंपराओं और विकास यात्रा की झलक प्रस्तुत करता है। संग्रहालय में वीरांगनाओं की महागाथा नाम से एक लाइट एंड साउंड शो भी आयोजित किया जाता है, जिसमें उन वीर महिलाओं की प्रेरणादायक कहानियां दिखाई जाती हैं जिन्होंने देश के सम्मान की रक्षा के लिए संघर्ष किया। इस संग्रहालय का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि यह सभी सरकारों की साझा विरासत और देश के विकास में उनके योगदान का प्रतीक है।
3: देश आज जिस ऊंचाई पर है, वहां तक उसे पहुंचाने में स्वतंत्र भारत के बाद बनी प्रत्येक सरकार का योगदान है। मैंने लाल किले से भी ये बात कई बार दोहराई है। आज ये संग्रहालय भी प्रत्येक सरकार की साझा विरासत का जीवंत प्रतिबिंब बन गया है।
2: नई दिल्ली के 3 मूर्ति मार्ग पर स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय देश के सभी प्रधानमंत्रियों की सोच, नेतृत्व और योगदान को सामने लाकर युवा पीढ़ी को प्रेरित करता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने अपने प्रदेश दौरे के दूसरे दिन कल प्रयागराज में अक्षयवट का दर्शन पूजन किया और संगम गए। उन्होंने प्रयागराज के अंधावा केंद्र का निरीक्षण भी किया। शारदीय नवरात्र के 5वें दिन आज प्रदेश भर में मां दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। सुबह से ही मंदिरों में घंट, घड़ियाल और आरती के बीच बड़ी संख्या में भक्त मां के दर्शन कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने 11 लाख से अधिक रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस देने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 2031 तक जारी रखने को भी मिली स्वीकृति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित वाराणसी दौरे की तैयारियों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री के संभावित कार्यक्रम स्थलों का किया स्थलीय निरीक्षण। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा के विमोचन में शामिल हुए मुख्यमंत्री, कहा प्रत्येक ग्राम पंचायत में पुस्तकालय विकसित करने की दिशा में काम कर रही है सरकार। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 3 महीने के भीतर ग्राम पंचायतों के चुनाव कराने का दिया आदेश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: जे अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन सफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।

लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत।

मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं नमस्कार, लखनऊ में अब बारी है शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम की। तो आज के शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए हम आपको सुनवाने जा रहे हैं पंडित सी आर व्यास का ख्याल गायन। आज आप प्रस्तुत कर रहे हैं राग भैरव बहार।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में श्रोताओं, आज आप सुन रहे थे पंडित सी आर व्यास का ख्याल गायन। आज आपने प्रस्तुत किया राग भैरव पहार। इसी के साथ आज का शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। और इसी के साथ संपन्न हुआ हमारा आज का नमस्कार लखनऊ। फिलहाल हम आपसे इजाजत ले रहे हैं इस कार्यक्रम को समाप्त करने की, लेकिन आप जुड़े रहिए आकाशवाणी लखनऊ के साथ और सुनते रहिए हमारे कार्यक्रमों को। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। आप सुनेंगे सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, रविवार को शाम 6:30 से 7:20 के मध्य कृषि कार्यक्रम, प्रायोजक नमामि गंगे एवं राज्य स्वच्छ जलापूर्ति उत्तर प्रदेश। मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं। समाचार प्रभात सुनवाने के लिए आइए अब आपको दिल्ली लिए चलते हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। मंत्रिमंडल ने 11 लाख से अधिक रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन के उत्पादकता आधारित बोनस को मंजूरी दी। सरकार ने गन्ना किसानों के मुद्दों की जांच और उचित उपाय सुझाने के लिए समिति गठित की। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज तेज बारिश की संभावना। और वेस्टइंडीज ने चौथे T20 क्रिकेट मैच में भारत को 24 रन से हराया, श्रृंखला 2-2 से बराबर। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क सुविधाओं को मजबूत कर

0: करना, ऊर्जा बुनियादी ढांचे में सुधार करना, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना और जल सुरक्षा को बढ़ावा देना है। वे इस अवसर पर एक सभा को भी संबोधित करेंगे।
1: प्रधानमंत्री लेह स्थित कुशोक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डे पर 640 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नई यात्रा टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित 298 किलोमीटर लंबे निम्मू पदुम दारचा सड़क मार्ग का लोकार्पण करेंगे। लेह के निम्मू को हिमाचल प्रदेश के दारचा से सुदूर जांस्कर घाटी के माध्यम से जोड़ने वाली यह सड़क लद्दाख के लिए एक वैकल्पिक संपर्क गलियारा प्रदान करती है, जिससे श्रीनगर लेह और मनाली लेह मार्गों पर आवागमन और आसान हो जाएगा। श्री मोदी 9 मेगावाट की हनु लघु जल विद्युत परियोजना और 66 किलोवाट की डबल सर्किट दा हनु खालसी टर्मिनेशन लाइन का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री लेह के सिंधु घाट में भारत के पहले पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क और हिम सरोवर परियोजना के तहत 40 गांवों में विकसित 40 जल निकायों का भी उद्घाटन करेंगे। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11,40,000 से अधिक रेल कर्मियों को 78 दिन के वेतन के बराबर उत्पादकता आधारित बोनस पीएलबी को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को बताया कि सरकार ने इसके लिए 2009 करोड़ रुपए से अधिक का बजट आवंटित किया है। पात्र कर्मचारियों को 78 दिनों के लिए अधिकतम 17,951 रुपए का बोनस दिया जाएगा।
2: रेलवे के करीब 11,40,770 कर्मचारियों के लिए परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस 78 दिनों का बोनस कैबिनेट ने अप्रूव किया। ये दीपावली का उपहार है रेलवे के सभी कर्मठ कर्मचारियों के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं। करीब 2009 करोड़ रुपए का टोटल बोनस है।
0: इसमें रेलवे लाइन रखरखाव कर्मचारी, लोको पायलट गार्ड, स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर, तकनीशियन, पॉइंट्समैन और मंत्रालय के कर्मचारी सहित ग्रुप सी के रेलकर्मी शामिल हैं। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को भी 5 वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस कार्यक्रम का नाम बदलकर प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना कर दिया गया है।
2: दूसरा बड़ा फैसला लिया गया है वंचितों को वरीयता, जो हमारे वीक सेक्शंस हैं सोसाइटी के, वल्नरेबल सेक्शंस हैं, उनके लिए सोशल सिक्योरिटी नेट का एक्सपेंशन, इसे 2031 तक बढ़ाया गया है और टोटल 53,428 करोड़ रुपीस का प्रावधान सोशल सिक्योरिटी नेट के एक्सपेंडेड फॉर्म में किया गया है।
0: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: जालिम लोशन
4: दांत खाज खुजली में आराम, हानि रहे बेदाग जालिम लोशन।
5: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: सुनती हो, कमाल ही हो गया।
2: क्या हो गया ऐसा?
1: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया।
2: ये कमाल कैसे हो गया?
1: मैंने www.pgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोल कर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन हुआ।
2: ये तो बहुत बढ़िया पोर्टल है।
1: 22 भारतीय भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और प्राथमिकता का अनुभव पाएं, जैसे हमने पाया। सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
3: सरकार ने गन्ना किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच करने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति का गठन कर्नाटक और महाराष्ट्र के गन्ना किसानों के प्रतिनिधियों के साथ केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री तथा केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री की बैठक में लिए गए निर्णयों के बाद किया गया है। एक रिपोर्ट।
4: समिति गन्ने के किसानों के लिए लाभकारी मूल्य में वृद्धि की मांग की समीक्षा करेगी, जिसमें खेती की लागत और अन्य प्रासंगिक विषय शामिल होंगे। यह चीनी उत्पादन लागत, बाजार में मिलने वाले दाम और चीनी मिलों की वित्तीय क्षमता के संदर्भ में चीनी के न्यूनतम विक्रय मूल्य में संशोधन की मांग की भी समीक्षा करेगी। जांच के अन्य प्रमुख बिंदुओं में शुगर रिकवरी की टेस्टिंग और रिपोर्टिंग के लिए मौजूदा तंत्र और चीनी मिलों में गन्ने का वजन करने के मौजूदा तरीके भी शामिल होंगे। समिति मशीन से काटे गए गन्ने के वजन में से कटौती से संबंधित मौजूदा तरीकों की भी जांच करेगी और कटाई से होने वाले वास्तविक नुकसान यदि कोई हो तो उसका आकलन करेगी। यह किसानों के देय गन्ने के मूल्य पर

0: वर्तमान तरीकों के वित्तीय प्रभाव का मूल्यांकन करेगी। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्र सरकार ने दक्षिणी हिंद महासागर मत्स्य समझौते में भारत के शामिल होने को मंजूरी दे दी है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अनुसार इस समझौते से भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में मछली पकड़ने के अवसर बढ़ाने में सहायता मिलेगी। ये समझौता समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करने में भी सहायक होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज विजयवाड़ा के पुन्नमी घाट पर राष्ट्रीय सरस आजीविका मेले का उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रीय स्तर का ये मेला पहली बार दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से बाहर आयोजित किया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने नगर निगम के स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए 1370 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। ये राशि सीधे विद्यार्थियों के खातों में भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि 5 लाख से अधिक विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म और स्कूल बैग के लिए 70 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जारी की गई है। इस अवसर पर उन्होंने 10 AI और रोबोटिक्स लैब, 1500 प्रिंटर, साइंस ऑन व्हील्स और 60 क्रोमबुक जैसी शैक्षिक सुविधाओं की भी शुरुआत की। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से 18 अक्टूबर तक मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के 4 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री सिंधिया विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित रही है। सेवा और सुशासन के इसी संकल्प के साथ सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। आज हमारी इस विशेष श्रृंखला में हम आपके लिए लेकर आए हैं कि कैसे इस संकल्प को रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम जैसी संस्थाओं के माध्यम से साकार किया गया है, जो रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और उपभोक्ता अधिकारों के लिए काम कर रही है।
2: वर्ष 2016 में संसद ने रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट पारित किया। इसके तहत राज्य रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटीज की स्थापना की गई। रेरा लागू होने के बाद से किसी भी फ्लैट के बेचने से पहले प्रोजेक्ट को रजिस्टर करना जरूरी है। इसके तहत डेवलपर्स और खरीदारों के बीच के विवाद प्राधिकरण के पास जाते हैं और तय समय सीमा के भीतर सुने जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रेरा के माध्यम से ग्राहक और डेवलपर्स के बीच का भरोसा बढ़ा है।
3: इस कानून ने पूरे हाउसिंग सेक्टर अविश्वास और धोखाधड़ी से बाहर निकालने में बहुत बड़ी मदद। इस कानून के बनने से घर खरीदारों को समय पर न्याय भी मिल रहा है। हमने शहरों में अधूरे पड़े घरों को पूरा करने के लिए हजारों करोड़ रुपए का विशेष फंड भी बनाया।
2: गौतम बुद्ध नगर निवासी अनिल तिवारी ने बताया कि रेरा के आने से डेवलपर्स और उपभोक्ताओं के बीच आपसी समझ बढ़ी है। उन्होंने कहा कि रेरा के कारण बिल्डर समय से प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं और समय पर लोगों को कब्जा मिलना शुरू हो गया है।
4: डेवलपर और क्लाइंट के बीच में पारदर्शिता होती है। जो पैसे हम लगाते हैं डेवलपर के साथ वो हमारा सुरक्षित पाया जाता है और हमें कोई भी आपत्ति यदि रियल एस्टेट के माध्यम से होती है तो हम किसी और के पास न जाके हम सीधा रेरा के पास अपनी शिकायत लेके जाते हैं और पूरी तरह से रेरा हमें संतुष्ट करता है।
2: रेरा ने डेवलपर्स और क्लाइंट के बीच के संबंधों को बेहतर बनाया है और खरीदारों के अधिकारों को वैधानिक रूप दिया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: देश भर में आज महिला किसान दिवस मनाया जा रहा है। कृषि और किसान कल्याण विभाग इस अवसर पर आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम आयोजित करेगा। इसका उद्देश्य भारतीय कृषि में महिलाओं के योगदान को मान्यता देना है। पुदुचेरी का लीसे फ्रांशे इंटरनेशनल डी पॉन्डिचेरी आज 200 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। ये स्कूल अन्य देशों में अभी भी संचालित सबसे पुराने फ्रेंच स्कूलों में से एक है। एक रिपोर्ट।
5: इस आयोजन में 400 से अधिक पूर्व छात्र हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें कई फ्रांस से आए हैं। आज शाम होने वाले मुख्य समारोह में 1000 से अधिक मेहमानों के शामिल होने की उम्मीद है। इसमें भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी माथू, फ्रांसीसी शिक्षा एजेंसी के महानिदेशक अलेक्जेंडर मोरोइस, पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन और मुख्यमंत्री एन रंगसामी भी शामिल होंगे। इस स्कूल की स्थापना ऐसे दौर में हुई थी जब उपनिवेशिक समाज में नस्ल और जाति के आधार पर भेदभाव होता था। बाद में प्रवेश के अवसर बढ़ाए गए और पाठ्यक्रम में तमिल, तेलुगु, मलयालम और बंगाली जैसी भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया। पुदुचेरी से विभिन्न एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
1: और अब कुछ और अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
6: जी फरहत, शुरुआत करते हैं रियाद स्थित भारतीय दूतावास के परामर्श से। दूतावास ने सऊदी अरब में रह रहे सभी भारतीय नागरिकों से स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। दूतावास ने कहा है कि हवाई हमले की स्थिति में घरों के अंदर रहें और

0: मौजूदा घटनाक्रम से संबंधित वीडियो या समाचार प्रसारित न करें। रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान संचालन अब भी निलंबित है। वहीं दम्माम, जेद्दा और मदीना से उड़ानें जारी है। भारतीय विमानन कंपनियों ने इस महीने की 17 तारीख तक सऊदी अरब को आने जाने वाली उड़ानें निलंबित की हैं। उधर होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरते समय सिंगापुर के दो मालवाहक जहाजों जीएफएस प्राइड और जीएफएस गिसेले पर अज्ञात मिसाइल हमलों से हमला किए जाने की खबर भी है। फिलहाल दोनों जहाजों के सभी चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं। इसके अलावा उत्तर कोरिया ने पनडुब्बियों से दागी जाने वाली क्रूज मिसाइलों का परीक्षण भी किया है। हालांकि दक्षिण कोरिया की सेना ने परीक्षणों पर अभी तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की है। और कोलंबिया ने कल यरूशलम में अपने दूतावास का उद्घाटन किया है। इसके साथ ही कोलंबिया के नए राष्ट्रपति अबिलार्डो डे ला एस्प्रियेला ने इसराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल कर लिए हैं। तो फरहत, ये थी अब तक की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें।
1: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में एशियाई खेल 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक सभा को भी संबोधित करेंगे। जापान के आईची नागोया में संपन्न एशियाई खेल पदक तालिका में भारत ने चौथा स्थान हासिल किया। भारत ने 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदक अपने नाम किए।
2: एशियाई खेलों में लगातार दूसरी बार शीर्ष पांच देशों में भारत की उपस्थिति विभिन्न खेल विधाओं में देश की बढ़ती सफलता को दर्शाती है। इन खेलों में भारत करिकर्व तीरंदाजी में ऐतिहासिक प्रदर्शन, पुरुष और महिला हॉकी में स्वर्ण पदक और सॉफ्ट टेनिस और मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में पहली बार पदक उल्लेखनीय उपलब्धि है। इनमें महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा में भारत का पहला स्वर्ण पदक, 28 वर्षों के अंतराल के बाद एशियाई खेलों की भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक और ग्रीको रोमन कुश्ती में रजत पदक भी शामिल है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: और अब बात खेलों की। वेस्टइंडीज ने कल रात हैदराबाद में खेले गए चौथे टी20 क्रिकेट मैच में भारत को 24 रन से हरा दिया। दोनों टीमें श्रृंखला में 2-2 की बराबरी पर हैं। अंतिम मैच 17 तारीख को बेंगलुरु में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: PCP-NDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
1: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद फरहत। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा दिल्ली से पहले रेलवे कर्मचारियों को तोहफा देने का समाचार कई अखबारों की सुर्खी बनी है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, रेलवे कर्मियों को 78 दिन का बोनस, दिव्यांगों को जन्म से मिलेगी पेंशन। अमेरिका में वर्क परमिट खत्म तो 540 दिन का एक्सटेंशन नहीं, नवभारत टाइम्स सहित कई अखबारों की सुर्खी है। छठ पर बिहार जाने वालों की राह आसान करेगी 3 विशेष ट्रेनें, अमर उजाला की खबर है। दैनिक भास्कर ने श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर जोजिला दर्रे की तस्वीर दी है।
2: धन्यवाद वैष्णवी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश की संभावना। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: सौ दशमलव 4 मेगाहर्ट्ज पर समय आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी बरेली और सुबह के 8:15 हो चुके हैं। लीजिए सुनते हैं नमस्ते बरेली।

नमस्ते बरेली, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम में और उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल भी रख रहे होंगे। तो चलिए नमस्ते बरेली के इस सफर की शुरुआत करते हैं भक्ति, मौसम और हमारे अपने शहर के विकास से जुड़ी खबरों के साथ। आज शारदीय नवरात्रि का पांचवा दिन है और आज ही के दिन माँ दुर्गा के पांचवें स्वरूप यानी कि माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान कार्तिकेय की माँ होने की वजह से इन्हें स्कंद माता कहा जाता है।

और जो भक्तों पर असीम वात्सल्य बरसाती है। ज्योतिष की माने तो नवरात्रि के पांचवें दिन का शुभ रंग पीला है और इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनना और माँ को पीले फूल अर्पित करना भी बेहद शुभ माना जाता है। हमारे अपने शहर बरेली के अलकनाथ मंदिर, 84 घंटा मंदिर और कटरा चांद खां माता मंदिर सहित सभी प्रमुख देवस्थलों पर सुबह से ही भारी भक्तों की भीड़ जुटी हुई है। तो चलिए हमारे अपने प्रोग्राम नमस्ते बरेली की शुरुआत करते हैं माँ की स्तुति के साथ।

0: तो देवी माँ की स्तुति के साथ हम अपने प्रोग्राम यानी कि नमस्ते बरेली के सफर को आगे बढ़ाते हैं और इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली 100.4 FM पर।
1: तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, बरेली के आसमान में भारतीय वायुसेना की जाबाज सारंग टीम अपने स्वदेशी ध्रुव हेलीकॉप्टर्स के साथ हैरतअंगेज करतब दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार है। और इस रोमांचक एयर शो की सीधी तैयारियों की जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं शांतनु, जो कि जनसंपर्क अधिकारी हैं रक्षा मंत्रालय से। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नमस्ते बरेली में।
2: धन्यवाद
1: जी, तो जैसा हम सभी जानते हैं, पूरे बरेली काफी एक्साइटेड है क्योंकि पूरे 8 साल का जो लंबा इंतजार है वो पूरा होने वाला है। सारंग टीम हमारे अपने शहर बरेली में वापस लौट चुकी है, तो इसके प्रदर्शन को लेकर जाबाज पायलट टीम का जो जोश है वो कैसा दिखाई दे रहा है?
2: जी। आपको जैसा आपने बताया कि 8 साल बाद बरेली में सारंग टीम प्रदर्शन कर रही है, तो सारंग इंडियन एयरफोर्स की हेलीकॉप्टर्स की एक टीम है जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारतीय वायुसेना का और भारत का प्रतिनिधित्व करती है।
1: जी।
2: और पायलट्स जो हमारी टीम के हैं वो बहुत खुश होते हैं जब भी उनको एक अवसर मिलता है भारत में परफॉर्म करने का और लोगों के सामने वायुसेना की क्षमता को दिखाने का।
1: बिल्कुल।
2: तो सारे ही जो पायलट्स हैं टीम के मेंबर्स हैं वो बहुत ही उत्साहित हैं और उनके लिए ये एक अनोखा मौका है कि 8 साल बाद बरेली के लोग उनको अपने आसमान में देख सकें।
1: बिल्कुल, जैसे हम सभी जानते हैं कि एरियल डिस्प्ले का हिस्सा बनने के लिए बच्चों और आम नागरिकों को भी इनवाइट किया गया है, तो किस तरीके से लोग यहाँ पर बैठकर बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस को देख सकेंगे?
2: जैसे स्कूली बच्चों को खास तौर पर और जो बच्चे आजकल के वायुसेना में और आर्म फोर्सेज में डिफेंस फोर्सेज में करियर के तौर पे एंटर करना चाह रहे हैं उनको इनवाइट किया गया है। तो जो ऑडियंस रहेगी उसमें स्कूली बच्चे काफी हद तक रहेंगे और उनके लिए भी एक अनोखा मौका है कि इतने नजदीक से वो भारतीय वायुसेना को देख पाएंगे, अपने पायलट्स को, अपने हेलीकॉप्टर्स को आसमान में उड़ते हुए। तो बच्चों के लिए खासकर सारंग टीम की और पूरी वायुसेना की कोशिश रहती है कि इस तरीके के डिस्प्ले से उनको प्रोत्साहित करें कि वो डिफेंस फोर्सेज में एक करियर चुने और आगे चलकर वो भी इसी तरीके से

0: हमारे देश के आसमान में नजर आए।
1: बिल्कुल, आपने सही कहा। और जैसा हम सभी जानते हैं कि 13 तारीख से इसकी शुरुआत हुई है, और त्रिशूल एयरबेस जो कि हमेशा से ही सामरिक रूप से काफी महत्वपूर्ण भी रहा है, तो सारंग टीम के जो जाबाज हीरोज हैं उनका बरेली शहर और यहाँ के लोगों का जो प्यार है, मिला है, उसका जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा है?
0: पूरी सारण टीम बहुत ही खुश है क्योंकि बरेली में उनका इतने जोश से स्वागत किया गया
1: जी
0: और खासकर उनको स्टेशन के बाहर भी लोगों से अवसर मिला, मिलने का अवसर मिला और
1: जी
0: उन्होंने देखा कि लोगों का वायुसेना के प्रति कितना प्रेम है और कितना उत्साहित है बरेली में टीम को देखने के लिए। तो सारे ही पायलट इस कारण काफी जोश में है और वो अपने डिस्प्ले से पूरे बरेली को ये उत्साहित करेंगे।
1: जी तो इस समय सिर्फ बरेली नहीं बल्कि हमारे देश के अलग अलग स्टेट्स के लोग भी आपको सुन रहे हैं और भारतीय वायुसेना में शामिल होकर आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा?
0: मेरा यही संदेश रहेगा कि खासकर जो युवा मेरी बातों को सुन रहे हैं और जो स्कूल के बच्चे मेरी बातों को सुन रहे हैं, डिफेंस फोर्सेस में आगे चलकर अगर आपको करियर परस्यू करना है तो
1: जी
0: आप भी सारंग जैसी टीम या फिर हमारी जो बाकी टीम्स हैं जैसे सूर्य किरण हमारे विमानों की टीम है, तो ऐसी एरोबैटिक टीम्स में भी आपको एक बहुत ही मेहनत करके और आगे अपना करियर बढ़ते ट्रेनिंग के थ्रू जाके आप इन टीम्स का हिस्सा बन सकते हैं। तो आप इन पायलट्स को अपने आसमानों में देखकर और सोशल मीडिया और बाकी प्लेटफॉर्म्स से देखकर अगर उत्साहित होते हैं तो आप सबको एक तरीके से ये एक इन्विटेशन है, एक मौका है कि आप अपना भविष्य देश की
1: जी
0: डिफेंस फोर्सेस के साथ बनाएं और अपने नागरिकों से तो जुड़े ही साथ में देश की सुरक्षा में भी अपना योगदान दें।
1: जी बिल्कुल, वाकई आपकी बातें सुनकर जो युवा हैं उनका जोश काफी बढ़ गया होगा, और हमारे अपने प्रोग्राम नमस्ते बरेली से जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियों को साझा करने के लिए आपने अपनी व्यस्त दिनचर्या से समय निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो दोस्तों, हो जाइए तैयार क्योंकि आज आसमान में देश के इस जाबाज ताकत का दीदार करने के लिए, बिल्कुल आसमान में देश की जाबाज ताकत का दीदार करिए और देश के प्रति गर्व महसूस करिए।

जी बिल्कुल, भारतीय वायुसेना की प्रसिद्ध सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम बरेली में जांबाज हवाई प्रदर्शन यानी कि एरियल शो दिखाने के लिए तैयार है और हम भी तैयार हैं वायुसेना के इस रोमांचक करतब को देखने के लिए। और अब आपको बता दें यूपी बोर्ड के रजिस्ट्रेशन से जुड़ी खबर, तो आज रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख है। यूपी बोर्ड के बरेली और मुरादाबाद मंडल के स्कूलों के लिए 15 अक्टूबर यानी कि आज कक्षा 9 और 11 के एडवांस रजिस्ट्रेशन, 10वीं और 12वीं के परीक्षा फॉर्म की फोटो सहित सूची DIOS कार्यालय में जमा करने की आखिरी तारीख है, तो जल्दी से अपने फॉर्म को सबमिट कीजिए।

इस समय आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी बरेली और प्रोग्राम का नाम है नमस्ते बरेली। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश के अन्नदाता जो कि हमारा भरण पोषण करते हैं उनके लिए ये खास खबर है। तो उत्तर प्रदेश सरकार आज से प्रदेश में धान की सरकारी खरीद का अभियान शुरू कर रही है और इस बार राज्य सरकार ने किसानों से रिकॉर्ड 65 लाख मेट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है।

आकाशवाणी बरेली से इस समय आप सुन रहे हैं नमस्ते बरेली, और बात कर रहे हैं तो ग्राम प्रहरियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक तोहफा दिया गया है, और बरेली सहित प्रदेश के 68,000 से ज्यादा ग्राम प्रहरियों का जो मासिक मानदेय है, जो सैलरी है, वो बढ़ा दी गई है, तो इससे काफी सुरक्षा कर्मियों में खुशी का माहौल भी देखने को मिल रहा है। वहीं बरेली की अगर हम मौसम की बात करें तो मौसम विभाग की माने तो आज का जो अधिकतम तापमान है वो 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान है, तो जो फिजाओं में ठंडक है वो जरूर आपको महसूस हो सकती है।

और एक बार फिर आपको याद दिला दें कि आसमान में 5 हेलीकॉप्टर्स की उड़ान आज आप देख सकेंगे। वायुसेना के अधिकारियों की माने तो मुख्य हवाई प्रदर्शन 15 और 17 अक्टूबर को होगा और ये प्रदर्शन मुख्य कार्यक्रम वायुसेना मुख्यालय परिसर में किया जाएगा। करीब 15 मिनट के इस प्रदर्शन में पायलट डॉल्फिन लीप, इन्वर्टेड वाइन ग्लास, डबल एरो क्रॉस और टीम के खास करतब सारंग स्प्लिट का प्रदर्शन करेंगे। तो है ना, आज हमारे बरेली के लिए ये एक बहुत ही बड़ा दिन।

अभी आप सुन रहे थे नमस्ते बरेली और 8:45 हो चुके हैं। लीजिए सुनिए लोकगीत, सबसे पहले अनीता जौहरी की आवाज में ये लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे लोकगीत और इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर। आइए इस कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक लेने के बाद फिर से हाजिर होंगे।

0: बम भोले भोले बम भोले भोले बम भोले।
1: हनुमान अंश फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, आवाज थी साधु एस तिवारी की, गीतकार और संगीतकार साधु एस तिवारी थे। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आज हिंदी साहित्य के छायावादी युग के चार स्तंभों में से एक है महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आज उनकी पुण्यतिथि है, हम उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं। महाप्राण निराला को हिंदी कविता में मुक्त छंद का जनक माना जाता है। उनका पूरा जीवन और साहित्य अदम्य साहस, विशाल हृदय और संघर्ष का प्रतीक है। उन्होंने जीवन में

कभी हार नहीं माने। इन्हें महाप्राण इसीलिए कहते हैं। उनकी कालजयी रचना राम की शक्ति पूजा में जब रावण से युद्ध करते समय एक दिन ऐसा आया जब विजय प्राप्त करने में थोड़ी कठिनाई होने लगी, तब राम ने शक्ति की देवी जगदम्बा माँ दुर्गा की आराधना करने का संकल्प लिया। विजय की कामना से 108 नीलकमल अर्पित करने का संकल्प लिया था, लेकिन 108 में जब अंतिम कमल अर्पित करने का समय आया तो एक कमल रिक्त पाया। आदि शक्ति ने राम की परीक्षा के लिए उसे उठा लिया। तब राम बड़े व्याकुल हो गए कि एक कमल के बिना 108 की संख्या पूरी नहीं हो पाएगी। तभी श्री राम को अपनी माता का वो संबोधन याद आया कि माता कौशल्या उन्हें राजीव नयन कमल नयन कहती थी। तब महाप्राण निराला लिखते हैं, राम की शक्ति पूजा की ये कविता का ये अंश है। राम में जागी स्मृति हुए सजग पा भाव प्रमण, यह है उपाय कह उठे राम ज्यों मंद्रित घन। राम में जागी स्मृति हुए सजग पा भाव प्रमण, यह है उपाय कह उठे राम ज्यों मंद्रित घन। कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन, दो नील कमल है शेष अभी यह पुरश्चरण, पूरा करता हूँ देकर मातह एक नयन। तब श्री राम अपनी आंख निकालकर शक्ति को अर्पित करने को उद्यत हुए। तभी आदि शक्ति प्रकट हुई और राम का हाथ थाम लिया। साधु साधु साधक धीर धर्म घन, धन्य राम कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम।

अलका याग्निक और अरिजीत सिंह की आवाजों में तमाशा फिल्म का गीत अभी आपने सुना, इरशाद का मिलके बोलते, ए आर रहमान की तर्ज आपने सुनी। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। अब चित्रलोक कार्यक्रम में एक और ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर से हम आपको सुनवाएंगे गाने और कुछ बातें आपसे होंगी।

ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत। दोस्तों, हम बात कर रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। निराला का हृदय मानव वेदना और संवेदना की प्रतिमूर्ति है। अपनी पुत्री सरोज के असामयिक निधन पर उन्हें उनके विदीर्ण हृदय से जो शोक गीत प्रस्फुटित हुआ, वो सरोज स्मृति के रूप में हिंदी साहित्य का अनमोल धरोहर बन गया। यूं तो अंग्रेजी और अन्य यूरोपीय भाषाओं में शोक गीतों की परंपरा रही है, किंतु सरोज स्मृति जैसी अभिव्यक्ति हिंदी साहित्य ही नहीं बल्कि पूरे विश्व साहित्य में दुर्लभ है। महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित सरोज स्मृति से उद्धृत

ये पंक्तियां आप सुनिए। धन्य मैं पिता निरर्थक था, धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित न कर सका। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने एक पिता की अत्यंत मार्मिक पीड़ा को दर्शाया है, जहां वो अपनी पुत्री के इलाज और परवरिश के लिए खुद को असहाय और विवश पाता है। और अब सुनते हैं चित्रलोक कार्यक्रम में एक और गाना।

0: खिलखिलाते जाएंगे और भूमि को उठेगा दिखा कर खिलखिलाते जाएंगे।
1: उनका सफर शुरू हुआ बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गटले
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
5: चिट्ठी न कोई संदेश।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: दोस्तों, आज है इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वेमेन। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस हर साल 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मुख्य रूप से कृषि, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण विकास में ग्रामीण महिलाओं के अद्वितीय योगदान को सम्मान देने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए मनाया जाता है। ग्रामीण महिला हमारे समाज और देश की अर्थव्यवस्था की आधारशिला है। इसके बावजूद भी कई जगह उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और रोजगार के अवसर नहीं मिल पाते। सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई गई हैं महिलाओं के अदृश्य श्रम को प्रोत्साहन देने के लिए। ग्रामीण महिलाएं इस ओर जानकारी लें और उसका लाभ उठाएं और सुनते हैं।

पर भक्त बड़ी छोरी जबर जात बड़ी सौदा इसने छुटेगा जो सीता मेरे गीता बनी छीता इससे पहले के पपीता तेरे झाड़ से धाड़ से पछाड़ गई जो भी ना उखाड़ गई जितने टाइम में तू देख पाए पल के झपक कर लपक कर निकल जाएगी राइफल की बुलेट को भी टक्कर दे जाएगी चारों खाने चित कर देगी चारों खाने चित कर देगी।

दंगल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे रफ्तार और साथियों की आवाजों में। अमिताभ भट्टाचार्य के बोल थे और प्रीतम का संगीत था। इसी गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की सविता सिंह को इजाजत दीजिए। नमस्कार, आप स्वस्थ रहिए, सकुशल रहिए, इसी कामना के साथ आपको फिर से नमस्कार। Thank you.

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा
2: हूं। किशोरदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: वाह।
4: कभी इस पग में

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

मैं हूं अमरकांत, आज के फनकार। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के संगीतकार शंकर के।

चाहे कोई भी हो। जब वो शंकर जयकिशन के साजों स्वर लहरियों पर सवार हुआ तो सीधे सुनने वालों के दिलों तक पहुंच गया और फिर वो श्रोता श्रोता नहीं आशिक

आज हम याद कर रहे हैं संगीतकार शंकर को, जिनका जन्म हुआ 15 अक्टूबर सन 1922 को हैदराबाद स्टेट के दक्षिणी हैदराबाद में, जो कि अब तेलंगाना राज्य में है। संगीतकार शंकर का पूरा नाम था शंकर सिंह राम सिंह रघुवंश।

0: संग गालो।
1: संगीतकार शंकर की शुरुआती पढ़ाई हैदराबाद में हुई और फिर शंकर ने बाबा नासिर खान साहिब की देखरेख में तबला वादन की शिक्षा लेना शुरू कर दी। कुछ वर्षों के बाद शंकर ख्वाजा खुर्शीद अनवर के शागिर्द बन गए और फिर उन्हीं के ऑर्केस्ट्रा में रम गए।

सत्यनारायण और हेमावती का एक थिएटर ग्रुप हुआ करता था, जिससे शंकर जुड़ गए और थोड़े ही दिनों के बाद पृथ्वीराज कपूर द्वारा स्थापित पृथ्वी थिएटर से जुड़ गए। यहाँ वो संगीतकार हुसैन लाल भगतराम के सहायक के रूप में काम

0: बात उन दिनों की है जबकि शंकर पृथ्वी थिएटर में काम किया करते थे। तब स्वतंत्र संगीतकार के रूप में काम की तलाश में वो कई प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के यहाँ स्ट्रगल के लिए जाया करते थे। उन्हीं में से एक थे गुजराती फिल्मों के निर्देशक चंद्रवदन भट्ट। शंकर इनके यहाँ नियमित रूप से जाते थे। चंद्रवदन भट्ट ने भी शंकर से वादा किया था कि जब कभी भी वो खुद कोई फिल्म प्रोड्यूस करेंगे तो उन्हें संगीतकार के रूप में साइन जरूर करेंगे। इस बात का जिक्र मैं इसलिए यहां कर रहा हूं क्योंकि यहीं पर शंकर की मुलाकात अक्सर एक युवक से होती थी जो कि बहुत अच्छा हारमोनियम बजाया करता था। तो एक दिन जबकि शंकर को पृथ्वी थिएटर में एक अच्छे हारमोनियम प्लेयर की जरूरत पड़ी तो उन्हें उसी युवक की याद आई और वो जाकर उसे अपने साथ ले आए और पापा जी यानी पृथ्वीराज कपूर से पूछे बगैर उन्होंने इस युवक को पृथ्वी थिएटर में काम पर रख लिया। अब जब पापा जी ने उस युवक को हारमोनियम बजाते सुना तो बेहद खुश हुए और शंकर को उन्होंने उनके इस चुनाव पर बहुत बधाई दी।
1: हर दिल जो प्यार करेगा वो

0: जिस महफिल में शमा हो परवाना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा दीवाना।
1: हाँ, तो हम बात कर रहे थे हारमोनियम बजाने वाले उस युवक की, जिसे शंकर ने अपने साथ पृथ्वी थिएटर में काम दिला दिया। दोनों साथ काम करने लगे, दोनों के बीच बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई। जहाँ भी जाते दोनों साथ जाते। अब पृथ्वी थिएटर में उस समय होने वाले नाटकों में संगीत के अलावा दोनों छोटे मोटे रोल्स भी करने लगे। लोगों ने इनकी दोस्ती को देखते हुए इन्हें राम लक्ष्मण की जोड़ी का नाम भी दे दिया। अब ये जरूरी हो जाता है दोस्तों कि मैं उस युवक का नाम आपको बता दूं। वैसे ये कोई रहस्य नहीं है, आप जानते भी हैं। जी हाँ, जय किशन पांचाल। मुण मुण।

तो शंकर जयकिशन की जोड़ी यहीं बन चुकी थी। अब यहीं यानी पृथ्वी थिएटर में दोनों की मुलाकात हुई पापा जी के बेटे राज कपूर से, जो कि उस समय निर्देशक केदार शर्मा के सहायक के रूप में काम कर रहे थे। राज कपूर ने जब खुद फिल्म निर्माण के क्षेत्र में कदम रखा तो अपनी पहली फिल्म आग के लिए उन्होंने बतौर संगीतकार राम गांगुली को साइन किया। फिल्म रिलीज हुई, संगीत भी लोगों को बहुत पसंद आया, लेकिन फिल्म के रिलीज होते होते राज कपूर और संगीतकार राम गांगुली के बीच क्रिएटिव डिफरेंसेस हो गए। और फिर जब राज कपूर ने अपनी अगली फिल्म प्लान की तो संगीत के लिए उन्होंने चुना शंकर जयकिशन को, और फिल्म थी बरसात।

यहाँ से शुरू हुई सुरीले गीत संगीत की वो बरसात जिसने संगीत प्रेमियों को बार बार अपने सरगमी छींटों से भिगोया। राज कपूर और शंकर जयकिशन के बीच एक ऐसा सुरीला रिश्ता बन गया जो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया।

0: बहती है।
1: शंकर जयकिशन के बीच के सुरीले साथ ने एक के बाद एक कई ऐसी फिल्में दी जिन्हें आज भी सिने संगीत के रसिया याद करते हैं। आवारा, बादल, पूनम, नगीना, औरत, पर्वत, कालीघटा, आह, पतिता, शिकस्त, बादशाह, मयूर पंख, नया घर, सीमा, श्री 420, बसंत बहार, हलाकू, राजहट, कठपुतली, अनाड़ी, चोरी चोरी, यहूदी, लव मैरिज, उजाला और न जाने कितनी। अगर मैं सिर्फ नाम ही बताता रहूं तो शायद मुझे दो या तीन प्रोग्राम इन पे करने पड़ेंगे।

साथियों, शंकर जयकिशन की ये जोड़ी 12 सितंबर 1971 को अचानक टूट गई, जबकि महज 41 वर्ष की उम्र में जयकिशन का देहांत हो गया।

अब खेल में जय किशन नहीं थे, लेकिन संगीतकार शंकर ने उनके नाम को अपने से अलग नहीं किया। जब तक वो रहे, शंकर जय किशन के नाम से ही संगीत देते रहे।

और आखिर 26 अप्रैल 1987 को शंकर ने भी अपनी तमाम धुनों और साजों को अकेला छोड़ दिया और इस दुनिया से विदा ले ली, और पीछे उन्हें भी अकेला छोड़ दिया जो उनके सुरों के मुरीद थे, जो उनकी सरगम के इंतजार में रहते थे।

0: संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के संगीतकार शंकर पर केंद्रित आज के फनकार प्रोग्राम अभी आप सुन रहे थे। प्रस्तुति सहयोग मिला आकांक्षा सिंह से, प्रोग्राम के प्रोड्यूसर रमेश गोखले, शोध आलेख और स्वर अमरकांत का। अब नमस्ते।
1: आज के फनकार।

104.4 मेगाहर्ट्ज पर इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली, और सुबह के 10 बजने वाले हैं और पूरे 10 बज चुके हैं। तो चलिए सुनते हैं प्रोग्राम आपकी पसंद।

सभी का स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम आपकी पसंद में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये गीतों भरा सफर और शुरुआत करते हैं माता रानी के भजन के साथ, लेकिन उससे पहले आप सभी के नामों को भी शामिल करते हैं। ये हमारे श्रोता जो कि चौकड़ा धाम कॉलोनी सनावर जिला खरगोन एमपी से हैं, कृष्णपाल सिंह चौहान, तारा देवी, नव उदित, वैभव पाल, ध्रुवी, प्रद्युम सिंह चौहान, टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर जो कि है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से, कालका से शुभचंद बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज, गांव नंगल खेड़ा फगवाड़ा पंजाब से बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण, राहुल और मनीष, मुंडा टोला डोंडी लोहारा से डोमेंद्र, नेताम गंगेश्वरी, चंचल, कामेश और माहिर, बेड़ी एमपी से हुकुम करकर, सुनीता, हार्दिक, प्राची और तनु, साथ ही डॉक्टर अद्भुत कुमार दीक्षित मणिनाथ बरेली सिटी से है, ग्राम बगबुड़वा पथरिया छत्तीसगढ़ से नरे नेताम कुसुम और इनका पूरा परिवार, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता, किसु, अर्णम, सत्यम आनंद, बोड़ागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। और ये हैं हमारे श्रोता जो कि मध्य प्रदेश से हैं, प्रवीण चौहान धनोरी तेलीवाला उत्तराखंड से, निसार सलमानी और नौशाद, आलिया और अयान।

मिगलानी, बबिता, सुभाष योगी, डब्बू और बब्बू, प्रदेश सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन, राजेंद्र जी शाह, पद्मा टॉकिश नेपानगर एमपी से हैं। साधुश राजस्थान से रामकुमार रिवाड़, चंद्रकला रिवाड़, गांव हांडीखेड़ा, जिला सिरसा, हरियाणा से राधेश्याम इंदिरा और सार्थक, रागिनी श्रीवास्तव मुस्कान, विनेश श्रीवास्तव बैंक सेंटर चनेटी के पास बरेली से, राजधानी रायपुर से नीलू मेघ, डॉक्टर वंदना, बिट्टू कुमार और इनका पूरा परिवार, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम विशाल, दिशानी, प्रिया और निमित आहूजा, राय सिंह पाल, जोगेंद्र, रविन्द्र, अशोक, प्रजापति, धर्मवीर, महेंद्र, अनुज, पूजा, काजल, सनेया बरेली से हैं। तो चलिए सुनते हैं, नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और माता के इस भजन को सुनते हैं। फिल्म का नाम सुहाग, आशा भोसले, मोहम्मद रफी की आवाज में।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
2: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
1: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
2: कहाँ से पता चलेगा?
1: उद्गम से, RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
3: आज ही सर्च करूंगा।
1: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
4: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

और ये गाना आपने सुना सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़, फिल्म का नाम दिल ने फिर याद किया। और इस गाने को आप सभी सुनना चाहते थे हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैजल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा प्रवीण, धनोरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद आलिया और अयान, दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता सुभाष योगी, डब्बू और बब्बू, सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर, कुशल नीति, सुरभि, अश्विन शाह, मंगला बेन शाह, राजेंद्र जी शाह, पद्मा टॉकिश नेपानगर एमपी से हैं, सादुल शेर राजस्थान से, रामकुमार रिवाड़ और चंद्रकला रिवाड़ गांव हांडीखेड़ा जिला सिरसा हरियाणा से, राधेश्याम शर्मा इंदिरा और सार्थक, शंकरपुर पोस्ट उसावा जिला बदायूं से सुमेंद्र यादव, पुष्पेंद्र आनंद, सनोज अमन, सोनी अंकिता, विनीता अनीता, सुनीता और सूरश्री यादव ग्राम खिजरपुर सेंथल नवाबगंज बरेली से, गुलाब हुसैन, रिजवान हुसैन, इमरान शबाब और फरहान बैंक सेंटर चैनिटी के पास से कैंट से हैं बरेली, विनेश कुमार, रागिनी श्रीवास्तव और मुस्कान। और ये है हमारे श्रोता जलालाबाद वेस्ट से सूरज सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा और इनके परिवार के अन्य सदस्य विशाल दिशानी और निमित आहूजा, रायसिंह पाल, जोगेंद्र रविंद्र, अशोक प्रजापति, धर्मवीर, महेंद्र पाल, अनुज, पूजा काजल सनैया बरेली से हैं, जिला नादेड़ येताला महाराष्ट्र से, शंकरलाल जयसवाल, गणेश जयसवाल, शुभम अर्णव, दुर्गेश्वरी राखी।

और तृप्ति जायसवाल, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा, सिटी दीवाना और गुरवंश सिंह जौड़ा, कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरकिरत, गुरशबद, राहुल, बागपत यूपी से हैं संजय ढिंगिया, नमन और अपार ढिंगिया, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर, मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित और पीयूष कुमार, मुरादाबाद जिला ग्राम दूलापुर यूपी से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, इरफान इस्टार और नरगिस खातून, राजकमल रेडियो श्रोता संघ आष्टी जिला जालना मराठवाड़ा से सैयद यूनुस, सैयद नुमान, तनवीर मसरत, सैयद निजामुद्दीन और राम भाव तांदले। विपिन कुमार शाक्य, सपना कुलदीप, रतन शाक्य, खुशी और इनका पूरा परिवार जो कि है वीरपुर पोस्ट विलसर तहसील अलीगंज एटा उत्तर प्रदेश से, जिला मुरादाबाद ग्राम दुलापुर यूपी से मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू राजपाल, काजल, मानवी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह, चंदोसी रोड चमनपुरा यूपी से मुकेश गौतम, सुनील अमन गौतम, बुधनगर खंडवा से नदीम भाई और राजू भाई, निदेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद, पराग, पूना राम, कृष्णा पलारी छत्तीसगढ़ से हैं, सेक्टर 2 आवास विकास कासगंज यूपी से पवन गौर, सुयश, आशीष, तन्मय और अपूर्वा, साथ ही गांव लोहडडा जिला बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, मुनेश देवी, अर्जुन भारती, अंजलि, नितिन मोहन, भुवनेश्वरी, सुधीर नूतन, रामानंद कश्यप, करावल नगर दिल्ली से रामनाथ प्रजापति और सुमन देवी, गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रबोध कुमार और पुष्पेंद्र कुमार, गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम, मोहम्मद दयान, मोहम्मद उस्मान और मोहम्मद यासीन, गाँव बेरा जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ से प्रहलाद सिंह वर्मा, मालती, अंश, रेवी, कुन्नू, शिवी वर्मा और इनका पूरा परिवार, साथ ही ये हैं हमारे श्रोता जो कि इस गाने को सुनना चाहते हैं, आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस अनिल, अजीत कुमार, आयुष और नंदिनी, बहेड़ी से अंजुम भी इस गाने को सुनना चाहते हैं, मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी, बिट्टू साजदा, हिना कौसर, मोहल्ला हलवाइयान, शेरकोट बिचनौर से हैं, बिलाई छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन, नाज रेडियो क्लब करेली से निसार अहमद अंसारी, महजबी निसार अंसारी, नुसरत फातिमा, उस्मल फातिमा, अबरार अहमद अंसारी, इसरार अहमद, इकबाल अहमद अंसारी, वसीम और पप्पू भाई भी इस गाने को सुनना चाहते हैं, ग्रामर पोस्ट हरहरपुर मटकली जिला बरेली से हैं हमारे ये श्रोता, शारुन नूर अंसारी, फरियाद हुसैन, शकील अहमद, मोइन अंसारी, तस्लीम, डीजे प्रधान, तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश, जिला मुरादाबाद ग्राम महेशपुर खेम से हैं, कस्बा मीरगंज बिजली घर से हैं आदर्श दिवाकर, लव, ओमेंद्रपुरी और कल्लू, साथ ही ये हैं आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश, मैंडी, सौरभ, शाइना और निवान, मानपुर साबित जिला मुरादाबाद से शेख अताउर रहमान, शेख हबीबुर रहमान, सीरा लियोन वेस्ट अफ्रीका से हैं और साथ ही ये हैं राजेश भारती रेडियो श्रोता संघ कुलीपाड़ा कटिहार से राजेश भारती, विभा, आदित्य, प्रिया, प्रियंका, प्रेरणा, प्रगति, साक्षी, आशीष, संजीव, लक्ष्मी, संतोष, आयुष और आर रमन, और साथ ही सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर से हैं राजस्थान से रमेश चंद चौहान, मोहिनी कल्पित, गर्वी और हिमांश, बीड शहर महाराष्ट्र से नंदिश किशोर घटे, संगीता, साक्षी, जयश्री, अंजलि, बाला साहब करवा, राम निवास, धनंजय और पीबी कुल थे। ओल्ड लिसनर्स ग्रुप रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी ठाकुर, गांव हीरावाली फाजिलका पंजाब से सुभाष गुदारा, विमला इंदु, पार्वती, हिमांशु गुदारा, हयात कॉलोनी अररिया बिहार से हैं फैजल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा प्रवीण, उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती बघेल, लगान पंड्रिया छत्तीसगढ़ से हैं और साथ ही ये हैं हमारे श्रोता जो कि इस गाने को सुनना चाहते हैं, ग्राम बगबुड़वा पथरिया छत्तीसगढ़ से नरेन नेताम और कुसुम नेताम, मणिनाथ बरेली सिटी से डॉक्टर अद्भुत कुमार दीक्षित और बेड़ी एमपी से हैं हुकुम करकर, सुनीता, हार्दिक, प्राची और तनु,
पंचकुला चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता केशु रधान और तुलसी मस्कीन भी इस गाने

सुनना चाहते हैं। गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से मास्टर खिलू परवेज, बेगम इमराना, नवाजिज दानिश, अमन आफरीदी, ये हैं ग्राम लसूरिया, नरसिंहगढ़, राजगढ़ एमपी से गोविंद वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल परी, कृतिका, रमेश चंद डांगी, थाने के सामने नगर पंचायत आलागंज, जनपद शाहजहांपुर से डॉक्टर आरवी सिंह, अरजीत यादव, प्रशांत यादव, उदित अभय और दीक्षा यादव, गांधीनगर महेश्वर एमपी से श्याम यादव और सोना यादव, कोल सिटी बरकाना से अफजाल शाहिन, सोनू तस्नीम, निपी सहानी और मोहम्मद अफजल मलिक, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवारकर, निर्मला, विशाल नवारकर, मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले, सोपान ताइडे और आशीष भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। जितेंद्र राजपूत, प्रभा राजपूत ग्राम आनंदपुर दुनका मीरगंज से हैं। भोजीपुरा के ग्राम मजुआ गंगापुर से हसमुख जी, हसान समस, इनाया शानूर, फलकनूर ताज और मोहम्मद आबन नूर भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। कटरा चांद खां पुराना शहर बरेली से जमुना प्रसाद मौर्य, किरण मौर्य, दृष्टि मानवी और इनका पूरा परिवार, काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी से आजन कुमार, वंदना, विनती, विनायक, मोहिनी, मोहित और कोको रानी भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। पतली गली बनारस से मुस्ताक सुलेमानी, शाहिद सुलेमानी भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। और यह है गाँव बिठोडा, भोयर तहसील मंगरूल पीर, जिला वाशिम पश्चिमी विदर्भ से योगी राज मस्के, श्रीहरि, इंदुमती मल्हार, कविता, मोहन, विशाल, कुशल, गोपाल, श्याम, गोविंद मस्के और इनका पूरा परिवार, बनवारी लाल कुशवाहा, मंजुलता, राम और श्याम, रवि आर्यन और साथी, चनोरा, जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से। और अब सुनते हैं ये गाना, फिल्म का नाम है कलंक, श्रेया घोषाल और वैशाली माडे की आवाज में।

0: खेती में मेहनत के साथ समझदारी से जमीन का इस्तेमाल भी जरूरी है। सोचिए, एक ही खेत में गन्ना लगा है, क्या इसी के साथ सरसों की फसल भी उगाई जा सकती है? बिल्कुल, और इसी तकनीक का नाम है सह फसली खेती।
1: गन्ने की कतारों के बीच सरसों की फसल उगाकर जमीन का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी जमीन वही खेती का तरीका समझदार।
0: इससे किसान को कम समय में अतिरिक्त उपज और आय का और अवसर मिल सकता है।
1: तो एक फसल पर निर्भर ना रहें, गन्ने के साथ सरसों की सह फसली खेती के लिए सरसों के बीज कृषि विभाग से निशुल्क प्राप्त करें।
0: किसान वही खेत वही, बस सोच में एक नया कदम।
1: कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है, पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: और इस समय आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी बरेली और सुबह के 10:32:07 हो चुके हैं। प्रोग्राम में सुन रहे हैं आपके पसंदीदा गानों को और आप सभी श्रोता हैं कुलस्वामिनी रेडियो श्रोता संघ भवानी चौक श्रीरामपुर भोकर महाराष्ट्र से।

हरी भाऊ बिटवे, शुभांगी, श्रवण, अनिकेत और अनीता बिटवे, अजीत कसाना, माय देवी, ऋतिक आदित्य कांट रोड लदावली से हैं, जो कि जिला खरगोन सनावद एमपी से भी इन्होंने हमें ये कमेंट किया है। मास्टर अशोक वर्मा ने, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश, शेख मुसा भाईजान, राजकुमार बुड़ाना, सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु और मुकेश जगताप, कस्बा उगहती बदायूं से देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज, पंकज, प्रिंस, प्रशांत, कार्तिक और निर्भय गुप्ता, अबीक खान, नाबिल खान, आरफा, इल्मा, एम असलम सैफी, परिमहल कासगंज से हैं, लाल कुर्ती रुड़की कैन से राजेश वर्मा, मंजू, निशांत कौशिकी, दीपाली, युवा नुरार के राजा, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चंपा, कपिल, शान और पूजा परिहार, शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा यूपी से आफ्ताब अंसारी, रियाज, मोहम्मद कैफ, मोहम्मद अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी, प्रदीप सलूजा, संगीता सलूजा, प्रथम सलूजा, जनकपुरी न्यू दिल्ली से है और ये हैं गोंदो रोड धुलिया महाराष्ट्र से, मनोहर मगर, यामिनी, उद्यन और अर्पिता, सद्दाम हुसैन सिद्दीकी, सितारा सिद्दीकी, साद समद, सादिक, कस्बा उगहती, जिला बदायूं यूपी से, बठिंडा रोड मंडी डबवाली से राजीव नारंग, अंजू, मोहित और तानिया, गांव बांडीवाला फाजिलका पंजाब से ओम बगड़िया, क्रियांश, रजत और गरिमा, राजकोट गुजरात से है रश्मि, झरना, भरत कुमार और इनका पूरा परिवार, गांव कारबेल जिला हिसार हरियाणा से सुजीत सिंह इंदौरा, विशाल कुमार इंदौरा, सुरेंद्र खुराना न्यू मुल्तान नगर नई दिल्ली से हैं, जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परभनी महाराष्ट्र से, रुपेश संगई, महेश, प्रगेश, प्रतीश और इनका पूरा परिवार, पंचकुला सेक्टर 9 से आशुचुक अश्विनी, गोविंद, टोनी, लव दीवान, राधे, भाविक ढिंगरा, पंचकुला के सेक्टर 11 से अतुल शर्मा और राजमाता नगर बुल्ढाना से महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति, आकांक्षा और आकाश कुमार, खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य मल्होत्रा, कोयल, नानकचंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल और डुगू भाविक, हतमंद रिंगडी छत्तीसगढ़ से दिनेश कुमार और करुणा, मोहम्मद जावेद, मोहम्मद अदीब, अब्दुल हन्नान, जीनत, नाहिद, आयात, सिकंदर अली, मोहम्मद दानिश, मोहम्मद इंतजार, गांव भोजपुर, तगा, चिलकाना, सहारनपुर से नर्मदा पार्क, मंगलवेड़ा से हैं मास्टर आलिम पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल, रवीना, आफिया, मोहम्मद अनवर, अहमदगढ़ मंडी पंजाब से जीटीवी मार्केट से हैं, साथी जैस्मीन, शकीला, सना, शमा, हिना, राजिया सुल्ताना, सूरज और अंसारी परिवार, एटा रोड गंज डंडवारा से बीबी गौतम और सरिता गौतम, श्री गंगानगर राजस्थान से हैं डॉक्टर बनवारी लाल, जयपाल, विमला, सोनू, ममता, दिशा, मोक्ष, सुशांत, विक्रम, पूनम चालिया और इनका पूरा परिवार, हजारीबाग झारखंड से वीरेंद्र भगत, मालती भगत, विकास, जिनेन्द्र, ऋषि और राहुल, मोहम्मद परहीन अंसारी भी इस गाने को सुनना चाहते हैं।

कस्बा शीशगढ़ तिगड़ी से शाहरुख हासिम अरहम और किशरा नूर, गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता तुषार रिंकी और इनका पूरा परिवार, ईदगाह गेट मुरादाबाद से शाफी अहमद अंसारी, मोहम्मद अयान, रईस दुला अंसारी, चंद्रपुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से विनय कुमार, अनुष्का अश्विनी, अंकिता और श्रुति और कृष्ण लाल सलूजा, राधा सलूजा जनकपुरी न्यू दिल्ली से हैं और प्रमिला गंज आलूर जिला रतलाम एमपी से, बलवंत कुमार, राजूबाई, माया, शोभा, राहुल, ज्योति और अतुल, पायल, प्रियांश और ऋषि वर्मा, जामनिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक और स्वाति, बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ और शौर्य, कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा, अमित, हैप्पी, दुबिहानेवादा गाजीपुर से प्रतीक रोशनी और प्रांजल, साथ ही ये हैं छतरी तालाब अमरावती से साधना रानी और किशोर गुप्ता, इस्लाम नगर पबसरा जिला बदायूं से सत्यदेव कुमार राणा और विष्णु कुमार, गिरगांव जिला हिंगोली महाराष्ट्र से गजानन नादरे, मातो राव पांचाल, सफेदो सिटी हरियाणा से नानक खन्ना, चंचल खन्ना और इनका पूरा परिवार, उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खुरवाल, कमिला रानी, गीतिका और भानु प्रकाश, साथ ही ये हैं मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगैना बरेली से बेनी सिंह सागर, पन्नीलाल आशीष, अमर सिंह, हितेश, राजेश, रूवी, एकता, दिव्या, रचना, ओमवती, खनक, शगुन, सारांश, आयांश, अदिति, शिवांश और प्रथव।

पाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा और ओम प्रकाश मल्होत्रा, गावना थाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, सीता और गीता, गांधीनगर गुजरात से जीके परमार, ज्योत्सना, हर्ष, दीपल और उर्वशी, ये है ऑक्सीजन पार्क, राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गुडाने, अर्चना हीरामन और प्रणय सिद्धे, अलकनाथ मंदिर के सामने से हैं बेचूलाल गंगवार, गुड्डी प्रशांत, ज्ञानेंद्र, इला देवी, बर्फा देवी, सुनील यादव, महावीर कश्यप, संजय, अश्विनी मौर, बाबू भाई, रमेश चंद गौतम, श्रीराम राठौर, पारस और वेदराम दरोगा जी बरेली से हैं, लिवाई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी और राजा दास, मोहल्ला बारादरी महमूद खान, रामपुर से राफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद असद, फिरोजा मुस्कान, नगमा और नाज मंसूरी, रामबाबू मिश्रा, कृष्णा देवी, दिलीप मिश्रा, माधुरी, प्रदीप, सत्यम, शीतल, राधा, सलोनी, शिवम मिश्रा, ग्रामर पोस, गोठा, खंडवा से। और अब सुनते हैं ये गाना जो कि है फिल्म धुरंधर से और जिसमें आवाज अरिजीत सिंह और अरमान खान की।

0: खेती में मेहनत के साथ समझदारी से जमीन का इस्तेमाल भी जरूरी है। सोचिए, एक ही खेत में गन्ना लगा है, क्या इसी के साथ सरसों की फसल भी उगाई जा सकती है? बिल्कुल, और इसी तकनीक का नाम है सह फसली खेती।
1: गन्ने की कतारों के बीच सरसों की फसल उगाकर जमीन का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी जमीन वही खेती का तरीका समझदार।
0: इससे किसान को कम समय में अतिरिक्त उपज और आय का और अवसर मिल सकता है।
1: तो एक फसल पर निर्भर ना रहें, गन्ने के साथ सरसों की सह फसली खेती के लिए सरसों के बीज कृषि विभाग से निशुल्क प्राप्त करें।
0: किसान वही खेत वही, बस सोच में एक नया कदम।
1: कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
2: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहने, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
3: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है, पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: और इस समय आप सुन रहे आकाशवाणी बरेली, प्रोग्राम का नाम है आपकी पसंद। ये हमारे श्रोता जो कि हैं मुकेश राजपूत, ग्राम कुमारपुर से, थाना अलीगंज, पोस्ट मंडेर, जिला बरेली से, और इनके परिवार के सदस्य अनमोल राजपूत, दीपक, राकेश, नंदू, अभिजीत, वीर बालाजी, आकाश, जगदीश और इनका पूरा परिवार। खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश, चंदन और अंकुश, बाबा नानक दुखिया देवे रहे सरते मेरा हाथ, ये भी लिखते हैं ये। और भाटापारा छत्तीसगढ़ से है हिमकेश्वर साहू, करण राहुल साहू, चंपा साहू जो कि इस गाने को सुनना चाहते हैं। साथ ही बोरखेड़ा पित्रामल, जिला उज्जैन एमपी से विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपक, मयंक, चेतन नाहटा, और गांव चुरवाल, जिला नवाशहर पंजाब से गंगा नीप थांदी, तृप्ता कुमारी, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम, बेमी वामिका और वाणी थांदी, उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधुबाशी और शिवन्या, ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद, अब्बासी निघत, परवीन, शाहनबाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और इनका पूरा परिवार, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर, राही मेराज जहां, आजाद नगर, लगसर, हरिद्वार से, और ये हैं इकरम अली प्रेमी, फैजान अली, एहसान अली प्रेमी, शहनाज, गुलनाज, अजहर जहां, रूहान और इनका पूरा परिवार, मोहल्ला थाना 3 रामपुर से। कविता

थोराट, श्रेया बंटी, सदाशिव थोराट पूना देगांव से हैं, मुबारकपुर रुचि तकिया आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, दिलशाद हुसैन, फातिमा वकार, हैदर कनीज, सकीना हसीना दिलशाद, मलयान सरधना मेरठ से, अनिल जैन, जैन साहब, संयम मुस्कान और जिव्यम, चौखड़ा धाम कॉलोनी सनावत खरगोन एमपी से, कृष्णपाल सिंह, तारा देवी, नवोदित, वैभवपाल, ध्रुवी और प्रद्युम, आजाद रेडियो श्रोता संघ रजोखर बाजार अरेरिया बिहार से, शरीफ आरजू गुड्डू रंगीला, उमरी नादेड़ महाराष्ट्र से, बालू अप्पा घटबले और ज्योति घटबले, गुजरात गांधी ग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी, मोहम्मद आमिर अंसारी, शमीम अंसारी, माहिनूर, नसरीन अंसारी, समा अंसारी बरेली ग्राम करेली से है, अनिल जो कि है गौरव, कविता अरोड़ा नई दिल्ली से मोती नगर, साथ ही ये है मजनू का टिल्ला से कमल बालूजा, मधु सागर, उमंग आकांक्षा और माही मलिक, धनवंतरी नगर जबलपुर एमपी से अशोक, सुनीता, अंकिता, कृषव, गुड़िया और वेदा सिंह, ऊंचे गांव नादेड़ से देवानंद शिंदे पाटिल और संबलपुर कांकेर से फगुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव और इनका पूरा परिवार, वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा, मजनू का टिल्ला से कमल बालूजा, मधु सागर, उमंग आकांक्षा और माही मलिक, ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और आराध्या, राम सिंहपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से अशोक बब्बर, पवन, राजेश, अजय, राहुल और मनु, होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खुरवाल, सचिन, अमन, दीपांशु और इनका पूरा परिवार, यादव मोहल्ला सनावत से दिलीप मालका, सुनीता, योगेश, मुस्कान, जितेंद्र, धर्मेंद्र, रीना, निशा और ये है टीवी टावर नागपुर से, महाराष्ट्र से नाना डोंगर दिवे, रमाताई, दीक्षा, रीमा, राहुल और इनका पूरा परिवार, गांव चतुपुर कुंदरकी मुरादाबाद से हैं, एम मुजाहिर खान, फिरासत फारूकी, मुअज्जम मुस्तफा और गौसियाबी। सुनते हैं आप सभी के पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम है धमाल 2, संजू राठौर की आवाज़ में।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: खेती में मेहनत के साथ समझदारी से जमीन का इस्तेमाल भी जरूरी है। सोचिए, एक ही खेत में गन्ना लगा है, क्या इसी के साथ सरसों की फसल भी उगाई जा सकती है? बिल्कुल, और इसी तकनीक का नाम है सह फसली खेती।
2: गन्ने की कतारों

0: के बीच सरसों की फसल उगाकर जमीन का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी जमीन वही खेती का तरीका समझदार।
1: इससे किसान को कम समय में अतिरिक्त उपज और आय का और अवसर मिल सकता है।
0: तो एक फसल पर निर्भर ना रहें। गन्ने के साथ सरसों की सह फसली खेती के लिए सरसों के बीज कृषि विभाग से निःशुल्क प्राप्त करें।
1: किसान वही खेत वही, बस सोच में एक नया कदम।
0: कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
2: और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम आपकी पसंद में। और 10:53 हो चुके हैं और आपके गानों को भी सुनते हैं और आपके नामों को भी शामिल करते हैं। सुल्तान पोखर फारिस बिसगंज बिहार से, कृष्ण मोहन यादव, माया रानी, कंचन शिवकांत और अमित कुमार जिला छतरपुर से, ग्राम सेवड़ी से हैं बारेलाल प्रजापति, धनीराम नरेश, कल्लू रविंद्र और वृंदावन प्रजापति, ग्राम चांदूर बिस्वा जिला बुलढाणा महाराष्ट्र से किशोर वानखेड़े, उषा और विशाल वानखेड़े, ग्राम राजुर तहसील मुताला महाराष्ट्र से राज गवई और राजवीर गवई, गांव जेवरा हिसार से विरोध भ्याण, सुरेंद्र शमशेर और मनोज साथी की है, डाबकी रोड अकोला से सुशीला मंदुरकर, सदानंद कुमार गौरव, आरव और अर्पिता, सोंगा धमतरी छत्तीसगढ़ से फरेश कुमार, सावित्री मोहित, देविका, गजेंद्र कुमार और हेयांश, स्मिता रेडियो रिपोर्टिंग ग्रुप भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, अरविंदर सिंह चावला, लोकेश पायल, अंकिता लक्ष्मी, वीरेंद्र वर्मा, रानू अग्रवाल, वैदही हंसिका, जगदलपुर बस्तर से पूनम नायडू, ईश्वरलाल मेहर, सुमित्रा रेहांश, सृष्टि और इनका पूरा परिवार गांव भटूनी जिला मंदसौर एमपी से हैं। ये हैं मोहल्ला ख्वाजा कुंदरकी से जाकिर खान, नजीम खान, साहिब अरीब और नूर साथी, हलीमा सादिया और इनका पूरा परिवार, शेरकोट बिजनौर से नदीम बाकी, कलीम अलीम, अजीम अब्दुल गनी, अलमीर और जन्नत, झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा, रजत और मयंक, ये हैं रमेश कुमार खत्री, मास्टर कृष्ण लाल खत्री, मोहम्मद अमीम जाफर सादिक, श्वेत शंकर गुल शर्मा बहेड़ी से हैं। और ये हैं हमारे श्रोता पीपल लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम, ज्योति और शिवांश। साथ ही रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से उदय भानपाल, जय हिंद दीक्षा, प्रतीक्षा, विमलेश पाल, दिव्यांश बघेल और इनका पूरा परिवार गांव सिद्धूवाला, सूरतगढ़ राजस्थान से इंदिरा ज्ञानी और अंकुश, रघुवीर नगर दिलावर से हैं दिलावर खान, हसीना बानो, अलीजा नायब और लड्डू, आकोट से विनायक बेंडे, मंगला बेंडे, विजय शुभम, पवन जरिए और संजीव डाबे राव, गांव भोजपुर तगा, सहारनपुर से मोहम्मद इंतजार, मोहम्मद जावेद, राहत अली, जाकिर हुसैन और वकील अहमद, सेक्टर 18 जगाधरी, यमुनानगर हरियाणा से विनय मोहर खारवन, मीनाक्षी प्लोमा और डॉक्टर ईशानी, वीरमगाम गुजरात से अजीत भावसर और प्रमिला भावसर। साथ ही ये हैं विराटनगर नेपाल से रेणुका शर्मा, अरुण और इनका पूरा परिवार, मेन बाजार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर गेमेकर, प्रमोद और प्रदीप, सिद्धार्थनगर दरियापुर बाबली से गजानन येले, नवदीप, विश्वदीप, अशोक और इनका पूरा परिवार, ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, प्रहलाद और राजेंद्र वर्मा, नई दिल्ली से रविंद्र सिंह, स्वीटी पैराडाइज कॉलोनी अमरावती से सईद, सुफिया, अनस, सरोज चौक से कमरुला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, आरफिया और इनका पूरा परिवार, कुमार हेडा सहारनपुर से मसरूर हसन, शाइना हसन, नाजिया और इब्राहिम, ये हैं नारायण भाऊ खड़से, ललिता आशा रानी खड़से, संजना परी, आराध्या गणेश, लड्डू देवी एयरपोर्ट वंदन रोड वंदना नगर इंदौर से, भागलपुर उस्तू से प्रदीप कुमार मंडल, आशीष कुंदन, करीना, पूजा, आरती और सुनीता, फासिल का पंजाब से खेड़ा परिवार, भूषण, विशु, विशाल, लाडी खेड़ा, शालिनी, टिमांशी और इनके साथी, फरुखाबाद साहबगंज चौराहा उत्तर प्रदेश से सुरेश चौरसिया, सरोज, शिवा और शिवानी, ये हैं मोहम्मद कौसर नियाजी सुंदर नगरी दिल्ली से, मोहम्मद फैजान, मोहम्मद रिहान और इनका पूरा परिवार कटरा चांद खां पुराना शहर बरेली मौर्य मंदिर से, रतन माला मौर्य, मुकेश, प्रिंस, प्रियांशी, पुष्पा, गौरव, चंद्र प्रकाश और मन्नू भाई, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से हिम्मत सिंह राजपूत, और ये हैं नदायल डिस्ट्रिक्ट बदायूं से फिरोज खान नूरी, फिरोज अरबाज खान, साहिब खान और इनका पूरा परिवार। और अब सुनते हैं

ये गाना जो कि है फिल्म है जवानी तो इश्क होना है, जिसमें आवाज हम आपको बताते हैं कौन है, लेकिन उससे पहले आप सुनिए ये गाना। तो आप सुन रहे हैं है जवानी तो इश्क होना है से गीत, जिसमें आवाज जोनिता गांधी और एशेज कौर की है।

और इसी के साथ आपकी पसंद यहीं तक। अभी आप सुन रहे थे आपकी पसंद, और इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली 100.4 FM पर, और अब समय है सब रंग का। तो लीजिए सुनिए सबसे पहले ये भजन लता मंगेशकर की आवाज।

0: सोनू निगम की गाए इस गाने के साथ सबरन यही तक
1: सोचे फिर खुशी का मौसम आए।
0: अभी आप सुन रहे थे सबरंग और इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली 100.4 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी बरेली पर। 11:15 बज चुके हैं और अब लीजिए सुनिए झुमका गिरारे।

नमस्कार बरेली, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम झुमका गिरारे में और मैं हूं आपकी अपनी दोस्त नीतू। दोस्तों, जब भी बरेली का जिक्र आता है तो जुबां पर सिर्फ एक ही गाना याद आता है, झुमका गिरारे बरेली के बाजार में। लेकिन आज हमारी बरेली के बाजार में झुमका गिरने की नहीं बल्कि त्रिशूल हवाई अड्डे से आसमान में शौर्य और गर्व बरसाने की गूंज है। जी हाँ, आज भारतीय वायुसेना के जाबाज सारंग टीम आसमान में जादू दिखाने के लिए तैयार है और पूरा शहर उस पर गर्व फील करेगा। तो चलिए इसी जाबाज और संगीत में सफर की शुरुआत करते हैं इस गाने के साथ।

0: और इस समय आप सुन रहे हैं झुमका गिरारे। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी नाथ नगरी एक बार फिर वायु सेना के शौर्य जज्बे और अदम्य ताकत की झलक देखने जा रही है। वायु सेना की सारंग टीम आज यानी 15 और 17 अक्टूबर को आसमान में एक साथ 5 हेलीकॉप्टर्स की सधी उड़ान, पलक झपकते बदलती दिशा और हवा में हैरत अंगेज करतब का प्रदर्शन करेगी। दुश्मन को चुनौती देने का साहस, हर परिस्थिति में देश की रक्षा का संकल्प और राष्ट्रीय सेवा के लिए समर्पित वायु सेना की सारंग दुनिया की चुनिंदा सैन्य हेलीकॉप्टर प्रदर्शन टीमों में शामिल है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 5 हेलीकॉप्टर से सजी ये टीम स्वदेशी एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर यानी कि ALH ध्रुव से उड़ान भरेगी। आसमान में बेहद कम दूरी बनाए रखते हुए सामूहिक उड़ान, तेजी से दिशा बदलने और जोखिम भरे कर्तव्य दिखाने के लिए पायलट को असाधारण दक्षता, अनुशासन और आपसी तालमेल की भी जरूरत होती है। तो चलिए आपको भी सुनाते हैं सारंग टीम का क्या कुछ कहना है।
1: सारंग टीम के साथ फ्लाई करना हम सब के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है और साथ ही एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। अपने हर डिस्प्ले के जरिए हम भारतीय वायुसेना की प्रोफेशनलिज्म, प्रिसिशन और प्रोफेशनल एफिशिएंसी को शोकेस करने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि जब भी लोग हमें आसमान में फ्लाई करता देखें तो उन्हें बस हेलीकॉप्टर नहीं बल्कि अपने देश का जज्बा, उसकी मेहनत और नए भारत के सपनों की उड़ान भी दिखे।
2: ये मैसेज सभी उन लड़कियों के लिए है जो आसमान में उड़ान भरना चाहती है। कभी भी आपको ऐसा लगे कि क्या मैं ये कर सकती हूँ, तो उसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। एविएशन एक ऐसा फील्ड है जिसमें स्किल, डेडिकेशन, हार्डवर्क और करेज की रिक्वायरमेंट है। इन स्किल्स का जेंडर से कोई लेना देना नहीं है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अपने पैशन को पहचानिए, निरंतर अपने सपनों की तरफ प्रयास करते रहिए। ये सारा का सारा आसमान आपके सपनों की उड़ान का इंतजार कर रहा है।

0: कुछ मिनटों का प्रदर्शन ऑडियंस देखती है उसके पीछे काफी लंबी तैयारी होती है। हर एक मनोवर के पीछे घंटों की प्रैक्टिस, सही प्लानिंग और पूरी टीम का योगदान होता है। तो हमारा युवाओं को यही संदेश रहेगा कि सफलता भले ही बाहर से आसान दिखे, लेकिन उसके लिए धैर्य, कड़ी मेहनत और
1: तो आपने सुना सारंग टीम को कि किस तरीके से वो तैयार है गगन में सारंग करने के लिए।

तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, सारंग टीम 15 और 17 अक्टूबर को आसमान में एक साथ 5 हेलीकॉप्टर की सधी उड़ान, पलक झपकते बदलती दिशा और हवा में हैरतअंगेज करतब का प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरह तैयार है। आपको बता दें कि वायुसेना के अधिकारियों के मुताबिक वर्ष 2003 में गठित सारंग टीम का नाम संस्कृत के शब्द सारंग से लिया गया है, जिसका अर्थ मोर होता है। अपने आकर्षक रंगों, रोमांचक उड़ान शैली के वजह से टीम ने अलग पहचान बनाई है और प्रदर्शन में वायुसेना के कौशल के साथ स्वदेशी विमान निर्माण क्षमता की भी झलक मिलती है। नाथ नगरी बरेली में सारंग का ये प्रदर्शन यहाँ के विद्यार्थियों और युवाओं के लिए काफी खास रहने वाला है। आसमान में हेलीकॉप्टर्स के करतब उन्हें विमानन विज्ञान और आधुनिक तकनीक की दुनिया से रूबरू कराएंगे।

वाकई अद्भुत। तो सारंग टीम का ये असली जादू देखने के लिए आज यानी 15 अक्टूबर और 17 अक्टूबर को त्रिशूल एयरबेस पर तैयार रहिएगा। और हमारा प्रोग्राम झुमका गिरारे बस यहीं तक, और मुझे यानी अपनी दोस्त नीतू त्रिपाठी को दीजिए इजाजत। जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे झुमका गिरारे, और इस समय आप सुन रहे आकाशवाणी बरेली 100.4 FM पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे FM रेनबो आकाशवाणी लखनऊ से।

0: राखी जी, मैं आपका बहुत पुराना और नियमित श्रोता मोहम्मद अमीन बोल रहा हूँ, ग्राम बड़ेहा पोस्ट बारोली गंगागंज लखनऊ से।
1: कैसे हैं अमीन जी?
0: हम बहुत अच्छे हैं। और राखी जी, आपको जब सुन लेते हैं ना प्रोग्राम करते हुए तो भी और बहुत अच्छे हो जाते हैं
1: जी। बहुत शुक्रिया इस हौसला अफजाई का। तो ये बताइए कि जी
0: आप प्रोग्राम करने आती ना
1: जी,
0: तो मतलब कैसे चार चांद लग जाते, लेकिन चार चांद नहीं कई सारे चांद लग जाते प्रोग्राम करते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद आपको। तो अमीन जी ये बताइए कि फोन मिलाने से पहले क्या कर रहे थे आप?
0: मैम अभी तो मैम इस टाइम पे मैं खेत में काम चल रहा है मैम, धान कटाई का।
1: अच्छा अच्छा, तो उसी में व्यस्त है। और संदेश क्या देना चाहते हैं एफएम रेनबो के लिसनर्स को?
0: राकेश जी, संदेश ये है कि मैं संदेश जो है शिक्षा पे कुछ बोलना चाहता हूँ। जो लोग मतलब निर्धन लोग होते हैं वो लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं।
1: बिल्कुल सही बात है।
0: सक्षम है, आर्थिक रूप से सक्षम है, तो मतलब इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हाँ,
0: इससे मतलब वो बच्चे अपना शिक्षा ग्रहण कर सके और अपना भविष्य उज्ज्वल बना सके।
1: बहुत अच्छी बात आपने कही। हाँ
0: हाँ, और साथ साथ में जैसे कि कोई किताब हो गई घर पे, बुक वगैरह हो गई या कॉपी वगैरह हो गई, तो आपको जो आपके यूज जो ना हो, तो वो ऐसे बच्चे हैं जिनको जरूरतमंद है, उन तक वो चीज आप पहुंचा देंगे तो उनका भविष्य उज्ज्वल होगा और साथ साथ में आपको बहुत अच्छा लगेगा ये करते हुए।
1: बिल्कुल, और ये जो शिक्षा का दान होता है ना, ये बहुत सुंदर दान होता है, क्योंकि एक शिक्षा ऐसा खजाना है जो किसी से कोई छीन नहीं सकता। एक बार आपने कोई चीज पढ़ ली, कोई चीज समझ ली, कोई किसी चीज का ज्ञान अर्जित कर लिया, तो वो आपके आपसे कोई ले नहीं सकता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, वो उम्र साथ चलता रहता है और उसमें कुछ ना कुछ ग्रोथ होता रहता है। शिक्षा ग्रहण करते हैं उनका कुछ ना कुछ ग्रोथ होता है, सीखने की प्रक्रिया वो चलती रहती है जन्म से लेकर मृत्यु तक।
1: बिल्कुल सही कहा आपने।
0: नहीं होगी तो मतलब उनका भविष्य नहीं होगा।
1: और बताए मैं क्या कहती हूँ, एक सिंपल सी बात कहती हूँ। आजकल अक्सर देखते हैं कि ज्यादातर लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, चाहे वो खाने से रिलेटेड हो, जैसे कि फूड डिलीवरी के ऑर्डर्स प्लेस करते हैं। आप एक बार में 1,000-1,200-1,500 रुपए का खाना मंगा लेते हैं, उसकी जगह अगर आप 1,500 रुपए किसी की पढ़ाई में लगा दें हर महीने, तो कितना मतलब केवल एक ये हिस्सा उनका जीवन परिवर्तित कर सकता है। तो बहुत जरूरी है कि हम ये भी देखें कि हम सोसाइटी को, समाज को क्या दे रहे हैं। हम हमेशा ये सोचते रहते हैं हमें क्या मिल रहा है, अरे लाइट नहीं आ रही, अरे पोल्यूशन है, अरे पेड़ कट रहे, अरे ये हो रहा है वो रहा है, लेकिन अपना अपनी तरफ से हमने क्या दिया है, ये इस पर कॉन्सेंट्रेट करना बहुत जरूरी है। अमीन जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर संदेश दिया आपने जी।
0: हमारे बाबू अंसारी भाई हैं देवकली अहमदपुर बाराबंकी से, आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, फोन भी ट्राई कर रहे हैं और समा पर

0: नवीन अंसारी जो कि सीतापुर से।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया जी, जब उनका फोन लग जाएगा तब उनसे भी बात करेंगे, फिलहाल आपको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आइए कुछ ईमेल्स भी शामिल कर लेते हैं अपने कार्यक्रम में और देखते हैं किस किस ने क्या क्या लिखा है। तो महेंद्र देपन जी का मेल आया है, लिख रहे हैं भैया राजस्थान के रूण जिला नागौर से हैं और बहुत चाव से सुन रहे हैं, लिख रहे हैं कि सभी श्रोताओं के लिए एक छोटा सा संदेश है कि जिंदगी में सतर्क रहना बहुत जरूरी है क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। बात बिल्कुल सही है और इन्होंने एक लिखा है कि एक शायर ने क्या खूब फरमाया, मुझे लग रहा है ये शायर ही खुद हैं क्योंकि इन्होंने लिखा है कभी आकर मेरी मोहब्बत का सुरूर देखें, कभी आकर मेरी मोहब्बत का सुरूर देखें, तमाम दवाइयां बच्चों की पहुंच से दूर रखें। और ये दवाइयों के कई बार उसमें पैकेट्स में भी लिखा रहता है कीप अवे फ्रॉम चिल्ड्रन, और ये बहुत अच्छा संदेश है क्योंकि हंसी मजाक लिखा है इन्होंने अपनी जगह लेकिन संदेश बहुत गंभीर है। दवाइयां हमेशा बच्चों की पहुंच से दूर रखें जिससे कि वो सुरक्षित रह पाएंगे क्योंकि आपकी थोड़ी सी लापरवाही बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। और सभी श्रोताओं से विनम्र अपील इन्होंने की है कि खुद भी सतर्क रहिए, अपने परिवार को भी जागरूक करें और दवाइयां, जहरीले पदार्थ और खतरनाक चीजें बच्चों की पहुंच से दूर रखिए। याद रखिए कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। फिलहाल एक बहुत खूबसूरत सा ट्रैक आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, इसे एंजॉय कीजिए।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवनशैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है, पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, सुरों का लखनवी एहसास
2: जी। और वक्त हो रहा है 11:43 और एक फोन कॉल अटेंड करते हैं, फिर बहुत सारी ईमेल्स आई हुई हैं उनको पढ़ते हैं। हेलो
3: जी, नमस्ते।
2: नमस्ते, प्रेम जी बोल रहे हैं ना?
3: हाँ, प्रेम सिंह सिसोदिया, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
2: उज्जैन से आप बोल रहे हैं, महाकाल की नगरी से। तो ये बताइए कि आज क्या खास बात है जो उज्जैन से हमारे रेडियो के माध्यम से सारे लिसनर्स तक पहुंचने वाली है?
3: बात यह है कि अभी नवरात्र चल रहे हैं यहाँ पर
2: जी,
3: और बड़े उत्साह के साथ में सभी लोग नवरात्र त्योहार मना रहे हैं, और सभी से यही कहेंगे कि माता जी का सभी पर आशीर्वाद बना रहे, सभी को माता जी का मतलब कृपा मिले। और हाँ, हम अपनी तरफ से ऐसी कोशिश करें कि ज्यादा भीड़ भाड़ न करें, और ऐसे जो रास्ते हैं ना उन पे बिना वजह से खड़े ना रहे, या फिर माता जी की जब हम भजन आरती कीर्तन करते हैं
2: जी हाँ,
3: तो ऐसे मतलब लाइन से खड़े ताकि सभी लोगों को मतलब बारी बारी से नंबर आ सके।
2: बिल्कुल, सबका ध्यान रखें, सबका ख्याल रखें, और तभी हम एक पवित्र मन से किसी भी धार्मिक स्थल पे जाते हैं तो वहां पर लड़ाई झगड़ा या धक्का मुक्की करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। शांतिपूर्वक दर्शन कीजिए, दूसरों को भी मौका दीजिए, और सौहार्द के साथ, प्रेम के साथ, जैसा कि आपका नाम भी है, दर्शन करके आइए। और नवरात्रि की आपको और पूरे उज्जैन को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितने लोग हमें सुन रहे हैं सबको शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच प्रेम जी कॉल करने के लिए, थैंक यू। और भाई ये आया है मेल संदेश आपके गीत हमारे में एमके राज का, और लखीमपुर खीरी से, भानपुर से ये मेल आया है। मैम जी को जय माता दी और सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। संदेश इनका ये है कि लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना और बचाव रखना ही रामबाण दवा है। मतलब आप स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे तो दवाई वही है, दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इन्होंने बहुत सुंदर बात कही, और किसी भी समस्या से गुजरना नहीं पड़ेगा आपको। अच्छा, ये लिख रहे हैं क्योंकि इस वक्त हम खुद पैर की समस्या से जूझ रहे हैं और चलने में असमर्थ हैं, इसलिए इस बात को और अच्छी तरह समझ रहे हैं। मेरा यही कहना है कि सबसे पहले अपने शरीर का ख्याल रखें, और अपने और उसके बाद बेजुबानों तथा बुजुर्गों और अपने परिवार का भी ख्याल रखें। ये बहुत सुंदर बात आपने कही है साथ में, और लिखा है कि सेहत है तो हर खुशी है, ये बात सबको बतानी है, माता रानी के आशीर्वाद से हर दिल में जोत जगानी है। बहुत बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र जी। बहुत सारे नाम आपने लिखे हैं, सुनील कुमार, राजकुमार, सतीश कुमार पांडे, कन्हैया लाल पांडे, सर्वेश, माता प्रसाद एंड ऑल फ्रेंड सर्कल को इन्होंने याद किया है इस मेल के जानिब से। अहमद नवाब का मेल आया, हेलो डियर राखी दी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैंने कई दिन पहले वनीता दीदी से आपके बारे में पूछा था। अच्छा, वनीता ने बताया नहीं मुझे। अहमद, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और जैसा कि आप सुन सकती हैं। अच्छा, आगे लिखती हैं कि राखी दीदी, आपको मैंने सचमुच बहुत बहुत ज्यादा मिस किया था इतने दिनों से। आज जब अचानक रेडियो पर आपकी आवाज कानों में पड़ी तो इनका दिल खुशी से भर गया। मेरा मुझे बहुत दिली खुशी हो रही है अहमद कि आपको इतनी खुशी हुई। अच्छा, इसके बाद इन्होंने लिखा है कि आपकी कमी सच में बहुत खलती थी, आप ऐसे ही हमेशा रेडियो पर आती रही है, बहुत बहुत शुक्रिया। और संदेश क्या लिखा है, बहुत नीचे आके संदेश लिखा है इन्होंने, लिखा है कि हम अक्सर दूसरों की पर्सनल लाइफ, उनके पहनावे, उनके खान पान या उनकी असफलताओं पर अपनी राय देने में जरा भी नहीं हिचकिचाते। यहाँ बहुत सारे एक आइडिया कुमार आपको बहुत मिल जाएंगे हमारे इर्द गिर्द, और दूसरे एडवाइस कुमार, है ना? तो क्योंकि आइडिया सबको रहते हैं, या इसमें ऐसा कर सकते हो, वैसा कर सकते हो, मतलब ये जो अनसॉलिसिटेड एडवाइस होती है बिना मांगी सलाह, ये कई बार बड़ा दुखी करती है जिनको आप सलाह देते हैं उनको। और लिख रही है कि हम भूल जाते हैं कि हर इंसान की अपनी एक निजी जिंदगी है और अपनी लड़ाइयां होती हैं। किसी से ये पूछना कि आपकी शादी कब हो रही है, बच्चे क्यों नहीं है, नौकरी क्या छूट गई है, किसी को भी मानसिक तनाव में डाल सकता है। आइए दूसरों की प्राइवेसी का सम्मान करें और बिना मांगे अपनी राय देने से बचें। अहमद नवाब संडीला से, बहुत सुंदर मैसेज है अहमद, और बहुत बहुत जरूरी है इस बात का ध्यान रखना कि आप अपने काम से काम रखिए, और अगर कुछ किसी को के लिए अच्छा कर सकते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर कोई मांगे आपसे तब आप सलाह दीजिए, अदरवाइज अपनी सलाह भी अपने लिए रखिए। समझदारी इसी में ही होती है।

क्योंकि अगर पलट के सामने वाले ने कुछ आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में कह दिया या आपको कोई सलाह दे दी तो हो सकता है आपको भी ना अच्छी लगे। 11:48 दोस्तों, आप सुन रहे हैं संदेश आपके गीत हमारे, आपकी सखी राखी आपके साथ है और प्रोग्राम आप इंजॉय कर रहे हैं जिस पर आ रहा है ये बेहतरीन नगमा।

0: LIC Jeevan Laksh, Jode Maturity Benefit, Risk Cover, Term Payment Chunne Ka Freedom, or Sabse Important, Simple Reversionary Bonuses.
1: LIC, Har Pal Aapke Saath.
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो सुरों का लखनवी एहसास
3: ना ना ना ना ना ना ना ना ना। जी 11:52 आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो सुरों का लखनवी एहसास और सीतापुर से देखिए दिन में भरी दोपहरी में आई है चांदनी। हेलो चांदनी जी, थोड़ा जोर से

0: बोलिएगा वरना किसी को सुनाई नहीं देगा।
1: हेलो
0: जी,
1: आवाज आ रही है?
0: हाँ, बहुत थोड़ी थोड़ी आ रही है। अगर इसी तरह रहा तो फिर हमको मेल्स पढ़नी पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपको कोई सुन नहीं पाएगा ना तो फायदा नहीं होगा कुछ बातचीत करने का। जी बोलिए, चांदनी जी क्या करती हैं?
1: घर पे रहते हैं, खाना बनाते हैं।
0: चांदनी जी की आवाज बिल्कुल पहुंच नहीं रही है हम तक, एक बार फिर से ट्राई करेंगे और नहीं तो फिर ईमेल्स शामिल करेंगे। हेलो जी, हेलो। तो आप बता रही हैं कि आप घर पे ही रहती हैं, खाना वाना बनाने का शौक है उन्हें, और ऑफ कोर्स रेडियो सुनने का शौक होगा आई एम श्योर। और 11:53 क्योंकि हो गए हैं तो हम कोशिश करते हैं कि सभी ईमेल्स शामिल कर लें। गुलफशा सिद्दीकी ने लिखा है, गुड मॉर्निंग गुलफशा आपको भी, और संडीला से आप लिख रही हैं और तारीफ करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। संदेश ये इनका कि हमें किसी को देखकर जलना नहीं चाहिए, हमारे सामने वाला क्या है ये नहीं देखना, हम क्या हैं ये देखना चाहिए। रोशनी रावत, बबीता राव, आसिफ भाई, रजनीश भैया, ये बहुत सुंदर बात है। और गुड मॉर्निंग लखनऊ की शुरुआत भी आज हमने कुछ इसी अंदाज में की थी कि भाई कॉन्सेंट्रेट इस बात पे करिए, इस बात पर ध्यान दीजिए कि हम किस तरह कल से बेहतर बन सकते हैं, बजाय इसके कि दूसरों की खुशियों से दिल जलाएं, अपने ही दिल में कोई दिया जलाएं ये ज्यादा अच्छा रहेगा। और वारिस अली जी का मैसेज आया है, संदेश जो लिखकर इन्होंने भेजा है, किसी को खुश करने का अगर मौका मिले तो ऐसे मौके को गवाना मत, क्योंकि बड़े नसीब वाले होते हैं जो दे पाते हैं मुस्कान किसी के चेहरे पर। किसी ने खूब कहा है, दूध का सार है मलाई में और जिंदगी का सार है भलाई में। अच्छा, ये हमने इससे पहले नहीं सुना था, ये नई एक चीज सीखने को मिली और बहुत इंटरेस्टिंग है ये। ऐशबाग लखनऊ से मेल भेजने के लिए वारिस अली जी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा नाजिम जी का मैसेज आया है, दिल्ली इंद्रलोक से सुन रहे हैं ये, बिहार दरभंगा के रहने वाले हैं, लिख रहे हैं, अच्छी बात करने वाले जरूरी नहीं है वो अच्छे इंसान भी हों, किसी से की बात पर आसानी से भरोसा मत कीजिए। बिल्कुल सही कहा आपने, कई लोग बहुत मीठी मीठी बात करके, बहुत कड़वाहट दिल में ले करके आपका बुरा चाहते ही नहीं कर भी देते हैं, तो इससे हमेशा एट ऑल कॉस्ट्स बच के रहने की जरूरत है। और एम के राज जी, आपकी मेल में ऑलरेडी पढ़ चुकी हूं तो दोबारा तो नहीं पढ़ूंगी। रोशनी रावत ने मेल भेजा है, नमस्ते डियर, नमस्ते आपको भी रोशनी जी, मैं बहुत बढ़िया हूं और आपको प्रोग्राम बिंदास लग रहा है, लाजवाब लग रहा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लिख रही हैं गुलफशा दीदी, बबीता राव जी, आसिफ भैया को का नाम भी लिख दिया इन्होंने बीच में, और रोशनी रावत तहसील सफीपुर जिला उन्नाव से हमें ये मेल नहीं भेज रही हैं, यहाँ की ये रहने वाली हैं, चंडीगढ़ से प्रोग्राम सुन रही हैं। संदेश ये लिखा है कि जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तब छोटे बच्चों को लेकर नहीं जाएं, अगर ले जाना जरूरी है तो उनको अपने साथ ही रखें और हाथ पकड़ कर रखें। बहुत सही आपने संदेश दिया है, क्योंकि हॉस्पिटल्स में बीमार और चोटिल लोग जाते हैं और तमाम तरह की इन्फेक्शंस वहां से कैच कर सकते हैं बच्चे, तो जरूरत बहुत, मतलब अगर बिल्कुल कोई और चारा नहीं है तभी लेकर जाएं, और कोशिश करें कि सब चीजों पे बच्चे सब चीजों को छुए नहीं, और उसके बाद घर आकर के उनको अच्छी तरह सैनिटाइज कर दें, क्योंकि स्वच्छता जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छी सेहत के लिए। मोहम्मद आसिफ अंसारी हैदराबाद तेलंगाना से सुन रहे हैं, संदेश यह है कि कर्म पर ध्यान दें, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये संदेश हमें बिना किसी डर या स्वार्थ के अपनी मेहनत पर पूरा ध्यान लगाने की सीख देता है। और इन्होंने भी कुछ लोगों के नाम लिए हैं, गुलफशा आप्पी, रोशनी दीदी, रजनीश भैया। और इसी के साथ अब प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करेंगे, जरीना आ चुकी हैं स्टूडियो में और अगला कार्यक्रम लेकर के शाम तक वो आपको एंटरटेन करेंगी। 11:57 पर अपनी सखी राखी को दीजिए इजाजत और स्टे ट्यून्ड, खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। केंद्रीय रक्षा मंत्री एवं लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह आज 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचेंगे। लखनऊ महानगर भाजपा के अध्यक्ष अनंत द्विवेदी ने रक्षा मंत्री के लखनऊ प्रवास के कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्री नई दिल्ली से प्रस्थान कर लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से वो सड़क मार्ग से फैजुल्लागंज पहुंचकर बाढ़ प्रभावितों परिवारों को राहत सामग्री वितरित करेंगे। इसके बाद विभिन्न क्षेत्रों में लोगों से मुलाकात और कार्यक्रमों में शामिल होंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्व राष्ट्रपति डॉ एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया संदेश में श्री शाह ने कहा कि डॉ कलाम ने अपनी असाधारण वैज्ञानिक प्रतिभा का उपयोग भारत को एक प्रमुख सामरिक शक्ति बनाने के लिए किया और राष्ट्रपति के रूप में सर्वोच्च लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखा। श्री शाह ने कहा कि भारत के मिसाइल मैन डॉ कलाम हमेशा एक आदर्श बने रहेंगे। सरकार ने गन्ना किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच करने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक समिति का गठन किया है। नीति आयोग के पूर्व सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद इस समिति के अध्यक्ष होंगे। समिति में कृषि आयुक्त, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के संयुक्त सचिव और उपभोक्ता मामलों के विभाग एवं संयुक्त सचिव सदस्य होंगे। इस समिति का गठन कर्नाटक और महाराष्ट्र के गन्ना किसानों के प्रतिनिधियों के साथ केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री तथा केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री की बैठक के लिए बैठक में लिए गए निर्णयों के बाद किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छता के प्रति जागरूक होना चाहिए। स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के लिए नागरिकों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और स्वच्छता कर्मियों के कार्यों में सहयोग देना होगा। मुख्यमंत्री ने आज अपने वाराणसी दौरे के दूसरे दिन स्वच्छता कर्मियों के सम्मान समारोह संबोधित करते हुए ये बातें कही। इस दौरान उन्होंने स्वच्छता कर्मियों को सम्मानित किया और समाज में स्वच्छता बनाए रखने में उनके महत्वपूर्ण योगदान को रेखांकित किया। वाराणसी में बाढ़ का पानी घटने के बाद आज नमामि गंगे के युवा स्वयं सेवकों ने दशावमेध और प्रयाग घाट पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया। गंगा सेवक नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक एवं नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड

एम्बेसडर राजेश शुक्ला के नेतृत्व में युवाओं ने घाटों पर जमा प्लास्टिक, पॉलिथीन और अन्य कचरों को हटाया। इस दौरान आओ मिलकर हाथ बढ़ाएं, बाढ़ के बाद गंगा को फिर स्वच्छ बनाएं के नारे के साथ श्रद्धालुओं और नागरिकों को जागरूक किया गया। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है, पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी यानी आपके सेलिब्रेशन का रीजन और गारंटीड खुशियाँ, सभी का भरोसा और LIC की गारंटी।
2: LIC हर पल आपके साथ।

जी हाँ दोस्तों, प्रोग्राम सतरूपा लेकर के आपकी दोस्त जरीना जुड़ चुकी है आप सभी के साथ। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, जैसे ही 12 बजता है प्रोग्राम सतरूपा के थ्रू, जितनी भी हमारी फीमेल्स हैं, जितनी भी बहनें हैं, जितनी भी हमारी लेडीज लोग हैं, वो सब हमारे साथ जुड़ जाती हैं। तो बस आपकी दोस्त जरीना भी जुड़ चुकी है आप सभी के साथ। और दोस्तों कहते हैं ना कि जब एक महिला आत्मनिर्भर बनती है तो सिर्फ उसकी जिंदगी ही नहीं बदलती बल्कि पूरे परिवार और समाज की तस्वीर बदलने लगती है। और यहीं जब हम बात करते हैं उस महिला की जो कहीं गांव में रह रही है, कहीं दूर दराज के इलाके में रह रही है, वो जब अपने पैरों पर खड़ी होती है तो उसकी मेहनत से पूरे गांव का विकास और एक नई कहानी, एक नई इबारत लिखती जाती है। तो चलिए ऐसी ही कुछ बातें लेकर के मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अगले एक घंटे आप मेरे साथ बने रहेंगे, बहुत सारी बातें, बहुत सारा म्यूजिक का तड़का, और सबसे बड़ी बात मतलब मैं पूरा होप लगाती हूँ, मुझे पूरी उम्मीद रहती है कि इस समय जितने भी आप सभी फीमेल्स हैं, इवन मेल भी जो सुन रहे होंगे, काम धाम खत्म हो चुका होगा और घर में थोड़ा सा रेस्ट मोड शायद हो। मतलब यूजुअली यही होता है ना, सुबह के टाइम सारी महिलाएं अपने काम धाम को फिनिश करती हैं और ये जो 12 बजे का टाइम आता है ना, ये थोड़ा सा उनका सांस लेने का वक्त हो जाता है, है ना। और उसके बाद फिर से भाई लंच वंच की प्रिपरेशन। तो मैं बस वही जो आपका फुर्सत के वक्त है ना, यानी सांस लेने का वक्त है, उसी में आपके साथ जुड़ती हूँ। और ये जो प्रोग्राम है इसके थ्रू बहुत सारी ऐसी बातें करूंगी जो हम सभी को जिंदगी में आगे बढ़ने में बेहद मदद करेगी। तो चलिए बातें बहुत सारी रहेंगी, बट फिलहाल जो आज के प्रोग्राम का पहला गाना है वो भेजती हूँ आप सभी की रेडियो सेट पर। यस, बहुत ही प्यारा सा गाना फ्रॉम द फिल्म दिल से।

मनीषा कोइराला पर पिक्चराइज था ये गाना और आपको पता है बहुत ही खूबसूरत बहुत ही बेहतरीन अंदाज में ये गाना था, जिसमें कहा जाता है कि गाने की गहराई कुछ ऐसी थी कि जिंदगी के जो इश्क के सात रंग होते हैं उन सभी को इस गाने में दिखाया गया था। और मनीषा कोइराला ने उसी तरह सात अलग अलग तरह के कपड़े भी इस गाने में पहने थे। तो आइए मिलकर एंजॉय करते हैं इस गाने को और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, सुरों का लखनवी एहसास।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो सुरों का लखनवी एहसास
1: LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी यानी आपके सेलिब्रेशन का रीजन और गारंटीड खुशियां सभी का भरोसा और LIC की गारंटी
2: LIC हर पल आपके साथ
3: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप। हाँ ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
1: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
0: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा? बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।

जी दोस्तों, भाई दूसरों को आप बोले ना बोले, लेकिन मुझे लगता है कि खुद को हमेशा हम सभी को मतलब वक्त वक्त पे ये चीज का एहसास जरूर दिलाना चाहिए कि आई लव यू, मतलब हम खुद से प्यार करते हैं और ये सबसे ज्यादा जिंदगी में जरूरी होता है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अगर आप एक फीमेल है तो मैं तो कहती हूँ मतलब दिन में एक बार आप खुद को आई लव यू बोलकर जरूर देखिए। उससे क्या होगा ना, बहुत सारी पॉजिटिव चीजें आपकी जिंदगी में आएंगी, बहुत सारे बदलाव आएंगे। जहाँ आप खुद को प्यार करते हैं ना, खुद से जुड़ी हर चीज को प्यार करते हैं, खुद को ध्यान देते हैं, खुद को पैम्पर करने का मन करता है, खुद के लिए भी बहुत कुछ करने का मन करता है। तो बस जिंदगी में आप दूसरों को बोलिए ना बोलिए, खुद को जरूर बोल दिया करिए कि आई लव यू। और दोस्तों देखिए, 12:21 का वक्त हो चुका है, प्रोग्राम चल रहा है क्षेत्र, और हम आज बात कर रहे हैं कि गांव की महिलाएं और अपने पैसों की मालिक। भाई एक समय था जब गांव की महिलाओं की मेहनत तो घर परिवार और खेती बाड़ी में खूब दिखाई देती थी, मतलब जम कर वो मेहनत करती थी। अभी भी जब हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं ना, तो हमेशा ये कहते हैं कि गांव की महिलाओं को देखो कितनी मेहनत करती हैं, कितना काम करती हैं, और हमेशा से करती भी आई हैं। कहीं महिलाएं सिलाई कढ़ाई से अपनी कमाई कर रही हैं, कहीं कुछ जो लघु उद्योग होते हैं जैसे अचार पापड़ ये सब बना करके अपना व्यवसाय चला रही है, तो कहीं बहुत सारी महिलाएं जो है जो थोड़ा सा अवेयर हो गई है, सरकारी बहुत सारी योजनाएं आती हैं जैसे स्वयं सहायता समूह जो है उनसे जुड़कर लघु उद्योगों को नई ऊंचाइयां दे रही हैं। तो आज जो महिलाओं में चेंजेस आए हैं वो सिर्फ घर चलाने में सहयोग देने में नहीं है, बल्कि अपनी कमाई से अपने सपनों को पूरा भी कर रही हैं वो। तो आज के इस प्रोग्राम में हम इन्हीं बदलावों की बात करेंगे जो गांव की महिलाओं में आए हैं, वो किस तरह आत्मनिर्भर भी बन रही है और साथ ही साथ अपने पैसों की मालिक भी बन रही है। वैसे हम सभी जानते हैं कि जब हम गांव की महिलाओं की बात करते हैं तो हम सब जानते हैं कि मेहनत करना उनके लिए कोई नई बात नहीं है। हमेशा से सालों से खेती या बहुत सारे पशुपालन करना, बहुत बार आपने देखा होगा बहुत सारे गायों का झुंड रहता है, बहुत सारी बकरियों का या इस तरह मुर्गी पालन, ये सारी चीजें करती रहती हैं, घर के काम, परिवार की जिम्मेदारी, ये सारी चीजें रहती हैं। लेकिन अब इस मेहनत को कमाई और पहचान से जोड़ने की जो कोशिशें हैं वो थोड़ी ज्यादा तेज हो गई है। एंड इसमें ऑफकोर्स सिर्फ उनका ही योगदान नहीं है, इसमें परिवार का साथ ही साथ बहुत सारी जो गवर्नमेंट स्कीम्स आती हैं उनका भी योगदान है, शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है। तो चलिए आज आगे भी हम आपसे बात करेंगे, इन सारे पहलुओं को छूने की कोशिश करेंगे, किस तरह महिलाएं अपने आप को सशक्त

0: निष्पक्ष और सटीक हर कार्यक्रम,
1: बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं के लिए स्पेशल सेगमेंट,
2: जहां मिलती है हर जानकारी रियल टाइम में,
1: ना कोई फेक न्यूज, हर जानकारी पूरी होगी
0: सिर्फ और सिर्फ 100.7 FM।
3: चुनिए LIC की जीवन लाभ।

0: लिमिटेड प्रीमियम में आपका प्रीमियम रुकेगा पर बेनिफिट्स नहीं। LIC हर पल आपके साथ।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट। स्टार्ट करेंगे हम
2: लाइफ में जल्दी इन्वेस्ट करेंगे हम।
3: सेबी इन्वेस्टर ग्रुप का पहल जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
4: फल अवशेष न कभी जलाए, इन्हें सड़ाए, खाद बना दूषण से।

0: अवशेषों को खेत की उर्वरा शक्ति जल धारण शक्ति अच्छी है। पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: आप सुन रहे हैं FM रेनबो लखनऊ 100.7 सुरों का लखनवी एहसास।

हाँ, शायद बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि ये थी अरिजीत की आवाज़ आप सभी की रेडियो सेट पर फ्रॉम द फिल्म भेड़िया। गाना बहुत प्यारा सा, फिल्म का नाम बड़ा अजीब सा। खैर, मूवी बड़ी बढ़िया थी, उतनी हिट वेट नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी लोगों ने काफ़ी इस फिल्म को पसंद किया था। देखिए, गाना सुनते सुनते, थोड़ी मोड़ी बातें करते करते 12:34 का वक्त हो चला है और प्रोग्राम चल रहा है शत्रुपा, जहाँ आज आपकी दोस्त जरीना बात कर रही है कुछ ऐसी जो ऑफकोर्स महिलाओं से रिलेटेड है, और शत्रुपा प्रोग्राम ही महिलाओं से रिलेटेड होता है। और हम बात कर रहे थे कि जब महिलाएं जो हैं, जब वो अर्निंग करती हैं, जब वो बाहर निकलती हैं, स्पेशली गांव की महिलाएं, तो बहुत कुछ बदलावों को लेकर आती हैं। वैसे भी फीमेल्स के लिए एक चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस है, कही जाती है, और बहुत ज़्यादा सच्चाई भी है उस चीज़ में, कि एक महिला जब शिक्षित होती है, या जब परिवार को संभालती है, या जब परिवार के रहन सहन, शिक्षा में और हर स्टैंडर्ड में अगर वो चेंजेस लाती है, तो वो सिर्फ उस पीढ़ी के लिए नहीं होता, आने वाली कई पीढ़ियों को वो सुधार देती है। और यही चीज़ें हर महिला पर लागू हो जाती हैं। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं बहुत सारी उन महिलाओं की जो अलग अलग तरह से स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई हैं, और खुद के साथ साथ वो गांव की जो और भी महिलाएं हैं, उन सब का सब एक दूसरे का बल्कि सहारा बनती हैं, और साथ ही उन सभी को एक साथ आगे बढ़ने के अवसर भी मिलते हैं। आपको पता है, जब कुछ महिलाएं मिलकर नियमित बचत कर रही होती हैं, या सेविंग कर रही होती है, जब कमा रही होती हैं, तो वहाँ पर बहुत बार ऐसा होता है कि महिलाएं एक दूसरे से अपने जितने भी एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको साझा करती हैं। और ये भी बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में, जब इस तरह के उच्च विचार कहें या सशक्त विचार एक दूसरे में सर्कुलेट होते हैं माउथ पब्लिसिटी के थ्रू या एक्सपीरियंस के थ्रू, तो आपको पता है एक महिला साथ साथ बहुत सारी और भी महिलाओं को सशक्त बनाने में, आगे बढ़ने में, खुद कमाने में और बचत करने में मदद कर रही होती है। और भाई, छोटी छोटी चीज़ों का क्या ही कहना, वो हम सभी देख रहे हैं, समझ भी रहे हैं कि इस तरह छोटी छोटी चीज़ें, मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ महिलाएं बहुत बड़ी चीज़ें कर ले तो ही बड़ा है, जब वो छोटा कुछ भी कर रही हैं तो आप समझ सकते हैं कि उस चीज़ को करने में कितने एफर्ट्स लगते हैं, कितनी चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये वो सारी चीज़ें होती हैं जो घर परिवार संभालने के साथ साथ हो रही होती हैं। तो दोस्तों देखिए, तेजी से घड़ी की जो सुइयां हैं वो भागती जा रही हैं, और अगला गाना बजाने का भी वक्त आ चुका है, तो क्या करूं, प्यारा सा गाना सुना दूं, तो काम करती हूँ, ये गाना जो है ना लता मंगेशकर की आवाज में, उसको पहुंचाती हूँ आप सभी के रेडियो सेट पर। यस, हाँ, प्यारा सा गाना है, वैसे बारिश वारिश नहीं हो रही है, लेकिन गाना बड़ा प्यारा सा है, तो चलिए मिलकर ट्राई करते हैं इस गाने को, और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, सुरों का लखनवी एहसास।

0: रंग हमारे
1: जिंदगी रेनबो
0: सुरों का लखनवी एहसास।
2: LIC जीवन लक्ष्य जोदे मैच्योरिटी बेनिफिट डिस्कवर टर्म पेमेंट चुनने का फ्रीडम और सबसे इम्पोर्टेंट सिंपल रिवर्जनरी बोनसेस।
3: LIC हर पल आपके साथ।
4: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: मुझे दोस्तों 12:49 मिनट का वक्त हो चला है और ये देखिए मेरी बात करते करते ये 50 होने ही वाले और हमेशा यही होता है कुछ सेकंड्स बाकी होते हैं और जब हम बोलते हैं तो अगला जो मिनट है वो शुरू हो जाता है। प्रोग्राम चल रहा है शत्रु को और हम बात कर रहे हैं महिलाओं से जुड़े हुए भाई उनके सशक्तिकरण की और खासकर जो गाँव की महिलाएं हैं और जिस तरह से वो अपने आप को सशक्त करके अलग अलग व्यवसाय से जुड़ करके और अपनी कमाई करके खुद अपने पैसों की मालकिन बन रही है उस पर हम खास बातचीत कर रहे हैं। दोस्तों एक चीज बहुत साफ होती है जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी की, मतलब जब हम बात करते हैं आर्थिक रूप से सशक्त होने की, तो उसमें सिर्फ ये चीज नहीं आती कि फला महिला पैसे कमा रही है या गाँव की महिला पैसे कमा रही है। इन सबसे जो बढ़कर इन सबसे बड़ी चीज वो होती है कि पैसे कमाने के साथ साथ डिसीजन लेने की जो ताकत है या कहें जो क्षमता है वो भी महिलाओं में बहुत अच्छे से डेवलप होती है और इससे बहुत
1: पैसे कमाने के साथ साथ डिसीजन लेने की जो ताकत है या जो क्षमता है वो भी महिलाओं में बहुत अच्छे से डेवलप होती है और इससे बहुत सारी चीजें आसपास महिलाओं के खुद के जीवन की, परिवार की और समाज की सुधरती चली जाती हैं। तो भाई अगर कमाई हो रही है तो कुछ कुछ चीजें भी बहुत ज्यादा समझना जरूरी है और आपने देखा होगा कि भाई ये जो मोबाइल और डिजिटल पेमेंट और ऑनलाइन पेमेंट ये सारी चीजें सिर्फ शहरों में ही नहीं रह गए, गाँव में भी पहुंच चुकी है और खासकर गाँव की महिलाएं भी इन चीजों को बहुत अच्छे से निभा रही हैं, बहुत अच्छे से कर रही हैं। तो अगर आप छूट भी गई हैं, किसी को नहीं भी आता है, तो मुझे लगता है कि कुछ कुछ चीजें जरूर जिंदगी में लानी चाहिए, सीख लेनी चाहिए, जिसमें डिजिटल पेमेंट्स हो गई, डिजिटल पेमेंट्स को समझना, लगातार सेविंग्स करना और उनकी अगर जरूरत है तो उसका कुछ मतलब या तो आप FDs कराइए या कुछ बीमा करा लेना, इन सारी सुविधाओं की जानकारी होना महिलाओं के लिए बहुत जरूरी होता है और इसमें जो सरकार है वो बहुत अच्छी बहुत सारी स्कीम्स के थ्रू हर महिला को मदद करती, बस थोड़ा सा जरूरत होती घर से निकलने की, बैंक तक जाने की या अपने आसपास आपके जो भी केंद्र हैं वहां पर जा करके आप पता करें और इन सारी सुविधाओं का लाभ भी उठाएं। तो दोस्तों एक चीज बहुत साफ है कि जब महिला अपनी मेहनत से कमाती है ना तो अपनी कमाई के फैसले खुद लेने में सक्षम तो होती ही है, तभी वो सच मायनों में अपने पैसों की मालकिन भी बनती है। तो एक चीज जरूर करिए कि भाई पैसे तो कमाइए लेकिन उतना सक्षम, उतना समझदार, उतना आप ट्रस्टवर्दी बनिए ताकि अपने डिसीजन जो है वो भी आप खुद ले सके, है ना। तो चलिए देखिए बात करते करते 12:52 का वक्त हो चुका है और इसके बाद अब हम कोशिश यही करेंगे कि अगला गाना जो है आप सभी के लिए प्ले कर दें, लेकिन गाना सुनते सुनते मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि वक्त जो है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही प्यारा सा गाना है फ्रॉम द फिल्म दिल है तुम्हारा। तो एक काम करती हूँ, यहीं पर प्रोग्राम की क्लोजिंग कर देती हूँ कि होप यही करते हैं कि जब भी हम महिलाओं से रिलेटेड प्रोग्राम आप तक लाते हैं तो हमारी कोशिश यही होती है कि आप अवेयर होने के साथ साथ चीजों को समझे भी, और बहुत हद तक ऐसा नहीं है कि हमारे समझाने से समझेंगे, बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारे गांव की महिलाएं हैं जो इवन शहरों की महिलाओं के लिए भी एग्जाम्पल सेट कर रही हैं। तो आप भी उसी रेस में दौड़िए जहां पर सिर्फ जिंदगी जीना इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर सशक्तिकरण के साथ अपने डिसीजंस को लेते हुए, अपनी कमाई के साथ अपनी कमाई को अपनी तरह से इस्तेमाल करते हुए जिंदगी जीना भी बहुत जरूरी है।

चलिए इसी बात के साथ प्रोग्राम से भी लेती हूँ इजाजत, और जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, बहुत ही प्यारा सा गाना है आप सभी के लिए फ्रॉम द फिल्म दिल है तुम्हारा। कविता कृष्णमूर्ति की प्यारी सी आवाज है, गाने को एंजॉय करिए और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, सुरों का लखनवी एहसास। गाने के बाद छोटा सा न्यूज ब्रेक, उसके बाद अगला प्रोग्राम लेकर के जल्दी से वापस आती हूँ।

0: जब दिन भर की थकान शामों से गुजर जाती है।
1: जब दुनिया नींद की आगोश में आ जाती है।
0: तब आती है एक महक जो सिर्फ रातों में खिलती है।
1: बनकर रजनीगंधा।
0: हर रोज रात 10 से 12
1: सिर्फ और सिर्फ FM रेनबो पर।
0: सुरों का लखनवी एहसास।
2: मैंने पूछा चांद से के देखा है कहीं मेरे यार।

तो चलिए शुरुआत करते हैं अनिरुद्ध गीत की माता के इस भजन के साथ। फिल्म का नाम क्रांति, और इसको आप सभी सुनना चाहते हैं। आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना, योगेश, मैंडी, सौरभ, शाइना और निवान, परिमहल, कासगंज से आबाद खान, नबील, आरफा, इल्मा, मीर सराय, बदायूं से आफरीन और जमीर, रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्प, सोमनाथ कालिया और इनका पूरा परिवार, नवाज कॉलोनी, वंदना नगर इंदौर से रेखा, संतोष रघुवंशी, शोभा, भूपेंद्र रघुवंशी, बबीता, सुरेंद्र, पूजा, विक्की, स्वाति, मालती, गणेश, कार्तिक, खर्चे, संजना, परी और ललिता। तो सुनते हैं आप सभी की अनुरोध पर ये गाना, ये भजन, जो कि है फिल्म क्रांति से महेंद्र कपूर की आवाज में।

किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है, पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।

किसान भाइयों फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है, पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।

इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली 100.4 FM पर। और अब आपके अनुरोध का जो गाना है वो फिल्म प्यार तो होना ही था से आशा भोसले उदित नारायण की आवाज, और इस गाने को आप सभी सुनना चाहते हैं। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से, कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा अमित हैप्पी, दुबिहा निवादा गाजीपुर से प्रतीक रोशनी और प्रांजल, शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश प्रीति और नवनीत, राम प्रसाद शर्मा, फजरुद्दीन, जयदेवी, वंदना, मनोरमा, अजय, विनोद, रीता, वंश और कनिष्क जो कि हैं होली चौक बरेली से, मॉडल टाउन करनाल से सुधीर, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, किरण और सुनीता शर्मा, रियासत हुसैन सिद्दीकी, नासमा बेगम, रियाज, रिफाकत रानी, तबस्सुम रुखसार, मोहम्मद आसिफ जसपुर उत्तराखंड से। और अब आप सभी के अनुरोध का ये गाना उदित नारायण आशा भोसले की आवाज, फिल्म का नाम प्यार तो होना ही था।

इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली। प्रोग्राम का नाम है अनुरोध गीत और बारी है आपके अनुरोध के अगले गाने की। और आप सभी सुनना चाहते हैं इसे विपिन कुमार शाक्य, सपना, कुलदीप, रतन शाक्य, खुशी और इनका पूरा परिवार ग्राम वीरपुर पोस्ट विलसर तहसील अलीगंज एटा उत्तर प्रदेश से, पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार दिवांगन, दुर्गा प्रसाद, पराग, पूनाराम और कृष्णा, साथ ही ग्राम लोहडडा जिला बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, मुनेश देवी, अर्जुन, अंजलि, नितिन मोहन, भुवनेश्वरी देवी, सुधीर नूतन, रमानंद कश्यप, करावल नगर दिल्ली से रामनाथ प्रजापति और सुमन देवी, गांव हांडीखेड़ा जिला सिरसा हरियाणा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा और सार्थक, नाज रेडियो क्लब करेली से निसार अहमद अंसारी, महजबी निसार अंसारी, नुसरत फातिमा, उमल फातिमा, अबरार अहमद अंसारी, इसरार अहमद अंसारी, इकबाल अहमद अंसारी, वसीम और पप्पू भाई अंसारी, शारुनूर अंसारी, फरियाद हुसैन, शकील अहमद, मोइन अंसारी, तस्लीम डीजे प्रधान, ग्राम और पोस्ट हररपुर मटकली जिला बरेली से, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया, नमन और अपार। सुनते हैं आप सभी के अनुरोध का ये गाना, कुमार शानू, अलका याग्निक की आवाज, फिल्म का नाम राजा हिंदुस्तानी।

और अब रेडियो हेल्पलाइन संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं, स्वास्थ्य संबंधी विषय पर होने वाले हमारे फोन इन कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन में शुक्रवार 16 अक्टूबर 2026 को शाम 7:31 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है गुर्दे की पथरी व पेशाब संबंधी समस्याएं और उनका आधुनिक इलाज, शंकाएं व समाधान। इसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे गुरुवार 15 अक्टूबर 2026 यानी कि आज शाम 4 बजे से। इस संबंध में यदि आपका कोई प्रश्न है तो हमें टेलीफोन नंबर 0581251720 पर फोन कीजिए। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए स्टूडियो में बरेली के यूरोलॉजिस्ट एवं एंड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर नीरज कुमार अग्रवाल उपस्थित रहेंगे। विवरण एक बार फिर सुन लीजिए। विषय है गुर्दे की पथरी व पेशाब संबंधी समस्याएं, उनका आधुनिक इलाज, शंकाएं व समाधान। रिकॉर्डिंग की तारीख और समय याद रखिएगा, गुरुवार दिनांक 15 अक्टूबर 2026 यानी कि आज शाम 4 बजे से। और टेलीफोन नंबर है 0581251720। सूचना समाप्त हुई और इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली 100.4 FM पर।

और अब ये गाना लीजिए सुनिए अभिजीत और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। फिल्म का नाम है मोहब्बत और इस गाने को आप सभी सुनना चाहते हैं। वारसी क्लब सिंधौली मीरगंज बरेली से जिशान वारसी इमरान शेख रेहान शेख, करुणा मुरादाबाद से अयूब खान इरम और शोएब खान, कटरा चांदखा मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी प्रकाश, रिंकी कपिल, वेदराम कैलाश, सुनील आरोही, स्वाति मौर्य, और ये हैं आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना योगेश, मैंडी सौरभ, शाइना और निवान, मोहल्ला हलवाइयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी बिट्टू, साजदा हिना कौसर, पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णो कॉलोनी सनावद एमपी से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अलतमश, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। सुनते हैं आप सभी की अनुरोध का ये गाना जो कि है फिल्म मोहब्बत से अभिजीत और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज।

और इस गाने को आप सभी सुनना चाहते थे कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से प्रकाश राय उषा अमित हैप्पी दुबिया निवादा गाजीपुर से प्रतीक रोशनी प्रांजल गाजीपुर शेरपुर कला से अवधेश प्रीति और नवनीत ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर राही मेराज जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से दौलत बाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन नाइमा कासिम अली नदीम अली जुनैद अब्बासी और इनका पूरा परिवार भी इस गाने को सुनना चाहता है। ब्रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा लक्षनपुर से छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू पंकज और तिरुपति साहू और अब आप सभी की अनुरोध का जो गाना है वो है फिल्म दिल तो पागल है से जिसमें आवाज है लता मंगेशकर उदित नारायण की।

अभी आप सुन रहे थे रसरंग और इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली 100.4 एफएम पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सदाबहार नगमे में आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं पूजा नरानिया, स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

0: ये गीत अभी आपने सुना फंटुश फिल्म से आशा भोसले की आवाज में, साहिल लुधियानवी के बोल थे, तर्ज बनाई थी एसडी बर्मन ने। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।
1: दिल की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: कार्यक्रम सदाबहार नगमे में अगला गीत आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर का गाया, जंगली है इस फिल्म का नाम, शैलेंद्र के बोल हैं और तर्ज शंकर जयकिशन की।

अब सुनिए मोहम्मद रफी को घराना फिल्म के इस गीत में। शकील बदायूनी ने इस गीत की रचना की है और संगीत बद किया है रवि ने।

0: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो, सिर्फ विविध भारती पर।
2: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू, वारिस।

0: फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है,
1: दिल तो पागल है,
0: दुश्मन
2: चिट्ठी न कोई संदेह,
0: गदर एक प्रेम कथा,
3: मैं निकला ओ गट लेके,
0: पिंजर दास्तान बेमिसाल संगीत की,
4: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा,
0: एक उत्तम जीवन की कहानी, उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। अगला गीत आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में, एसएच बिहारी के बोल ओपी नैयर का संगीत, फिल्म का नाम कश्मीर की कली।

बड़ा आदमी इस फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं। इस गीत की रचना की है प्रेम धवन ने, संगीत पर किया है चित्रगुप्त ने और आवाजें हैं उषा मंगेशकर और कमल बारोट की।

0: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जब आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो, सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। अगला गीत आपको सुनवाते हैं जो कि है कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति CID फिल्म से, गीता दत्त की आवाज में मजरू सुल्तानपुरी के बोल ओपी नैयर का संगीत।

सीआईडी फिल्म से गीत आप सुन रहे थे गीता दत्त की आवाज में, और इसी गीत के साथ कार्यक्रम सदाबहार नगमे अब यहीं संपन्न होता है। दीजिए आज्ञा पूजा नारायणिया को, नमस्कार।

0: की सहेली सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। मेरे सामने बैठी हैं हंसती मुस्कुराती सी आरती।
1: मंदाकिनी जी आपको और साथ में सभी सखियों को सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
0: नमस्कार, कैसी हो आरती?
1: बहुत बहुत अच्छी हूँ, क्योंकि ये समय नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, पूजा पाठ और साथ में इतना बढ़िया जो गरबा सब तरफ हो रहा है, चकाचौंध रोशनी ही रोशनी है, झालरें लगा रखी है, लोगों ने सजावट इतनी अच्छी कर रखी है हर सोसाइटी में हर घर में कि मतलब बहुत अच्छा लगता है। और जो हवन की जो सुगंध आती है ना, सच में एकदम बहुत अच्छा लगता है।
0: सबसे बड़ी बात तुमने कहा कि जो हम जब पूजा या अर्चना करते हैं, जिसे कहते हैं हम एक विश्वास किसी शक्ति को मान के जब चलते हैं और पूजा अर्चना में लीन होते हैं, तो एक अदम्य शक्ति हमें प्राप्त होती है और हमें लगता है कि हम बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो गए हैं, ऊर्जावान हो गए हैं। नहीं तो जिंदगी कई बार बड़ी सुस्त सी चलने लगती है, लेकिन इन दिनों हर इंसान जो है अपने आप में एक अलग ही एनर्जी महसूस कर रहा है,
1: क्योंकि त्योहार की जो एक खासियत है ना वो यही है कि आपको एक अलग सी एनर्जी एक अलग सी ऊर्जा से भर देता है वो। आप बहुत सारे लोग व्रत भी रखते हैं, नौ व्रत रखते हैं कुछ लोग तो लेकिन ऐसा लगता है ना कि उनके अंदर एनर्जी की ऊर्जा की कोई कमी नहीं बल्कि और आ गई ऊर्जा
0: बढ़ गई है। बिल्कुल सही बात कहा आपने कि नौ दिनों तक जब हम किसी तरह का उपवास करते हैं और माता को याद करते हैं और हमें लगता है कि जो रोजमर्रा का भोजन है उसे थोड़ा सा हम त्याग देते हैं और फलाहार की ओर बढ़ जाते हैं, तो एक अलग किस्म की शांति का।
1: और हम तो यही कहेंगे आप फलाहार ही ले, बहुत ज्यादा तला भुना, क्योंकि रहता है ना कि जब व्रत है तो बहुत तली तली ऐसी चीजें बनती हैं, आलू भी बनाएंगे तो तल तल के एकदम से बनाएंगे तो वो बहुत ज्यादा तला चीजें मत खाइए, इससे थोड़ा सा नुकसान हो सकता है।
0: कई बार क्या होता है फलाहारी आटे की हम पूड़ियां तल लेते हैं, मछलियां बना लेते हैं, कुछ भी बना लेते हैं, और बाजार में भी कई शहरों में बाजार में भी फलाहारी मिर्ची बड़े फलाहारी समोसे मिलते हैं, तो हम सोचते हैं कि भाई व्रत है तो इन दिनों इन्हें ही खाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने व्रत किया उपवास किया है तो थोड़ा सा इन चीजों से दूरी बनाए रखिए और फलाहार करिए,
1: बिल्कुल इससे आप स्वस्थ भी रहेंगे पूरे और एक ऊर्जा भी आपको बहुत अच्छी से महसूस होती रहेगी, तो क्योंकि स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना जरूरी, तभी हम इस त्योहार का मजा भी ले सकते हैं और डांडिया खेल सकते हैं, खूब मजे से गरबा खेल सकते हैं।
0: सही बात है, जो है सब तरफ जो है डांडिया की धूम मची हुई है
1: जी हाँ,
0: और बड़ा अच्छा लग रहा है इन दिनों। और अब अच्छा लगेगा हमें ये जानकर कि आज हमारे श्रोताओं के साथ हम क्या बातें करने वाले हैं।
1: तो आज हम जो विषय लेकर आए हैं वो है, पहले तो हम लेके आए हैं माता पिता से दूरी बनाते हुए बच्चे, जो आजकल ट्रेंड सा चल गया ना कि बच्चे भी जहां थोड़े से टीनेज में भी यहां तक ही आ जाते हैं, 17 18 19 साल के हुए नहीं कि उनको लगता है अब हम अकेले रहे, अब हम क्यों किसी

0: मेरा, उनको लगता है माता पिता के साथ रहना यानी बंदिश में रहना, तो अलग रहने की उनको इच्छा होने लगती है कि हम अलग रहें, अपने तरीके से रहें और बाहर हम अपना जॉब करें या कुछ भी करें। तो ये जो आज देखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा ऐसा देखने को मिल रहा है। और साथ ही हम लेकर आए हैं कहानी पद्मश्री की, उसके अंदर हम लेकर आएंगे आज बीरू बाला रभा जी के बारे में बात करेंगे, हम उनकी चर्चा करेंगे
1: जो
0: जो
1: समाज सेविका है।
0: बिल्कुल समाज
1: हाँ
0: सेवा में
1: हाँ
0: जिनका नाम है। और साथ ही हम बात करेंगे मुझे कुछ कहना है, मुझे कुछ कहना में हम बात करेंगे अपने ग्रामीण अंचल, लोकोक्तियां तो हम बहुत सारी जानते हैं
1: हाँ।
0: लेकिन जो ग्रामीण ठेठ ग्रामीण वाली जो होती हैं वो लोकोक्तियां कौन सी हैं।
1: अरे तो हमारे ग्रामीण श्रोता जो हमें
0: जी
1: सेकंड
0: हाँ
1: सुन रही हैं वो
0: हाँ
1: तो बता देंगी कि
0: बिल्कुल
1: हमारे
0: बताइए।
1: यहाँ किस तरह की लोकोक्तियां बोली
0: जी
1: जाती हैं।
0: कौन से गांव में, या बहुत सारे लोगों को मालूम होता है ना कि कौन की गांव की जो लोकोक्ति है ये बहुत प्रसिद्ध है, तो
1: हाँ
0: उनको ऐसी कौन सी पता है जो बहुत प्रसिद्ध है उसके बारे
1: हाँ
0: में आप बताइए।
1: हाँ हाँ
0: और साथ ही हम बात करेंगे उपयोगी टिप्स की, क्योंकि देखिए त्योहार चल रहे हैं और जब गरबा होता है ना तो जब सब महिलाएं ऐसी सुंदर सुंदर लड़कियां सब इतनी सुंदर सुंदर सज के आती हैं, तैयार होकर आती हैं ना, लगता है कि सब अप्सराएं जमीन पर उतर आई हैं। तो वो उसके लिए हम लेकर आए घरेलू नुस्खे जो रखेंगे सुंदर त्वचा आपकी,
1: अरे
0: पता
1: आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता ही नहीं
0: ही नहीं
1: चलता है
0: लगेगा। बिल्कुल।
1: ना। तो कैसे रखें इस त्वचा को खूबसूरत, इस पर कुछ उपयोगी टिप्स हमारे श्रोता हमें देंगे।
0: बिल्कुल बताइए आप हमें अपने,
1: अच्छा
0: क्योंकि उनको पता है भाई गरबा में ऐसे ही थोड़ी ना अपनी शान
1: बिल्कुल, चमकती
0: दिखाते हैं।
1: दमकती त्वचा के साथ जब हम जाते हैं तो एक कॉन्फिडेंस अलग ही होता है
0: बिल्कुल
1: ना। तो चलिए अब एक गाना हम सुन लेते
0: बिल्कुल,
1: हैं।
0: एक भक्ति भावना से भरा हुआ गीत सुनते हैं।
1: आइए।

0: बहुत अच्छा गीत था आरती। और माता का ध्यान तो हम इन दिनों कर ही रहे हैं। वैसे तो हर दिन माँ हमारे ख्याल और ख्वाबों में रहती ही है
1: बिल्कुल
0: ना, लेकिन इन 9 दिनों में खास अर्चना हम करते हैं। और देखिए, तुमने कहा कि आजकल जो

0: बच्चे हैं वो माता पिता से दूरी बना रहे हैं, या उनके मन में एक समय बाद आता है कि वे अलग रहना चाहते हैं, दूर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं या नौकरी करना चाहते हैं, तो ये चीजें थोड़ा सा माता पिता के मन को तोड़ देती हैं।
1: बिल्कुल, उनको लगता है ना कि अब हम अपने जो अपने हमारे बच्चे हमारे साथ रहे, हमारे पास रहे हर वक्त, क्योंकि बचपन से उनको पाला, उनको उनके साथ में,
0: और उनका अधिकार होता है उन पर, उनके लिए एक फर्ज बनता है, बच्चों के लिए, बच्चों के मन में होना चाहिए कि माता पिता के साथ हमें रहना है। और भले ही उनका विवाह हो गया है, पत्नी हो गई है, पत्नी आ गई है, बच्चे हो गए हैं, लेकिन अगर वो माता पिता से अलग रहने का सोचते हैं तो माता पिता की जो सारी ख्वाहिशें हैं, जो बच्चों के लिए बुने हुए ख्वाब होते हैं, वो टूट जाते हैं, है ना। तो कहते हैं कि दुनिया में सबसे निस्वार्थ रिश्ता जो है माता पिता का होता है, और ये ऐसा रिश्ता है जिसमें बच्चे की एक मुस्कान के लिए माँ अपनी थकान भूल जाती है, और जो पिता है वो अपनी परेशानियों को अनदेखा करके परिवार की खुशियों के लिए भी निकल पड़ते हैं सुबह से शाम तक। और जिस बच्चे की पहली आवाज पर माँ दौड़ी आती है, आज उसी बच्चे की आवाज सुनने के लिए माँ को कई बार फोन करना पड़ता है।
1: बिल्कुल, और जिस पिता की उंगली पकड़कर बच्चा चलना सीखता है, उम्र के एक पड़ाव पर उसी पिता को बच्चे के साथ दो कदम चलने के लिए उससे समय मांगना पड़ता है। और कभी कभी तो घर में सब साथ में रहते हैं लेकिन बातचीत केवल इतनी होती है, खाना खा लिया, हाँ पैसे चाहिए भेज दीजिए, बस बातचीत खत्म। रिश्ता ऑनलाइन और भावनाएं ऑफलाइन।
0: बिल्कुल सही कहा आरती, आज की दुनिया पहले से बहुत बदल गई है। पढ़ाई की बात करें, नौकरी, प्रतियोगिता, महानगरों की जो भागदौड़ है और फॉरेन में बसने की जो ये चाहत है, इन सब ने परिवारों की जो जीवन शैली है उसको बिल्कुल ही बदल दिया है। पहले कई पीढ़ियां एक ही घर में रहती थी, दादा दादी की कहानियां होती थी, माँ की रसोई के किस्से, पिता की सीख और भाई बहनों की नोक झोंक और रोजमर्रा की जिंदगी का ये हमारा हिस्सा होता था। लड़ाई झगड़ा, मैं बच्चे भाई बहन, इतनी चिल्लपों,
1: लड़ते झगड़ते हम लोग बड़े हुए हैं।
0: बिल्कुल,
1: और वो चीज एक अलग ही होती थी। और आज जो छोटे परिवार हैं, बच्चे पढ़ाई और नौकरी के लिए दूसरे शहरों में जा रहे हैं, ऐसे में माता पिता से जो दूरी हो जाती है ना, वो हमेशा भावनात्मक दूरी का संकेत नहीं होना चाहिए। लेकिन आप, हो सकता है कि आपको पढ़ाई करने के लिए या किसी चीज के लिए जाना पड़े, लेकिन वो दूरी सिर्फ ऐसी होनी चाहिए कि आप गए लेकिन मन से दूर नहीं हुए। लेकिन आजकल क्या है ना कि बच्चे मन से भी दूर होते जा रहे हैं। कई बच्चे दूर रहकर भी अपने माता पिता का पूरा ध्यान रखते हैं। आज मोबाइल पर हमारे सैकड़ों संपर्क हैं, सोशल मीडिया पर हजारों मित्र हैं, लेकिन कभी कभी अपने माता पिता के पास बैठकर 10 मिनट बात करने का भी हमारे पास समय नहीं होता।
0: बिल्कुल आपने सही कहा, और हम दुनिया भर की तस्वीरों पर अपनी राय देते रहते हैं, लाइक करते रहते हैं, कमेंट्स करते रहते हैं, खुश होते हैं, लेकिन माँ की बात पर सिर्फ इतना कहते हैं, मम्मी बहुत बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। खासतौर से बेटे, उनके लिए ज्यादा हम कहेंगे कि वो बात कब आता है उनका, इसका तो जवाब न तो माँ के पास होता है न उस बच्चे के पास होता है। और एक बड़ा घरों में एक आरती और बड़ा दिलचस्प दृश्य भी देखने को मिलता है कि माँ कहती है, बेटा जरा मेरे पास बैठ जा, तुझसे कुछ बात करनी है, तो बेटा कहता है, मम्मी 5 मिनट बस।
1: और मजे की बात यह है कि माँ के 5 मिनट में जो माँ मांगती है, 5 मिनट में चाय भी बन जाती है, 2 बार गैस बंद हो जाती है, पड़ोस की खबर आ जाती है, लेकिन बेटे के 5 मिनट में मोबाइल की बैटरी 10% और कम हो जाती है। और जब माँ पूछती है किससे इतनी बातें कर रहे हो, तो जवाब मिलता है, बस दोस्तों से। माँ मनी मन सोचती है, काश मैं भी अपने बेटी की दोस्ती होती।
0: दोस्त बनते हैं माता पिता, लेकिन बच्चे जो है कहाँ बात करना पसंद करते हैं, सबसे बड़ी बात ये है।
1: बिल्कुल,
0: और ये बातें सिर्फ एक तरफा नहीं हो सकती। अक्सर माता पिता कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए इतना किया, अब तुम हमारी बात भी नहीं मानते। तो इन बातों के पीछे जो है उनकी चिंता है, उनके अनुभव है, सुरक्षा की भावना है, ये छुपी होती है। मगर जब बातचीत बार बार शिकायत या में बदल जाती है, तो बच्चे भी अपनी बात कहना बंद कर देते हैं। ये दूसरा सिक्के का दूसरा रूप है।
1: बिल्कुल,
0: तो कई बार ऐसा भी होता है।
1: जी बिल्कुल, और याद रखिए, प्यार में अधिकार हो सकता है लेकिन संवाद में सम्मान भी बहुत जरूरी है। बच्चों को स्वतंत्रता चाहिए और माता पिता को भरोसा। दोनों के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं होता है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। हर नई पीढ़ी का अपना अपना समय होता है, अपनी चुनौतियां होती हैं और अपने सपने होते हैं। उसी तरह माता पिता के पास जीवन का अनुभव होता है, जिसे अनसुना करना भी अच्छा नहीं है।
0: हाँ बिल्कुल सही बात है, और समस्या पीढ़ियों के अलग होने में नहीं है, बल्कि एक दूसरे को समझने की जो कोशिशें हम बंद कर देते हैं ना, वो बहुत दिक्कत है। रिश्ते में दूरी झगड़े से नहीं है, जो दूरी है हमेशा झगड़े से नहीं आती है। कई बार क्या होता है, सब कुछ सामान्य दिखाई देता है लेकिन बातचीत धीरे धीरे कम हो जाती है। बच्चे अपनी खुशियों में, परेशानियों में माता पिता से साझा करना उस बात को बंद कर देते हैं, और घर में एक सन्नाटा सा पसर जाता है।
1: बिल्कुल, और माता पिता अपनी भावनाएं बताने के बजाय चुप रहना शुरू कर देते हैं, और फोन पर बातचीत केवल जरूरी कामों और पैसों तक सीमित हो जाती है। परिवार के जो सदस्य हैं, एक साथ होते हुए भी एक दूसरे के लिए समय नहीं निकालते। छोटी छोटी बातों पर संवाद करने के बजाय क्या करते हैं, वो नाराजगी होने लगती है, गलत फहमियां बढ़ने लगती हैं।

0: और हालांकि इन संकेतों का अर्थ ये नहीं कि हर परिवार में रिश्ता बिगड़ ही रहा है।
1: हाँ नहीं, ऐसा नहीं, रिश्ता नहीं बिगड़ रहा, लेकिन खुशियां भी नहीं आ रही, मन खुश नहीं रहता है, मन भारी रहता है।
0: जी।
1: तो कभी पढ़ाई का तनाव हो सकता है, कभी नौकरी का दबाव हो सकता है, व्यक्तिगत परेशानियां हो सकती है, पुराने मतभेद भी जो है हमारे संवादों को, बातचीत को प्रभावित करते हैं आरती। इसलिए तुरंत आरोप लगाने के बजाय प्यार से हमें पूछना चाहिए कि क्या बात हो गई, सब ठीक तो है ना, क्या तुम किसी परेशानी से निकल रही हो, गुजर रही हो, या मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। कभी कभी किसी को समाधान नहीं, सिर्फ एक सुनने वाला चाहिए होता है, जो हमें नहीं मिलता।
0: बिल्कुल, और इन छोटे सवालों में अपनापन छिपा होता है। दूरी को केवल किलोमीटर से मत मापिए कि वो उतनी दूर है, उतने किलोमीटर दूर है। और बच्चे दूसरे शहरों या देशों में रहते हैं, वो नियमित फोन कॉल, वीडियो कॉल, त्योहारों पर मुलाकात और स्वास्थ्य या रोजमर्रा की जरूरतों का ध्यान रखकर अपने माता पिता से जुड़े रह सकते हैं। जरूरी है माता पिता भी अपनी व्यस्तता को बनाए रखें, कि ऐसा नहीं कि बस आप खाली बैठे रहें, तो फिर आपको और चिंता होने लगेगी और लगेगा कि कोई आए साथ में। तो अपने मित्रों से मिलना, रुचियों को अपनी, जो आपके शौक हैं उसको समय देना, सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना और अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल,
0: अपने आप को बिजी रखना।
1: बिजी रखना, लेकिन वही है आरती कि बिजी रखने के चक्कर में भी कई बार हम रिश्तों से दूर हो जाते हैं। हमें लगता है हम बिजी हैं, हमें ये काम करना है, हमें वो काम करना है, तो इतना भी बिजी नहीं होना चाहिए कि हम अपना जीने का अंदाज खो दें या जो सुख शांति है। ठहराव भी जिंदगी में बहुत जरूरी है, है ना, ठहराव होना बहुत जरूरी। तो बच्चों में क्या हो गया, ठहराव नहीं रहा तो जुड़ाव भी नहीं रहा, नहीं ना, अपनी पूरी खुशी केवल उनकी अपने बात पर निर्भर रहती है कि वो किससे खुश रहते हैं। तो हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी रिश्ते में डर नहीं होना चाहिए, अपमान या लगातार नियंत्रण करना, किसी को हम नियंत्रण में कर लेते हैं,
0: हाँ।
1: कंट्रोल में करना जिसे कहते हैं, या हम दुर्व्यवहार करते हैं, तो ये साथ रहने से रिश्तों की सफलता नहीं मानी जा सकती। बल्कि एक दूसरे की रिश्तों में क्या होता है कि उनकी सीमाओं का ध्यान रखना, उनकी प्राइवेसी का ध्यान रखना, ये सभी ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल, और जिंदगी की भागदौड़ में हम अक्सर ये सोचते हैं कि माता पिता तो हमेशा हमारे साथ रहेंगे।
1: हाँ।
0: उनकी शिकायतें, उनकी सलाह, उनकी आवाज, सब कुछ हमेशा हमारे लिए उपलब्ध रहेगा। लेकिन सच ये है कि समय किसी के लिए भी ठहरता नहीं है। और बचपन में जो हाथ हमें गिरने से बचाते थे, उन्हें उम्र के साथ हमारे धैर्य और सहारे की जरूरत भी हो सकती है। और जो माता पिता कभी हर सवाल का जवाब देते थे, वो भी आज के बदलते समय में अकेलापन, असुरक्षा या अपनी उपयोगिता को लेकर चिंता महसूस कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और इसी तरह बच्चों को भी समझे जाने का, सम्मान पाने का और अपने फैसले लेने की जगह होनी चाहिए। इसलिए रिश्तों को बचाने का केवल क्या तरीका है कि त्याग या उनकी बातों को मानना नहीं है, बल्कि संवाद करना, संवेदना जताना, प्यार मोहब्बत है ना जिसे कहते हैं ना, सहानुभूति, ये सभी होना चाहिए। और बच्चों, माता पिता को भी बच्चों की दुनिया को समझना होगा और बच्चों को भी समझना होगा कि माता पिता का प्यार केवल उनकी जिम्मेदारी नहीं है बल्कि उनके जीवन का एक जरूरी हिस्सा भी है। तो दोनों तरफा ये समझना पड़ेगा। महंगे उपहार देने से कभी रिश्ते नहीं बनते हैं, आपसी प्यार
0: प्यार
1: सम्मान देने से वो रिश्ते कायम रहते हैं। लेकिन प्यार से पूछा गया एक सवाल कि आप कैसे हैं, सब अच्छा है, मैं आपकी क्या काम आ सकती हूँ या मुझे क्या करना चाहिए, ये हमारे दिलों में जो दूरियां हो गई हैं उसे हम कम कर सकते हैं। तो हम तो हर बच्चे से, हर माता पिता से यही कहेंगे कि एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है, अपने रिश्तों में करीबी लाएं, है ना, दूरी नहीं लाएं।
0: बिल्कुल, और अभी हम अपने श्रोताओं को और करीब लाते हैं एक प्यारा सा गीत सुनवा कर।

0: हाँ, तो बहुत ही पुराना गीत और बहुत ही प्यारा गीत था ये।
1: बुझ मेरा
0: हाँ,
1: क्या नाम रे।
0: नदी किनारे नाव रे, क्या मतलब पुराने गीतों की बात करें तो सुनते ही रह जाते हैं।
1: पुतला मतलब अपना पूरा पता भी तुमने बता दिया कि नदी किनारे गांव इनका। जी
0: बिल्कुल। और हमारे भी जो श्रोता है, हमने उनसे भी कहा था कि उनके गांव में कौन कौन सी लोकोक्ति प्रचलित है
1: हाँ
0: ना,
1: बताइए
0: उसका
1: आप।
0: जिक्र उन्हें हमारे साथ करना भी है।
1: जी
0: तो
1: हाँ।
0: अभी हमारे एक श्रोता लिखते हैं आरती, कि माता पिता और बच्चे, व्यस्त संतान जो है, उनके बीच बढ़ती दूरी का मुख्य कारण भावनात्मक अलगाव, विचारों का अंतर और संवाद की कमी है। जीवन शैली और उम्मीदें पुराने समय से काफी अलग हैं। बच्चे अब केवल आर्थिक सुरक्षा नहीं बल्कि मानसिक शांति और बराबरी का सम्मान चाहते हैं। कई बार माता पिता बच्चों की भावनाओं को समझे बिना उन्हें नियंत्रित करने या बार बार सलाह देने लगते हैं, जिससे बच्चे हस्तक्षेप या अविश्वास मानते हैं। बच्चे चाहते हैं कि उनके उनकी बात माने बिना किसी बिना रोक टोक के सुनी जाए, लेकिन कई बार माता पिता अपनी पुरानी बातों या अपने संघर्षों का हवाला देकर बच्चों की बात को अनसुनी कर देते हैं। तो माता पिता अक्सर बच्चों को यह याद दिलाते हैं कि उन्होंने उनके लिए कितना त्याग किया है, जिससे नई पीढ़ी ऐसा नहीं मानकर माता पिता का प्राथमिक कर्तव्य मानती है। डिजिटल और अत्यधिक व्यस्त जिंदगी, गैजेट्स और भागदौड़ वाली जिंदगी ने भी परिवार के सदस्यों के बीच के वास्तविक संवाद को बहुत कम कर दिया है।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि माता पिता से दूरी होने के बाद बच्चे जो अक्सर हैं वो डिप्रेशन, अकेलेपन और एंजाइटी यानी घबराहट के शिकार हो जाते हैं। जब बच्चों को घर में भावनात्मक सहारा नहीं मिलता तो वो बाहर सहारा ढूंढते हैं और कई बार गलत दोस्तों या व्यसनों की गिरफ्त में आ जाते हैं। ये दूरी भविष्य में बुढ़ापे में माता पिता की उपेक्षा का कारण बनती है, जिससे पारिवारिक रिश्तों का ताना बाना बिखर जाता है।
0: बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और वही एक श्रोता लिखते हैं कि आजकल बच्चों और माता पिता के बीच बढ़ती जो दूरी है वो एक आम समस्या बनती जा रही है। इसके मुख्य कारण, इसे कम करने के उपाय बहुत सारे इन्होंने लिखे हैं, कि पीढ़ी का अंतर है, संवाद की कमी है, डिजिटल लत है, व्यस्तताएं हैं, स्क्रीन टाइम शेयर करते हैं मोबाइल की लत के कारण।

0: बच्चे भावनात्मक रूप से माँ बाप से कटते जा रहे हैं, और इस दूरी को कम करने के उपाय भी कहते हैं कि आप जो है बच्चों की बात को बिना बीच में काटे तुरंत बचाव की मुद्रा में आए, सुने, उनकी भावनाओं को समझें, उनकी सीमाओं का सम्मान करें, दोषारोपण छोड़ें और समय और बदलाव को अपनाएं। ये जरूरी है, तभी जाकर ये दूरियां थोड़ी सी पाटी जा सकती हैं।
1: बिल्कुल। एक हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि जिन परिवारों में माता पिता के बीच लगातार झगड़े या तनाव का माहौल रहता है, वहाँ बच्चे मानसिक रूप से असुरक्षित महसूस करते हैं। ऐसे माहौल से बचने के लिए वो बाहरी दोस्तों या डिजिटल दुनिया की ओर आकर्षित हो जाते हैं। अक्सर माता पिता बच्चों पर डॉक्टर, इंजीनियर या टॉपर बनने का भारी दबाव डालते हैं। उनकी अपनी क्षमता या पसंद, जैसे किसी को आर्ट पसंद है, किसी को स्पोर्ट्स पसंद है, तो उसको नजरअंदाज करने और हर समय दूसरों से तुलना करने के कारण बच्चे मानसिक तनाव में आ जाते हैं और अपने माता पिता से कतराने लगते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। जरूरत से ज्यादा बच्चों को कंट्रोल में करने की जो माता पिता की आदत है ना, वो भी जो है बच्चों को एक समय बाद दूर कर देती है। बच्चे अभी तो क्या होते हैं, कंट्रोल में रहते हैं, बाद में जब उन्हें मौका मिलता है तो वो दूरी बना लेते हैं। वहीं एक श्रोता लिखती है कि माता पिता से बच्चों का दूरी बनाना आज के समय में एक गंभीर और संवेदनशील विषय है। अक्सर टीनेज में बच्चे पेरेंट्स से दूरी बना लेते हैं, उनसे कुछ कहना या अपने दिल की बात शेयर करना तो दूर, वे कई बार ठीक से बात भी नहीं करते। ऐसे में पेरेंट्स काफी परेशान हो जाते हैं, आखिर ऐसा क्या है। कई बार तो पेरेंट्स इतने चिंतित हो जाते हैं कि प्रोफेशनल हेल्प तक लेने लगते हैं। बेशक हर पीढ़ी की सोच अलग होती है, लेकिन बच्चों को समझना जरूरी है कि उनके सबसे बड़े शुभचिंतक माता पिता ही हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि ना बहुत जरूरी है बच्चों के अंदर एक विश्वास को लेकर आना। और एक हमारे जो श्रोता है वो लिखते हैं कि आधुनिक जीवन शैली में माता पिता और बच्चे दोनों ही अपनी व्यस्तताओं, यानी कि कोई काम में, कोई पढ़ाई में, कोई कोचिंग में उलझे हुए हैं, और घर पर भी लोग बातचीत करने के बजाय स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और गेमिंग में व्यस्त रहते हैं, जिससे आपसी संवाद जो है वो खत्म होता जा रहा है। नई पीढ़ी के विचार, उनका पहनावा, करियर के चुनाव और जीवन जीने का तरीका पुरानी पीढ़ी से काफी अलग है। जब माता पिता पुरानी सोच या पुराने नियमों को थोपने की कोशिश करते हैं तो बच्चे खुद को असहज महसूस करने लगते हैं और उनसे दूर होने लगते हैं।
0: वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हम माता पिता को दूर करके बाहर कहीं भगवान को ढूंढने जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, परंतु देखा जाए तो माता पिता ही भगवान रूप में हमारे घर में विराजमान है।
1: बिल्कुल,
0: उनकी सेवा अगर हम करेंगे तो जीवन सफल हो जाएगा और आशीर्वाद में बहुत शक्ति होती है, कभी करके तो देखिए, ये लिखते हैं, है ना। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आधुनिक जीवन शैली में माता पिता और बच्चे दोनों ही अपनी व्यस्तताओं के कारण उलझे हुए हैं। घर पर भी लोग बातचीत करने के बजाय, जैसा कि अभी आपने कहा, इन्हीं विषयों पर बातचीत भी करते रहते हैं।
1: बिल्कुल, श्रोता है जो लिखते हैं कि माता पिता से दूरी बनाते बच्चे बड़ा मुद्दा है। बच्चे के पास बैठकर बातें भी नहीं करते हैं, वो अपने मोबाइल, वीडियो कॉलिंग, चैट पर ही लगे रहते हैं। माता पिता अपने अपने व्यवसाय में चले जाते हैं। हमारे यहाँ जब से पापा की मृत्यु हुई तब से भाई और बहन माँ के पास ही रहते हैं, और मतलब मम्मी नजदीक ही रहती है। कोई फोन आया तो तुरंत उसका जवाब देते हैं। हमारा तो फोन टूट गया, इसलिए बहन के फोन से ये संदेश साझा कर रहा हूँ। असल में जो इतना मतलब वो फोन बता रहे हैं अपना, उनका गिरा तो उसका डिस्प्ले चला गया था। तो माता पिता अगर किसी के हैं साथ में तो बच्चों को उनके साथ बातें करनी चाहिए, और मतलब उनको अकेले उस पे नहीं छोड़ना चाहिए।
0: बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और एक श्रोता लिखते हैं कि माता पिता से दूरी बनाते बच्चे दिल से दूर नहीं होते, दूरी होती है वे काम के कारण, क्योंकि उन्हें अपना काम धंधा संभालना होता है, जिंदगी चलानी होती है। और एक बात है कि माता पिता बच्चों पर जरूरत से ज्यादा पाबंदी लगा देते हैं या उनके जीवन के हर फैसले को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, तो इसका बच्चों पर बुरा प्रभाव है और उन्हें घुटन महसूस हो सकती है। इसलिए उन्हें उच्च विचारों से भरे पंख लगाकर उड़ने के लिए एक विशाल गगन में आजादी देने की जरूरत है।
1: बिल्कुल। और माता पिता, ये हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि माता पिता से बच्चों का दूरी बनाना आज के समय में एक गंभीर संवेदनशील विषय है, और अक्सर टीनेज में बच्चे पेरेंट्स से दूरी बनाने लगते हैं। उनसे कुछ कहना या अपने दिल की बात शेयर करना तो दूर, वो कई बार ठीक से बात तक नहीं करते। ऐसे में पेरेंट्स काफी परेशान हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कई बार तो पेरेंट्स इतने चिंतित हो जाते हैं कि प्रोफेशनल हेल्प तक लेने लगते हैं। बेशक हर पीढ़ी की अपनी सोच होती है, अलग होती है, लेकिन बच्चों को समझना आवश्यक है कि उनके सबसे बड़े शुभचिंतक जो है उनके माता पिता ही हैं। और एक हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि माँ बाप ने अपनी हमारी उंगली पकड़कर हमें चलना सिखाया, अब जब उनके कदम धीमे पड़ने लगे तो उन्हें अकेला ना छोड़ें, उनका हाथ थाम कर कुछ दूर चल लेना भी प्यार जताने का बहुत सुंदर तरीका है।
0: बहुत अच्छे विचार हमारे श्रोताओं ने लिखे हैं, हम सभी का आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद और शुक्रिया कि आपने बहुत अच्छे तरीके से इस विषय को उठाया और ये साबित कर दिया कि माता पिता और बच्चों को आपसी तालमेल और समन्वय रखना कितना जरूरी है ना?
1: जी बिल्कुल।
0: तो आरती, अब वक्त है एक अंतराल का।
1: बिल्कुल, अंतराल लेते हैं।
2: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। समय मिलाइए, दिन के 3:30 और 20 सेकंड हुए हैं और ये समय हो चला है NCERT प्रायोजित कार्यक्रम के इस भाग का।

0: संबंध।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: आप सभी श्रोताओं को आपके मित्र अजीत का नमस्कार जोहार। तो आइए सुनते हैं सुविचार हमेशा की तरह। तो हमें सुविचार भेजा है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल और टेकलाल पटेल जी ने। लिखते हैं, समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, हिम्मत मत हारिए, क्योंकि अंधेरी रात के बाद ही नई सुबह की पहली किरण दिखाई देती है। बस विश्वास रखिए, अच्छे कर्मों का फल देर से मिलता है लेकिन मिलता जरूर है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस उम्दा संदेश के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके प्यारे प्यारे संदेश। तो आइए सुनते हैं सबसे पहला संदेश। लिखते हैं, उद्घोषक विमलेश जी और अजीत जी नमस्कार। हम छत्तीसगढ़ सहसपुर से छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू, दुलीचंद साहू और सतीबाई साहू हैं। आपको बताना चाहते हैं कि उमंग एनसीईआरटी का कार्यक्रम बहुत हमें पसंद है। हम सादर आभार प्रकट करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद भी आपके लिए प्रकट करते हैं। साधुवाद। अगला संदेश हमें मिला है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल और संतोषी पटेल जी का। लिखते हैं, विमलेश जी, अजीत जी, सादर नमस्कार। 14 सितंबर दिन सोमवार का कार्यक्रम बहुत ही खास और शानदार रहा। टिम टिम तारा बोलो टिम टिम तारा, आ गया है बच्चों का जादुई पिटारा। इस गीत ने मन मोह लिया। पूरा कार्यक्रम बेहद रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक लगा। बच्चों के लिए ऐसी सुंदर और सीख देने वाली प्रस्तुति के लिए आप दोनों को और साथ ही साथ सीआईटी एनसीईआरटी की तकनीकी टीम को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद। अगला संदेश हमें मिला है भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का। धमधा ग्राम सुखनी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका और अंजलि जंघेल जी का। छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू जी का। और एक संदेश और हमें मिला है। लिखते हैं, रोहांसी छत्तीसगढ़ से मुकेश साहू और नंदिनी साहू जी का। एक संदेश और सुनते हैं जिसे लिखा है हमारे चिर परिचित श्रोता योगेश ठाकुर जी ने। और आपने लिखा है करसोग डिस्ट्रिक्ट मंडी हिमाचल प्रदेश से। लिखते हैं, विमलेश जी एंड अजीत जी, गुड मॉर्निंग। इट वॉज ए ग्रेट प्लेजर टू लिसन टू द पोएम द क्रो इन म्यूजिकल मैनर टूडे। What a coincidence it is that I read this poem in my childhood in the textbook and got it listened to it in a musical form. I liked this poem and song very much. Thank you very much. आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। तो आइए श्रोताओं, अब शुरू करते हैं एक और रोचक आविष्कार की कहानी। श्रोताओं, सच्चाई तो ये है कि हम इंसान भी बड़े अजीब हैं, है ना? जब कोई तकनीक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत आम हो जाती है ना, तो हम भूल ही जाते हैं कि उसने दुनिया को कैसे बदल दिया। अब पेन ड्राइव को ही लीजिए ना, छोटी सी उंगली भर का टुकड़ा है, लेकिन इसके अंदर हमारी पूरी पढ़ाई, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, हजारों तस्वीरें और न जाने कितने वर्षों का डेटा बंद है। लेकिन श्रोताओं, जिसे आज हम इतनी आसानी से जेब में डालकर घूमते हैं ना, 25-30 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतनी सी चीज अलमारी भर की भारी भरकम फाइलों को चुटकी में निगल लेगी। आपको याद होगा 90 के दशक का वो दौर, जब कंप्यूटर क्लास या दफ्तरों में हम वो चौकोर पतली काली फ्लॉपी डिस्क लेकर घूमते थे, है ना? जरा सी धूल लगी या बैग में मुड़ी तो सारा काम खत्म। और फ्लॉपी की कुल क्षमता कितनी थी आपको पता है? महज 1.44 मेगाबाइट यानी MB। यानी आज के दौर में एक MP3 गाने का आधा हिस्सा भी उसमें ठीक से नहीं आ सकता। आज हमारे पास चलता फिरता डेटा बैंक है यानी पेन ड्राइव। पता है श्रोताओं, इसका आविष्कार हुआ था एक आविष्कारक के भयंकर गुस्से और शर्मिंदगी के कारण। किस्सा है साल 1998 का। इजराइल के एक कंप्यूटर इंजीनियर थे, नाम था डोब मोरान। उनकी अपनी एक छोटी सी कंपनी थी। वे कंपनी को बड़ा

करना चाहते थे और इसके लिए उन्हें कुछ बड़ी धनराशि की जरूरत थी। मोरान अपनी कंपनी के लिए धन जुटाने के लिए अमेरिका पहुंचे। वहां एक नामी निवेशक के सामने उन्हें अपना प्रेजेंटेशन देना था। तो हुआ ये कि मोरान बड़े आत्मविश्वास के साथ मीटिंग रूम में पहुंचे, लेकिन ऐसे नाजुक वक्त पर उनका लैपटॉप चालू ही नहीं हुआ। मोरान घबरा गए। घबरा कर उन्होंने वहां मौजूद दूसरे कंप्यूटर में अपनी फ्लॉपी डिस्क लगाई और फिर वही हुआ जिसका डर हर कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाले को होता है। जानना चाहते हैं क्या हुआ? हुआ ये कि स्क्रीन पर लाल लाल बड़े बड़े अक्षरों में लिख कर आ गया, डिस्क करप्टेड। श्रोताओं, वो बड़ा निवेशक घड़ी देखता रहा। मोरान पसीने पसीने होते रहे। पूरी तरह से उन्होंने कोशिश किया कि वो फ्लॉपी डिस्क खुल जाए, लेकिन डेटा नहीं खुला। अंत में निवेशक आई एम सॉरी बोलकर चल दिया। मीटिंग रद्द हो गई और मोरान को उस कमरे से सिर झुकाकर बेहद शर्मिंदा होकर निकलना पड़ा। तो साथियों, उस शाम होटल लौटते हुए डॉन मोरान गुस्से और लाचारी से भरे हुए थे। उन्होंने टैक्सी की खिड़की से बाहर देखते हुए खुद से एक सवाल पूछा, क्या इंसान ऐसा कोई छोटा मजबूत और भरोसेमंद साधन नहीं बना सकता जो चाबी के गुच्छे की तरह जेब में आ जाए और जिसका डेटा कभी खराब ना हो? बस उनके इसी विचार ने पेन ड्राइव की नींव रख दी। यानी असफलता ही नए विचार की चिंगारी बनी। लेकिन ये हुआ कैसे? श्रोताओं, इसके लिए आपको बहुत थोड़ी सी तकनीकी जानकारी देते हैं। आपको पता होना चाहिए, उस दौर में कंप्यूटर की दुनिया में दो नई चीजें दस्तक दे रही थीं। पहली थी USB पोर्ट, जिसका इस्तेमाल उस समय लोग सिर्फ माउस या कीबोर्ड जोड़ने के लिए करते थे, और दूसरी थी फ्लैश मेमोरी, यानी ऐसी चिप जिसके कारण बिजली चले जाने पर भी डेटा सुरक्षित रहता था। तो डॉब मोरान ने सोचा कि क्यों ना इन दोनों को एक साथ मिला दिया जाए। मोरान और उनकी टीम ने फ्लैश चिप और USB कनेक्टर को अंगूठे जितने छोटे खोल में फिट कर दिया। ना किसी तार की जरूरत, ना किसी बैटरी की, और उन्होंने उसे कंप्यूटर पर लगाया। उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, कंप्यूटर का कुछ डेटा वहां ट्रांसफर हो चुका था। उन्होंने उसका नाम रखा डिस्क ऑन की, यानी चाबी के छल्ले में लगने वाली डिस्क। आपको पता है श्रोताओं, उसकी स्टोरेज क्षमता कितनी थी? अंदाजा लगाइए। शायद आप सोचते होंगे 1 GB या 2 GB, आपके अलग अलग अनुमान होंगे, लेकिन श्रोताओं आपको बताना चाहता हूं, उसकी टोटल स्टोरेज कैपेसिटी थी मात्र 8 MB, यानी 8 MB। आज तो 8 MB में हमारे फोन से खींची गई एक अच्छी सी फोटो भी नहीं आती। भले ही ये आज कम लगे, लेकिन श्रोताओं उस वक्त ये 8 MB पूरे 5 फ्लॉपी डिस्क के बराबर थी। और सबसे बड़ी खूबी ये थी कि ये फर्श पर गिर भी जाए तो इसका डेटा सुरक्षित रहता था। लेकिन श्रोताओं, अब प्रश्न है, अमेरिका और पश्चिमी देशों में इसे USB फ्लैश ड्राइव या थंब ड्राइव कहा जाता है, तो ये भला पेन ड्राइव कैसे बन गई? इसका नाम पेन ड्राइव कैसे पड़ा? ये भी बड़ा मजेदार किस्सा है। जब ये तकनीक एशियाई बाजारों में आई तो कई कंपनियों ने इसे पतले मार्कर पेन जैसा आकार दिया, जिसमें पीछे एक क्लिप होती थी, और लोग उसे शर्ट की जेब में पेन की तरह रख लेते थे। बस हमारे लोगों ने देखा और झट से नाम रख दिया पेन ड्राइव। और इस नन्ही सी ड्राइव ने ना जाने कितनी चीजों की छुट्टी कर दी। इसने फ्लॉपी डिस्क को सीधे म्यूजियम पहुंचा दिया। जो लोग बैग में CD और DVD के भारी भारी कैसेट लिए घूमते थे, जिन पर जरा सी खरोंच आते ही गाने अटक जाते थे, पेन ड्राइव ने इन सब का नामो निशान मिटा दिया। और आज तो कमाल हो गया है श्रोताओं, 8 MB से शुरू हुआ पेन ड्राइव का ये सफर आज 1 TB और 2 TB तक पहुंच चुका है। यानी पूरी दुनिया का ज्ञान, फिल्में और किताबें एक छोटी सी उंगली के पोर जितनी जगह पर समा सकती है। तो अब जरा सोचिए श्रोताओं, अगर 1998 की उस शाम डॉब मोरान की वो फ्लॉपी डिस्क खराब ना हुई होती, तो शायद हम आज भी फ्लॉपी डिस्क और नाजुक CD के जंजाल में ही उलझे होते। जी हाँ श्रोताओं, यही तो है विज्ञान की खूबसूरती। जब कोई भी इंसान किसी परेशानी से तंग आकर एक बेहतर विकल्प ढूंढने की ठान लेता है, तो शुरू होता है नवाचार और दुनिया हमेशा के लिए बदल जाती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप अपने कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगाएं, तो 1998 की उस शाम को कभी ना भूलें जिस दिन फ्लॉपी डिस्क खराब हो गई थी और डॉब मोरान ने इस बात को ठान लिया था कि वो इसका विकल्प ढूंढ कर ही दम लेंगे। तो श्रोताओं, आज के लिए बस इतना ही। तो सुनते रहिए हमारा कार्यक्रम उमंग और सीखते रहिए नई नई बातें। तो आइए अब सुनते हैं आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से आज का प्रश्न है, किस व्यक्ति और उसकी टीम ने पेन ड्राइव की खोज की? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
किस व्यक्ति

0: और उसकी टीम ने पेन ड्राइव की खोज की। श्रोताओ, आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cieet.nic.in पर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, लिंक्डइन, फेसबुक और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। आपको बता दें कि NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करने के लिए आप NCERT बुक्स PDF किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए, वेबसाइट पर दिए गए विकल्पों का अनुसरण कीजिए और मनचाही पुस्तक तक पहुंचिए। आप यदि इन्हीं पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT ऑफिशियल YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप इस चैनल पर हमारे कार्यक्रम न सिर्फ सुन सकते हैं लेकिन उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आम की गुठली। कक्षा 3 की हिंदी के पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में पौधरोपण का संदेश दिया गया है तथा ये बताया गया है कि मात्र पौधा रोपना ही पर्याप्त नहीं है, पौधे की समुचित देखभाल भी की जानी चाहिए।
1: एक दिन अम्मा बाजार से बच्चों के लिए आम लाई। 1 किलो में 7 आम आए। आम छोटे छोटे और खूब रसीले थे। अम्मा ने उन आमों को धोकर फ्रिज में रख दिया और बच्चों से कहा,
2: शाम को अब्बा दफ्तर से आएंगे, तब तक फ्रिज में आम भी ठंडे हो जाएंगे। रात के खाने के बाद हम आम खाएंगे।
1: मुन्ने को आम बहुत पसंद थे। थोड़ी देर में अम्मा, सीमा और समीर दूसरे कमरे में चले गए। अब 4 साल का शरारती मुन्ना कमरे में अकेला रह गया। उसने इधर उधर देखा तो आसपास कोई ना था। मुन्ने ने मौका पाकर चुपके से फ्रिज खोलकर एक आम उठा लिया और खूब मजे लेकर चूस चूस कर खाया।
3: इतना मीठा आम है, ये आम खाके तो मजा आ गया।
1: फिर मुन्ने ने हाथ मुंह धोकर कुल्ली कर ली और दूसरे कमरे में जाकर दादा दादी के साथ बातें करने लगा। शाम को अब्बा आए। दादा दादी के साथ बैठकर सबने रात का खाना खाया। खाना खाकर अम्मा ने जब फ्रिज से आम निकाले तो 7 की जगह सिर्फ 6 आम थे। अम्मा ने बच्चों से पूछा,
2: क्या आप में से किसी ने एक आम खाया है?
1: सीमा और समीर ने इनकार में अपनी गर्दनें हिलाई।
3: नहीं अम्मा, हमने तो फ्रिज खोला ही नहीं।
1: मुन्ने को शर्म आ रही थी, फिर भी जी कड़ा करके उसने कहा,
3: नहीं, मैंने तो आम नहीं खाया।
1: अब्बा बच्चों का इनकार सुनकर मुस्कुराए और कहा,
4: आम तो आप लोगों के लिए ही आए थे। अगर आप में से किसी ने एक आम खा भी लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, इन आमों की गुठलियाँ बहुत छोटी थी। मुझे तो ये फिक्र हो रही है कि अगर किसी बच्चे ने आम की गुठली भी निगल ली होगी तो आज रात उसके पेट में बड़े जोर से दर्द होगा।
1: इतना सुनना था कि मुन्ना झट से बोल पड़ा,
3: नहीं नहीं अब्बा, गुठली तो बड़ी थी, मैंने तो उसे कूड़ेदान में फेंक दिया था।
1: ये सुनकर सारे लोग हंस पड़े। मुन्ना शर्म से लाल हो गया। पास ही बैठी दादी जान ने कहा,
5: अरे वाह, मेरे मुन्ने ने सच को कबूल करके मेरा दिल जीत लिया।
6: तो बच्चों, आपने सुनी ये कहानी, अच्छी लगी ना? अच्छा, अब आपके लिए कुछ सवाल हैं। ऐसे कौन कौन से फल हैं जिनकी गुठली फलों के अंदर होती है, उसकी एक फेहरिस्त बनाइए। ऐसे कौन कौन से फल हैं जो सिर्फ गर्मियों में मिलते हैं, बीज, पत्ती।

0: फूल और फल इनके आने की सही तरतीब क्या है, आपने कौन कौन से आम खाए हैं उनके नाम लिखिए। इन सवालों के जवाब आप अपने वालिदैन, दोस्त और अहबाब से भी चर्चा कर सकते हैं।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम आम की गुठली, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह। इस कार्यक्रम में भारत के स्वाधीनता संग्राम के दौरान बहादुरी से अंग्रेजी साम्राज्य का सामना करने वाले और अपना प्राण न्योछावर करने वाले वीर किशोर जोरावर सिंह के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है।
2: भारत वीरों और वीरांगनाओं की भूमि है। जब जब भारत माँ की आन बान और शान पर संकट आया, हमारे वीर और वीरांगनाएं अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटे। बात है अंग्रेजों के विरुद्ध छेड़े गए स्वतंत्रता संग्राम की, जब हमारे वीर और वीरांगनाओं ने अदम्य साहस, सूझबूझ और मातृभूमि के प्रति कर्तव्य को बड़ी बहादुरी से निभाया। इन वीरों और वीरांगनाओं में कई तो काफी कम उम्र में ही कुर्बान हो गए।
3: ऐसे ही एक वीर बालक थे जोरावर।
4: साथियों, हमें अपने शत्रु की हर चाल का, हर हथियार का और हर रणनीति का जवाब देना है। शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना है और हर पल हम सबको उससे चौकन्ना रहना है। आप सब जानते हैं कि हम पर दोहरी जिम्मेदारी है। हमें अपनी रियासत के साथ साथ पड़ोस की रियासतों की भी मदद करनी है, ताकि अंग्रेज हमारी मातृभूमि पर कब्जा ना जमा सकें।
5: वीर जोरावर की जय! वीर जोरावर की जय! जय जेरापुर, जय भारत!
6: जय जेरापुर, जय भारत!
3: राजा जोरावर सिंह, हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत से सटी छोटी सी रियासत जेरापुर का महज 15-16 की उम्र का राजा, जिसने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों से लड़ने के लिए अरब और रोहिल्ला पठानों की एक सैनिक टुकड़ी तैयार की थी।
7: अरे वाह, इतनी सी उम्र में जोरावर राजा बन गए।
3: दरअसल पिता की अचानक मृत्यु हो जाने पर उन्हें यह जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ी, क्योंकि वो अपने पिता के उत्तराधिकारी थे और दूसरा, अंग्रेजों के बढ़ते हमलों से मुकाबले के लिए ऐसा करना जरूरी था। खैर, ये वो वक्त था जब 1857 की क्रांति में बुरी तरह मात खाने के बाद अंग्रेज नई नई चालें रचने लगे थे। इसी में एक खतरनाक चाल थी, डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो।
7: अंग्रेजी हुकूमत ने हम भारतीयों को जात पात, भाषा, धर्म और क्षेत्र के नाम पर लड़ाना शुरू कर दिया, ताकि इसका फायदा उठाया जा सके।
8: महाराज, महाराज, हालात खराब हो रहे हैं, लोग आपस में ही लड़ने लगे हैं। हमें कुछ करना होगा महाराज। पड़ोस की दूसरी रियासतों को भरोसे में लेकर और मिलकर काम करना होगा, ताकि इन अंग्रेजों को मनमानी का कोई मौका ही ना मिले।
4: ठीक कहते हैं मंत्री जी, मैं कल ही हैदराबाद जाता हूँ। वो हमारी सबसे बड़ी राजशाही रियासत है
8: जी।
4: वहाँ के निजाम अफजल उद्दौला से बात करूंगा और मुझे उम्मीद है कि वो हमारी बात को अहमियत देंगे।
8: जी महाराज, महाराज अगर ऐसा हो जाए तो ये आपकी यात्रा की एक बड़ी सफलता होगी।
4: बिल्कुल,
8: आपकी सूझबूझ का जवाब नहीं महाराज। वाकई आप अपनी मातृभूमि और जनता की रक्षा के लिए कितने समर्पित हैं। हम तैयारी शुरू करते हैं महाराज।
4: जी मंत्री जी।
8: जी महाराज।
3: जोरावर ने अगले ही दिन एक नेक मकसद के साथ निजाम के दरबार में दस्तक दी।
9: होशियार, खबरदार, रियासते जेरापुर के महाराज जोरावर सिंह दरबारे खास में

0: 마라 쌤을 따지 않아야 말안 좋은 것 쌤을 다 사랑하겠지.
1: 아, 예, 하마레 도스트. तहे दिल से आपका इस्तकबाल है, तशरीफ रखिए और बताएं कि आपने कैसे तकलीफ की, क्या खिदमत की जाए आपकी।
2: निजाम साहब, हम आपसे एक गुजारिश करने आए हैं।
1: जी जरूर, हुक्म करें, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं।
2: देखिए निजाम साहब।
1: जी फरमाइए।
2: फिरंगी हुकूमत की बर्बरता और साजिशें एक बार फिर बढ़ रही हैं। गदर में मिली नाकामी के बाद अब वो हमें आपस में लड़ा रहे हैं।
1: जी,
2: इसलिए हमें मिलकर काम करना होगा ताकि वो किसी साजिश में कामयाब ना हो पाए।
1: राजा जोरावर, हम भी ऐसा ही चाहते हैं। हम कल सुबह तफसील से बात करते हैं।
2: जी,
1: तब तक आप हमारे खास मेहमान की तरह इस किले में रहें। हमारे वजीर सालार जंग आपके आराम और कल की बातचीत के सारे इंतजाम कर देंगे।
3: जो हुक्म मेरे आका, हम महाराज और उनके सैनिकों का पूरा ख्याल रखेंगे। आइए महाराज।
4: अफजल उद्दौला उर्फ मीर तहनियत अली खान 1857 से 1869 तक हैदराबाद के निजाम यानी शासक थे और यहाँ के पहले शासक कमरुद्दीन खान आसफ जाह के पांचवें वंशज थे। दरअसल भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान हैदराबाद रियासत पर नवाबों की हुकूमत रही। खैर, निजाम के दरबार में अपने शानदार स्वागत से जोरावर खुश थे। वहीं निजाम भी उनकी देशभक्ति और सूझबूझ को देखकर हैरान थे।
5: जी हाँ, जीरापुर की जनता के लिए हैदराबाद का साथ बहुत जरूरी था और जोरावर यहाँ काफी उम्मीद से आए थे।
3: ए, सुनो, सारी तैयारियां पूरी है ना?
6: बिल्कुल।
3: देखो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक तो जोरावर खुद बहुत बहादुर है, दूसरे उसके अंगरक्षक साय की तरह उसके साथ रहते हैं, और तीसरी बात यह है कि अगर हमारी साजिश कामयाब ना हुई तो फिरंगी हुकूमत हमसे नाराज हो जाएगी और इनामो इकराम की जगह मिलेगी लानत मलामत।
6: हुजूर, आप फिक्र ना करें, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे आपने कहा है।
3: लेकिन जरा होशियारी से।
6: जो हुकुम सरकार।

0: John Armour! But how? तुम चारों तरफ से गिर चुके हो.
1: ये क्या है?
0: You are under arrest.
1: एक सोते हुए निहत्थे इंसान को आधी रात में ऐसे कायरों की तरह गिरफ्तार करते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? हिम्मत है तो हमसे लड़कर दिखाओ. आओ सामने.
0: बाउट हो गई तुम्हारी बहादुरी. फौजियों,
2: हुजूर,
0: बांधो इस बच्चे को संजीव से.
2: जी.
3: हाँ. छोड़ो मुझे.
0: हाथ
3: मत लगाओ मुझे. मुझसे हाथ हटाओ. मैंने कहा छोड़ो मुझे, हटो यहाँ से.
0: शाबाश, शाबाश, सालार जंग. मैं खुश हुआ. तुम्हें मोटा इनाम दिलवाऊंगा.
2: हुजूर.
1: अच्छा, तो ये सब इसकी कारस्तानी है. एक बुजदिल ही दूसरे बुजदिल का साथ दे सकता है. लानत है तुम पर सालार जंग, लानत है. लालच में तुम इतने गिर जाओगे हमने सोचा ना था.
0: फौजियों, ले चलो इसको.
3: चलो मुझे. छोड़ो मुझे.
4: बाद में अंग्रेजी फौज ने जोरावर पर बहुत अत्याचार किए. उनकी सैनिक तैयारी के बारे में पूछा गया, उनसे क्रांतिकारियों के नाम और ठिकाने पूछे.

0: गए, तरह तरह के लालच भी दिए गए, लेकिन वो जरा भी कमजोर नहीं पड़े और बार बार यही कहते रहे कि मातृभूमि से विश्वासघात नहीं कर सकते, चाहे जान ही क्यों ना गंवानी पड़े।
1: जोरावर से सारे राज उगलवाने के लिए थक हार कर कर्नल मेटोस टेलर नाम के एक नए अफसर को नियुक्त किया गया, लेकिन वो जितना ही सख्त था उतना ही दोस्ताना मिजाज का भी था। उसके मन में जोरावर के प्रति हमदर्दी थी। वो और जोरावर जल्द दोस्त बन गए और जोरावर उसे प्यार से अप्पा कहने लगे।
2: देखो जोरावर, अगर तुम प्यार से बचाओगे तो तुम्हें सजा की जगह आम माफी मिल जाएगी और मैं रेजिडेंसी से कहकर तुम्हें मालामाल करवा दूंगा।
3: अप्पा, ये नहीं हो सकता।
2: देखो तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम, बात मान लो, मैं तुम्हें कोच नहीं होने दूंगा।
3: ये नामुमकिन है।
2: व्हाई?
3: हमें माफ कीजिए, हम अपनी रियासत और मुल्क दोनों से दगा नहीं कर सकते। हम देशद्रोह नहीं करेंगे, हरगिज नहीं करेंगे। अप्पा साहब, अब हम मौत का सामना करने के लिए तैयार हैं। हमें जो भी सजा होगी अब हमें मंजूर है।
2: तो तुम नहीं मानोगे। देखो, आजीवन कारावास या फिर मौत की सजा हो सकती है तुम्हें। ये सजा,
3: अप्पा साहब, हमारी बस एक विनती है कि हमें फांसी पर मत चढ़ाइएगा। हमने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जिसके लिए हमें शर्म आए। हमने जो किया हमें उस पर गर्व है। कैद, फांसी या काला पानी, इनमें से कोई भी इतना भयंकर नहीं जितना कि विश्वासघात है। इसलिए हमें फांसी के बजाय तोप से बांधकर उड़ा दीजिएगा। हम कुछ नहीं कहेंगे और जरा भी नहीं डरेंगे, जरा भी नहीं।
2: एक्चुअली यू आर अ फूल।
0: जोरावर की ये बात सुनकर कर्नल टेलर का दिल भी सिहर उठा। बाद में उनकी गुजारिश न मानकर जोरावर को काला पानी की सजा सुनाई गई।
1: काला पानी की सजा?
0: हाँ, काला पानी की सजा। भारत की भूमि से सैकड़ों किलोमीटर दूर अंडमान निकोबार का एक द्वीप है, जहां अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों को यातनाएं देने के लिए एक जेल बनाई थी।
1: जोरावर को भी अंग्रेज सैनिक नाव से काला पानी की जेल ले जाने लगे।
0: और समुद्र में बीच रास्ते जोरावर ने एक अंग्रेज पहरेदार से रिवॉल्वर छीन ली।
3: काले पानी की सजा से मौत को बेहतर समझता हूं मैं। भारत माँ का बहादुर बेटा हूं। इस सजा को मेरी रियासत का सामान्य सा व्यक्ति भी नहीं पसंद करेगा। फिर मैं तो राजा हूं।
1: एक छोटी सी रियासत के छोटी उम्र के राजा ने देश के लिए बड़ा काम कर दिखाया और मातृभूमि की रक्षा के लिए मौत को गले लगाकर अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज किया।
4: तो श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हम अपने आज के उमंग प्रसारण को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, कुसुमलता, चेतना, अरशद, प्रसून और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सुमन संजय कुमार जी के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी का ये भाग। आपने ट्यून किया है 100.4 FM आकाशवाणी बरेली। समय मिला ये शाम के 4 बजे हैं।

इसी समय के साथ हम भी लेकर हाजिर हुए हैं कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। सभी श्रोताओं का करते हैं बहुत बहुत स्वागत आज के इस कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम को आप सुनेंगे शिप्रा मिश्रा के साथ 100.4 FM आकाशवाणी बरेली से।

श्रोताओं, वैसे तो इस कॉल इस कार्यक्रम में हम आपके फ़ोन कॉल को दिन में 2 बजे से रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते आज हमने आपकी फ़ोन कॉल्स को रिकॉर्ड नहीं किया है। लेकिन निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन और भी है। वो ये है कि आप हमें फेसबुक पर अपने विचार हमसे साझा कर सकते हैं। तो फटाफट फेसबुक पर जाइए, आकाशवाणी बरेली पेज को फॉलो कीजिए और यहाँ हमारी आज की पोस्ट आपकी बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम में आए, जिसमें आज का विषय है कि कभी किसी के आशीर्वाद या दुआओं का प्रत्यक्ष असर आपने महसूस किया है। तो इस विषय पर क्या आपके अनुभव हैं, वो आप हमसे जरूर साझा करें। आज आपके साथ रहेंगे लाइव इस कार्यक्रम में और शामिल करेंगे आपके फेसबुक पर मिले कमेंट। फटाफट आ जाइए फेसबुक पेज पर और फटाफट से अपने मन की बात हमसे साझा कर लीजिए। तो चलिए फेसबुक की ओर रुख कर लेते हैं, क्योंकि कुछ श्रोताओं के कमेंट आज के विषय को लेकर हम तक पहुंच चुके हैं। आपको फिर से बताते चलते हैं कि अगर आप भी हमारे कार्यक्रम में हिस्सा बनना चाहते हैं तो फटाफट से जाइए आकाशवाणी बरेली पेज पर फेसबुक को ऑन कीजिए और हमें फॉलो कीजिए। वहां हमारे आज के कार्यक्रम के बैनर आपकी बात आकाशवाणी के साथ पर जाइए और आज के विषय से लिखी हुई, आज के विषय से जुड़ी हुई आपकी जो भी बातें हैं, जो भी आपके एहसास हैं, जो भी आपके अनुभव हैं, आप हमसे साझा करें। उन्हें हम लाइव शामिल कर रहे हैं। इस क्रम में सबसे पहले सादुल शहर राजस्थान आपको ले चलते हैं, क्योंकि यहाँ है राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़। इन्होंने नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं, तो आपको भी आकाशवाणी परिवार की ओर से नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लिखते हैं, आशीर्वाद प्रार्थनाएं या दुआएं ये बहुत काम आती हैं। बहुत बार प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि मान लीजिए डॉक्टर ने मरीज को जवाब दे दिया कि घर पर ले जाओ, सेवाएं करो, हमने अपनी तरफ से जितना प्रयास हमें करना था संभव था, हमने कोशिश कर ली है इलाज की, लेकिन जब पेशेंट यानी मरीज को घर लेकर आते हैं और घर पर आकर सब लोग उनकी सलामती के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो निश्चित तौर पर ऐसे चमत्कार होते हैं, उन दुआओं का, उन प्रार्थनाओं का असर होता है, जिसे हमने बहुत बार देखा है। ये लिखते हैं कि ऐसा एक वाकया मेरे साथ हुआ है। ये लिखते हैं, 1 अगस्त को मुझे पेशाब संबंधी दिक्कतें हुई थी। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन मैं जो था ऑपरेशन करने से मैंने साफ मना कर दिया और बस भगवान की प्रार्थना करने लगा, हमारे परिवार के सभी सदस्य करने लगे कि बस आप ही मुझे आप ठीक कर सकते हैं और मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। और देखिए चमत्कार हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हो गया बिना किसी ऑपरेशन के। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, मेरे प्रभु का और मेरी जान पहचान वालों का, जिन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की थी मेरे अच्छे स्वास्थ्य के लिए और मैं आज बिल्कुल स्वस्थ हूँ। बहुत बार ऐसा चमत्कार हुआ है, तो प्रार्थना में बहुत ताकत है। कई बार देखा गया है कि दवा काम नहीं करती और दुआएं काम करती हैं। ज़रूरत है हमें परमात्मा पर विश्वास करने की। बिल्कुल, ये लाइन भी बड़ी फेमस है कि डॉक्टर्स के द्वारा कि अब इन्हें दवाओं की नहीं दुआओं की जरूरत है ना। आशीर्वाद और दुआओं में कमाल होता है, आशीर्वाद और दुआओं में कमाल होता है श्रोताओं। इसे देने वाले की जो है ये दिली पूंजी है, चाहे देने वाला कंगाल होता है। फिर से सुनिए, आशीर्वाद और दुआओं में कमाल होता है, इसे देने वालों की ये दिली पूंजी है, चाहे देने वाला कंगाल होता है। कुछ दुआएं जीवन में जरूर कमाना मेरे दोस्त, कुछ दुआएं जीवन में जरूर कमाना मेरे दोस्त, तेरे असली जीवन का ये सवाल होता है।

104.4 FM आकाशवाणी बरेली से आप सुन रहे हैं आपकी बात आकाशवाणी के साथ। आज के इस कार्यक्रम में हम पूरा कार्यक्रम करेंगे आपके कमेंट्स को लेकर। जी हाँ, अभी भी समय है, आकाशवाणी बरेली पेज पर जाएं और आज के विषय से जुड़े अपने अनुभव हमसे साझा करें। हम लाइव आपके कमेंट्स को कार्यक्रम में शामिल करेंगे। कभी झुर्रियों वाले कपकपाते हाथों ने आपके सिर को छुआ है, कभी मायूस उदास आंखों ने जिनमें आंसू भरे हों, उस चेहरे पर आपके कारण एक संतोषजनक सुकून भरी मुस्कुराहट आई है। अगर हाँ, तो बस यही है आपकी वास्तविक कमाई। ये वो कमाई है श्रोताओं, जो दिखती नहीं, जो खर्च नहीं होती, जिसे खरीदा नहीं जा सकता या जिसे बेचकर हम कुछ खरीद भी नहीं सकते। बस ये कमाई जीवन भर हमारे साथ रहती है, एक आशीर्वाद के रूप में, एक अपनेपन के रूप में, और इसका कोई मोल नहीं है। आज के विषय से जुड़े और कमेंट शामिल कर लेते हैं। तो विष्णु मिस्कीन जी हैं, क्या लिखते हैं ये विष्णु मिस्कीन, रितिका, आरव और वाणी हैं। इनका पता है दयानंद कॉलेज भवानीपेट सोलापुर महाराष्ट्र। ये लिखते हैं, हाँ मैंने महसूस किया है कि जीवन में कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जिन्हें आंखों से देखा नहीं जा सकता, लेकिन उनका असर दिल से महसूस किया जा सकता है। उनमें से एक है किसी के दिल से निकली हुई दुआ और सच्चे मन से दिया गया आशीर्वाद। कभी कभी जिंदगी में हम ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं जहां अपनी सारी कोशिशें भी छोटी पड़ने लगती हैं, रास्ते दिखाई देना बंद हो जाते हैं, उम्मीदें कमजोर होने लगती हैं और मन में हजारों सवाल उठते हैं। लेकिन तभी किसी अपने के मुंह से निकले हुए एक शब्द, चिंता मत करो, सब अच्छा होगा, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, ये शब्द मन में एक नई उम्मीद जगा देते हैं। तब एहसास होता है कि दुनिया में हर ताकत पैसों पद से नहीं मिल सकती, कुछ ताकतें रिश्तों की सच्चाई, बड़ों के आशीर्वाद और अपनों की दुआओं से मिलती हैं। मेरे लिए सबसे खूबसूरत बात यह है कि दुआ देने वाला इंसान हमेशा हमारे सामने मौजूद हो। ये जरूरी नहीं, कभी कभी दूर बैठा कोई अपना भी हमारे लिए इतना सच्चे दिल से दुआ करता है कि उसकी याद करने मात्र से मन को सुकून मिल जाता है। मेरा मानना है कि आशीर्वाद कोई जादू नहीं, बल्कि जीवन को हिम्मत देने वाली एक अनमोल भावना है। यह हमें मुश्किलों से भागना नहीं, बल्कि उनका सामना करना सिखाती है। जब कोई हमारे लिए सच्चे दिल से अच्छा चाहता है, तो हमें लगता है कि हम अकेले नहीं हैं। कोई तो है जो हमारी खुशी में खुश होता है, हमारे दुख में हमारे लिए बेहतर कल की कामना करता है। और एक बात मैंने जीवन से सीखी है, किसी को दुआ देने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं, बस दिल का अमीर होना जरूरी है। किसी के लिए दो अच्छे शब्द बोल देना, किसी टूटे हुए मन को हिम्मत दे देना, किसी निराश इंसान को उम्मीद दे देना, ये भी किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। आखिर में बस इतना कहना चाहता हूँ कि जिंदगी में इतने सफल जरूर बनिए कि लोग आपकी उपलब्धियों पर तालियां बजाएं, लेकिन इतने अच्छे इंसान भी बनिए कि लोग आपके दिल से दुआ करें आपकी सलामती के लिए। क्योंकि तालियां कुछ पलों के लिए खुशी देती हैं, लेकिन किसी के दिल से निकली सच्ची दुआ जिंदगी भर का सहारा बन सकती है। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि हमारे जीवन में ऐसे लोगों की कभी कमी ना हो जिनकी दुआएं हमारे लिए सच्ची हों, और हमारा दिल भी इतना साफ रहे कि हमारी वजह से किसी की आंखों में आंसू नहीं बल्कि चेहरे पर मुस्कान आए। कितनी अच्छी बात विष्णु मिस्किन जी ने लिखी है, और बहुत अच्छा लगा इनके विचारों को जानकर।

आपने ट्यून किया है 100.4 FM आकाशवाणी बरेली और कार्यक्रम सुन रहे हैं आपकी बात आकाशवाणी के साथ। आज का विषय आपको पुनः बता देते हैं। हमारा आज का विषय है कि किसी के आशीर्वाद या दुआओं का असर प्रत्यक्ष आपने महसूस किया है। बस इसी विषय पर अपने अनुभव आपको हमसे साझा करने हैं। कहाँ करने हैं बता देते हैं, तो फेसबुक पर जाइए, आकाशवाणी बरेली पेज को फॉलो कीजिए। बस वहाँ हमारा आज की जो पोस्ट है वहाँ विषय पड़ा हुआ है आज के कार्यक्रम के साथ, वहाँ अपने विचार हमसे साझा कीजिए। हम लाइव आपके कमेंट शामिल कर रहे हैं। अच्छा, कभी ना कभी श्रोताओं हमारे साथ भी ऐसा हुआ होगा ना कि अब मानो कहीं हम एक जगह खड़े होते हैं, हाँ, और जैसे ही हटते हैं तो देखते हैं कि एक भारी सी चीज अचानक से वहीं आकर गिर जाती है जहां हम अभी कुछ देर पहले खड़े थे। कभी हम किसी दिशा में यात्रा करने जा रहे होते हैं और अचानक मन बदल जाता है कि अच्छा आज नहीं जाते हैं, या फिर चलो थोड़ी देर में ही चले जाते हैं, और थोड़ी ही देर के बाद क्या पता चलता है कि हम जिस दिशा में जाने वाले थे, जहां जाने वाले थे, उसी जगह एक भीषण हादसा हो गया है। या फिर ऐसा होता है कि हम बड़े आराम से लेटे थे, है ना, और अचानक से मन हुआ कि चलो जरा चलकर किचन में चले जाते हैं या इधर उधर कहीं घूम आते हैं। जैसे ही उठते हैं देखते हैं कि हमारे पास में तो एक कोई जहरीला विषैला जीव पास में ही था जो बस इंतजार में था कि हम जैसे ही हलचल करें और वो हम पर हमला बोल दे, लेकिन हम बच गए क्योंकि हम उससे पहले ही उठ गए। तो ये कुछ बातें ऐसी होती हैं, और इन बातों के बाद मुंह से अचानक निकलता है उफ आज तो बच गए। तो ये सब क्या है? हमें तो लगता है भाई ये हमारे बुजुर्गों के आशीर्वाद और दुआओं का ही असर है जो एक एक सेकंड या एक सेकंड से भी कम की अवधि का अंतराल रहता है जिससे हम बच जाते हैं एक बड़े हादसे से। फिलहाल SB हर्षिद्धि हमारे साथ हैं, और क्या लिखते हैं ये कृष्णा कॉलोनी गदक कर्नाटक से हैं। इनके साथ हैं संगीता हरसिद्धि, बाबू लक्ष्मी, जयश्री, हबीब, शंकर, मंजू, काशीनाथ और इनके सभी साथी। ये लिखते हैं, इन्होंने बहुत कुछ जो संदेश है इससे पहले वाले संदेश को कॉपी किया हुआ है, लेकिन नीचे की पंक्तियां कुछ अलग हैं। तो हम ऐसा करते हैं, ऊपर की पंक्तियां नहीं पढ़ते हैं क्योंकि वो सेम टू सेम वैसी ही हैं, नीचे की पंक्तियां इनकी पढ़े देते हैं। ये लिखते हैं, मेरा मानना है कि दुआएं कोई जादू नहीं होती बल्कि वे हमारे भीतर उम्मीद, विश्वास और आगे बढ़ने की ताकत जगाती हैं। जब कोई बुजुर्ग सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देता है, जब माता पिता अपनी संतान के लिए परमात्मा से अपने लिए नहीं उसके लिए सुख मांगते हैं, या जब कोई सच्चा इंसान बिना किसी स्वार्थ के हमारे लिए दुआ करता है, तो उन शब्दों में केवल आवाज नहीं बल्कि उसका प्यार, विश्वास और अपनापन छिपा होता है। इन्होंने आगे लिखा है, जिंदगी में पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, खोया हुआ समय वापस नहीं आता, लेकिन किसी के दिल से निकली हुई दुआ उम्र भर का सहारा बन सकती है। सबसे खूबसूरत बात यह है कि दुआ करने वाला शायद भूल भी जाए कि उसने हमारे लिए क्या मांगा था या क्या दुआ की थी, लेकिन उसकी दुआ जो हमें मिलती है, वो जो हिम्मत हमें मिलती है, वो जीवन भर याद रहती है। इसीलिए मैं मानता हूँ कि हमें केवल अपने लिए दुआएं नहीं मांगनी चाहिए बल्कि दूसरों के लिए भी अच्छा सोचना चाहिए, क्योंकि

किसी की जिंदगी में खुशी की वजह बनना भी एक तरह की इबादत है। आखिर में बस इतना ही कहूंगा, इंसान की असली दौलत उसके बैंक खाते में जमा नहीं होती, बल्कि उन लोगों के दिलों में बसी जगह है जहां से उसके लिए दुआएं निकलती हैं। क्योंकि किस्मत कब बदल जाए ये हम नहीं जानते, लेकिन किसी की सच्ची दुआ हमें मुश्किल वक्त में टूटने नहीं देती।

आपकी बात आकाशवाणी के साथ इस कार्यक्रम के साथ मैं हूं शिप्रा मिश्रा। मुझे आप सुन रहे हैं 100.4 FM आकाशवाणी बरेली से। आप भी हमसे लाइव जुड़ सकते हैं, अपने विचार हमसे साझा करिए, उन विचारों को हम आपके साथ लाइव शामिल करेंगे। तो फटाफट से आकाशवाणी बरेली पेज को फॉलो कीजिए और आज के विषय से जुड़े अपने अनुभव हमसे साझा कर लीजिए। अच्छा, हमने इस संदेश से पहले आपसे जो चर्चा की थी छोटी सी, कि कभी कभी एक सेकंड या एक से आधे सेकंड से भी हम बच जाते हैं किसी दुर्घटना से। कुछ बहुत गलत हमारे साथ होने वाला था लेकिन हम एक दो सेकंड से बच जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप खुद से बच गए? हमें तो लगता है कि बचे नहीं, बचाए गए थे। जी हाँ, उस समय ये महसूस होता है कि ये दुआओं का ही असर था, यही था आशीर्वाद का असर, है ना। दुआओं और आशीर्वाद की ये ताकत होती है। और आपको पता है इस चीज का जो महत्व होता है, जो ये दुआएं हैं, बददुआएं हैं, आशीर्वाद है, इसके महत्व को सिर्फ हमारे देश में ही नहीं महत्व दिया जाता, बल्कि आजकल तो जो विदेशी कल्चर है, विदेशी जो व्यक्ति हैं, वो भी इस चीज की ओर आकर्षित हो रहे हैं और हमारे देश के रीति रिवाजों को और इन चीजों को अपना रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको शाहरुन नूर अंसारी जी से मिलवाते हैं। आप ग्राम बापोर छरपुर मटकली जिला बरेली से हैं। आप लिखते हैं, अपनी बात कुछ यूं बयां करना चाहते हैं कि दुआएं हमारी जिंदगी का एक खूबसूरत रूहानी हिस्सा है। जी हाँ, मैंने दुआओं का असर महसूस किया है। जब इंसान परेशानियों से घिर जाता है और हर तरफ से उम्मीद कम होने लगती है, तब दिल से निकली दुआ उसे हौसला और सुकून देती है। मेरा मानना है कि दुआ सिर्फ लफ्जों का नाम नहीं, बल्कि दिल की गहराइयों से निकली वह पुकार है जिसमें यकीन, मोहब्बत और उम्मीद शामिल होती है। कभी किसी की दुआ से मुश्किल वक्त में हिम्मत मिल जाती है, तो कभी किसी अपने के चंद अल्फाज दिल को सुकून पहुंचा देते हैं। दुआ का मतलब केवल अपनी खुशी मांगना नहीं, बल्कि दूसरों की खुशहाल मुल्क में, मतलब दूसरों की खुशहाली मुल्क में अमन चैन और इंसानियत की भलाई के लिए भी हाथ उठाना है। हमें हमेशा अपने वालिदैन, रिश्तेदारों और तमाम इंसानों के लिए नेक दुआएं करनी चाहिए। आखिर में बस इतना ही कहूँगा कि दुआ कीजिए, उम्मीद रखिए और अच्छे अमल करते रहिए, क्योंकि दुआ दिल को ताकत देती है और इंसान को मुश्किल हालात में आगे बढ़ने का हौसला देती है। इस उम्मीद के साथ कि हम सबकी नेक दुआएं कबूल हों, हर तरफ मोहब्बत, अमन और खुशहाली का पैगाम आम हो। कितने अच्छे विचार आपके हैं, बहुत अच्छे। और ऐसे विचारों के साथ जब हम जुड़ते हैं तो ऐसा लगता है बस ये सिलसिला चलता ही जाए, चलता ही जाए और बस चलता ही जाए। फिलहाल तो गीतों के सिलसिले को शुरू करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं ये गीत।

ईश्वर हम सभी की दुआओं को यूं ही कबूल करता रहे और हम दूसरों के काम हमेशा आते रहे। अच्छा श्रुतो, आजकल न जाने क्यों, जैसा कि हमने अभी जिक्र किया कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे कल्चर से विदेशी जो हैं वो प्रभावित हो रहे हैं और उसको अपना रहे हैं, और लेकिन न जाने क्यों हमारे ही अपने देश के निवासी अपने रीति रिवाजों को और इन भावनाओं को दरकिनार कर रहे हैं, महत्वहीन बनाते जा रहे हैं। उन्हें इस सब से कोई मतलब नहीं कि आशीर्वाद के क्या मायने हैं, दुआओं के क्या मायने हैं या बददुआओं के भी क्या मायने हैं। और शायद इसीलिए वे ना तो अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं, ना केवल बड़ों का, भाई वो तो अपने घर के बुजुर्गों का भी सम्मान नहीं करते, और ना ही किसी के रोई हुई चेहरे पर, रोते हुए चेहरे पर, उदास चेहरे पर मुस्कान की वजह बनते हैं।

हमें लगता है शायद इसी सब की देन है ये आजकल जगह जगह बनते हुए अनाथालय और वृद्धाश्रम। आपको क्या लगता है? चलिए, अच्छा दूसरी वजह ये भी है कि कुछ व्यक्ति तो इतने ज़्यादा व्यस्त हैं कि दुआएं, बददुआएं, आशीर्वाद इन सब के लिए उनके पास समय ही नहीं है। वो अगर किसी की मदद करना के लिए सोचते भी हैं तो उन्हें लगता है कि अरे ये तो समय की बर्बादी है, भला इसकी मदद करके मुझे क्या हासिल होगा। तो कुछ ऐसी सोच भी बहुत से व्यक्तियों की है, उनके नज़र में बेस्ट विशेष जो होती हैं, अच्छी जो दुआएं होती हैं, जो आशीर्वाद होते हैं वो कुछ है ही नहीं। लेकिन हमें ये लगता है श्रोताओं की, अगर आपने अपने जीवन में ये बेस्ट विशेष यानी कि ये अच्छी दुआएं, ये आशीर्वाद ये नहीं कमाया, किसी के चेहरे की मुस्कान की वजह नहीं बने आप, तो बताइए भला क्या कमाया आपने? फिलहाल आरवी सिंह जी हैं, शाहजहांपुर से हैं, नगर पंचायत अल्लाहगंज। कुछ लिखा तो नहीं है, बस आज के विषय की प्रशंसा की है और बधाई दी है, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। लेकिन अगर आप कुछ आज के विषय से जुड़ा लिखते तो हमें और खुशी होती। चलिए प्रवीण चौहान जी से मिलते हैं, ये क्या कहते हैं, ये लिखते हैं, मम्मी पापा का आशीर्वाद तो हर पल हर कदम पर हम सभी के साथ रहता है। मैंने अपनी दादी के आशीर्वाद को सच में महसूस किया है। मैंने ये भी महसूस किया है कि जब कोई अपना हमें छोड़कर चला जाता है तो उसके जाने के बाद भी उसकी एक अदृश्य शक्ति हमारे आसपास बनी रहती है जो हमें संभाले रखती है, और सच्चे दिल से की गई दुआ कभी भी खाली नहीं जाती, वो देर से ही सही पर अपना असर जरूर दिखाती है। मैंने मंदिर में भगवान से अपने परिवार की अच्छी सेहत के लिए खूब दुआएं मांगी हैं और मैंने उनका असर अपनी जिंदगी में देखा भी है।

फेसबुक के माध्यम से आज हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं जिसका नाम है आपकी बात आकाशवाणी के साथ। आपके कमेंट्स हम लाइव शामिल कर रहे हैं। अभी भी मौका है, आज के विषय से जुड़े आपके जो अनुभव हैं आप हमसे साझा कर सकते हैं। तो तिगड़ी कस्बा शीशगढ़ से जानते हैं ये हमारे कौन से श्रोता हैं। आप हैं शाहरुख खान, अरहम बाबू और किशवानूर, क्या लिखते हैं ये जी। बिल्कुल महसूस किया है, मेरे लिए मेरी माँ की दुआ बहुत कामयाब है। मेरे लिए मेरी माँ की दुआ हमेशा कामयाब है और वो हमेशा मेरे साथ हैं। मैं जब भी परेशान होता हूँ अपनी माँ से कहता हूँ, माँ मुझे परेशानी है या दुख है, बस माँ मेरे लिए दुआ करती है और मुझे फिर जो सुकून मिलता है वो मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। माँ बाप अपनी औलाद के लिए बहुत कुछ करते हैं मगर अफसोस हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाते। साथ में लिखते हैं कि तो कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी है, ये गीत हमें सुनवा दें। गीत हम आपको ज़रूर सुनवाएंगे। और आपने बहुत अच्छी बात कही है कि माता पिता के लिए जो है वो अपनी संतान के लिए हमेशा जीवन भर अच्छी दुआएं ही करते हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसा नहीं होता कि हम बहुत परेशान होते हैं, किसी बात से बहुत दुखी होते हैं, हर जगह घूमाते हैं लेकिन वो सुकून नहीं मिलता। बस उस बात को जब अपनी माँ से शेयर करते हैं, अपनी माँ के साथ शेयर करते हैं या दुखी होकर उनके गले लग जाते हैं या गोद में सर रख कर लेट जाते हैं, फिर माँ का वो नर्म हाथ जब हमारे सिर को सहलाता है फिर क्या होता है, जादू है ना। ऐसा लगता है कि उस पर के लिए सारी परेशानियां, सारे दुख न जाने कहाँ चले गए। हालांकि वो दुख यूं ही रहते हैं, जाते कहीं नहीं है क्योंकि हमें उसके लिए तो खुद से प्रयास करना होगा, लेकिन उस समय ऐसा लगता है कि माँ का जो वो प्यार भरा आशीर्वाद, माँ का वो प्यार भरा हाथ हमारे सिर पर होता है, तब ये लगता है कि दुख आधे कम हो गए हैं। वाकई में उस समय का जो सुकून है उसे बयां करना मुश्किल हो जाता है। और लाल मोहम्मद अंसारी जी लिखते हैं, आप जो है करेली पुरानी मस्जिद बरेली से हैं, आपके साथ हैं लालू मिस्त्री अंसारी। आप लिखते हैं दुआओं का असर होता है।

है और बददुआओं का भी होता है। अगर आप सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और अचानक आपका कहीं नुकसान हो जाए तो समझ लीजिए कि बददुआ का असर है। और अगर आपका नुकसान होते होते बच जाए तो मान लीजिए कि किसी की दुआ का ये असर है। अच्छा और बुरा व्यक्ति खुद समझ लेता है कि ये दुआ है या बददुआ। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें, किसी का दिल ना दुखाएं, ईश्वर पर भरोसा रखें। बिल्कुल लाल मोहम्मद अंसारी जी, आपने सही बात कही कि हर व्यक्ति ये खुद समझता है, खुद जानता है कि उसके साथ उसके जीवन में जो अच्छा हो रहा है वो दुआओं का नतीजा है या जो बुरा हो रहा है वो बददुआओं का नतीजा है, क्योंकि वो जानता है कि उसने किस व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करके दुआएं कमाई हैं या बुरा बर्ताव करके बददुआएं कमाई हैं।

इसके बाद अनोखे लाल जी के विचारों को जान ले। चलिए जानते हैं। ये लिखते हैं, हम किसी परेशानी में होते हैं तो अपने बड़ों को याद करते हैं, उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहता है। आपका चांद का पुराना शहर बरेली से हैं। इसके बाद विनोद नारायण कुशवाहा, हीरामन बाबा रेडियो श्रोता संघ तहसील ईसागढ़ जिला अशोकनगर मध्य प्रदेश से हैं। विनोद नारायण जी इनके साथ हैं, कुशवाहा ऋषि नारायण कुशवाहा, और लिखते हैं, आज का विषय बहुत सुंदर है। जब हम किसी मुसीबत में हों और अपने ईश्वर से हम दुआ प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान हमें इस परेशानी से बाहर निकालो, और हमारे दोस्त रिश्तेदार भी दुआ करते हैं, तो उन सबकी प्रार्थना से जिस मुसीबत में हम थे काफ़ी हद तक वो मुसीबत कम हो जाती है, और यही हमने प्रत्यक्ष देखा है। इसका भी हमें एहसास होता है, और हमारे लिए ये ऐसी ही दुआएं हमारे दोस्तों की रंग लाई। इसके बाद सुनील जी हैं, कहाँ से हैं? आप हैं ग्राम पंचायत बाकरगंज तहसील फरीदपुर पानी टंकी के पास से। ये लिखते हैं, सुनील बाबू हैं, इनके साथ सुनील एंड सन्स भी हैं। ये लिखते हैं, जी हाँ, दुआओं और आशीर्वाद की शक्ति को मैंने कई बार महसूस किया है। मैं किसी की बददुआ नहीं लेता और दिल से ईश्वर का स्मरण करता हूँ। इसी वजह से एक हफ्ते में पहले मेरी सिलाई की दुकान में 25 वर्ष के कार्यकाल में पहली बार गलती हुई, जिसमें शाम के वक्त प्रेस का स्विच ऑन रह गया था, जो पूरी रात ऑन रहा, जिसकी वजह से प्रेस का कपड़ा दड़ी प्लाई बोर्ड जल गया, लेकिन किसी ग्राहक के किसी भी कपड़े में कोई नुकसान नहीं हुआ, जबकि ग्राहकों का

1 लाख रुपए का कपड़ा दुकान में रखा हुआ था। उस समय जब सुबह दुकान खोली तब देखा कि आग भी बिल्कुल समाप्त हो रही थी और इधर उधर फैली ही नहीं थी, जबकि आसपास कपड़ों की कतरन व कपड़े और भी थे और आग रात में अपने आप शांत हो गई। उस दिन मैंने महसूस किया कि मेरे अच्छे कर्म और दुआओं और हनुमान जी की नियमित पूजन करने से बहुत बड़ा नुकसान होने से बच गया। और ऐसा एक बार नहीं, कई बार मेरे साथ हो चुका है कि मेरा एक एक काम ऐसे संभल गए हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था और मैंने उन्हें महसूस किया है। ईश्वर शक्ति और दुआओं का बहुत बड़ा असर मुझ पे रहा है। बस हमारा एक ही निवेदन है कि कोई भी किसी का दिल ना दुखाए तो दुआएं और भाग्य दोनों साथ देते हैं।

तो देखिए अब श्रोताओं, समय नहीं है कि कार्यक्रम को और आगे तक ले जाएं। वैसे आज के आपके जो विचार थे बहुत अच्छे लगे, बस यूं लगता था कि बस और विचारों को शामिल करते जाएं और आप यूं ही अपने विचार हमसे साझा करते जाएं। लेकिन समय सीमा में हम सभी बंधे हैं और उसके अनुरूप ही हमें चलना होता है, और इसीलिए समय का ये इशारा हो गया है कि आज के कार्यक्रम को हम यही सम्पन्न करें। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम से हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे आपकी बात आकाशवाणी के साथ 100.4 एफएम पर। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं और अब एक संक्षिप्त रूपरेखा हमारे केंद्र से आज के शेष कार्यक्रमों की और कल प्रसारित बरेली होने वाले कार्यक्रमों की।

आपसे कुछ ही देर में 5:30 पर नारी संस्थान में चर्चा के विषय रहेंगे अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस और दांतों की सफाई पर दे ध्यान। ये वाणी हमेशा की तरह 6 बजे आप सुन सकेंगे। किसान वाणी में 6:30 पर आज के बाद का विषय रहेगा शरदकालीन गन्ना। साथ ही होगी कृषि गोष्ठी, बाजार भाव, मौसम और कृषि समाचार। ग्राम जगत में आज का विषय रहेगा लाभकारी ग्रामीण उद्यमिता के लिए वैज्ञानिक शुकर पालन। विशेषज्ञ रहेंगे डॉक्टर अमित कुमार। समय रहेगा 7 बजे का। 7:31 पर आपके स्वास्थ्य से जुड़े कार्यक्रम से आपको रूबरू कराएंगे, जिसका नाम है रेडियो हेल्पलाइन।

चार। ग्राम जगत में आज का विषय रहेगा लाभकारी ग्रामीण उद्यमिता के लिए वैज्ञानिक शुकर पालन। विशेषज्ञ रहेंगे डॉक्टर अमित कुमार। समय रहेगा 7 बजे का। 7:31 पर आपके स्वास्थ्य से जुड़े कार्यक्रम से आपको रूबरू कराएंगे, जिसका नाम है रेडियो हेल्पलाइन। कल सुबह 8:15 से शुरुआत करेंगे फिल्मी फ्राइडे के साथ। आपकी पसंद सोशल मीडिया पर आधारित इस कार्यक्रम को आप सुन सकेंगे सुबह 10 बजे। दिन में 1 बजे का समय अनुरोध गीत का रहेगा, जो कि आपके पत्रों पर आधारित कार्यक्रम है। दिन में 3:30 का समय रहेगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का। आपकी बात आकाशवाणी के साथ होगी कल शाम 4 बजे। लकी 3, इस कार्यक्रम में हम लकी 3 श्रोताओं के पत्रों को शामिल करते हैं या उनके कमेंट्स को शामिल करते हैं, और आप इस कार्यक्रम को सुन सकेंगे शाम 5:30 पर। 5:45 पर होगी सामयिक वार्ता, युववाणी सुन सकेंगे शाम 6 बजे। 6:30 पर ग्राम जगत में चर्चा होगी गांव का विकास विषय पर, साथ ही होगा क्षेत्र सकलित कार्यक्रम कृषि पाठशाला। इस कार्यक्रम को हम लेकर आएंगे शाम 7 बजे। 7:31 पर आपके स्वास्थ्य से जुड़ा कार्यक्रम होगा रेडियो हेल्पलाइन।

आपने ट्यून किया है 100.4 FM आकाशवाणी बरेली। रेडियो हेल्पलाइन संबंधित सूचना सुनिए। स्वास्थ्य संबंधी विषय पर होने वाले फोन इन कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन में शनिवार दिनांक 17 अक्टूबर 2026 को सायं 7:31 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है, क्या करें जब जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु ना रोए, शंकाएं और समाधान। इसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे शुक्रवार दिनांक 16 अक्टूबर 2026 को सायं 4 बजे से। इस संबंध में यदि आपका कोई भी प्रश्न हो तो हमें टेलीफोन नंबर 0581251720 पर फोन करें। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे स्टूडियो में बरेली के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप गंगवार उपस्थित रहेंगे। विवरण एक बार फिर सुन लें। विषय रहेगा कि क्या करें जब जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु ना रोए, शंकाएं और समाधान। रिकॉर्डिंग की तारीख और समय याद रखिएगा, शुक्रवार दिनांक 16 अक्टूबर 2026 को सायं 4 बजे से, यानी कि कल सायं 4 बजे से। हमारा टेलीफोन नंबर वही है 0581251720। आप सुन रहे हैं 100.4 FM आकाशवाणी बरेली। समय मिला लीजिए शाम के 5:05 और 10:11 हो गए और ये समय है आपके साथ, जब हम ले चलते हैं आपको भजन संध्या पर। तो भक्तिमय वातावरण बना देते हैं इस देवी गीत के साथ। अनुराधा पौडवाल के स्वर में ये भजन है, हाथ जोड़ के खड़ी मैं तेरे द्वार।

अभी आप सुन रहे थे भजन संध्या। आपने ट्यून किया है 100.4 FM आकाशवाणी बरेली। शाम के 5:30 होने को हैं। और इसी के साथ अनुप्रीता हमारे बीच आ चुकी हैं अपना कार्यक्रम नारी संसार लेकर। तो चलिए अब इनके साथ सुनते हैं कार्यक्रम नारी संसार।

नमस्कार सखियों, स्वागत है आपका आपके अपने प्रिय कार्यक्रम नारी संसार में। मैं हूं आपकी रेडियो हमसफर अनुप्रीता सिंह, लेकर आई हूं आपके लिए आपका प्रिय कार्यक्रम। सखियों, वैसे तो हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान ही है, लेकिन अब हमारे देश में केवल पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी कृषि करती हैं, और आधे से ज़्यादा आबादी हमारी ग्रामीण इलाकों में रहती है। अभी भी 70% लोग ग्रामीण हैं, गांव से जुड़े हुए हैं। लोग बाहर चले भी गए हैं अगर, तो भी वो गांव से ही जुड़े हुए हैं बहनों। और आज है अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, ये हर साल 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बार की जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इसकी थीम है

0: की देखभाल करती ग्रामीण महिला किसान, जो बीज संरक्षण, जैव विविधता की रक्षा, जल प्रबंधन और भूमि पुनर्स्थापना में महिलाओं के योगदान को सम्मान देती है। इसका उद्देश्य कृषि, खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन में ग्रामीण महिलाओं और लड़कियों की अहम भूमिका को पहचानता है। और बहनों, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को, यानी कि इस वर्ष को, अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष भी घोषित किया है। जी, क्या नाम है आपका?
1: मैम, मेरा नाम है नमिता पाठक।
0: नमिता जी, कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं ग्राम सरकड़ा से बोल रही हूँ।
0: नमिता जी, आज है अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान दिवस।
1: यस मैम।
0: तो मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि क्या आप कृषि करती हैं?
1: जी हाँ, मैं करती हूँ।
0: मतलब आप भी एक महिला किसान हैं?
1: मैं महिला किसान हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है। आपके घर में भी फिर तो खेती किसानी होती होगी?
1: हाँ, घर में भी होती है, उसमें हेल्प भी करती हूँ मैं।
0: अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, किसानी में जैसे कि आप बता रही हैं आप कृषि करती हैं, तो आप क्या कौन कौन सी फसल होती हैं?
1: वही गेहूं, धान, रबी की फसल, खरीफ की फसल।
0: जी, तो इनके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगी, ये कब कब होती हैं?
1: ये जो खरीफ की फसल होती है मैम, धान वाली, ये
0: जी
1: तो अब आ चुके हैं धान घर पे, इसकी तो एंड टाइम ही है। इसके बाद अब जो होगी वो रबी की फसल होगी।
0: तो इनमें जो है, अब जैसे धान कट के आ चुके हैं, है ना,
1: हाँ,
0: अब जो अगली फसल होगी उसमें और इसमें कितना बीच में अंतर रहता है?
1: मैम रहता है 4-5 महीने का।
0: तो उस बीच खेतों में क्या होता है, खेत खाली रहते हैं?
1: नहीं, उस बीच गन्ना करा लो, गन्ने की फसल।
0: अच्छा, मतलब उसके, ये जो हमारी दोनों फसलें होती हैं, गेहूं की और धान की, उसके बीच में भी कोई ना कोई फसल आप लोग कर ही लेते हैं?
1: कर ही लेते हैं, मतलब खेत खाली नहीं रहता है।
0: अच्छा नमिता जी, आपको खेती किसानी में इंटरेस्ट है?
1: हाँ है मैम।
0: अच्छा लगता है आपको किसानी करना, कृषि
1: हाँ
0: करना?
1: यस।
0: तो आप किस तरह से करती हैं, क्या क्या करती हैं?
1: उसका ध्यान रखते हैं टाइम टू टाइम पर, उससे खाद, बीज, पानी, सिंचाई की व्यवस्था, ये सब देखना होता है।
0: परिवार की, जो अभी आपने बोला था कि आप परिवार की मदद भी करती हैं खेती में, तो वो किस तरह से करती हैं, क्या करती हैं?
1: परिवार की मदद मैम, जैसे खाद वगैरह लानी है, ये सब साथ में बाई चांस जाना भी पड़ जाता है। जैसे फसल कटवाने वगैरह, जब अपने आप से करोगी, इंटरेस्ट है अपने आप से, तो जाना भी पड़ेगा।
0: आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, धन्यवाद। बहनों, अभी आपने सुनी हमारी ये छोटी सी भेंट वार्ता। मैं बात कर रही थी नमिता पाठक जी से, और ये है एक महिला किसान।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है। पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: खेती में मेहनत के साथ समझदारी से जमीन का इस्तेमाल भी जरूरी है। सोचिए, एक ही खेत में गन्ना लगा है, क्या इसी के साथ सरसों की फसल भी उगाई जा सकती है? बिल्कुल, और इसी तकनीक का नाम है सह फसली खेती।
0: गन्ने की कतारों के बीच सरसों की फसल उगाकर जमीन का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी जमीन वही, खेती का तरीका समझदार।
1: इससे किसान को कम समय में अतिरिक्त उपज और आय का और अवसर मिल सकता है।
0: तो एक फसल पर निर्भर न रहें। गन्ने के साथ सरसों की सह फसली खेती के लिए सरसों के बीज कृषि विभाग से निशुल्क प्राप्त करें।
1: किसान वही, खेत वही, बस सोच में एक नया कदम।
0: कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
2: सखियों, आज का जो हमारा सवाल है वो है कि इस बार महिला ग्रामीण दिवस की थीम क्या है। सखियों सवाल सुन लीजिए, इस बार ग्रामीण महिला दिवस की थीम क्या है? सोचिए सोचिए सखियों, तब तक मैं आपको सुनवाती हूँ एक प्यारा सा गीत।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है, पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: खेती में मेहनत के साथ समझदारी से जमीन का इस्तेमाल भी जरूरी है। सोचिए, एक ही खेत में गन्ना लगा है, क्या इसी के साथ सरसों की फसल भी उगाई जा सकती है? बिल्कुल, और इसी तकनीक का नाम है सह फसली खेती।
0: गन्ने की कतारों के बीच सरसों की फसल उगाकर जमीन का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी जमीन वही, खेती का तरीका समझदार।
1: इससे किसान को कम समय में अतिरिक्त उपज और आय का और अवसर मिल सकता है।
0: तो एक फसल पर निर्भर न रहें, गन्ने के साथ सरसों की सह फसली खेती के लिए सरसों के बीज कृषि विभाग से निशुल्क प्राप्त करें।
1: किसान वही, खेत वही, बस सोच में एक नया कदम।
0: कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
2: सुनती हो, कमाल ही हो गया।
3: क्या हो गया ऐसा?
2: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया।
3: ये कमाल कैसे हो गया?
2: मैंने www.pgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोल कर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन हुआ।
3: ये तो बहुत बढ़िया पोर्टल है।
2: 22 भारतीय भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और प्राथमिकता का अनुभव पाएं, जैसे हमने पाया। सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
4: सखियो, अभी मैंने आपसे सवाल किया था कि इस बार महिला ग्रामीण दिवस जो मनाया जा रहा है, इसकी थीम क्या है। तो आप सोचते रहिए, साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि हमें अपने दांतों पर भी ध्यान देना चाहिए, उनकी सफाई लगातार करनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे दांत होते हैं वो हमारी खूबसूरती का एक अहम हिस्सा होते हैं। जब हम हंसते हैं तो अगर हमारे दांत साफ सुथरे हैं, एक से हैं, तो वो हमारी हंसी में चार चांद लगा देते हैं। साथ ही दांत ऐसी चीज है जिसके बिना कितना भी अच्छा खाना हो उसका स्वाद फीका ही रहता है। जब तक खाना दांतों से ना चबाया जाए, जब तक कोई चीज दांतों से काट कर ना खाई जाए, उसका स्वाद आधा ही रहता है। इसीलिए हमें अपने दांतों पर पूरा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारी खूबसूरती हमारे दांतों से भी है।

0: मेहनत के साथ समझदारी से जमीन का इस्तेमाल भी जरूरी है। सोचिए, एक ही खेत में गन्ना लगा है, क्या इसी के साथ सरसों की फसल भी उगाई जा सकती है? बिल्कुल, और इसी तकनीक का नाम है सह फसली खेती।
1: गन्ने की कतारों के बीच सरसों की फसल उगाकर जमीन का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी जमीन वही खेती का तरीका समझदार।
0: इससे किसान को कम समय में अतिरिक्त उपज और आय का और अवसर मिल सकता है।
1: तो एक फसल पर निर्भर ना रहें, गन्ने के साथ सरसों की सह फसली खेती के लिए सरसों के बीज कृषि विभाग से निशुल्क प्राप्त करें।
0: किसान वही खेत वही, बस सोच में एक नया कदम।
1: कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है, पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: सखियों, मैंने आपसे सवाल किया था कि अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस की इस बार की थीम क्या है, तो बहनों मैं आपको देती हूँ इसका जवाब। इसकी थीम है प्रकृति की देखभाल करती ग्रामीण महिला किसान। और सखियों, अब

अभी आप सुन रहे थे नारी संसार, आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। शाम के 6 बजे हैं और अब समय हो चला है कार्यक्रम युववाणी का।

नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दोस्तों का प्रोग्राम युववाणी में। और आज आपके साथ हूँ मैं, आपकी अपनी रेडियो दोस्त माधुरी। साथियों, प्रोग्राम में आइए सबसे पहले जानते हैं कि आज क्या खास है। तो आज है दोस्तों इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस। और इसके अलावा है आपका फेवरेट सेगमेंट ओए लक्की। तो अगर आप बनना चाहते हैं आज के प्रोग्राम के ओए लक्की विनर, तो कीजिए कमेंट हमारी युवाणी की पोस्ट पर और टाइप कीजिए अपनी पसंद का सॉन्ग। फिलहाल कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस पर। साथियों, इस दिवस को मनाने की शुरुआत सन 2008 में की गई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को उनके अधिकार, शिक्षा और सुरक्षा दिलाना है। तो ये थी बातें इस दिवस की, और आइए सुनते हैं।

0: ये प्यारा सा गीत।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun.

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है। पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमने आपसे पूछा था कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं, तो इसका सही उत्तर है 2। और हमारे सही जवाब देने वाले श्रोता हैं राय सिंह, दिनेश वर्मा, हरीश वर्मा, विष्णु मिस्किन, प्रवीण चौहान और राजेश वर्मा। तो ये था सवाल और जवाब। और दोस्तों, आइए अब आपको जोड़ते हैं युवा छात्रा से की गई इस खास बातचीत से। आपका नाम?
2: अर्पिता पाठक।
1: जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या करती हैं?
2: मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, मैं BMS कोर्स कर रही हूँ अभी।
1: जी, क्या होता है इस कोर्स में?
2: इस कोर्स में बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में बताया जाता है।
1: जी, तो आप इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हैं या फिर और कोई सपना है आपका?
2: नहीं, मुझे इसी फील्ड में आगे बढ़ना है। इस फील्ड में काफी चीजें जानने के बारे में पता चलती हैं हमें। अब इकोनॉमी के बारे में पता चलता है और बिजनेस वगैरह के बारे में पता चलता है कि हम सोसाइटी में कैसे रह सकते हैं, और कम्युनिकेशन स्किल्स भी हमारी बेटर होती हैं बहुत इससे।
1: अच्छा, अगर कोई हमारा युवा साथी है और इस कोर्स में आना चाहता है तो कैसे आ सकता है?
2: इस कोर्स के लिए उसको 12th पास होना चाहिए और वो किसी भी स्ट्रीम से उसका 12th होना चाहिए। कोई भी स्ट्रीम का बच्चा ये कोर्स कर सकता है और उसको इंटरेस्ट होना चाहिए इस सब में। और ये एक प्रोफेशनल कोर्स है तो थोड़ी उसकी इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए। अगर ये अच्छी जगह से करना चाहे तो ये हमारे यहाँ पे जो रोहिलखंड यूनिवर्सिटी है वहाँ से भी कर सकते हैं, जहाँ पे अच्छे टीचर्स वगैरह भी प्रोवाइड होते हैं, वहाँ से करने में ज्यादा बेटर रहेगा ये कोर्स।
1: जी जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है। जी, तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि अगर ये कोर्स कर लिया जाता है तो करियर की क्या क्या संभावनाएं रहती हैं?
2: ये कोर्स करने के बाद अगर आपको और आगे बढ़ना है तो आप MBA करके कहीं पे भी मैनेजर वगैरह या अच्छी पोस्ट पे जाके कर सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ BMS करने के बाद किसी अच्छी कंपनी में ही जॉब करनी है तो वहाँ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और यूनिवर्सिटी वाले कंपनीज वगैरह भी लाते हैं जो हमें हायर करने के लिए आती हैं, तो इससे किसी भी अच्छी कंपनी में हम जॉब कर सकते हैं जहाँ पे हाई पैकेज पे हमें वो लोग रख सकते हैं अपने पास।
1: जी जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। तो आपकी हॉबीज क्या क्या हैं?
2: मेरी हॉबीज वैसे तो कुकिंग है, टीचिंग भी है और डांसिंग भी है।
1: जी जी, आपने बताया डांसिंग आपकी हॉबी है, तो आपको कौन सा डांस अच्छा लगता है, जैसे क्लासिकल डांस है या कोई और तरीके का डांस?
2: क्लासिकल डांस ज्यादा बेटर रहता है।
1: जी जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप पढ़ाई भी कर रही हैं उसके साथ साथ डांसिंग से भी जुड़ी हुई हैं। आपको क्या लगता है कि हमारे जो युवा साथी हैं सोशल मीडिया में ज्यादा लगे रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे ऐसे युवा साथियों को?
2: सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपके पास स्किल्स हैं या आपके हॉबीज अच्छी हैं तो आपको बहुत फायदा दे सकता है। लेकिन अगर आप अपनी पढ़ाई छोड़ के सिर्फ अगर इसी पे ही ध्यान देते हैं तो वो चीज भी ठीक नहीं है ज्यादा। कि अगर आपको सिर्फ एज अ हॉबी के लिए सोशल मीडिया को यूज करना है या फिर अपनी पढ़ाई से रिलेटेड ऐसे यूज करना है तो वो बहुत अच्छा है। लेकिन अब आप ये सोचें कि आप अपनी पढ़ाई को बिल्कुल छोड़ के सिर्फ इंटरनेट पे ही रहें तो वो भी इतना अच्छा नहीं रहता है। वो एक साइड हॉबी के एज उससे हम कर सकते हैं कि हम अपनी पढ़ाई के साथ साथ वो चीज कर लें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम पढ़ाई छोड़ के सिर्फ अपना इंटरनेट पे ही रहें पूरे टाइम, तो वो चीज हमारे लिए अच्छी नहीं रहेगी।
1: जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बातें आपने की हैं और उम्मीद है हमारे श्रोताओं को भी समझ में आएंगी और पसंद भी आएंगी। तो और ऐसी कोई बात या ऐसा कोई मैसेज जो आप देना चाहें?
2: जिनका 12th हो चुका है तो वो अपने इन फ्यूचर के लिए अच्छा बनाकर रखें, और जिनका 12th नहीं हुआ है तो वो अभी इंटरनेट वगैरह पे ज्यादा फोकस ना करके सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें ताकि उनकी आगे का जो भी होगा तो वो अच्छे से ही जाए। क्योंकि इंटरनेट तो वो हम लोग बाद में भी देख सकते हैं, पहले हमारी पढ़ाई ज्यादा इम्पोर्टेंट रहती है तो उस पर ज्यादा अच्छे से ध्यान दें वो लोग अभी।
1: कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और आकाशवाणी बरेली से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: थैंक यू।

0: खेती में मेहनत के साथ समझदारी से जमीन का इस्तेमाल भी जरूरी है। सोचिए, एक ही खेत में गन्ना लगा है, क्या इसी के साथ सरसों की फसल भी उगाई जा सकती है? बिल्कुल, और इसी तकनीक का नाम है सह फसली खेती।
1: गन्ने की कतारों के बीच सरसों की फसल उगाकर जमीन का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी जमीन वही खेती का तरीका समझदार।
0: इससे किसान को कम समय में अतिरिक्त उपज और आय का और अवसर मिल सकता है।
1: तो एक फसल पर निर्भर न रहें, गन्ने के साथ सरसों की सह फसली खेती के लिए सरसों के बीज कृषि विभाग से निशुल्क प्राप्त करें।
0: किसान वही खेत वही, बस सोच में एक नया कदम।
1: कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है। पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: खेती में मेहनत के साथ समझदारी से जमीन का इस्तेमाल भी जरूरी है। सोचिए, एक ही खेत में गन्ना लगा है, क्या इसी के साथ सरसों की फसल भी उगाई जा सकती है? बिल्कुल, और इसी तकनीक का नाम है सह फसली खेती।
2: गन्ने की कतारों के बीच सरसों की फसल उगाकर जमीन का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी जमीन वही, खेती का तरीका समझदार।
1: इससे किसान को कम समय में अतिरिक्त उपज और आय का और अवसर मिल सकता है।
2: तो एक फसल पर निर्भर न रहें। गन्ने के साथ सरसों की सह फसली खेती के लिए सरसों के बीज कृषि विभाग से निशुल्क प्राप्त करें।
1: किसान वही, खेत वही, बस सोच में एक नया कदम।
2: कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
3: साथियों, आइए अब आपको जोड़ते हैं सेगमेंट ओए लकी से, और हमारे आज के ओए लकी विनर हैं सुदर्शन शाह।

ये आशिकी का राज है मेरा टाली हो टाली हो टाली हो। बार बार देखो हजार बार देखो कि देखने की चीज है हमारा दिल।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों, आज इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर्स कॉर्प्स डे भी है। यह दिन भारतीय सेना के उन तकनीकी योद्धाओं को समर्पित है जो सेना के वाहनों, मशीनों, उपकरणों की देखभाल करते हैं। और दोस्तों, ईएमई की स्थापना सन 1943 में हुई थी। तो ये थी कुछ बातें इस दिवस की, और आइए आनंद लेते हैं प्रोग्राम की इस आखिरी पेशकश का।

माधुरी लोधी के साथ आप अभी सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। समय मिलाइए शाम के 6:30 और 5 सेकंड हुए हैं। ये समय है किसान वाणी का।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहे
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी है? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ,
2: पर अब तो सभी डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूँगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
4: कार्यक्रम किसान बाड़ी सुन मारे सब भैया बहनन को आपकी बहन पूनम
5: और भैया रघु की
4: राम राम।
5: तो पूनम बहन, आज तो अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान दिवस है, तो हम कह रहे हैं कि धोती उती कतई नई पैर के आई हूँ।
4: अरे भैया पैर के आवंगे, देखना रहे आज तो हमारो ही दिन है, यानी कि हमारी

0: बहनन को दिन है।
1: बिल्कुल, आपको दिन है, आपकी बहनन को दिन है, और जो बहनें खेती में सहयोग कर रही हैं, खेती के काम में हाथ बटा रही हैं, देखो अगर कही जाए तो घर परिवार में पूनम बहन सबे बहनन को सहयोग होता है।
0: हाँ
1: मान लो खेत पर ना जाती हैं तो खेत से जो अनाज आता है तो बाको छार फटक कर रखती हैं।
0: हाँ भैया, वो तो रखने पड़ता है। और भैया देख रहे हो आप कि अब कैसो मौसम है। हमारे भैया बहनन के जो धान है, कुछ लोगों के तो उठ गए हैं, लेकिन कुछ भैया बहनन के अब ही रह गए हैं।
1: तो भैया देखो धीरज रखें और धैर्य से अपनो काम करें, जो उठ सकते हैं उनको उठा लें, और जो फिर बाद में हैं तो फिर बहुत जैसी भगवान की मर्जी। तो पूनम बहन सवाल का है आज को।
0: भैया आज को सवाल है, किस साल को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया गया है?
1: अरे पूनम बहन, सवाल भी आपने ऐसो पूछो है कि जाको उत्तर भैया आप ढूंढन लागेंगे, और बाद में जो कार्यक्रम है बाकी अंत में आप भी जो सवाल को मिलान कराती हो तो मिलान करवाओगी। देखो पूनम बहन, आप सवाल तो पूछिए लो, भैया बहन लाग गए होंगे अपनी कसरत में। देखो आज है 15 तारीख और वैज्ञानिक बताते हैं 15 अक्टूबर से बुवाई शुरू कर सकते हैं।
0: हाँ भैया, हमारे जो भैया बहनन के खेत सूख गए होंगे, जैसे जिनके खेतन में पानी ना भर हो, जिनके ऊंचे के खेत है, वे लोग तो आसानी से लगा सकते हैं जगन्नाथ की फसल को, है ना।
1: बिल्कुल, और जा है कि जिनके खेतन में यूं उठा जाएगी तो वे बोनी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी अच्छी बात तो जा है पूनम बहन, शरतकालीन गन्ना की एक विशेषता है कि जाके संग सहफसली खेती भी कर सकते हैं।
0: अच्छा भैया, तो हमारे भैया बहनन को जामे डबल फायदा होता है ना।
1: डबल फायदा जो ही जाते पूनम बहन, जो गन्ना की लागत आती है बस दूसरी फसल से निकल जाती है, गन्ना अपनो फ्री हुई जाते हैं।
0: हाँ
1: मगर जा है कि दो चार बातन को ध्यान रखने हैं भैया बहनन को। एक तो जैसे वैज्ञानिक विधि है ट्रेंच विधि से बुवाई करें, दूसरी बात जा है कि प्रजाति को चयन सही से करें,
0: हाँ
1: अच्छी प्रजाति होगी तो अच्छी जमौनी होगी, और तीसरी बात जो है पूनम बहन कि गन्ना की बुवाई से पहले बीज को उपचारित कर लें।
0: हाँ बिल्कुल सही कहे भैया आपने। अगर इस तरीका से हमारे भैया बहन जो है ना, वो अपनी गन्ना की फसल लगावेंगे, तो हमें उम्मीद है उनकी अच्छी होगी।
1: तो पूनम बहन जा तो रही शरतकालीन गन्ना की बुवाई की बात, अब आगे का सुनवा रही हूँ अपने भैया बहनों को।
0: अरे आगे अपने भैया बहन को सुनवा रहे हैं कृषि गोष्ठी। आज को विषय है ग्रामीण महिलाओं का खेती में योगदान। आज की हमारी मेहमान है मिथिलेश कुमारी, शारदा देवी और राजकुमारी। इन बहनों से बात करिए हमारे भैया रघु ने, तो सुन लेते हैं इनकी जानकारी।
1: किसान साथियों नमस्कार। किसान साथियों आज है अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान दिवस। आज इस विशेष अवसर पर हमने अपने स्टूडियोज में आमंत्रित किया है महिला किसानों को। तो आज हमारे साथ महिलाएं जुड़ी हैं, हम एक एक करके सबसे परिचय जानेंगे। आपका क्या नाम है?
2: हमारा नाम है मिथिलेश कुमारी।
1: मिथिलेश कुमारी जी, कहाँ से, कौन से गांव से आई हैं आप कार्यक्रम में?
2: हम गांव ओंद से आए हैं।
1: जिला
2: बरेली।
1: अच्छा, और आपका क्या नाम है?
3: हमारा नाम है शारदा मौर्य।
1: शारदा मौर्य जी, आप कहाँ से आई हैं?
3: हम आए हैं गांव बल्ला कोठे से।
1: बल्ला कोठा,
3: जिला बरेली।
1: जिला बरेली से। और आपका क्या नाम है?
4: हमारा राजकुमारी नाम है
1: जी। आप कहाँ से आई हैं?
4: हम शिवगंज बरेली से आए हैं, खलीलपुर गौटिया से।
1: आप तीनों महिला किसान बहनों का स्वागत है कार्यक्रम कृषि गोष्ठी में। अब बात करते हैं हम शारदा जी से। शारदा जी, कब से खेती बाड़ी का काम कर रही हैं आप?
3: बहुत समय से कर रहे हैं, मतलब जब से शादी हुई है तो हमारे ससुराल में काम होता, तो जब से सहयोग कर रहे हैं।
1: जब से खेती में सहयोग कर रही हैं।
3: हाँ।
1: तो हम जानना चाहेंगे कौन कौन सी खेती होती है आपके?
3: हमारे घर पे तो मतलब धान बह जाते हैं और गेहूं बह जाते हैं।
1: धान और गेहूं बह जाते हैं। तो इस समय धान की कटाई होगी?
3: धान की कटाई कुछ दिन की ही गई है, कुछ अभी रह गए, उनमें पानी भर गया, अभी बारिश बहुत हुई है। तो
1: बारिश हो जाने से पानी भर गया, जा चक्कर में अभी कटाई ना कर पाई।
3: हाँ।
1: तो किस तरह से आप सहयोग करती हो अपने परिवार का खेती बाड़ी में?
3: जल्दी उठे, खाना उना बनाओ और अपने बच्चन के लिए स्कूल भेज दो, और सब औरतन के लिए लेकर 8 बजे के टाइम खेत पे चले गए तो वे औरतन से ले जाकर और सब लोगों को मिलकर धान अपने कटवा ले।
1: अच्छा।
3: पति को हमारे काम हो जैसे वेस्ट न हो तो।
1: हाँ।
3: और जब ऐसा काम हम कर लेते घर पे।
1: जैसे माना जाता है कि एक पुरुष खेती कर सकता है, तो आप चूंकि महिला हो, आप तो काम कर भी रही हो, करा भी रही हो, तो आपको कैसा लगता है कि महिलाएं और अच्छा काम कर सकती हैं खेती में?
3: हाँ, खेती में पानी वगैरह लगता बात से थोड़ी दिक्कत ही जाती है, जैसे अंगन वगैरह जैसे हमारे आता है जिसके खेतन में समरसेबल है, ट्यूबवेल है, तो कोई दिक्कत ना है, आराम से महिला अपनी खेती कर सकती है
1: जी। तो आपके साथ कितनी महिलाओं ने धान की कटाई

0: कटाई कराई?
1: पांच।
0: तो लगभग एक दिन में कितनी कटाई आप कर लेती थी?
1: चार लोग, दो बीघा खेत एक दिन में आराम से काट लेता।
0: इस वर्ष को भी अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया गया है 2026 को। मिथिलेश जी, आपकी आयु क्या है इस समय?
2: हमारी आयु है 43 वर्ष।
0: आप कब से खेतीबाड़ी का काम कर रही हैं?
2: शादी के ही समय से हो रही है खेतीबाड़ी।
0: शादी को कितने साल हो गए आपकी?
2: शादी को हो गए 25वीं साल चल रही है शादी।
0: कौन कौन सी खेती होती है?
2: गन्ने की खेती होती है, गेहूं की खेती होती है, धान की खेती होती है।
0: अच्छा, सभी तरह की फसलें करती हैं?
2: हाँ, सभी तरीका की फसलें होती हैं।
0: तो आप किस तरह से खेती में सहयोग करती हैं?
2: साथ जाता है, खाना उना दिलवा लाता है, वहाँ बंधवा देते हैं, कटवा भी देते हैं साथ में जाकर।
0: तो कैसे अपने घर के कामों के साथ कैसे समय निकालती हैं खेती के लिए, क्या दिनचर्या रहती है?
2: सुबह ही 4 बजे से उठना, फिर जानवर भी है उनको सबको कुट्टी उट्टी डालना, उनका दूध निकालना, सभी करके काम निपटा, बच्चों को स्कूल भेजना, उसके बाद 8 बजे के टाइम जाते हैं साथ।
0: धान की फसल में काम किया था आपने?
2: खेती में पानी है, अभी निकल नहीं पाया, इस वजह से कटाई रुकी हुई है।
0: तो जब धान की कटाई हो जाएगी तब अगली फसल की तैयारी? हाँ, करेंगे।
2: अगली फसल की तैयारी होगी, लाई की, लैटा आए, उसके बाद गेहूं की।
0: खेती में सहयोग करना, परिवार काम में हाथ बटाना, ये बहुत अच्छी जिम्मेदारी की बात है। अब हम बात करते हैं राजकुमारी जी। कुमारी जी, जैसे आपने परिचय में बताया था कि आप साग सब्जी करती हैं, किस तरह से साग सब्जी बोती हैं, कैसे उसकी देखभाल करती हैं?
3: थोड़ी जगह है, उसी में जमीन तो है ना हमारी, तो उसी में हम साग बोले, धनियो मेथी सब चीज बोले था, उसी में हम कहीं जाते उते ना, घर में रहते हैं।
0: तो जैसे साग बोती हैं आप, तो साग बोने के बाद भी तो उसमें कई काम होते हैं, नराई करनी होती है, खाद पानी लगाना होता है, उसकी देखभाल कैसे करती हैं?
3: तो उसकी देखभाल हम ही करते हैं।
0: क्या क्या बोया हुआ है आपने?
3: पालक, मेथी, थोड़ी थोड़ी दो दो ग्रेन में है।
0: अच्छा, जैसे इसको बोने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, ये हम जानना चाह रहे हैं।
3: जगह को साफ करना पड़ता है, साफ करके क्यारी बांध के फिर बीज लाने पड़ता है, वो उसमें पानी उनी लगाने पड़ता है, खाद भी लगाने पड़ता है।
0: क्यारी अपने आप बना लेती हो?
3: हाँ, अपने आप बना लेता हम।
0: मैं बीज कहाँ से लाती हो?
3: दुकान पर से लाता हूँ बीज।
0: तो अच्छा बीज कैसे ले, उसके लिए क्या चीज ध्यान रखती हो?
3: अब वो तो जमियाओ ना भाई, फिर बेकार भी निकल जाता है।
0: अच्छा अच्छा।
3: हाँ,
0: तो अगर बीज बेकार निकल जाता है फिर क्या काम करना पड़ता है?
3: फिर दोबारा लाके बोते हैं।
0: अच्छा, तो मतलब खेती का काम कठिन भी है, और खेती के काम में ये भी है कभी हार है कभी जीत है। अब बात करते हैं शारदा देवी जी से। शारदा देवी जी, आपने धान की कटाई तो कर ली, अब गेहूं के खेतों की तैयारी करनी है, तो वो कैसे तैयारी करवाएंगी अपने खेतों की?
1: खेतों में पहले तो उनमें मतलब पानी चलाए, अंगन सब खेत पर रह जाता है, फिर उनमें थोड़ी सी ईंट आ जाती है, तभी उसकी जुताई ही कर। तो कुछ लोग ऐसे मशीन से गेहूं बब्बा देता, कुछ लोग ऐसे बखेर का पवेर बब्बा देता, खेतन में अपने अपनी नक्की पड़ जाती है, इस तरीका से गेहूं की तैयारी होगी।
0: तो जैसे आपने धान की कटाई हाथ से कराई है, तो खेत तो साफ हो गए होंगे आपके, या उसमें वो बचा है पराली?
1: जो हाथ से कटे उनमें कुछ भी ना बचे हुआ।
0: तो ये खेतों में तो आप सीधे पानी भरेंगे, उसके बाद जुताई करा देंगे गेहूं की फसल के लिए?
1: हाँ।
0: और जिन खेतों में पानी भर गया उनका कैसे काम होगा?
1: हाँ, दीपावली के टाइम तक थोड़े सही ही जाएंगे, फिर जुताई ही जाएगी एक दो बार, ज्यादा कर तो पानी ज्यादा है सबके खेतन में हमारे इधर तो।
0: अच्छा, आपकी तरफ पानी की समस्या ज्यादा?
1: ज्यादा बहुत समस्या है हमारे यहाँ पे।
0: अनाज जैसे घर पे आता है?
2: हाँ, घर पे आता है। हाँ, तो अभी धान की आई है फसल, तो उसे सुखाना, उसे अंदर डालना, फिर बाहर निकालना, वो सब सारी तैयारी करते हैं, गेहूँ की भी तैयारी करते हैं
0: जी। अनाज का भंडारण आप करती हैं, तो उसमें किन किन बातों का ध्यान रखती हैं? जैसे अनाज खेत से आ गया, फिर क्या क्या काम करने पड़ते हैं उसमें?
2: उसे गंदा धान तो उसे सहलवाने भी हैं, फिर उसे अंदर डालने हैं, फिर उसमें कीड़ा ना लगे उसके दवाई लगाना, उसे ये सावधानी रखनी पड़ती है।
0: बताइए मिथिलेश जी, जैसे पहले हमने देखा था, जब पहले तो गांव में मिट्टी की कुठिया हुई करती थी।
2: जी हाँ।
0: वैसी कुठिया आज भी है या अब दूसरे तरीके से अनाज का भंडारण किया जा रहा है?
2: अब दूसरे तरीका से अनाज का भंडारण किया जाता है, पहले कच्ची कुठिया होती।
0: हाँ।
2: अब पक्की कुठिया आ गई है, टीन वाली।
0: तो कच्ची कुठिया अब किसी के घर में नहीं है?
2: अब गांव में किसी के घर नहीं।
0: और पहले तो उन्हीं कुठियों में डाला करते थे?
2: पहले उन्हीं कुठियों में डालते थे, वो उसमें ना सही रहता था। अब इसमें अगर थोड़ा भी डल जाए टीन वाली कुठिया में, तो इसमें धान दोबारा जमोनिया हो जाती है।
0: कुठिया में डालने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए महिलाओं को?
2: कुठिया में डालने से पहले उसे खूब सुखा ले, फिर उसे ठंडा होने दे बाहर ही पड़े पड़े, उसके बाद ठंडे होने के बाद कुठिया में डाले, तभी सुरक्षित रह पाएंगे, तो दोबारा जमोनिया हो जाएगी।
0: अच्छा, जैसे देखा है गांव में अनाज का भंडारण करते हैं, तो उस समय नीम

0: के पत्ते डाल लेते हैं अनाज के साथ, उससे क्या फायदा होता है?
1: उससे कीड़े नहीं लगते हैं नीम के पत्तों से। गेहूं के ये डाल सकते हैं आप नीम के पत्ते, तो उसमें कीड़ा घुना है या कोई सुंडी वगैरह लग जाती है, कोई पक्की वगैरह लग जाती है, उससे नीम के पत्ते डालने से ये गंदगी नहीं।
0: शारदा देवी जी, आपने बताया कि जिस तरह से आप महिलाओं को साथ लेती हैं, तो आपके गांव में काफी महिलाएं खेतीबाड़ी का काम कर रही हैं?
2: हाँ, सब लोग सब सहयोग कर देते हैं एक दूसरे को। जैसे अब हमारे धान कट गए तो हम जो और दूसरी हैं बिन के कटवाए आता, इस तरीका से मतलब सब औरतें अपने अपने घर में अपनों सहयोग करती हैं और एक दूसरे को करवा देती हैं।
0: तो ये तो अच्छी बात है, और देखिए ये समन्वय की बात है, नहीं तो सारा काम मजदूरों पर ही हो गया है आधारित। जब वो एक दूसरे के साथ काम करती हैं, सहयोग करती हैं, खेती का काम करती हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है?
2: अच्छा महसूस होता है, एक दूसरे से बातचीत कर दो, टाइम बहुत अच्छा कट जाता, मतलब पता ही ना चलती किस टाइम दोपहर ही गो किस टाइम शाम ही गई। पैर में घर आकर खाना वाना खाओ, थोड़ी देर आराम करो, फिर 3 बजे के टाइम फिर चले गए, तो मतलब बहुत अच्छा टाइम कट जाता।
0: जब हम खेतों में बुवाई कर देते हैं, फसल पक जाती है, उगने लगती है, फसल जब खेतों में लहलाती है, महिला किसान की दृष्टि से आप कैसा अनुभव करती है, किस तरह की खुशी होती है आपको?
2: बहुत अच्छी खुशी होती है, एक संग अपनी फसल देखना तो लगती है हमारी मेहनत रंग ला रही है। वैसे तो इस साल तो मतलब सभी के बहुत अच्छे है, मगर बारिश ऐसी पड़ी है तो बहुत नुकसान हुआ है कि अब कतई हर आदमी इतना परेशान है, बहुत परेशान है बारिश ने धान बान को बहुत ही नुकसान करो, अब तो उनको कतई दिल रोए रहो।
0: देखिए इसीलिए किसान का जो जीवन है बड़ा संघर्ष वाला है, क्योंकि किसान के जीवन में ये बात है कि उतार चढ़ाव आते तब नुकसान हुआ है, तो ऐसे में बहुत विषम परिस्थितियों में किसान खेती करता है। और ये बात सही है, इस पूरे संसार में केवल किसान है जो हर परिस्थिति को झेल सकता है और उससे लड़ सकता है। आप चूंकि महिला किसान हैं, इतनी मेहनत खेतों में कर रही हैं, साथ में महिलाओं को भी खेती करा रही हैं, और जो महिलाएं खेती का काम करती हैं उनसे क्या कहना चाहती हैं?
3: वो तो करती हैं, खेती उनकी है तो खेती में तो करने करने हैं उन्हें। बहुत मेहनत करती हैं, उनकी मेहनत ही लौट के ना आई अब की तो।
0: तो आप जो धनिया और पालक जो करती हैं, तो उसकी बिक्री कहाँ करवाती हैं?
3: बिक्री पड़ोस में ही जाती है, बहुतेरी तो आसपास वाली ले जाती है, कोई 5 रुपया को, कोई 10 रुपया को। हम बाजार जाना जाते, घर ही अपने बेच देता।
0: धनिया इस समय तो महंगा होगा?
3: हाँ अब महंगा है, 80 रुपया किलो।
0: तो इससे कितनी आमदनी हो जाती है परिवार के लिए?
3: साग सब्जी का खर्चा चल जाता है।
0: शारदा देवी जी, जैसे आपने बताया तो पहले गाँव में क्या करते थे, खेती भी करते थे और घर के आसपास लौकी तुरई ये सब भी लगा लेते थे, तो आजकल कैसे गांव में लगा रही हैं महिलाएं?
2: खुद रह रहे हैं तो एक तरफ पशु पालन है, कुछ जगह खाली पड़ी है तो माँ अब भी बह लेती हैं, लौकी है, तुरई है, अब मेथी है, धनियो है, पालक है, जो चीजें तो जरूर बही। गेहूं बह जाता और पशुपन के लिए बरसीन बह जाएगी अब तो उसी में छोटी छोटी करिया बना लेती है तो बाम बह लेती है, धनियो है, लहसुन है, और कहते मेथी पालक है, जो चीजें तो हर आदमी मतलब गांव में फिर भी बह लेता है अपने खान के हिसाब से, अपने जाए जब मन करो तो अपने थोड़े से ले आए।
0: लौकी तुरई या जो खाने की सब्जियां हैं, धनिया है, पालक है, मूली है, इस तरह की अगर हम घर के आसपास वाटिका बनाकर अगर करें तो शायद हम शुद्ध उत्पादन ले सकते हैं, क्योंकि आजकल आपने देखा है बाजारों में रासायनिक खादों का ज्यादा प्रयोग हो रहा है जिससे सब्जियां भी दूषित हो रही हैं और वो विपरीत प्रभाव डालती हैं। मिथिलेश जी, कितने बच्चे हैं आपके?
1: हमारे 3 बच्चे हैं।
0: 3 बच्चे हैं, कितने कितने बड़े हैं?
1: एक लड़की है, 2 लड़के हैं, लड़का हैगा 20 साल का, लड़की हैगी 18 साल की।
0: कैसे मैनेज करती हैं मान लो घर के काम को और खेती के काम को?
1: आसानी से हो जाता है, वो तो थोड़ा टाइम का ध्यान रखना पड़ता है।
0: हाँ, तो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं आपके?
1: हाँ, पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे।
0: तो क्या चाहती हैं कि बच्चे भी कल को खेती करें या उन्हें पढ़ा के नौकरी दिलवाना?
1: खेती के टाइम में खेती भी कर सकते हैं। हाँ, और नौकरी भी।
0: तो बच्चे सहयोग करते हैं खेती के काम में?
1: हाँ सहयोग करते हैं, बड़ा लड़का गन्ने की कटाई में बहुत पूरा साथ देता है।
0: बिल्कुल, क्योंकि पूरा परिवार जब मिलकर काम करता है तो परिवार की तरक्की होती है, और ऐसे में क्या है कि मान लो अगर खाली बैठे तो उससे बेहतर है कि हम अपने खेत में काम करें तो वो ज्यादा अच्छा है। तो मिथिलेश कुमारी जी, जैसे बहुत सी महिलाएं होती हैं, कई बार सोचने में आता है, महिलाएं सोचती हैं खेती का काम हमें नहीं करना चाहिए, ये पुरुषों का काम है, तो आप क्या ख्याल है इस संबंध में?
1: मैं महिलाओं से कहती हूँ ये तो उनकी सोच है, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, काम काम होता है, और खेती का काम अच्छा है, ये तो अपना काम है, कभी घर आओ, कभी खेत पे जाओ, और कभी ताजा सब्जी तोड़ के लाओ और खाओ बनाओ।
0: बिल्कुल, जैसे कहते हैं पति

0: और पत्नी एक गाड़ी के दो पहिए हैं, जब दोनों समानांतर चलते हैं तो परिवार की तरक्की होती है। देखो पहले खेती होती थी, नौकरी का चलन बहुत बाद में हुआ, सब घर के स्त्री पुरुष मिलकर सब खेती करते थे और खेती करके ही आगे बढ़ते थे। आज बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो खेती में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। शारदा देवी जी, आपने देखा होगा आज महिलाएं ट्रैक्टर भी चला रही हैं, मशीनें चला रही हैं, इंजन चला रही हैं और बहुत से ऐसे काम कर रही हैं खेती के, और अपना नाम भी कमा रही हैं। तो आप लोग किसी स्वयं सहायता समूह से भी जुड़ी हैं क्या?
1: हाँ,
0: तो स्वयं सहायता समूह से महिला किसानों के जुड़ने का क्या फायदा होता है?
1: फसल में कोई हानि आ रही है, अभी हम फसल बोएंगे, हमारे पास पैसा ना है, कोई दिक्कत है तो उससे सब महिला मिलकर थोड़े थोड़े पैसे ले लेती हैं, फिर उनके पति काम कर रहे हैं तो वे किस्तन द्वारा एक हर महीना पर 700-800 रुपए किस्त मनवा लेती हैं, तो आराम से वो पैसा भी निकाल देती हैं, मतलब और उनकी फसल भी तैयार ही जाती है।
0: देखो कितनी अच्छी बात है कि महिलाएं खेती भी कर रही हैं और समूह से जुड़ के खेती में जो प्रयोग होने वाला पैसा है उसकी व्यवस्था भी हो जाती है। तो ऐसे में क्या है कि किसी से ज्यादा कर्ज या उधार नहीं लेना पड़ता है, जो हमारा समूह है समूह के पैसे से ही काम चला लेते हैं और बाद में वापस कर देते हैं। मिथिलेश जी, जैसे खेती में हम सब काम कर रहे हैं, बहनें काम कर रही हैं, राजकुमारी जी धनिया मेथी पालक अपने खेतों में उगा रही हैं, आप सब तरह की खेती कर रही हैं, तो किस तरह से और जो महिलाएं हैं वो खेती में जुड़ सकती हैं, कैसे काम कर सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं?
2: जुड़ा है हमारे साथ काम कर रहा है।
0: जी
2: हाँ, धनिया मेथी पालक हर चीज, अब टाइम है ये अक्टूबर का, इसमें बो सकती हैं और अपने क्या कहता बेच कर उसका लाभ ले सकती हैं।
0: ले सकती हैं। जैसे शारदा देवी जी, जैसे एक परिवार है, परिवार में अगर महिला सहयोग करे खेती में तो परिवार की क्या स्थिति होगी?
1: औरत जब तक सहयोग न करेगी वो परिवार आगे न बढ़ाएगी। छोटे मोटे काम है खेती में रहेगा तो वो तुम सहयोग न करोगे तो वो काम तुम्हारा खराब ही जाएगा। जब हर चीज में औरत को सहयोग बहुत जरूरी है। अगर तुमने पशु भी पाल रखे हैं, अगर बामा औरत हाथ न लगाए हुए तो वे पशु तुम्हें बिल्कुल बेकार मिलेंगे, और जो औरत अपने हाथन से देखभाल करेगी बिन के पशु बहुत अच्छे रहेंगे
2: स्वस्थ।
0: तो महिलाओं को परस्पर सहयोग करना चाहिए अपने पतियों का, चाहे वो खेती का काम हो चाहे पशुपालन। पशुपालन बहुत अच्छी बात है। मिथिलेश जी, आपके यहाँ पशुपालन होता है?
2: जी हाँ, 2 भैंसा हैं और 2 उसके बच्चे हैं।
0: तो कैसे देखभाल करती हैं?
2: उनको सुबह ही कुट्टी उट्टी डालना होता है, फिर उनका दूध निकालना होता है, फिर उनको क्या कहता नहलाना धुलाना होता है, उसके बाद बांध देते हैं हटा के अलग को।
0: बिल्कुल। तो आप लोग अच्छे से खेती करें, पशुपालन करें, और आपने अपने अनुभव साझा किए किस तरह से आप महिलाओं को जोड़कर खेती का काम करती हैं। बड़ी अच्छी बात है कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे जा रही हैं, तो खेती में भी क्यों पीछे रहें? और खेती एक ऐसा काम है कि हमारा जो देश है उसकी अर्थव्यवस्था पूरी खेती पे ही टिकी है। अगर खेती का काम किसान छोड़ देगा तो देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी और देश का विकास संभव नहीं है। आज आप तीनों महिलाएं हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुई कृषि गोष्ठी में, आपने अपने अपने अनुभव बताए, और जो किसान महिलाएं हैं जो आज कार्यक्रम सुन रही हैं वो भी जान रही होंगी कैसे आप लोगों काम करती हैं और कैसे हमें करना चाहिए। आप लोग कार्यक्रम में उपस्थित हुए, बहुत बहुत धन्यवाद।
3: भैया बहनों, अभी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन रहे थे कृषि गोष्ठी, ग्रामीण महिलाओं का खेती में योगदान। आज की हमारी जो मेहमान थी वो थी मिथिलेश कुमारी, शारदा देवी, राजकुमारी, और उनसे बातचीत की थी भैया रघु ने। तो हमें उम्मीद है कि हमारी जो बहन ने जो जानकारी सुनी होगी और जिन भैया ने सुनी होगी वे सुनकर लाभान्वित भय होंगे।
0: और पूनम बहन, आज आपो गांव में गई और वहां आपने जो महिला किसान ही उनसे खेत में जाके बात करी, तो बा खेती बाड़ी के जो अनुभव हैं वे भी हम अपने भैया बहनों को सुनवावेंगे। लेकिन हम बता दें, आज हमारी पूनम बहन ने बातचीत करी है बहन कृष्णा बती से, और उनसे बातचीत करी है खेती बाड़ी और पशुपालन के बारे में। तो भैया बहनों, अब आपको सुनवा देते हैं जा भेंट वार्ता।
4: आज हमारे साथ जुड़ी हैं एक बहन जो खेती बाड़ी करती हैं। कितने दिनों से करती हैं आप खेती बाड़ी? आपको नाम कहाँ है?
5: कृष्ण बती।
4: तो आप रहते कौन से गांव में?
5: नौवां में, फरीदपुर
4: जिला
5: बरेली।
4: अच्छा, अपने खेत में
5: घर के धान की खेती और मूफरी उफरी वगैरह, लाइट वगैरह।
4: अच्छा, जो देख रहे हैं हम कि धान पड़े हैं आपके, जो झाड़ रही हैं, जो कब काटे हैं?
5: जो काटे परसों।
4: तो इन्हें सूखने को टाइम दो होगा थोड़ा बहुत?
5: सुगन को टाइम नहीं है, बारिश हो रही है। अच्छा। गीले के मारे हला रहे हैं, बारिश के मारे।
4: अच्छा, तो गीले जो तो कर रहे हलते होंगे?
5: गीले कर रही हलते हैं, सूख जाते हैं सही से, सही हलते हैं।
4: अच्छा, तो ये गीले फिर घर सुखाओगी, जाकर हला उला के ले जाओगी तई।

0: घरा फैलावा में जाएगा, घर तो मैं खोलगा ना खराब ही जाऊंगी।
1: अच्छी कितने दिनों से कर रही हैं आप खेती बाड़ी?
0: अब यही हूँ 4-5 साल है।
1: खेत में आप बराबर को काम करती हैं जैसे आप अपने पति के संग?
0: हाँ संग बराबर।
1: कितने दिन सुखाओगी तो कहूँ रखोगी सही से, कैसे करके स्टोर करती हैं इनको?
0: इन्हें बस सुखा उखा के घर में डाल के सहला के फिर लगा लेंगे।
1: ऐसे ही लगा लेगी या कुआ में जैसे मटेला उटेला होता है
0: लगा लेंगे? घर खसो करोगे, घर बन जाएगा तो कितना डाले जाएंगे।
1: अच्छे का ध्यान रखना चाहिए अपनी जो धान की फसल में कि हम क्यों अपने घर जल्दी पहुंचा देने चाहिए कि बारिश सूरज की वजह से तो खराब हो, उनको डर रहे तो
0: सब सड़ जाएंगे ना, जमे आम किल्ला दे जाएंगे, खराब ही जाएंगे, कार ही जाएंगे जमे आम।
1: बहुत अच्छे से करती हैं आप अपनी खेती बाड़ी, बहुत ध्यान रखती हैं आपकी बातों से लग रही है।
0: धान हमारे खराब हो जाएंगे, मेहनत करते हैं 5-6 महीना में तो सब हमारी मेहनत बेकार जाएगी।
1: जवाब सही गई आपने,
0: जय काम हमारा और कोई काम है ना।
1: अच्छा कितने निकले आवेंगे लगभग जाम? आपने अंदाजा लगाइए कितने लेकर आवेंगे?
0: लग रहे आऊंगे 8-9 क्विंटल,
1: यानी कि 2-3 क्विंटल बीघा कट जाए तब तो अच्छी बात है।
0: ग्रेवे हैं तो ऐसे कम लग रहेंगे।
1: तो ग्रेवे वाले कैसे का अलग हिला रही हूँ
0: ना, सड़े वाला कर रहा है नीचे से।
1: अच्छा गिर गए ताशा, पानी की वजह से खराब ही गए जाका?
0: गिर सब गिरोब काटो, सब खेत गिरोब काटो।
1: अच्छा
0: सब खराब ही
1: तो आपकी खूब नुकसान भाव घर के बहुत से भैया बहन को तो
0: खूब नुकसान भाव
1: सब गिरिए गए हैं। थोड़े बहुत बचे
0: थोड़े बहुत कतई ना बचे, खाली दीवी का बच्चे धान।
1: अच्छा।
0: और धानों को ताश है जो बिकने वालों को सब गिरो खराब ही
1: सब खराब ही तो वो तो बाकू रेट अच्छा ना मिलाए जाका
0: जाको का जैसे बिका वैसे बिक जाओ,
1: कम रेट में बिकाए जाका कम भाव मिलेगा। अच्छा तो आप खेती बाड़ी तो करती हो लेकिन जाके अलावा जानवर भी पालती हो का? कितने जानवर पालती हैं?
0: एक भैंस है, दो पड़िया छोटी।
1: तो वो दूध दूध ना दे रही है?
0: दूध ना दे रही है।
1: तो ध्यान रखती हूँ जब मौसम में जैसे रही घर के दूध खूब अच्छी है
0: भीतर बांधे आए।
1: अच्छा सुबह ही चली आई होगी बच्चनों को साथ ले आई हूँ
0: खाना तो बना के ले आए हैं, आज दिन भर यही रहेंगे खेत।
1: फिर आपके जानवर?
0: जानवर शाम को एक चली जाएगी एक लड़की हमारी, वही बांध देगी 2-3 बजे।
1: अच्छा तो जब बताओ आपको कोई ऐसी योजना है जिसको लाभ मिलो, जैसे प्रधानमंत्री जी द्वारा कुछ लोगों ने घर मिले हैं?
0: गैस सिलेंडर है। अच्छा। और कोई चीज
1: कम मिलो?
0: गैस सिलेंडर भी 2-3 साल है।
1: 2-3 साल है तो जैसे पहले आप काय पे खाना बनाती?
0: चूल्हे पे।
1: तो अब आपको फायदा लगा तो कि गैस पे जल्दी बन जाता है या चूल्हे पे जल्दी बन जाता है?
0: चूल्हे पे जल्दी बनता है।
1: अच्छा लेकिन काम जल्दी समर जाता है?
0: काम जल्दी समर जाता है, गैस पे धर दे उसले।
1: अच्छा
0: कोई सौदा चूल्हे बना लो कोई गैस बना लो तो जल्दी भी जाती
1: है। अच्छा दोनों बना लेती हूँ। चलो बहुत अच्छी बात है कि आप इतने अच्छे से अपने जानवर भी पालती हूँ बता रही हूँ। अच्छा जो जानवर है उनका टीका उका लगवा दें
0: ना
1: तो आपके जानवर को फिर कोई परेशानी तो ना होती है जैसे खुरपका मुंहपका ऐसी कोई समस्या?
0: ही जाती
1: है। ही जाती
0: है लगाना होता है ना खेत पर ही।
1: अच्छा तो ना लग पाए तो घर में अंदर बांधे आती हूँ उनको, वहाँ गीलो उलो तो ना आए जैसे सफाई का ध्यान रखती हूँ? कितनी फेर है उनकी नीचे झाड़ू उड़ू लगा?
0: झाड़ू लग जाती 2-3 बार, सवेर को लगती दोपहर को शाम को लगा देते।
1: गोबर उबर कहाँ डालती हूँ?
0: गोबर भैरा लकार डाल देते, भैरा से घूर पर डाल देते।
1: अब तो घूर ही पड़ा रही होगी तो कंडा थोपत हो, कंडा थोपत होंगे उस टाइम पे?
0: कंडा थोपता।
1: आप बता रही कि घूरे पे डाल देती हूँ तो ये क्या करती हूँ फिर जाको खेत उत में डरवा देती?
0: डालता फसल सही होती है।
1: अच्छा कितने दिन में?
0: 1 साल में पड़ता है
1: जब बन जाता घूर होता है क्या?
0: 6 महीने आप ज्यादा पे हो तो बन जाता है, तो नहीं बनता 1 साल में बनता।
1: अच्छा तो बहुत से भैया बहन ऐसे है जो आज कार्यक्रम के माध्यम से आपको सुन रही है, उन बहनों से आप क्या कहना चाहोगी उन्हें अपनी खेती बाड़ी में किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए? और हमारी और भी बहने करती हैं जैसे आप बता रही हूँ कि आप साथ में करती हैं ऐसे ही ब्यू करती हो संग में,
0: और
1: कैसे ध्यान रखना चाहिए हमें अपनी खेती बाड़ी अच्छी हो जाके लेकर करना चाहिए?
0: सही ध्यान रखो खेती बाड़ी सही हो और सब जने सही रहा जिगर को वो सही रहा।
1: हाँ। जानवरों को सही रखने के लिए ध्यान रखने होता कि उनके नीचे साफ सफाई रखना है ना,
0: जिगर बीमार ही जाता है मेहनत करो ये कितनी मेहनत न रहती।
1: जब बात सही कही आपने, अच्छी बात है आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारी भैया बहनों को दी। आपका कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अबे हमारे भैया बहन सुन रहे भेंट वार्ता अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान दिवस के अवसर पर, महिला किसान थी कृष्णावती और आपसे बातचीत कर रही थी बहन पूनम। तो देखो पूनम बहन अब मौसम आप देख रही हैं आज वो बाहर ऐसी आंधी उंधी सी और बूंदा बांदी सी हुई रही है, तो हम बता देते हैं भैया बहन को कल के मौसम को पूर्वानुमान। तो कल उच्चतम तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड और निम्नतम तापमान 21 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। और मौसम के हिसाब से अगर वर्षा की बात करें तो वैज्ञानिकों ने वर्षा की संभावना जताई है। बताते हैं सवाल को उत्तर, तो का हो आज को सवाल और का है बाको उत्तर?
3: भैया आज को सवाल हो किस साल को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया गया है? जवाब है कि 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला

0: किसान वर्ष घोषित किया गया है।
1: और पूनम बहन, आज के कार्यक्रम की नसीहत क्या है?
0: भैया, आज के कार्यक्रम से जय नसीहत मिलती है कि अपने घर परिवार में सबके संग खेतीबाड़ी के काम में हाथ बटावे। आप अगर ईमानदारी से और समझदारी से करोगे तो बामे आपको ज्यादा फायदा होगा। प्रधानमंत्री

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: तो अब पूनम बहन देखो समय बचू ना है कार्यक्रम में, तो अब आज के कार्यक्रम किसान वाणी से अपने भैया रघु
4: और अपनी बहन पूनम को दो अनुमति।
3: भैया बहनों
4: राम राम, राम राम।
5: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

0: अभी आप सुन रहे थे किसान वाणी, आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। समय मिला ये शाम के 7 बजे हैं और समय हो चला है कृषि पाठशाला का, तो लीजिए अब ग्राम जगत के अंतर्गत सुनते हैं कृषि पाठशाला।
1: ग्राम जगत कार्यक्रम के इस खास सेगमेंट रेडियो कृषि पाठशाला के प्रायोजक हैं भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान IVRI इज्जत नगर बरेली।
2: श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं मिथिलेश योगेंद्र और जैसा कि आपको पता है इस कार्यक्रम में हम हर बार एक नया विषय लेकर आते हैं, क्योंकि जैसे स्कूल जाते हैं और कुछ नया सीखते हैं वैसे ही इस कार्यक्रम में भी आपके लिए हम कुछ नया लेकर आते हैं ताकि आप कुछ सीख सकें और सीख कर कुछ अपनी आय बढ़ा सकें और अपने खेती किसानी से अलग हटकर भी कुछ ऐसा कर सकें जिससे आपका मुनाफा बढ़े, आपकी जो जीवन है, आपकी जो दिनचर्या है वो और बेहतर हो सके। जी हाँ, विषय है लाभकारी ग्रामीण उद्यमिता के लिए वैज्ञानिक शुकर पालन। जी हाँ, आज बात करेंगे शुकर पालन की और इस पर जानकारी देने के लिए हमने जिन वैज्ञानिक को आमंत्रित किया है वो हैं डॉक्टर अमित कुमार। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं एनिमल जेनेटिक्स विभाग में IVRI बरेली में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
3: धन्यवाद मिथिलेश जी।
2: तो जी आप कुछ कहना चाहते हैं?
3: नहीं आप
2: जी जी जी हाँ। तो सबसे पहले तो यही हम जानना चाहेंगे सर आपसे कि ये जो शुकर पालन है ये हमारे देश में किस तरह से लोगों को आगे बढ़ा रहा है और ये शुरुआत करने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए।
3: धन्यवाद, सभी श्रोताओं को नमस्कार। शुकर पालन कोई नई पशुपालन की पद्धति नहीं है, ये परंपराओं से शुरू से ही ये शुकर पालन हमारे यहाँ पालने की परंपरा रही है। किसान छोटे स्तर पे अपने गांव में पालते थे अपनी आजीविका के लिए। और ये बात अलग था कि शुकर पालन हिंदुस्तान में इसलिए पॉपुलर नहीं हुआ क्योंकि ये ज़्यादातर ऐसे शुकर होते थे जो फ्री रेंज सिस्टम वाले होते थे, जो मैला खाने से लोगों को उसको जोड़ दिया। लेकिन आप अगर पूरे विश्व का डाटा देखेंगे तो शुकर के मांस सबसे ज्यादा खाए जाने वाला मांस है, जो हमारा मुर्गी के मांस से

0: ज्यादा मांस की खपत पूरे विश्व में सुकर के मांस के द्वारा होता है,
1: जी।
0: और हिंदुस्तान इसमें अभी 1% भी सप्लायर नहीं कर पा रहा है, या वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, कहिए उसकी उत्पादन नहीं कर पा रहा है। प्रकृति तौर पे हिंदुस्तान के ज्यादातर लोग वेजिटेरियन थे, जब उन्हें ये समय के साथ समझ में आया कि एनिमल प्रोटीन का क्या महत्व है, धीरे धीरे लोगों के न्यूट्रिशनल स्टेटस को, पोषण को दुरुस्त करने के लिए शुकर मांस एक कंपैरेटिवली सस्ते प्राइस पे अल्टरनेटिव मीट के तौर पे इंट्रोड्यूस हुआ। और आज के थी में शुकर पालने वाले की कोई खास जाति नहीं है, ये जातियों से मुक्त हो चुका है, हर जाति के लोग इसे पाल रहे हैं, और ज्यादातर वैसे लोग पाल रहे हैं जो काफी संपन्न हैं, अच्छा अच्छा फार्म डाल रहे हैं।
1: इसकी वजह भी क्यों?

0: जो काफी संपन्न है, अच्छा अच्छा फार्म डाल रहे हैं।
1: इसकी वजह भी क्योंकि इसमें मुनाफा
0: ज्यादा है, तो अब इसकी पोटेंशियल को पहचाने हैं। हालांकि कुछ बीमारियों की वजह से जो समय समय पे आता रहता है, मैं आपको विस्तृत में बताऊंगा, उन बीमारियों की वजह से बीच बीच में थोड़ी सी एक किसान में संशय बनती है, लेकिन वो संशय भी वैज्ञानिक प्रयास से धीरे धीरे दूर होता जा रहा है।
1: जी बिल्कुल, और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी पशुपालन करें वो वैज्ञानिक तरीके से करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो सके। तो इसमें किसी भी जो पशुपालक हैं वो चाहते हैं कि शुकर पालन हम शुरू करें, तो कैसे शुरुआत करनी होगी, क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी उनको?
0: आपको कई एक दफ़ा जैपनीज इंसेफेलाइटिस का भी नाम सुने होंगे। तो सरकार भी कहती है कि जहाँ पे इंसानों की आबादी है इसे दूर रखा जाए, बाकी सारे लाइव स्टॉक हम कोशिश करते हैं, बाकी सारे जानवर की पालन ज्यादातर वैसे जगहों पे होता है जहां फार्मर खुद रह रहा है। तो इसको ऑर्गेनाइज फॉर्म में लाने के लिए थोड़ी सी दूरी पे रखें, शुरुआत एक छोटी यूनिट से करें, अगर आप एक किसान के तौर पे पालना, जिससे कि आपको बीमारी फैलने की संभावना सूकर में या सूकर से इंसान में दोनों ही संभावना कम से कम हो जाए।
1: तो लगभग कितनी कम से कम जमीन से शुरुआत कर सकते हैं?
0: अगर मैं कहूँ शुरुआत के लिए 800 स्क्वायर यार्ड से 1000 स्क्वायर यार्ड का भी आप खोलेंगे तो 12 यूनिट रख सकते हैं। 12 मतलब मादा और दो नर का रख सकते हैं। और उसमें ध्यान ये रखना है कि आपको बच्चे होने के बाद बहुत लंबे समय तक आप उसे ना रखें। अगर छोटी जमीन है तो आप बच्चा हुआ बच्चा सेल कर दे। अगर बड़ी ब्रीडिंग यूनिट रखना चाहते हैं तो उसी अनुपात में आपको अपनी जमीन बढ़ानी होगी, वो आपके जमीन के उपलब्धता के ऊपर है।
1: अब इसमें ये जैसे कि आपने कहा ब्रीडिंग, तो उसमें ब्रीड का बहुत महत्व है, तो कौन सी नस्ल लाना अच्छा रहे?
0: अगर हिंदुस्तान में कहेंगे तो हर जगह पे एक काला शुकर जिसको हम देसी शुकर कहते हैं वो हर जगह पे किसान शुरू से पालते रहे
1: जी,
0: लेकिन उससे बहुत आय नहीं बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि उसका जो एडल्ट बॉडी वेट होता है, जो एक वयस्क शुकर होता है, वो 50-60 किलो तक का ही जा पाता है।
1: अच्छा,
0: उससे ज्यादा नहीं जा पाता है। इसी उद्देश्य से एक ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ICR जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने शुरुआत किया कि हम बाहर के नस्ल से इसकी क्रॉस ब्रीडिंग करवाएंगे।
1: अच्छा।
0: अगर हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी नस्ल की बात करेंगे तो जैसे एक नस्ल है घुंघरू, वो ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट में बंगाल और असम में ये पाए जाते हैं, बंगाल का नेटिव है, वो सबसे ज्यादा हेवी वेट होता है काले सुकरों में।
1: अच्छा।
0: जिसमें 80-90 किलो तक का आप सुकर पाल सकते हैं, लेकिन उससे भी बेहतर है कि हम जो काले शुकर है अपने अपने रीजन में जो क्रॉसब्रेड प्रोड्यूस हुए हैं, जैसे हम अगर कहें उत्तर भारत के लिए, जैसे हम लोग जिस तरफ हैं हिंदी भाषी क्षेत्रों में
1: जी जी।
0: तो घुरा हुआ और घुरा का जो क्रॉस करवाया गया है IVRI नहीं, उसे विकसित किया है लैंडरेस से क्रॉस करके। लैंडरेस एक विदेश की नस्ल है, तो उससे लैंडली डेवलप किया। पूरे भारत में इसकी नस्ल उसके जोन के हिसाब से डिपेंड करता है। झारखंड में जाएंगे तो टैमवर्थ का हुआ है, जिससे झारसुक नाम का एक क्रॉसब्रेड प्रोड्यूस हुआ। इस तरीके से हर क्षेत्र में क्रॉस ब्रीडिंग प्रोजेक्ट के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के ही परियोजना के तहत उपयुक्त नस्ल उपलब्ध है, और आप उस संस्थान से कॉन्टेक्ट करके उचित जो क्रॉसब्रेड है वो अपने यहाँ प्रोक्योर करके ही पालें।
1: तो जैसे हमारे बरेली और आसपास के लोग हैं वो IVRI से संपर्क करके और ले सकते हैं?
0: जी, हम उसको सेल भी करते हैं, हमारे यहाँ लाइव बॉडी वेट पे सेल होता है।
1: अच्छा,
0: काफी रिजनेबल प्राइस पे सेल होता है। किसान जो है वो IVRI में संपर्क करके शुकर वहां से अपना स्टार्ट करने के लिए हम सपोर्ट करते हैं और उनको देते हैं।
1: जी,
0: हमारा उद्देश्य यही है।
1: अब उसमें ये बात आती है सर कि जैसे नस्ल का भी पता हो गया और आपके यहाँ से वो ले भी आए अच्छी नस्ल के, लेकिन उसके बाद जो उनका रखरखाव है वो कैसे करना है, उस पर कितना खर्च आना है, इसके बारे में भी हमारे गांव को?
0: आमतौर पे बाकी जो हमारे लाइव स्टॉक होते हैं उसके रखरखाव में बहुत ज्यादा इंटेंसिव केयर की जरूरत नहीं है।
1: अच्छा।
0: लेकिन सुकर में आपको बहुत जरूरी है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है जैव सुरक्षा आज के तिथि में इसलिए महत्वपूर्ण है कि जैसे दो बीमारी इसमें आज भी बहुत विभीषिका के तौर पे आती है कभी कभी, वो है क्लासिकल स्वाइन फीवर।

0: और अफ्रीकन स्वाइन फीवर। क्लासिकल स्वाइन फीवर जो है एक बीमारी है, वो एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से होता है जिसका टीका उपलब्ध है। लेकिन क्या है कि किसान को सूकर पकड़ना इतना आसान नहीं है। बकरी को पकड़ के आप टीका लगा लेंगे, गाय को भी पकड़ के लगा लेंगे, सूकर को पकड़ना मुश्किल होता है। तो उसके लिए रेस्ट्रेनर रखने की जरूरत है, जिससे कि आप सूकर के नहीं पकड़ने की वजह से आप टीका मिस ना करें। टीका बहुत जरूरी है। और दूसरा है अफ्रीकन स्वाइन फीवर, जिसका टीका भी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों ने बना लिया है और उम्मीद है कुछ ही दिनों में यह भी टीका उपलब्ध हो जाएगा। और जब तक उपलब्ध नहीं होता है तब तक आप अपने सुकर पालन कर रहे हैं वहां चूना का छिड़काव करें बाहर।
1: अच्छा।
0: और गेट पे जहां से आप प्रवेश करते हैं वहां एक फुटपाथ बनाए, थोड़ा सा गड्ढा करके उसमें फिनाइल डाले।
1: अच्छा।
0: डेली जो है कमरे में अच्छे से सफाई करें। बाहर से यदि कोई भी वाहन खरीदने के लिए आ रहा हो, आपका खाद्य सामग्री लेकर के आ रहा हो, उसको एंट्री तभी करें जब उसके पहियों पे आप सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कर दे।
1: अच्छा।
0: नहीं तो दूसरे सुकर फार्म से बीमारी इस सुकर फार्म तक पहुंचने की संभावना बनी रहेगी। तो ये बायोसिक्योरिटी कुछ ऐसे मेजर्स हैं,
1: बहुत ही ये नोट करने वाली बात है।
0: हाँ।
1: तो ये हम उम्मीद करते हैं कि किसान भाई बहन इसको नोट भी कर लिए होंगे। और इसमें बात ये है कि रख रखाव तो हमने कर दिया, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु था। अब उन्हें क्या खिलाना है,
0: अच्छा
1: उनका जो है खाद्य पदार्थ क्या होगा जिससे वो एक तो सेहतमंद भी रहें, दूसरे उनका जैसा मार्केट में डिमांड होती है ज्यादा वजन का, तो वजन उनका कैसे।
0: सही प्रश्न है आपका, खास करके जो आपने प्रश्न पूछा है ये फिर क्षेत्र के हिसाब से थोड़ा वैरी करता है।
1: अच्छा।
0: और प्राइस ऑफ मीट के हिसाब से भी। जैसे मैं कहूँ, हाँ हाँ, मक्का आज के तिथि में इंसान भी खा रहा है, पोल्ट्री भी खा रहा है, पिग भी खा रहा है, कैटल भी खा रहा है।
1: अच्छा।
0: तो एक अगर सबसे ज्यादा चीज कंज्यूम करने वाला ग्रेन हो गया है तो वो मक्का हो गया है। फलस्वरूप इसकी कीमत बढ़ती जा रही है, उस वो किसान के मुनाफा को कॉम्प्रोमाइज करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसान अब होटल वेस्ट को खिलाए। नीले ड्रम में जो होटल वेस्ट होता है वो परहेज करे।
1: अच्छा।
0: सस्ते सब्स्टिट्यूट ढूंढे। जैसे बहुत जगहों पे अब आलू आलू के सीजन में सस्ती होती है तो आलू को बॉयल करके खिला रहे हैं। लेकिन एक बैलेंस रेशन जिसमें मक्का, चोकर और भी सब्स्टिट्यूट मिला करके जो कॉस्ट इफेक्टिव हो, सस्ता हो, वो खिलाएं। एक चीज तो बिल्कुल ना खिलाए जो कि होटल के वेस्ट होते हैं, वो उससे क्या होता है कि आपका मार्केट गिरता है। जैसे ही आप वैसा खिलाते हैं तो आपके कंज्यूमर, जैसे यूरोप में, अमेरिका में, वो अच्छे हेल्दी फूड खिलाने की वजह से उनका सुकर पालन उच्च स्तर पे गया है।
1: तो हेल्दी खिलाना चाहिए,
0: हेल्दी फूड
1: कुछ भी।
0: हाँ,
1: जो कि और मतलब ये कई लोग जो है फैट बढ़ाने के लिए सोयाबीन का इस्तेमाल करते हैं।
0: नहीं, सोयाबीन 20% आप खिलाएं, 20% से ज्यादा नहीं खिलाएं। सोयाबीन प्रोटीन का रिसोर्स है।
1: हाँ, हाँ।
0: तो आपको जो भी एनर्जी रिच है, जैसे आपका हो गया मक्का हो गया, ब्रैन हुआ, ये मैक्सिमम आलू हो गया, ये मैक्सिमम 80% रहेगा। 20% में आप सोयाबीन खिलाए, बहुत जगहों पे फिश मील खिलाते हैं, तो प्रोटीन का कोई ना कोई सोर्स के तौर पे सोयाबीन खिलाना 20% तक चलेगा, इसमें कोई हानि की बात नहीं।
1: एक तरह से पूरा बिजनेस सेटअप हो गया। अच्छा, उनको खिला भी रहे हैं, टीका भी लगवा लिए और अच्छी नस्ल के तो ले आए ही, लेकिन अब मुनाफा कैसे होगा और जो भी ये लागत लग रही है इसके लिए क्या सरकार की तरफ से कोई योजना है जिसमें कुछ ऋण वगैरह मिल जाए।
0: जी, मुनाफा कोई बड़ी समस्या नहीं है अगर आप बीमारी और अच्छे से मैनेज कर लेंगे। तो ये इसकी फीड कन्वर्सन इफिशियंसी काफी अच्छी है।
1: अच्छा।
0: औसतन 3 किलो दाना खाके, जिसकी कीमत करीब करीब 30 रुपए किलो दाना आपका बैठेगा, तो आप 100 रुपए का दाना खिलाते हैं तो 1 किलो मीट बन जाता है।
1: अच्छा।
0: जिसकी बिक्री मार्केट प्राइस पे अभी 300 रुपए है। आप मजदूर वगैरह का भी और इलेक्ट्रिसिटी और सारी आप जो आपकी नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर है वो माइनस करने के बाद भी आपको मुनाफा काफी बन जाता है। एक सुकर एक बार में 8 बच्चे औसतन, तो आपको उससे एक मादा सुकर से 8 बच्चा मिल रहा है और वो 8 बच्चा 8 महीने में तकरीबन 80 किलो का हो जा रहा है। तो केवल आपके पास स्पेस होना चाहिए, हेल्दी फूड होना चाहिए, बाकी मुनाफा स्वयं आता है। अब रही बात की ऋण क्या, जो आपने पूछा है वो IVRA हमारे यहाँ इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम की ट्रेनिंग किसानों को दी जाती है।

0: जाती है, इंटरप्रेन्योर्स को दी जाती है।
1: अच्छा,
0: उसकी सर्टिफिकेट लेने के बाद इवन आपको नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत सब्सिडाइज ऋण मिल जाता है।
1: अच्छा अच्छा
0: और वो सपोर्ट मिल जाता है आपको, जिससे आपको कर पालन में जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स जो आपकी लग रही है
1: जी, जी, जी।
0: वहाँ पे एक समर्थन हो जा रही है। तो ये सारे अवसर हैं जो किसान इच्छुक होंगे वो IVRI आएंगे, ट्रेनिंग करेंगे, उस दौरान इनको ये सारी विस्तृत जानकारी भी मिल जाएगी।
1: ट्रेनिंग साल भर चलती है?
0: साल में 3 ट्रेनिंग करवा ही लेते हैं सुकर पालन पे।
1: तो जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।
0: हाँ, राष्ट्र
1: और कभी भी ट्रेनिंग हो तो उनको बुलावा आ जाए।
0: जी जी,
1: तो बहुत सारी जानकारियां हैं और जानकारी के साथ साथ आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं, अच्छा खासा मुनाफा भी है। बस आपको एक कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है और IVRI बरेली आपकी सेवा में तत्पर है और सरकार की तमाम योजनाएं हैं, उसका भी आप फायदा उठा सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि तमाम किसान बहन भाई जो प्रोग्राम सुन रहे हैं वो शुकर पालन करके बिजनेस करके मुनाफा भी कमाएंगे और जो लोग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं वो ये व्यवसाय शुरू करेंगे और अपनी आय को बढ़ाएंगे। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे श्रोताओं को, किसान बहनों भाइयों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद मित्रेश जी।
2: ग्राम जगत कार्यक्रम के इस खास सेगमेंट रेडियो कृषि पाठशाला के प्रायोजक थे भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान IVRI इज्जत नगर बरेली।

अभी ग्राम जगत के अंतर्गत आप सुन रहे थे कृषि पाठशाला, आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। कोई व्यक्तियों से संबंधित सूचना सुनिए। आप हैं पूजा पुत्री गंगाराम, आप ग्राम भिटारा थाना फतेहगंज जिला बरेली की निवासी हैं। इनकी उम्र लगभग 35 वर्ष है, ऊंचाई 5 फीट 2 इंच, इकहरा बदन, चेहरा लंबा व रंग गेहुआ है। ये 8 अगस्त 2026 से लापता हैं। इन्होंने पीले रंग की साड़ी व पैरों में लेडी चप्पल पहनी हुई है। इनसे जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए फतेहगंज पश्चिमी बरेली थानाध्यक्ष से संपर्क करें। रेडियो हेल्पलाइन संबंधी सूचना। स्वास्थ्य संबंधी विषय पर होने वाले फोन इन कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन में शनिवार दिनांक 17 अक्टूबर 2026 को शाम 7:31 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है, क्या करें जब जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु ना रोए, शंकाएं और समाधान। इसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे शुक्रवार दिनांक 16 अक्टूबर 2026 को शाम 4 बजे से। तो इस संबंध में यदि आपका कोई भी प्रश्न हो श्रोताओं, तो हमें टेलीफोन नंबर 0581251720 पर फोन करें। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे स्टूडियो में बरेली के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप गंगवार उपस्थित रहेंगे। विवरण एक बार फिर सुन लें। विषय है, क्या करें जब जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु ना रोए, शंकाएं और समाधान। रिकॉर्डिंग की तारीख और समय याद रखिएगा, शुक्रवार दिनांक 16 अक्टूबर 2026 को सायं 4 बजे से। हमारा टेलीफोन नंबर है 0581251720।

आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। अब से कुछ ही देर में होंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रादेशिक समाचार। कृपया कुल पलों की प्रतीक्षा करें।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र का प्रसारण। शाम के 7:20 होने को है, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में हिस्सा लेने वाले प्रदेश के 24 खिलाड़ियों समेत भारतीय दल से किया संवाद, कहा खिलाड़ियों को सभी सुविधाएं मुहैया करा रही है सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में स्वच्छता कार्मिकों को सुरक्षा बीमा और भविष्य निधि देने का किया ऐलान। प्रयागराज में गरीबों के लिए 602 आवासों का किया भूमि पूजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 दिवसीय लखनऊ दौरे के पहले दिन फैजुल्लागंज में बाढ़ पीड़ितों को बांटी राहत सामग्री, कहा पीड़ितों को हर संभव मदद करेगी सरकार। और प्रदेश में आज से मिठाइयों पर एक्सपायरी डेट लिखना हुआ अनिवार्य, पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया फैसला। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एशियाई खेल 2026 में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों से संवाद किया। इस दल में उत्तर प्रदेश के 24 खिलाड़ी भी शामिल थे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सभा को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में खेल सुविधाओं के लिए पारदर्शी सिस्टम बनाया है। खेलो इंडिया नीति के तहत बड़े पैमाने पर खिलाड़ियों को हर तरह की खेल सुविधा दी जा रही है।
1: खेलों के लिए एक पारदर्शी और आधुनिक इकोसिस्टम बनाया। हमने खेलो इंडिया स्कीम शुरू की, समय के साथ इसका दायरा और व्यापक बनाया। आज देश में 1000 से ज्यादा खेलो इंडिया सेंटर बनाए गए हैं। एथलेटिक्स ट्रैक, फुटबॉल ग्राउंड, हॉकी ग्राउंड, स्विमिंग पूल, हजारों ऐसे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर छोटे बड़े शहरों में बन रहे हैं।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वाराणसी में स्वच्छता मित्र सम्मान समारोह में नगर निगम व जल निगम के स्वच्छता मित्रों को सम्मानित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ काशी मिशन को धरातल पर उतार रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छता कार्मिकों को न्यूनतम 16,000 रूपये मानदेय दिया जाएगा।
2: कारपोरेशन कार्य कर रहा है, न्यूनतम मानदेय की घोषणा भी कर दी, 16,000 रूपये न्यूनतम मानदेय उनको मिलना ही चाहिए। ईएसआई के तहत उनको उपचार के लिए हॉस्पिटल की सुविधा भी मिलनी चाहिए। और साथ साथ ये भी व्यवस्था कर दी गई है कि उन सभी कार्मिकों को सुरक्षा बीमा का भी एक कवर मिलेगा।
0: मुख्यमंत्री ने आज मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन किए और गंगा घाटों पर चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने

0: आज प्रयागराज में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और पूर्व सांसद महाशय मसूरियादीन पासी की प्रतिमा का अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि विकास व विरासत पर विश्वास करने वाली सरकार महापुरुषों को विस्मृत नहीं करती।
1: महापुरुषों को सम्मान देकर के ही कोई समाज आगे बढ़ सकता है। भूत को सम्मान देकर के ही हमारा वर्तमान संवर सकता है और वर्तमान संवरेगा तो अपने आप ही भविष्य अच्छा उज्ज्वल हो जाएगा। और उसी भूतकाल की स्मृतियों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग आज पूरी मजबूती के साथ काम कर रहे हैं।
0: मुख्यमंत्री ने यहां माफिया से मुक्त कराई गई भूमि पर 602 आवासों के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थियों को आवास की चाबियां भी वितरित की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ पहुंचे। श्री सिंह ने फैजुल्लागंज में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित की और जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरकार इस कठिन समय में पीड़ितों के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवश्यक तटबंध के निर्माण के लिए 182 करोड़ रुपए की घोषणा की है।
2: माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत 182 करोड़ रुपए की घोषणा कर दी बल्ली के निर्माण करने के लिए। जल्दी से जल्दी इसका शिलान्यास भी होगा। आप आश्वस्त रहिए, हम लोगों के रहते बाढ़ के संकट से इस फैजुल्ला गंज को उबारने में धन की कमी नहीं आने पाएगी। मैं आप लोगों को विश्वास दिला, जहां तक हो सकेगा, जितना बन सकेगा, इस संकट की घड़ी में हम लोग पूरी तरह से आप सबकी सेवा करने के लिए तत्पर रहेंगे। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं।
0: आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने आज आकाशवाणी केंद्र वाराणसी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर कार्यक्रमों की गुणवत्ता, श्रोताओं की संख्या में वृद्धि और राजस्व बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। समीक्षा बैठक में महानिदेशक ने काशी की समृद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के अनुरूप कार्यक्रम तैयार करने पर जोर दिया। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 23 और 24 अक्टूबर 2026 को लखनऊ में आयोजित होने वाली क्षमता विकास आयोग की क्षेत्रीय कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी उपस्थित रहेंगे। इस 2 दिवसीय आयोजन में उत्तरी क्षेत्र के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों को आधुनिक दक्षता आधारित क्षमता विकास संस्थानों के रूप में विकसित करने पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। आज इस विशेष श्रृंखला में हम आपको बताएंगे कि देश में लागू हुए 3 नए आपराधिक कानूनों के जरिए लोगों को सुलभ और त्वरित न्याय मिलने की राह आसान हुई है।
3: 1 जुलाई 2024 से देश में लागू हुए नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने पुरानी न्याय व्यवस्था की जगह ली है। नए कानून समय सीमा के अंदर पीड़ितों को न्याय दिलाने पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नए कानून जनता का जनता द्वारा जनता के लिए की लोकतांत्रिक भावना को मजबूत करते हैं।
4: भारतीय न्याय संहिता का मूल मंत्र है सिटीजन फर्स्ट। ये कानून नागरिक अधिकारों के प्रोटेक्टर बन रहे हैं, ईज ऑफ जस्टिस का आधार बन रहे हैं।
3: इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अधिवक्ता विपिन शुक्ला ने नए कानूनों को मानस न्यायिक प्रक्रिया आसान हुई है
5: कि ये जो नए संशोधित कानून है इसमें आम जनमानस को राहत मिल रही है। जो पुलिस की प्रक्रियाओं में लेट लतीफी थी उसमें भी बहुत ज्यादा सुधार हुआ है।
3: नए आपराधिक कानून नागरिक केंद्रित अधिक सुलभ और कुशल न्याय प्रणाली बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रवीण मिश्र।

0: आकाशवाणी समाचार प्रयागराज।
1: प्रदेश में आज से मिठाइयों पर एक्सपायरी डेट प्रदर्शित करना अनिवार्य हो गया है। यह नियम सिर्फ पैक्ड मिठाइयों तक सीमित नहीं है, बल्कि बिक्री के लिए प्रदर्शित और भंडारित खुली मिठाइयों पर भी उपयोग की अंतिम तिथि स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी। खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग की आयुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने 27 सितंबर को इस संबंध में विस्तृत आदेश जारी किया था। शारदीय नवरात्र के पांचवें दिन आज माता के पांचवें स्वरूप स्कंद माता की पूजा अर्चना की जा रही है। सोनभद्र में प्रसिद्ध ज्वाला देवी मंदिर में नवरात्र में बड़ी संख्या में स्थानीय और आसपास के जिलों से भक्त पहुंच रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: जनपद सोनभद्र में शारदीय नवरात्र बड़े ही धूमधाम से भक्तिपूर्ण माहौल में मनाया जा रहा है। जनपद की ज्वालामुखी मंदिर, वैष्णो मंदिर, कुंडवासिनी धाम, अमिला धाम समेत देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। जनपद की सीमाएं चार राज्यों मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड एवं छत्तीसगढ़ से मिलती हैं, लिहाजा पड़ोसी राज्यों के भी श्रद्धालु जनपद के विभिन्न देवी मंदिरों में पूजन अर्चना के लिए आ रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मनोज कुमार सिंह, आकाशवाणी समाचार, सोनभद्र।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में हिस्सा लेने वाले प्रदेश के 24 खिलाड़ियों समेत भारतीय दल से किया संवाद, कहा खिलाड़ियों को सभी सुविधाएं मुहैया करा रही है सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में स्वच्छता कार्मिकों को सुरक्षा बीमा और भविष्य निधि देने का किया ऐलान। प्रयागराज में गरीबों के लिए 602 आवासों का किया भूमि पूजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 दिवसीय लखनऊ दौरे के पहले दिन फैजुल्लागंज में बाढ़ पीड़ितों को बांटी राहत सामग्री, कहा पीड़ितों की हर संभव मदद करेगी सरकार। और प्रदेश में आज से मिठाइयों पर एक्सपायरी डेट लिखना हुआ अनिवार्य, पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया फैसला। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: जीवन कठिन हो सकता है। कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिन के।
1: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। लीजिए, आप प्रस्तुत है आपके स्वास्थ्य से जुड़ा कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक दीपमाला हॉस्पिटल, निकट टेलीफोन एक्सचेंज, चौपला, बरेली।
3: बरेली शहर में गंभीर और अति गंभीर मरीजों की सांस बंद होने पर
2: अब विश्व स्तरीय चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध हैं।
3: बरेली शहर का सबसे किफायती ICU, अति गंभीर मरीजों के लिए विशेष आइसोलेशन ICU,
4: दीपमाला हॉस्पिटल, निकट टेलीफोन एक्सचेंज, चौपला, बरेली।
3: हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज, फालिज और जहर खाए मरीजों के आधुनिकतम इलाज की विशेष किफायती सुविधा क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर सोमेश मेहरोत्रा के द्वारा।
2: इमरजेंसी सेवाओं के लिए हमारा मोबाइल नंबर
3: 9837000048। रेडियो हेल्पलाइन कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज के रेडियो हेल्पलाइन कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं बरेली के वरिष्ठ क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ डॉक्टर सोमेश मेहरोत्रा। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
5: नमस्कार जी।
3: डॉक्टर साहब, आज हम बात करेंगे डेंगू बुखार कितना खतरनाक, कराएं कौन सी जांच, और जो हमारे श्रोताओं की शंकाएं हैं उनके समाधान भी आपसे चाहेंगे। इससे पहले हमारे कोई श्रोता आपके समक्ष अपना प्रश्न रखें, डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि डेंगू बुखार वास्तव में है क्या, किस तरह का बुखार है?
5: देखिए, हम लोग अब इस समय तो समाज हमारा कितनी बड़ी बड़ी विभिषिकाओं से जूझ चुका है
3: जी,
5: तो हम लोग डेंगू को भूल ही चुके थे
3: जी,
5: लेकिन अचानक एक महीने ने दोबारा से डेंगू की याद दिला दी है
3: जी।
5: अच्छा, तो डेंगू बुखार हम भी जानते हैं कि वायरल फीवर है एक, और डेंगू बुखार भी वायरस के जाने के बाद उसके द्वारा होने वाली एलर्जी की वजह से सारे के सारे लक्षण होते हैं, जैसा कि कोविड वायरस बुखार की वजह से होता था
3: जी जी।
5: तो अब हम लोग डेंगू बुखार को नई दृष्टि से, नए अवलोकन से देख रहे हैं। दरअसल डेंगू या डेंगी जिसे कहा जाता है
3: जी
5: इंग्लिश में, वो एक प्रकार

0: का वायरस है
1: जी
0: वो दरअसल एक वायरस नहीं है, वो चार वायरसेस की एक फैमिली है।
1: जी जी
0: जैसा आप लोगों ने देखा होगा कोविड में म्यूटेशंस हो जाती हैं, हम लोग डेल्टा बीटा गामा लैम्डा की बात करते थे
1: जी डॉक्टर साहब,
0: इसी प्रकार में हम लोग सालों से जानते हैं कि डेंगू के चार प्रकार होते हैं,
1: जी
0: डेन 1, 2, 3, 4,
1: जी
0: और चारों का इफेक्ट एडिटिव होता है।
1: जी
0: एडिटिव का मतलब यह है कि अगर आपको एक बार एक डेंगू बुखार हुआ है
1: जी
0: तो उस नंबर का बुखार आपको जिंदगी में दोबारा नहीं होगा।
1: अच्छा, ये बात भी है डेंगू के साथ। डॉक्टर साहब और भी बातचीत करेंगे आपसे, लेकिन एक श्रोता लाइन पर इनकी समस्या सुन लेते हैं। रेडियो हेल्पलाइन में आपका स्वागत है, अपना नाम बताएं, परिचय दें और डेंगू से संबंधित जो भी प्रश्न हो आपका पूछें।
2: सर मेरा नाम उपेंद्र वर्मा, ग्राम झालमुला, तहसील आंवला, विकासखंड जनपद बरेली से बात कर रहे हैं। सर
1: जी बताइए क्या प्रश्न है आपका।
2: सर प्रश्न ये है कि ये डेंगू कभी हल्का बुखार आता है फिर इसके बाद में दवा भी ले लेते हैं फिर भी वो छोड़ता नहीं है, इसके लिए सर क्या उपाय हो सकते हैं?
1: जी डॉक्टर साहब इनका प्रश्न आप तक पहुंचा है।
0: जी पुष्पेंद्र जी, आपका सवाल यह कि हल्का बुखार होता है फिर भी दिक्कतें बढ़ती जाती हैं। बात यह है पुष्पेंद्र जी कि हमारे इतने सालों से सब लोगों में, ज्यादातर लोगों में मन में ये बैठ गया है कि बुखार आ गया तो पैरासिटामोल की गोली खा लो, बुखार उतारने की गोली खा लो, और लोग ये सोचते हैं कि बुखार उतारने की गोली खाने से बुखार को दबा देना इलाज हो गया। जबकि हम लोग कई बार एफएम पे वार्ता में बता चुके हैं कि बुखार कोई बीमारी नहीं होती, वो तो बीमारी का एक लक्षण है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि बीमारी है क्या। हाँ तो देखिए, तो जो आजकल हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो बुखार फैला हुआ है वो एक वायरल फीवर और दूसरा डेंगू बुखार या डेंगू जैसे बुखार है। तो अगर आपको बुखार हल्का बुखार आया तो आपको या तो एंटीवायरल दवा लेनी चाहिए उस वायरस को खत्म करने की, और डेंगू को खत्म करने की कोई एंटीवायरल दवा अभी तक रिकमेंडेड नहीं है। तो डेंगू बुखार का फीवर अगर आपको है तो बुखार के होने वाले लक्षणों को कम करने की या उसके होने वाली दिक्कतों को कम करने का इलाज लेना चाहिए। मैं यहाँ आपको बता दूं कि डेंगू बुखार का सबसे बढ़िया इलाज है ORS का घोल पीना। डेंगू बुखार में होने वाली सारी समस्याएं, खून आना, सांस फूलना, दिमागी दौरे पड़ना, गफलत में चले जाना, सब चीजों के पीछे सिर्फ एक कारण है और वो शरीर में पानी और नमक की कमी होना। बुखार और हाथ पैर में दर्द हो, पहले दिन से ORS का घोल पीने लगे तो कोई भी लक्षण नहीं आएंगे और बीमारी मामूली वायरल फीवर की तरह चली जाएगी। ऐसा है, आपकी समस्या का समाधान हुआ होगा पुष्पेंद्र जी।
1: धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपने ये भी बताया था कि चार तरह का होता है डेंगू बुखार, और एक बार अगर जो बुखार हो जाता है वो दोबारा वापस जीवन भर नहीं होता।
0: हाँ, एक्चुअली ये थ्योरी बताने के पीछे इसका मकसद ये है
1: जी,
0: कि लोग अक्सर इस बात पे अचरज करते हैं कि किसी को डेंगू बुखार हुआ और मामूली बुखार की तरह चला गया और किसी की जान पे बनाई।
1: जी
0: ऐसा क्यों होता है, इसको जानने के लिए ये बात जानना जरूरी है कि इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से होती है।
1: जी डॉक्टर साहब,
0: जैसे कि आपने सुना होगा कोविड में कि जिसको एक बार नॉर्मल कोविड हो चुका है उसको बीटा कोविड होने को या डेल्टा कोविड होने से जान का खतरा ज्यादा है।
1: जी जी,
0: ठीक इसी प्रकार से डेंगू के चार म्यूटेशन है, डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3 और डेंगू 4।
1: अच्छा,
0: एक प्रकार का डेंगू होने के बाद जीवन में वो पूरे शरीर में उस डेंगू के लिए एंटीबॉडीज बन जाती है, प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है।
1: जी,
0: लेकिन बाकी किस्म के डेंगू बुखार अगर होंगे तो वो पहली बार की जो प्रतिरोधक क्षमता है उसकी वजह से ज्यादा बड़े लक्षण पैदा करेंगे। यानी कि अगर आपको पहली बार डेंगू बुखार हुआ तो मामूली वायरल की तरह चला जाएगा, दोबारा हुआ और अगर गलती से तीसरे चौथी बार हो गया
1: जी,
0: तो उसमें आपका रिएक्शन काफी ज्यादा तेज और काफी ज्यादा सीरियस होगा,
1: यानी वो और ज्यादा खतरनाक हो सकता है किसी भी के लिए भी। डॉक्टर साहब इसी बीच एक और श्रोता लाइन पर है, इनकी बात सुन लेते हैं। रेडियो हेल्पलाइन में आपका स्वागत है, अपना परिचय दें और प्रश्न पूछें।
3: जी मैं सृष्टि मिश्रा बात कर रही हूँ बीतपुर से। जी डॉक्टर साहब मैं जानना चाहती हूँ, जब ये बुखार आ जाता है तो इस बुखार में कमजोरी बहुत आ जाती है और पैरों में बहुत दर्द होता है, ऐसा क्यों?
0: डेंगू बुखार में सब लोग अक्सर ही एक कम्प्लेन करते हैं, मुंह सूख रहा है, कमजोरी आ रही है, खड़े होने पे चक्कर आ रहे हैं, चलने फिरने का मन नहीं कर रहा है, और ज्यादा कमजोरी बढ़े तो पेशाब आना कम हो जाती है। तो इन सबके पीछे कारण वही होता है, नमक और पानी की कमी होना, डिहाइड्रेशन होना। डेंगू बुखार की जो प्राइमरी पैथोलॉजी है, जो असली नुक्स होता है, वो ये होता है कि नाड़ियां जिनमें खून होता है वो गीली हो जाती हैं और उनसे प्लाज्मा लीकेज हो जाती है, यानी कि खून में से पानी निकल के बाहर चला जाता है। तो आदमी के शरीर में पानी की कमी हो जाती है, पानी और नमक की। तो इसलिए हम लोग हमेशा से बताते रहते हैं, अगर बुखार हो और हाथों पैरों में दर्द हो तो पहले दिन से इलेक्ट्रोल पीना शुरू कर दीजिए।

0: के टाइम में जबकि डेंगू बुखार फैला हुआ है तब, हर समय नहीं, अगर यही अगर आपको आज से 4 महीने बाद हो, दिसंबर जनवरी फरवरी में हो, तो वो मामूली वायरल फीवर होगा। लेकिन इस समय अगर आपको बुखार और हाथ पैर में दर्द हो रहा है तो पहले दिन से ORS का घोल पीना शुरू कर दें। एक व्यक्ति को 1 से 1.5 लीटर तक ORS का घोल पीने की जरूरत पड़ती है। अगर आप ORS का घोल पियेंगे तो ना आपको पानी नमक की कमी होगी, ना कमजोरी होगी और ना हाथों पैरों में जकड़न होगी। कुछ लोगों में बुखार से बिल्कुल ठीक हो जाने के बाद भी कमजोरी रहती है,
1: जी डॉक्टर,
0: वो वायरल फीवर के बाद की वीकनेस है और उसको ठीक करने के लिए मल्टी विटामिन लेने से फर्क पड़ जाता है।
1: जी जी डॉक्टर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: डॉक्टर साहब, हमारी बात चल रही थी डेंगू के म्यूटेशन के ऊपर। आपने बताया कि 4 तरह के डेंगू बुखार होते हैं और पहली बार अगर डेंगू होता है तो इतना खतरनाक नहीं होता, लेकिन इसके बाद दोबारा और तीसरी बार चौथी बार जो डेंगू होता है वो ज्यादा खतरनाक हो सकता है।
0: जी हाँ, इसका एक पहलू और है मुकेश जी।
2: जी डॉक्टर साहब,
0: पहलू ये है कि आंकड़ों के हिसाब से अगर मान लो किसी एक व्यक्ति को डेंगू बुखार लक्षणों के साथ हो रहा है
2: जी,
0: तो कम से कम 90 मरीज ऐसे होते हैं जिनको अनडिफरेंशियल डेंगू फीवर होता है, मामूली वायरल फीवर होता है।
2: जी जी,
0: आपको याद होगा आज से 3 और 4 साल पहले शहर में जब डेंगू बुखार जैसा फैला था
2: जी,
0: तो ज्यादातर लोग कहते थे ये तो मामूली वायरल है।
2: जी बिल्कुल,
0: डेंगू बुखार क्यों कह रहे हैं?
2: जी जी,
0: क्योंकि इससे पहले WHO ने डेंगू बुखार को 4 श्रेणियों में बांटा हुआ था।
2: जी,
0: पहली श्रेणी थी अनडिफरेंशिएटेड डेंगू फीवर, यानी कि मामूली वायरल फीवर जिसे हम कहते थे।
2: जी,
0: वो व्यक्ति को अगर जीवन में पहली बार डेंगू हुआ है तो मामूली वायरल की तरह होता था, गले में खराश हो गई, हल्का सा बुखार हो गया, थोड़ा बहुत दर्द हुआ और 3-4 दिन में मरीज ठीक हो गया।
2: जी डॉक्टर साहब,
0: और जिनको दूसरा और तीसरी स्टेज होती थी, दूसरी स्टेज में प्लेटलेट काउंट कम होती थी और ब्लीडिंग होने के चांसेस होते थे, तीसरी स्टेज में पानी की कमी होती थी।
2: जी डॉक्टर साहब,
0: तो जितने लोग को सिर्फ गले में खराश थी वो सोचते थे मुझे तो मामूली वायरल फीवर है। अब ये कैसे समझाएं कि मामूली वायरल फीवर या जनरल वायरल फीवर नाम की कोई बीमारी
2: होती
0: है, किसी भी किताब में नहीं लिखी है।
2: जी बिल्कुल,
0: ये तो लोग की भाषा में आ गया कहीं से वायरल फीवर।
2: जी, जी,
0: उस वायरस का नाम तो चाहिए ही, जैसे हम कहने लगते हैं कि बुखार हो गया है।
2: बिल्कुल,
0: बुखार तो बीमारी थोड़ी है, वायरल फीवर भी कोई बीमारी नहीं है।
2: जी,
0: वो वायरस अधिकतर लोगों में जो आज से 3-4 साल पहले जिनको मामूली गले की दिक्कत हुई थी उन सबको पहली बार डेंगू फीवर हो चुका।
2: जी,
0: तब इन लोग को जब दोबारा डेंगू फीवर होगा या दूसरी स्ट्रेन का डेंगू होगा तो वो तेजी से लक्षण दिखाएगा।
2: बिल्कुल डॉक्टर साहब,
0: यही है कि हर बार जब नई जो इस खासतौर से इस बार जो लोग लक्षण लेके आ रहे हैं उनमें बड़ी एक भयंकर बात देखने को मिल रही है कि 2 या 3 दिन के बुखार में ही लोगों को ब्लड प्रेशर कम हो जा रहा है, गुर्दे खराब हो जा रहे हैं, लोग काफी सीरियस हो जा रहे हैं।
2: वाकई में डॉक्टर साहब, हम इस बारे में भी बात करेंगे आपसे। एक श्रोता लाइन पर है, इनकी समस्या सुन लेते हैं। रेडियो हेल्पलाइन में आपका स्वागत है, अपना परिचय दें और प्रश्न बताएं।
3: नमस्कार सर, मैं उमेश कश्यप बात कर रहा हूँ, ग्राम जनक जागीर, भोजपुरा बरेली से। नमस्कार सर, मेरे सर सवाल ये है कि इसमें मौसम चेंज हो रहा है सर, तो हल्का सा बुखार आता है और जुकाम होने लगती है, तो ये सर डेंगू के लक्षण है क्या? डेंगू से बचने के क्या उपाय हैं सर?
0: कश्यप जी, आप बाकी सारे बुखार इस समय भूल जाइए। जब शेर जंगल में खुला हो तो लोमड़ी और गिद्धों और खरगोशों की चिंता नहीं करनी चाहिए। इस समय हमारे आंकड़ों के हिसाब से बरेली और इसके आसपास के एरिया में ही नहीं बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और इसके आसपास के इलाकों में भी डेंगू जैसे बुखारों का बहुत प्रकोप है। तो इस समय अगर किसी को भी बुखार हो रहा है, हाथों पैरों में दर्द हो रहा है, तो सबसे पहले डेंगू की जाँच करा लें और घबराए ना, क्योंकि डेंगू बुखार का इलाज सबसे सिंपल है, एक ही इलाज है और वो है ORS का घोल पीना। वायरस कौन से वायरस का बुखार है, कौन से वायरस की वजह से बुखार है, ये पकड़ पाना शुरू के पहले दूसरे दिन में बहुत संभव नहीं होता है, लेकिन डेंगू बुखार के लिए एक टेस्ट बन चुका है जिसका नाम है NS1। तो NS1 टेस्ट कराने से पहले दिन ही पता चल जाता है कि जिसको आप वायरल फीवर समझ रहे हैं वो मामूली गले का वायरस है या डेंगू फीवर है। ठीक है।
2: जी धन्यवाद कश्यप जी
3: फोन करने के।
2: जी डॉक्टर साहब, आपने जांच की बात की तो डेंगू बुखार के लिए खास तरह की जांच है, क्या इसके अलावा कोई और भी जांच है या फिर किस खास तरह के लक्षण हो जबकि जांच कराई जाए?
0: डेंगू बुखार में कौन सी जांच कराने के लिए हमारे को बुखार की क्रोनोलॉजी को समझना चाहिए।
2: बिल्कुल डॉक्टर साहब,
0: जैसे हमने बताया कि डेंगू बुखार की पहली परेशानी है नाड़ियों का लीक करने की वजह से, नाड़ियों का गीले होने की वजह से घूमने वाले पानी का कम हो जाना या ब्लड की कमी हो जाना।
2: जी,
0: इसमें व्यक्ति को ना पसीना आता है ना डायरिया होता है, फिर भी पानी की कमी हो जाती है और मुंह सूखता रहता है।
2: जी डॉक्टर,
0: क्योंकि नाड़ियां जो हमारे पूरे शरीर के अंदर पतली पतली नाड़ियां जो खून का दौरा करती हैं उनसे पानी लीक होके बाहर चला जाता है और जब

0: में जाता है तो हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ने लगता है
1: जी।
0: हम लोग जानते हैं कि हीमोग्लोबिन दरअसल एक परसेंटेज है खून के अंदर लाल रंग या लाल अवयवों के होने की मात्रा
1: जी।
0: तो जब पानी कम हो जाता है तो हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ने लगता है। जितने लोग गांव देहात से आते हैं वो सिर्फ प्लेटलेट काउंट की जांच करा के आते हैं
1: जी बिल्कुल।
0: हम इनको बार बार समझाते हैं कि सिर्फ अकेले प्लेटलेट काउंट की जांच होने से कोई भी आपको फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि साथ में हीमोग्लोबिन और हेमाटोक्रिट की जांच या पीसीबी की जांच होनी चाहिए।
1: अच्छा,
0: आपको याद होगा आज से 5-6 साल पहले किसी एक व्यक्ति ने दावा किया था कि उसने सुबह जांच कराई तो इतने प्लेटलेट निकली और 2 घंटे बाद जांच कराई तो प्लेटलेट ज्यादा निकले।
1: जी जी डॉक्टर।
0: तो वो भी इसलिए होता है कि जब आपको आईवी फ्लूड चढ़ा दें या थेरेपी दे दें या ग्लूकोज चढ़ा दें पानी की मात्रा बढ़ जाए तो प्लेटों की संख्या बदल जाती है।
1: अच्छा,
0: तो यह है इसकी प्राइमरी पैथोलॉजी, यानी कि सबसे पहले हीमोग्लोबिन की जांच होना जरूरी है, हीमोग्लोबिन और हेमाटोक्रिट की। हीमोग्लोबिन बढ़ी हुई है तो व्यक्ति को पानी की कमी है, उसको या तो ORS का घोल पीना चाहिए या फिर आईवी फ्लूड्स लगवाने चाहिए। सबसे पहले होती है WBC की कमी।
1: जी जी।
0: यानी कि जो श्वेत कण जो होते हैं
1: जी,
0: सबसे पहले वो कम होते हैं।
1: अच्छा।
0: और उनके कम होने से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब आगे प्लेटलेट कम होने वाले हैं।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर साहब।
0: और उसके बाद RBC भी कम हो सकते हैं
1: जी,
0: और उसके बाद प्लेटलेट काउंट कम होने का नंबर आता है
1: जी।
0: मुकेश जी, हम लोगों ने हमेशा से बायोलॉजी में पढ़ा है, 9th, 10th, 7th में भी, जो लोग इतनी बायोलॉजी सब लोग जानते हैं
1: जी,
0: कि कोई भी कोशिका या कोई भी सेल जिंदा तभी माना जाता है जब उसके अंदर न्यूक्लियस होता है।
1: डॉक्टर साहब, हम अपनी बात जारी रखेंगे। श्रोता लाइन पर है, सीवी रेडियो हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। अपना परिचय देते हुए अपना प्रश्न पूछे।
2: सुधीर कुमार सक्सेना, ग्राम जनक जागीर, भोजपुरा बरेली से बात कर रहे हैं
1: जी।
0: ये पूछिए, सवाल पूछिए।
2: सर, ये है कि ये जो ये मौसम खराब हो रहा है तो इसमें ये डेंगू की कोई ज्यादा शिकायतें हो रही हैं, तो इसके लिए सर क्या हम बचाव करें?
0: देखिए, बचाव के तरीकों पे तो सरकार ने इतने सारे पोस्टर और कागज निकाले हैं और बार बार एक ही बात दोहराते हैं कि ये जो है शहरी मच्छर है, ये साफ जगहों पे होता है, साफ पानी में होता है, घर के ऊपर आपकी जो टायर पड़े हैं उसमें होगा, कंप्यूटर के केस में होगा। और हम लोग अक्सर यही एग्जांपल देते हैं, मिसाल बताते हैं, ये आपको शहर के अंदर मिलेगा तो आपको घरों के अंदर छतों के ऊपर कहीं से भी थोड़ा सा भी पानी जमा नहीं होने देना चाहिए था। लेकिन ना हो, उससे बचने के लिए तो वही पुराने लक्षण है, पूरी गांव के कपड़े पहनिए। लेकिन जो हमारी वार्ता से आप फायदा उठा सकते हैं वो ये है कि अगर बुखार हो जाए गलती से तो कैसे उससे आपको नुकसान ना हो, और उसी के विषय में हम बात कर रहे हैं कि अगर आज की तारीख में सब बहुत सारे क्षेत्रों से डेंगू जैसी बीमारियां आ रही हैं तो अब वो सफाई करके बचाव करने वाला टाइम निकल गया। अब तो आप ये समझें कि अगर किसी को बुखार हो रहा है और हाथों पैरों में दर्द हो रहा है तो वो पहले दिन से ORS का घोल पीना शुरू कर दे अगर उसे शुगर नहीं है तो, और शुगर है तो नमक पानी का घोल पीना शुरू कर दे तो पानी की नमक की कमी नहीं होगी और ये बुखार मामूली वायरल बुखार की तरह चला जाएगा। सुधीर कुमार सक्सेना जी, भोजपुरा से, मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि डेंगू बुखार का मेन इलाज जो है वो ORS का घोल पीना है। अभी कल भी मेरे पास किसी एक अस्पताल से एक मरीज आए जिन्होंने बताया कि जिनकी प्लेटलेट 20,000 रह गई थी और वो 4 दिन में 20 प्लेटलेट चलवा चुके हैं और एक जम्बो पैक चलवा चुके हैं। तो मुझे उनके कहना नहीं चाहिए लेकिन इस तरह के इलाज को देख के हंसी आई। प्लेटलेट काउंट कम होने से कुछ नहीं होता है, प्लेटलेट काउंट क्यों कम हुई इस बात का इलाज करना होता है। प्लेटलेट कम होना, कमजोरी होना, लीवर में सूजन आना, चक्कर आना, BP कम होना, इन सबकी एक ही वजह होती है, सर्कुलेटिंग फ्लूइड का कम होना, पानी और नमक की कमी होना। अगर आप पहले दिन से ORS का घोल पीना शुरू कर देंगे तो कोई भी परेशानी नहीं होगी।
2: ठीक है,
1: धन्यवाद फोन करने के लिए। डॉक्टर साहब, आपने हमारे इन श्रोता को भी बताया कि प्लेटलेट काउंट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन प्लेटलेट काउंट के पीछे जो वजह है, कम होने के पीछे वजह है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है।
0: इसमें एक और बड़ा वाक्य है, एक बड़ी अच्छी बात है मुकेश जी, मैं आपको बताऊं।
1: जी डॉक्टर साहब,
0: वो जो लोगों में भ्रांति है प्लेटलेट काउंट को लेकर, जो लोग परेशान होते हैं
1: जी,
0: उन्हें ये मालूम नहीं है कि अब जो ज्यादातर शहरों में क्या हो गया है, छोटे छोटे गांव देहातों में लोगों ने वो चाइनीज वाली 1.5 लाख रुपए की मशीनें लगा ली हैं
1: जी,
0: जो TLC, DLC, CBC करके दे देती हैं।
1: बिल्कुल,
0: आप जानते हैं वो कैसे काउंट करती हैं? उनके सॉफ्टवेयर में 3 आकृतियों को देखने की क्षमता होती है।
1: अच्छा,
0: अगर वो साइज माइक्रोन का बिल्कुल गोल सा स्ट्रक्चर है तो वो उसको RBC गिन देती है।
1: ओ,
0: अगर वो 32

0: से 30-28 माइक्रोन का टेढ़ा मेढ़ा स्ट्रक्चर है
1: जी
0: या टेढ़ी मेढ़ी चीज है तो सर डब्ल्यूबीसी काउंट कर देती है,
1: ओ
0: और इन दोनों के बीच में टूटी फूटी सी लकड़ियां जैसी जो चीज होती है
1: जी
0: उनको प्लेटलेट्स गिन लेती है। तो
1: ओहो
0: ये जो प्लेटलेट्स हम लोग गिनते हैं दरअसल ये वयस्क प्लेटलेट्स या बूढ़े प्लेटलेट्स या जिन्हें कहा जाए प्लेटलेट्स की लाशें होती हैं। हमारी
1: ओके
0: बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर क्या, पूरे जगत में सेल वही जिंदा होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है।
1: जी जी जी
0: जब न्यूक्लियस नहीं होता तो वो सेल डेड या फिर इनएक्टिव हो जाता है।
1: बिल्कुल
0: तो ये जो प्लेटलेट्स, जो ओरिजिनल प्लेटलेट्स होते हैं जिसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियेटेड प्लेटलेट्स,
1: जी
0: उनको देख पाना इन छोटे सेल काउंटर से संभव नहीं है।
1: बिल्कुल
0: उसको
1: बिल्कुल
0: देखने के लिए दूसरी कला का किमोफ्लोरेसेंस का मशीन यूज करनी पड़ती है,
1: जी
0: और उसे इमेच्योर प्लेटलेट फ्रैक्शन देखा जाता है,
1: जी जी
0: यानी कि प्लेटलेट्स के अंदर न्यूक्लियस वाले प्लेटलेट्स कितने हैं।
1: जी जी जी
0: तो ये न्यूक्लियस वाले प्लेटलेट्स दरअसल यही सारी की सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी करते हैं।
1: जी बिल्कुल
0: तो
1: डॉक्टर
0: हमने देखा होगा कई बार कि प्लेटलेट संख्या 1,000 रह गई या 10,000 रह गई
1: जी
0: तब भी मरीज को ब्लीडिंग नहीं हो रही है,
1: जी
0: और कुछ मरीज ऐसे हैं जिनमें प्लेटलेट संख्या 1,00,000 है फिर भी उन्हें ब्लीडिंग हो रही
1: ब्लीडिंग
0: है।
1: हो जाती है बिल्कुल
0: वो
1: डॉक्टर
0: होता इसीलिए है कि जो फिजियोलॉजिकली एक्टिव प्लेटलेट्स हैं, इमेच्योर प्लेटलेट फ्रैक्शन है, वो अच्छा होना चाहिए। हमसे
1: जी
0: मरीज आके पूछते हैं कि बताइए कि मेरे प्लेटलेट्स गिरेंगे या बढ़ेंगे
1: जी
0: या मुझे प्लेटलेट चलाने की जरूरत है, तो हम
1: जी
0: सबसे पहले उनका इमेच्योर प्लेटलेट फ्रैक्शन कराते हैं, और
1: अच्छा
0: अगर वो अच्छा है तो हम कहते हैं आपको परेशानी की कोई जरूरत नहीं है,
1: जी
0: आप
1: डॉक्टर
0: ओएस का घोल पीजिए, आप ठीक हो जाएंगे।
1: डॉक्टर साहब, डेंगू के विषय में ये कहा जाता है कि डेंगू बुखार में ज्यादातर लोग बेहोश हो जाते हैं, तो इस बात में कितनी सच्चाई है, और क्या वाकई में डेंगू में बेहोशी किसी खतरे की ओर अलार्म करती है, इंगित करती है?
0: देखिए, डेंगू बुखार में बेहोशी होने के मोटे मोटे तीन कारण हो सकते हैं।
1: जी
0: पहला कारण होता है डेंगू बुखार की वजह से दिमागी बुखार, इनकेफ्लाइटिस हो जाना,
1: जी
0: और दूसरा कारण होता है डेंगू की वजह से लीवर पे असर होने की वजह से अमोनिया का बढ़ जाना जिससे आप व्यक्ति का बेहोश हो जाना,
1: जी जी
0: और तीसरा अगर लंबे समय तक बीपी कम रहे तो व्यक्ति रिनल फेलियर में जा सकता है और यूरिया बढ़ने की वजह से बेहोश हो सकता है।
1: यानी किडनी पे असर आता है सीधा?
0: जी हाँ। तो जो इसमें से जो दिमागी बुखार है,
1: जी
0: डेंगू की वजह से होने वाला दिमागी बुखार है,
1: जी
0: इसका इलाज करना बड़ा आसान है।
1: अच्छा
0: इसमें अगर आप एसाइक्लोविर इंजेक्शन मतलब एंटीवायरल इंजेक्शन लगाते सही व्यक्ति को बहुत अच्छा फर्क आ जाता है।
1: अच्छा अच्छा अच्छा
0: इनफैक्ट अगर हमने जितनी बार देखा गया डेंगू की वजह से जो लोग इनकेफ्लाइटिस जैसे लक्षण लेके आते हैं
1: जी
0: वो बहुत तेजी से ठीक हो जाते हैं।
1: जी
0: और दूसरा कारण है लीवर की दिक्कत होना, और ये अब हम लोगों ने अब सब जगह अमोनिया नापने के इंस्ट्रूमेंट लगाए हैं कोविड के दौरान, और कोविड के दौरान ये सब जांचें बढ़ा ली हैं जिनसे डेंगू के मरीजों में भी जांच करने में बड़ी आसानी हो रही है।
1: अच्छा
0: तो जो सीरम अमोनिया जिनका बढ़ जाता है लीवर की दिक्कत होने की वजह से,
1: जी
0: उनका अमोनिया कम करने की दवाई दो तो वो होश में बिल्कुल तेजी से आ जाते हैं।
1: अच्छा
0: पर अमोनिया ठीक होने में कई बार दो दो तीन तीन चार चार दिन ले लेता है।
1: जी जी इस हालात में फिर मरीज को अस्पताल में एडमिट रहने की जरूरत होती है?
0: एक्चुअली अस्पताल में मरीज को एडमिट नहीं, आईसीयू में रखना पड़ता है,
1: ओके
0: क्योंकि जो अमोनिया बढ़ने की वजह से व्यक्ति बेहोश होता है वो पूरा बेहोश नहीं होता है,
1: जी
0: वो एजिटेटेड होता है, हिंसक होता है, हाथ पैर पटकता रहता है,
1: जी
0: मतलब अर्धमूर्छित या अर्धविक्षिप्त अवस्था में होता है समझ लीजिए।
1: जी
0: तो अगर ऐसा व्यक्ति और प्लेटलेट काउंट पहले से ही कम है, अगर चोट लगा लेगा तो ब्लीडिंग हो जाएगी।
1: बिल्कुल
0: तो अक्सर ऐसे व्यक्तियों को सुला के रखना पड़ता है।
1: अच्छा
0: अमोनिया बढ़ने की वजह से जो दिमागी असंतुलन होता है उसका असली इलाज होता है कि पखाने के रास्ते की धुलाई करना,
1: अच्छा
0: और सीरप देना जिससे बार बार मोशन आए,
1: जी
0: और कुछ
1: जी
0: इंजेक्शन है वो लगाना।
1: जी
0: दिमागी जो लीवर की वजह से जो लोग बेहोश हो जाते हैं
1: जी
0: उनके रिश्तेदार बहुत ज्यादा कभी कभी बेचैन हो जाते हैं,
1: जी
0: क्योंकि ऐसा व्यक्ति ठीक होने में तीन तीन चार चार पांच पांच दिन लगा देता है।
1: जी
0: हमने कई बार यहाँ पे देखा कि व्यक्ति बेहोश है, जहाँ तीसरा दिन हुआ तो एक सिंड्रोम होता है भर्ती मरीजों में तीसरा दिन का सिंड्रोम,
1: जी
0: कि कोई भी रिश्तेदार मिलने का ना, अरे आज 3 दिन हो गए मरीज को होश नहीं आया,
1: जी
0: अब ये 3 दिन का कौन सा वो है कि तीसरे दिन अगर व्यक्ति होश में नहीं है तो लोग परेशान होने लगते हैं, आज 3 दिन हो गए मरीज होश में नहीं है।
1: जी जी
0: तो लीवर की दिक्कत होने से होश में आने में व्यक्ति को 5-6-7 दिन भी लग सकते हैं,
1: जी
0: लेकिन ज्यादातर लोग ठीक हो जाते हैं, बस इस दौरान वो उल्टी ना कर लें, हलक में ना चली जाए,
1: जी
0: बेड सोर ना बन जाए या अपने आप को चोट ना मार लें, इसका ध्यान रखना होता है।
1: डॉक्टर साहब, खतरनाक कब होता है डेंगू? जबकि एक तरह से

0: जान का जोखिम हो जाता है।
1: मुकेश बाबू
0: जी,
1: मैंने अपनी आंखों के सामने ऐसे पेशेंट देखे हैं
0: जी
1: जो एक मिनट के अंदर वह डेंगू शॉक सिंड्रोम,
0: ओके,
1: जिनमें जब एसिडोसिस हो जाती है
0: जी,
1: मतलब जिनके शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है
0: जी,
1: उनको एकदम से बीपी कम होता है, ऐसे व्यक्ति आते हैं, 2 दिन का बुखार की बात कही, और ऐसे व्यक्तियों में अधिकतर पहले डेंगू हो चुका होता है
0: जी,
1: और वो कुछ भी करने का मौका नहीं देते। इस सीजन में भी मैं कम से कम 2 से 3 व्यक्ति ऐसे देख चुका हूँ,
0: जी
1: लेकिन दोनों तीनों में बात एक कॉमन थी,
0: जी
1: वो दोनों तीनों ने फ्लूड नहीं लिया था, ORS का घोल नहीं पिया था, जहां से इलाज करा रहे थे वहां पे उन्होंने IV फ्लूड नहीं लगाया था। हम लोगों ने 5 साल 4 साल पहले भी सब जगह CME कर करके लोगों को बताया था,
0: जी
1: गांव देहात के डॉक्टर को भी, पेरिफेरी में भी, के डेंगू फीवर के जो 3 फेज हैं,
0: जी
1: पहले फेब्राइल फेज में सबसे ज्यादा ग्लूकोज चढ़ाने की जरूरत है, और ग्लूकोज चढ़ा के हाइड्रेट कर देंगे तो कॉम्प्लिकेशन कम हो जाएंगी।
0: यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं डेंगू बुखार में जो ORS घोल आप बता रहे हैं या जो फ्लूड चढ़ाने की बात बता रहे हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। इलाज की शुरुआत उसी तरह से होनी चाहिए
1: जी हाँ जी हाँ।
0: और सभी हमारे श्रोताओं को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इन दिनों जल भराव की जहां तक बात है डॉक्टर साहब, तो वर्तमान परिस्थितियों में जो बरसात हुई है पिछले दिनों में, उससे ग्रामीण क्षेत्रों में, आसपास खेतों में सब जगह जल भराव है। ऐसे में मच्छर ज्यादा से ज्यादा पनप सकते हैं
1: जी हाँ
0: और बीमारी को और बढ़ा सकते हैं।
1: मुकेश जी, डेंगू के ऊपर इतनी सारी रिसर्च चल रही है,
0: जी
1: इतने सारे टेस्ट, इतने सारे इंटरवेंशन, इतनी सारी दवाइयाँ और इतने सारे इलाज करने के तरीके आ चुके हैं, तरकीबें आ चुकी हैं
0: जी,
1: कि अगर बहुत बिगड़ने से पहले, मतलब बिल्कुल ही डेंगू शॉक सिंड्रोम में जाने से पहले अगर व्यक्ति आ जाए
0: जी,
1: तो व्यक्ति बड़ी आसानी से ठीक हो सकते हैं
0: जी,
1: और किसी की भी मृत्यु अब डेंगू बुखार से नहीं होनी चाहिए।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, ऐसी ही कामना करते हैं हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से भी कि कोई भी व्यक्ति डेंगू की वजह से अपनी जान न खोए, ये हमारी कामना है। बहरहाल सबको सावधान रहना है, सतर्क रहना है और डेंगू की जो प्रमुख वजह है मच्छर, उससे अपना बचाव करना है। अगर डेंगू की बीमारी हो जाए तो घबराना नहीं है, उचित तरह से इलाज कराना है और उचित जांचों की आवश्यकता है। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारे श्रोताओं के लिए, न सिर्फ डेंगू बुखार से संबंधित बल्कि जांचों के विषय में जो आपने जानकारी दी है, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक दीपमाला हॉस्पिटल, निकट टेलीफोन एक्सचेंज, चौपला, बरेली।
3: बरेली शहर में गंभीर और अति गंभीर मरीजों की सांस बंद होने पर
2: अब विश्व स्तरीय चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध हैं।
3: बरेली शहर का सबसे किफायती ICU अति गंभीर मरीजों के लिए विशेष आइसोलेशन ICU
4: दीपमाला हॉस्पिटल, निकट टेलीफोन एक्सचेंज, चौपला, बरेली।
3: हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज, फॉलिज और जहर खाए मरीजों के आधुनिकतम इलाज की विशेष किफायती सुविधा क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर सोमेश मेहरोत्रा के द्वारा।
2: इमरजेंसी सेवाओं के लिए हमारा मोबाइल नंबर
3: 9837000004।

अभी आप सुन रहे थे रेडियो हेल्पलाइन 100.4 FM पर। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोतो, हमारा विशेष कार्यक्रम आसमान के रंग सारंग के संग आप सुन सकेंगे कल सुबह 11:30 पर और शाम 8:00। जी हाँ, एक बार पुनः सुने हमारा विशेष कार्यक्रम आसमान के रंग सारंग के संग। हम लेकर आएंगे इस कार्यक्रम को कल सुबह 11:30 और रात्रि 8:00। तो सुनना ना भूलेगा हमारा इस विशेष कार्यक्रम को 100.4 FM आकाशवाणी बरेली से। आपने ट्यून किया है 100.4 FM आकाशवाणी बरेली। रेडियो हेल्पलाइन संबंधी सूचना सुनिए। स्वास्थ्य संबंधी विषय पर होने वाले फोन इन कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन में शनिवार दिनांक 17 अक्टूबर 2026 को

शाम 7:31 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है, क्या करें जब जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु न रोए, शंकाएं और समाधान। इसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे गुरुवार दिनांक 16 अक्टूबर को 2026 को सायं 4 बजे से। तो श्रोताओ, इस संबंध में यदि आपका कोई भी प्रश्न हो तो टेलीफोन नंबर 0581-2517200 पर फोन करें। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे स्टूडियो में बरेली के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप गंगवार उपस्थित रहेंगे। विवरण एक बार फिर सुन लें। विषय है, क्या करें जब जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु न रोए, शंकाएं और समाधान। रिकॉर्डिंग की तारीख और समय याद रखिएगा, शुक्रवार दिनांक 16 अक्टूबर 2026 को सायं 4 बजे से, यानी के कल सायं 4 बजे से। हमारा टेलीफोन नंबर है 0581-2517200। आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। और अब आगे के कार्यक्रमों के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र।

0: भेंट वार्ता।
1: हम सभी अपने समाज में या कहें अपने परिवार में ये कोशिश करते हैं कि हम आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भरता का जो सुख है वह शायद ही कहीं और है, क्योंकि जब कभी भी आप अपने समाज में उठते बैठते हैं तो आधुनिक युग में आत्मनिर्भरता का आधार मायने रखता है। लेकिन जब इससे थोड़ा सा और ऊपर चलें, हम देश के स्तर पर सोचें, तो वही स्थिति होती है वहां भी। तात्पर्य यही हुआ कि आप आत्मनिर्भर हैं तो निश्चय ही आपका जो स्वाभिमान है वह जगा रहेगा। तो भारत की जो संप्रभुता है उस संदर्भ में आत्मनिर्भरता को देखा जाए तो निश्चित ही से क्या कुछ खास है आर्थिक क्षेत्र को लेकर, उसे जानने समझने के लिए हमने आमंत्रित किया है। जैसा कि आपने सुना ही नाम, श्री राजेंद्र कुमार सिंह साहब हैं। आप पूर्व मुख्य प्रबंधक रह चुके हैं बैंक में। सिंह साहब, स्वागत करते हैं स्टूडियो में। आत्मनिर्भरता कितना मायने रखती है?
2: आर्थिक संप्रभुता का अर्थ है देश का अपनी आर्थिक नीतियों, उत्पादन एवं संसाधनों पर पूर्ण नियंत्रण। अभी आपने आत्मनिर्भर भारत की बात की, तो आत्मनिर्भर भारत अभियान भी चलाया गया। इसी संप्रभुता को प्राप्त करने का एक सशक्त माध्यम है अपनी जरूरतों जैसे आर्थिक, टेक्निकल एवं रक्षा प्रणाली को पूरा करने के लिए दूसरों पर हम निर्भर न हों, बल्कि स्वयं सक्षम एवं स्वावलंबी बने। यह अवधारणा का प्रारंभ कोरोना काल के दौरान मई 2020 में प्रारंभ किया गया। यद्यपि इसके पहले भी किया गया है, परंतु कोरोना काल ने एक आपदा को अवसर में परिवर्तन करने के लिए एक मौका दिया। इसके लिए 20 लाख करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया
1: अलग से
2: जी। विशेष करके महिलाओं, युवाओं और एसएमई सेक्टर के लिए ये प्रोविजन किया गया, और इससे बहुत उद्योगों को बढ़ावा भी मिलना, विशेष करके छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिलना शुरू हुआ। अब हम ये जाने कि आत्मनिर्भर भारत के स्तंभ या किस किस क्षेत्र में ये है।
1: हाँ, उस पर चलना जरूरी है।
2: हाँ,
1: क्षेत्रों की बात हम करेंगे, लेकिन जिसकी बात अभी MSMEs की आप कर रहे थे
2: जी,
1: तो ये क्या वही बात है कि हाँ, छोटी छोटी बचत से ही बड़ी बचत होती है? औद्योगिक विकास में तो हम यही समझते हैं, बड़े बड़े जब उद्योग धंधे लगते हैं तो देश तेजी से आगे बढ़ता है, लेकिन क्या इन छोटों का महत्व इस संदर्भ में कुछ खास है?
2: बिल्कुल सही आपने कहा, और ये SME सेक्टर में अब तो इतना बढ़ावा मिल रहा है MSME को कि अब छोटे छोटे उद्योगों में जो लोकल लेवल पे जहाँ पे जो रॉ मटेरियल उपलब्ध है उनके हिसाब से उनको उद्योग लगवाए जा रहे हैं, और यहाँ तक कि कुछ में तो कोई सिक्योरिटी भी नहीं ली जा रही है, 10 लाख तक तो ऐसे ही लोन हो जा रहे हैं। विशेष करके अब हमें इसी पर जाना है, और इस पर सरकार भी जोर दे रही, और बैंक भी विदाउट

0: कोलेटरल सिक्योरिटी ये सब लोन कर रहे हैं, बशर्ते आप में करने की क्षमता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि छोटे छोटे उद्योग ही बड़ा स्वरूप ले रहे हैं।
1: तो ये छोटे छोटे मिलकर ही बड़ा स्वरूप लेते हैं,
0: जी
1: लेकिन औद्योगिकीकरण जो हमारे यहाँ हो रहा है इस समय ग्लोबलाइजेशन की इस दौर में,
0: बिल्कुल
1: ग्लोबलाइजेशन शब्द मैं इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ कि वैश्वीकरण जिसे कहते हैं हिंदी में,
0: हाँ
1: और कि विदेशों की कंपनियां भी हमारे यहाँ निवेश कर रही हैं और वो फिर हमारी आर्थिक जो प्रगति है उसमें योगदान कर रही हैं। आप इसको किस दृष्टि से देखते हैं?
0: अब हम इसको यहां से कॉन्सेप्ट लें कि आत्मनिर्भर भारत का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, तो उसमें हम किसी को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हैं। इसका हमारा स्तंभ क्या है? हमारी इकोनॉमी जो क्रमिक बदलाव, धीरे धीरे जो बदलाव का हमने इसके ऊपर ये

0: कहते हैं हिंदी में,
1: हाँ
0: और कि विदेशों की कंपनियां भी हमारे यहाँ निवेश कर रही हैं और वो फिर हमारी आर्थिक जो प्रगति है उसमें योगदान कर रही हैं। आप इसको किस दृष्टि से देखते हैं?
1: अब हम इसको यहां से कॉन्सेप्ट लें कि आत्मनिर्भर भारत का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, तो उसमें हम किसी को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हैं। इसका हमारा स्तंभ क्या है? हमारी इकोनॉमी जो क्रमिक बदलाव, धीरे धीरे जो बदलाव का हमने इसके ऊपर ये लगाया है कि हम जंप भी करें,
0: जी
1: छलांग भी लगाएं। हाईवेज बनाने का ये एक बड़ा उपक्रम जो चालू किया गया है, बहुत वो विकास में बहुत सशक्त माध्यम है, अर्थव्यवस्था को हमारे बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक भारत की पहचान और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का विकास करना, यह भी एक हमारे स्तंभ में है। दूसरा यह कि प्रणाली,
0: बुनियादी ढांचे में थोड़ा सा हम समझना चाहेंगे कि किस किस सेक्टर को आप शामिल करके बताना चाह रहे हैं कि हाँ, हम जो आत्मनिर्भर हो रहे हैं
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल
0: उसमें
1: बिल्कुल,
0: किसका योगदान है?
1: बुनियादी ढांचे में हाईवेज हैं, हमारे एसएमई सेक्टर्स हैं, हमारे कॉटेज इंडस्ट्रीज जितनी हैं, ये सब बुनियादी में हैं। और हम जितनी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आगे बढ़ रहे हैं, अभी तो हम इस पे आगे चर्चा करेंगे कि टेक्नोलॉजी में कितना हम बढ़ गए हैं
0: जी
1: और कितना बढ़ करके एआई के माध्यम से हम कितना डेवलप कर रहे हैं, वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी पैदा कर दी है। टेक्नोलॉजी से ही यह संचालित व्यवस्था हम ये सब कर रहे हैं, छोटे छोटे स्तर पे भी टेक्नोलॉजी बहुत काम कर रही है, और उससे ऐसा नहीं कि बेरोजगारी हो जा रही, उसमें भी अवसर पैदा हो रहे हैं।
0: जी
1: तो इसलिए हमारे पास तो सबसे बड़ा आधार जो है, हमारा जो 65% युवा है, और ये 65% युवा हमारे डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ टैलेंटेड इतने लोग हैं कि पूरे विश्व के कई देशों में बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम उनको उतना पे नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो शायद जाते हैं, लेकिन अब तो कुछ वापस भी आना शुरू किए हैं कि हम हिंदुस्तान को, ये है कि डिमांड एंड सप्लाई, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज भी हमें देखते रहना है, और इस पर गवर्नमेंट भी ध्यान दे रही कि प्रोडक्शन तो हो रहा है, मार्केटिंग कहाँ होगी। अगर दोनों चीजों में सामंजस्य हो गया और उसको करने में हमारे बहुत लाभ हैं, और इससे हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे।
0: सिंह साहब, एक बात आजकल बहुत जोर शोर से ये होती है कि कोई देश टैरिफ लगा दे रहा है, कोई मतलब व्यापार में तरह तरह की बाधाएं आ रही हैं, उसके रास्ते भी नए नए खुल रहे हैं।
1: बिल्कुल
0: वो परिदृश्य जो स्थापित हुआ करता था कि कुछ देश आपस में ही आदान प्रदान कर रहे हैं, बाकी स्थान छूटा हुआ था, तो खाड़ी युद्ध जो हुआ है उसके बाद से थोड़ा सा इसमें परिवर्तन आया है और
1: जी
0: देखने को मिल
1: जी
0: रहा है।
1: जी
0: तो आपको क्या लगता है, $5 ट्रिलियन की जो हमारी अर्थव्यवस्था होने जा रही है, लगभग अब पहुंचने को है, 3 से ऊपर चल रही है, 4 के नजदीक है, तो हो सकती है वो, तो इसमें किस क्षेत्र को आप मानते हैं कि हमारा ये क्षेत्र सबसे बड़ा योगदान कर सकता है?
1: आप समझ लें कि विजन 2047 तो है,
0: जी
1: लेकिन हमारा 2030 भी एक विजन है, इसको शायद आप जानते
0: जी
1: होंगे। तो इसमें 5 ट्रिलियन ही नहीं, 5 से 7 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें विनिर्माण और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, ये सब भी इसमें शामिल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी। ये विजन 2030 है इंडिया का, और जैव प्रौद्योगिकी और हरित ऊर्जा, ग्रीन एनर्जी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में उच्च मूल्य वाली नौकरियों का सृजन भी हमें करना है। एआई में कैसे हम बढ़ रहे हैं, एआई में जैसे बढ़े अब अपॉर्चुनिटीज कितनी हो रही हैं। अभी तो तुरंत ये हुआ कि एआई के आने से जो चिप्स होती हैं वहां से हम इम्पोर्ट करते हैं, कहां से, चाइना से,
0: चाइना से
1: और जब एआई आई तो चिप्स की डिमांड बढ़ गई। अब हार्ड डिस्क देख रहे होंगे कि उसकी कीमतें उछाल कर दी, तो हमने क्या अवसर वो किया है कि गवर्नमेंट बहुत तेजी से चिप्स के जो रेयर अर्थ मेटल है, इनको हमने देख लिया, लैंड एलोकेट कर लिया है उनकी चिप्स के लिए, वो रेयर अर्थ मेटल को हम एक्सप्लॉयट कर रहे हैं,
0: जी
1: और एक्सप्लॉयट कर रहे हैं तो हम इतनी अपॉर्चुनिटी हमारे नेवियों के लिए ये पैदा हो रही है।
0: संदर्भित करते हुए यह कहें कि

0: जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है और हमारी जो पुरानी व्यवस्था रही, जिसे हम कुटीर उद्योग के नाम से
1: हाँ हाँ
0: जानते थे,
1: हाँ हाँ
0: दोनों का सामंजस्य होकर आज आगे बढ़ रहा है, जो हमारे लिए सशक्त होगा, टिकाऊ होगा, और फिर पड़ोसी देशों ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में ये का जो प्रतिस्पर्धा चल रही है उसमें हम जरूर सहभागी रहेंगे और एक स्थान अपना रहेगा, ऐसा
1: बिल्कुल
0: परिलक्षित होता है आपके शब्दों से।
1: जी
0: बहुत
1: जी
0: बहुत धन्यवाद सिंह साहब कि आपने समय निकाला, स्टूडियो आए।
1: आत्मनिर्भर भारत आर्थिक संप्रभुता, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे राजेंद्र कुमार सिंह से डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी की ये भेंटवार्ता। आज का

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:10 हुए हैं और प्रस्तुत है सुगम संगीत कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मौसमी दत्ता के गाए कुछ देवी भजन।

0: अति आज का सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त हुआ।
1: सुनो ना,
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
3: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
0: मीडियम वेव के मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र का प्रसारण। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से।

0: समीर का लिखा गीत आप सुन रहे थे। आवाजें थी उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की। फिल्म का नाम है कौन है जो सपने में आया।
1: खेती में मेहनत के साथ समझदारी से जमीन का इस्तेमाल भी जरूरी है। सोचिए, एक ही खेत में गन्ना लगा है, क्या इसी के साथ सरसों की फसल भी उगाई जा सकती है? बिल्कुल, और इसी तकनीक का नाम है सह फसली खेती।
2: गन्ने की कतारों के बीच सरसों की फसल उगाकर जमीन का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी जमीन वही खेती का तरीका समझदार।
1: इससे किसान को कम समय में अतिरिक्त उपज और आय का और अवसर मिल सकता है।
2: तो एक फसल पर निर्भर न रहें, गन्ने के साथ सरसों की सह फसली खेती के लिए सरसों के बीज कृषि विभाग से निशुल्क प्राप्त करें।
1: किसान वही खेत वही, बस सोच में एक नया कदम।
2: कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।

किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है। पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।

क्या कहना फिल्म में अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू, सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाजों को। इसी के साथ ही चित्रपट संगीत के कार्यक्रम को यहीं विराम देने का वक्त है। मीडियम वेव के मीटर पर आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। रात के 8:45 होने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में 3,300 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। कहा, केंद्र शासित प्रदेश का विकास केंद्र की प्राथमिकता। सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईआर के विरोध में न्यायालय परिसर तक मार्च को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव और अन्य को नोटिस जारी किया। मतदाता सूची से कथित नाम हटाने के मामले में निर्वाचन आयोग से भी जवाब मांगा। रक्षा मंत्रालय ने 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। भारतीय वायुसेना के लिए संचार उपग्रह और भारतीय नौसेना के लिए टॉर्पीडो वरुणास्त्र खरीदे जाएंगे। सरकार ने 1 नवंबर से मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए फोन करने वाले का नाम प्रदर्शित करना अनिवार्य किया। सेंसेक्स 2% से अधिक बढ़कर 74,316 पर बंद हुआ। और प्रधानमंत्री मोदी ने एशियाई खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से बातचीत की। कहा, देश वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में उभरने के लिए तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लद्दाख का विकास केंद्र सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। श्री मोदी ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से लद्दाख में संपर्क सुविधाएं मजबूत होंगी।
1: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद इसकी विकास जरूरतों पर अधिक ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि युवाओं की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नई प्रौद्योगिकियों को सीखने के अवसर और दूसरे शहरों में निर्भरता कम करने पर ध्यान दिया जा रहा है।
1: यहाँ के युवाओं को अच्छी शिक्षा मिले, नई टेक्नोलॉजी सीखने का अवसर मिले और उन्हें दूसरे शहरों पर निर्भर न रहना पड़े। लेह में इसलिए एक बड़ा सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बन रहा है। आईआईटी जम्मू और आईआईएम जम्मू के सैटेलाइट कैंपस स्थापित करने के प्रस्ताव भी आगे बढ़ाए जा रहे हैं। इनसे उच्च शिक्षा, रिसर्च और नई स्किल्स के लिए लद्दाख के युवाओं को अपने क्षेत्र में ही बेहतर अवसर मिल सकेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि लेह में एक प्रमुख उत्कृष्टता केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। श्री मोदी ने बताया कि लद्दाख की नई खेल नीति के माध्यम से खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत GSAT-7C संचार उपग्रह और भारतीय नौसेना के लिए टॉर्पीडो वरुणास्त्र की खरीद की जाएगी। नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के अपर सचिव और अधिकारियों पर हस्ताक्षर किए गए।

0: जीसैट 7C उपग्रह के लिए 2500 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध बेंगलुरु की न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ किया गया है। स्वदेशी रूप से विकसित ये उपग्रह भारतीय वायुसेना की सुरक्षित और निर्बाध संचार क्षमता मजबूत करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत लगभग 100 देशों को स्वदेशी रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है। उन्होंने बताया कि भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 के मात्र 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 38,000 करोड़ रुपए हो गया। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में एक रक्षा सम्मेलन के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत ने गोला बारूद मामले में 90% से अधिक आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। सरकार ने 1 नवंबर से उपयोगकर्ताओं के लिए कॉल करने वाले का नाम दिखाने की सेवा अनिवार्य कर दी है। दूरसंचार विभाग ने सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को 1 नवंबर से सभी सेवा क्षेत्रों में कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन CNAP सेवा शुरू करने का निर्देश दिया। इस सेवा के अंतर्गत कॉल करने वाले दूरसंचार सेवा प्रदाता के ग्राहक डेटाबेस में दर्ज नाम कॉल प्राप्त करने वाले के मोबाइल पर दिखाई देंगे। वहीं जिन अंतर्राष्ट्रीय नंबरों को फोन में सेव नहीं किया गया है उनसे आने वाली कॉल पर इंटरनेशनल कॉल लिखा दिखाई देगा। दूरसंचार विभाग ने बताया कि सेवा प्रदाता 4G और इससे आगे के वायरलेस नेटवर्क पर इस सेवा का परीक्षण कर चुके हैं। विभाग ने कहा कि 2G और 3G तकनीक वाले वायरलेस नेटवर्क तथा सार्वजनिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क पर CNAP सेवा शुरू करने के बारे में अलग से विचार किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR में कथित अनियमितताओं को लेकर अदालत परिसर तक मार्च निकालने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और अन्य को नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने टिप्पणी की है कि कोई भी न्यायपालिका पर दबाव नहीं बना सकता। न्यायालय ने SIR प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए जाने और अनियमितताओं के आरोपों को लेकर राहुल गांधी तथा अन्य विपक्षी नेताओं की अलग याचिका पर निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी से भी जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि इस याचिका को पहले से लंबित मामलों के साथ संलग्न किया जाएगा। न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से संबंधित अन्य याचिकाओं पर भी केंद्र सरकार और अन्य पक्षों को नोटिस जारी किए हैं। ये सुनवाई SIR में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे की मांग के बीच हुई है। राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं ने सोमवार को अपनी याचिका दायर करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तक मार्च निकाला था। न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से भी SIR से कथित नाम हटाने पर जवाब मांगा है। सरकार ने कहा है कि शुल्क संबंधी बाधाओं के बावजूद इस वर्ष अप्रैल से सितंबर के दौरान अमेरिका को भारत का वस्तु निर्यात बढ़कर करीब $51 अरब हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष इसी अवधि में ये निर्यात $45 अरब 73 करोड़ था। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि प्रस्तावित भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर बातचीत सही दिशा में बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक सामान, पेट्रोलियम उत्पादों, इंजीनियरिंग वस्तुओं, रसायनों और कृषि उत्पादों के अधिक निर्यात से इस वृद्धि को समर्थन मिला है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने देश के युवाओं से नई तकनीक अपनाने, कौशल बढ़ाने और 2047 तक विकसित भारत बनाने में योगदान देने का आह्वान किया। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि अमेरिका के साथ मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने और कानूनी मसौदा तैयार करने का काम जारी है।
2: न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौते 20 अक्टूबर को यानी दशहरे के दिन से लागू हो जाएगा। वहीं 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौता फरवरी या मार्च 2027 तक लागू होने की उम्मीद है। अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण को भी अंतिम रूप दे दिया गया है।

0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय रणनीतिक व्यापार कमान केंद्र का शुभारंभ किया। यह केंद्र भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की निगरानी, विश्लेषण और प्रबंधन मजबूत करेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस केंद्र को वरिष्ठ नीति निर्माताओं और सरकारी अधिकारियों को भारत के व्यापार प्रदर्शन, निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं, नियामक मंजूरियों, आवेदनों के निपटारे और अन्य कामकाज की एकीकृत जानकारी उपलब्ध कराने सेवा में 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। जन सेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण के साथ सरकार 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम बताएंगे कि कैसे साकार किया जा रहा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में गिव इट अप अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान के तहत एक करोड़ 13 लाख से अधिक एलपीजी उपभोक्ताओं ने अपनी गैस सब्सिडी स्वेच्छा से छोड़ दी। इससे हुई बचत से गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए। इस योजना से खास तौर पर ग्रामीण महिलाओं को लाभ हुआ, जो पहले खाना पकाने के लिए और गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को अब तक 10 करोड़ 56 लाख से अधिक मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए हैं। वर्ष 2015 में दिल्ली इकोनॉमिक्स कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि गिव इट अप अभियान ने लोगों को एकजुट होकर गरीब परिवारों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने के लिए प्रेरित किया।
2: इंट्रोड्यूस द गिव इट अप कैंपेन seeking the cooperation of the public in voluntarily giving up cooking gas subsidies. We promise that for every connection given up, one poor family currently without gas would be given a connection. This will enable us to liberate many poor women from the health hazards of using firewood. This brings me to an achievement that I think even our worst critics do not dispute. This is the change in the levels of corruption.
1: उत्तर प्रदेश की रहने वाली संजू देवी ने बताया कि गैस चूल्हे से खाना बनाना काफी आसान हो गया है और उन्हें अब खाना बनाते समय धुएं का सामना भी नहीं करना पड़ता।
3: पहले जब चूल्हे पे खाना बनाया करती थी मैं, तो मेरे धुएं से चेहरे पे एलर्जी हो जाती। अब मुझे इतनी सुविधाएं मिल गई हैं कि अब आराम से खाना बना लेती। इसलिए मैं नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी।
1: गिव इट अप अभियान ने लोगों में सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा दिया है, साथ ही हर परिवार तक स्वच्छ ईंधन पहुंचाने के सरकार के प्रयासों को मजबूती दी है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत वैश्विक वर्ष 2026 के एशियाई खेलों में भाग लेने वाले तिरंगे का मान बढ़ाया है। उनकी उपलब्धि की जुनून जा सकता है।
4: हमारी हॉकी की महिला और पुरुष दोनों, हमारी महिला हॉकी टीम

0: और दूसरी बार मेडल जीता है और जहां पंच वहां परमेश्वर शूटिंग में स्थान में भारत को मिली सफलता ये वाकई बहुत सुंदर है।
1: कुमार,
2: घरेलू शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 1534 अंक उछलकर 74316 पर पहुंच गया। निफ्टी 375 अंक की तेजी के साथ 22997 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया एक डॉलर के मुकाबले 10 पैसे की मजबूती के साथ 95.05 रुपए पर बंद हुआ।
1: शिमला से हमारे संवाददाता ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बर्फबारी और निचले तथा मैदानी इलाकों में रुक रुक कर वर्षा हो रही है।
3: हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति और कुल्लू के रोहतांग दर्रे सहित ऊंची चोटियों पर आज सुबह से ही रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। वहीं कांगड़ा, मंडी, चंबा और शिमला जिला के ऊपरी पोर्टल तक अब यातायात सुबह 6 बजे से साय 5 बजे तक ही चलाया जा रहा है। जिला प्रशासन ने पर्यटकों व स्थानीय लोगों को रोहतांग दर्रे पर जाने से पहले ताज़ा आधिकारिक निर्देशों की

0: जानकारी लेने को कहा है। इस बीच मौसम विभाग ने आज राज्य के 4 जिलों कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में अंधड़ आसमानी बिजली गिरने, ओलावृष्टि और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: मौसम विभाग ने कल कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में 3,300 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। कहा, केंद्र शासित प्रदेश का विकास केंद्र की प्राथमिकता। सर्वोच्च न्यायालय ने SIR के विरोध में न्यायालय परिसर तक मार्च को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव नाम हटाने के मामले में निर्वाचन आयोग से भी जवाब मांगा। रक्षा मंत्रालय ने 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने 1 नवंबर से मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए फोन करने वाले का नाम प्रदर्शित करना अनिवार्य किया। और प्रधानमंत्री मोदी ने एशियाई खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से बातचीत की। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। वक्त हो चला है कार्यक्रम आपके लिए। संघर्ष फिल्म से आप सुन रहे हैं रेमो फर्नांडिस और जसपिंदर नरूला की आवाज में ये गाना समीर के बोल, जलित का संगीत।

कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं अक्स फिल्म से। केके की आवाज में गुलजार के बोल अनु मलिक का संगीत।

मीनाक्षी फिल्म से आप सुन रहे हैं सुखविंदर सिंह की आवाज में ये गाना। इस गाने को लिखा भी है सुखविंदर सिंह ने और इसका म्यूजिक तैयार किया है ए आर रहमान ने।

0: वो रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
1: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
0: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
1: तो इसके लिए मैं एक इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे वहां रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिन पॉइंट ना कर पाए।

0: कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
1: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेंद्र मुलकलवार। बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: दस फिल्म से शान और केके की आवाज, पंची जलनोवी का के बोल हैं और विशाल शेखर का संगीत।

0: प्लफ मास्टर फिल्म से आप सुन रहे थे ये गाना। इस गाने के लिरिक्स और म्यूजिक विशाल और शेखर के। वायु का लिखा और सचिन जिगर का कंपोज किया ये गाना आप सुन रहे हैं एश किंग और जिगर सरैया की आवाजों में अ जेंटलमैन फिल्म से।
1: आंखों में एक्सप्लोर करती है।

0: Yeah. Mira, bro.
1: Ash King और जिगर सरैया के साथ आप सुन रहे थे।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन, आज के फनकार। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
1: शोधा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे की शोधा आ गई सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

मैं हूं अमरकांत के फनकार। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के संगीतकार शंकर

गीत चाहे कोई भी हो, जब वो शंकर जयकिशन के साजों स्वर लहरियों पर सवार हुआ तो सीधे सुनने वालों के दिलों तक पहुंच गया और फिर वो श्रोता श्रोता नहीं आशिक बन गया।

आज हम याद कर रहे हैं संगीतकार शंकर को, जिनका जन्म हुआ 15 अक्टूबर सन 1922 को हैदराबाद स्टेट के दक्षिणी हैदराबाद में, जो कि अब तेलंगाना राज्य में है। संगीतकार शंकर का पूरा नाम था शंकर सिंह राम सिंह रघुवंश।

संगीतकार शंकर की शुरुआती पढ़ाई हैदराबाद में हुई और फिर शंकर ने बाबा नासिर खान साहिब की देखरेख में तबला वादन की शिक्षा लेना शुरू कर दी। कुछ वर्षों के बाद शंकर ख्वाजा खुर्शीद अनवर के शागिर्द बन गए और फिर उन्हीं के ऑर्केस्ट्रा में रम गए।

नारायण और हेमवती का एक थिएटर ग्रुप हुआ करता था, जिससे शंकर जुड़ गए और थोड़े ही दिनों के बाद पृथ्वीराज कपूर द्वारा स्थापित पृथ्वी थिएटर से जुड़ गए। यहाँ वो संगीतकार हुसनलाल भगतराम के सहायक के रूप में काम करते।

0: बात उन दिनों की है जबकि शंकर पृथ्वी थिएटर में काम किया करते थे। तब स्वतंत्र संगीतकार के रूप में काम की तलाश में वो कई प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के यहाँ स्ट्रगल के लिए जाया करते थे। उन्हीं में से एक थे गुजराती फिल्मों के निर्देशक चंद्रवदन भट्ट। शंकर इनके यहाँ नियमित रूप से जाते थे। चंद्रवदन भट्ट ने भी शंकर से वादा किया था कि जब कभी भी वो खुद कोई फिल्म प्रोड्यूस करेंगे तो उन्हें संगीतकार के रूप में साइन जरूर करेंगे। इस बात का जिक्र मैं इसलिए यहां कर रहा हूं क्योंकि यहीं पर शंकर की मुलाकात अक्सर एक युवक से होती थी जो कि बहुत अच्छा हारमोनियम बजाया करता था। तो एक दिन जबकि शंकर को पृथ्वी थिएटर में एक अच्छे हारमोनियम प्लेयर की जरूरत पड़ी तो उन्हें उसी युवक की याद आई और वो जाकर उसे अपने साथ ले आए और पापा जी यानी पृथ्वीराज कपूर से पूछे बगैर उन्होंने इस युवक पृथ्वी थिएटर में काम पर रख लिया। अब जब पापा जी ने उस युवक को हारमोनियम बजाते सुना तो बेहद खुश हुए और शंकर को उन्होंने उनके इस चुनाव पर बहुत बधाई दी।
1: हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना।

0: महफिल में शमा हो परवाना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा दीवाना।
1: हाँ तो हम बात कर रहे थे हारमोनियम बजाने वाले उस युवक की, जिसे शंकर ने अपने साथ पृथ्वी थिएटर में काम दिला दिया। दोनों साथ काम करने लगे, दोनों के बीच बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई। जहाँ भी जाते दोनों साथ जाते। अब पृथ्वी थिएटर में उस समय होने वाले नाटकों में संगीत के अलावा दोनों छोटे मोटे रोल्स भी करने लगे। लोगों ने इनकी दोस्ती को देखते हुए इन्हें राम लक्ष्मण की जोड़ी का नाम भी दे दिया। अब ये जरूरी हो जाता है दोस्तों कि मैं उस युवक का नाम आपको बता दूं। वैसे ये कोई रहस्य नहीं है, आप जानते भी हैं। जी हाँ, जय किशन पांचाल।
2: मुड़ मुड़

राज कपूर से, जो कि उस समय निर्देशक केदार शर्मा के सहायक के रूप में काम कर रहे थे। राज कपूर ने जब खुद फिल्म निर्माण के क्षेत्र में कदम रखा तो अपनी पहली फिल्म आग के लिए उन्होंने बतौर संगीतकार राम गांगुली को साइन किया। फिल्म रिलीज हुई, संगीत भी लोगों को बहुत पसंद आया, लेकिन फिल्म के रिलीज होते होते राज कपूर और संगीतकार राम गांगुली के बीच क्रिएटिव डिफरेंसेस हो गए। और फिर जब राज कपूर ने अपनी अगली फिल्म प्लान की तो संगीत के लिए उन्होंने चुना शंकर जयकिशन को, और फिल्म थी बरसात।

यहाँ से शुरू हुई सुरीले गीत संगीत की वो बरसात जिसने संगीत प्रेमियों को बार बार अपने सरगमी छींटों से भिगोया। राज कपूर और शंकर जयकिशन के बीच एक ऐसा सुरीला रिश्ता बन गया जो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया।

शंकर जयकिशन के बीच के सुरीले साथ ने एक के बाद एक कई ऐसी फिल्में दी जिन्हें आज भी सिने संगीत के रसिया याद करते हैं। आवारा, बादल, पूनम, नगीना, औरत, पर्वत, काली घटा, आ, पतिता, शिकस्त, बादशाह, मयूर पंख, नया घर, सीमा, श्री 420, बसंत बहार, हलाकू, राजहट, कठपुतली, अनाड़ी, चोरी चोरी, यहूदी, लव मैरिज, उजाला और न जाने कितनी। अगर मैं सिर्फ नाम ही बताता रहूं तो शायद मुझे दो या तीन प्रोग्राम इन पे करने पड़ेंगे।

साथियों, शंकर जयकिशन की ये जोड़ी 12 सितंबर 1971 को अचानक टूट गई, जबकि महज 41 वर्ष की उम्र में जयकिशन का देहांत हो गया।

अब खेल में जय किशन नहीं थे, लेकिन संगीतकार शंकर ने उनके नाम को अपने से अलग नहीं किया। जब तक वो रहे, शंकर जय किशन के नाम से ही संगीत देते रहे।

और आखिर 26 अप्रैल 1987 को शंकर ने भी अपनी तमाम धुनों और साजों को अकेला छोड़ दिया और इस दुनिया से विदा ले ली, और पीछे उन्हें भी अकेला छोड़ दिया जो उनके सुरों के मुरीद थे, जो उनकी सरगम के इंतजार में रहते थे।

0: संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के संगीतकार शंकर पर केंद्रित आज के फनकार प्रोग्राम अभी आप सुन रहे थे। प्रस्तुति सहयोग मिला आकांक्षा सिंह से, प्रोग्राम के प्रोड्यूसर रमेश गोखले, शोध आलेख और स्वर अमरकांत का। अब नमस्ते।
1: आज के फनकार।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं,
1: हाँ जी।
0: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
2: हाँ जी, हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
2: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है
2: ना, बोलो, बोलो।
0: तो इंस्टाग्राम

0: दुर्गा माँ पर बलि चढ़ानी बाकी, देर किस बात की?
1: अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं के पत्रवा ईमेल अनुरोध पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। मीडियम वेव के मीटर पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। रात के 10 बज चुके हैं और प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति में आपको सुनवाने जा रहे हैं आन मिलो सजना फिल्म का गीत। लता मंगेशकर की आवाज में गीत के बोल हैं का

खुशबू फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में। गीतकार गुलजार और संगीतकार थे आरडी बर्मन।

कार्यक्रम की अगली पेशकश में आपको सुनवा रहे हैं राम तेरी गंगा मैली फिल्म का गीत। आवाज है लता मंगेशकर की, गीतकार संगीतकार हैं रविंद्र जैन।

गीत फिल्म का गीत आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीत के बोल लिखे हसरत जयपुरी ने और संगीत निर्देशन था कल्याण जी आनंद जी का।

कार्यक्रम की अंतिम पेशकश में आपको सुनवाने जा रहे हैं राजेंद्र कृष्ण का लिखा गीत, आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, फिल्म का नाम है इंतकाम।

मीडियम वेव 401.1 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र का प्रसारण। रात्रि के 10:30 हुए हैं। शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं पंडित सी आर व्यास का राग मालव में ख्याल गायन।

मीडियम वेव के मीटर पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लद्दाख का विकास केंद्र सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। श्री मोदी ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से लद्दाख में संपर्क सुविधाएं मजबूत होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लद्दाख का विकास केंद्र सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। श्री मोदी ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से लद्दाख में संपर्क सुविधाएं मजबूत होंगी।
1: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
0: रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत G-SAT-7C संचार उपग्रह और भारतीय नौसेना के लिए टॉर्पीडो वरुणास्त्र की खरीद की जाएगी। नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के अपर सचिव और अधिग्रहण महानिदेशक ए अंबारासु की उपस्थिति में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। G-SAT-7C उपग्रह के लिए 2,500 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध बेंगलुरु की न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ किया गया है। सरकार ने 1 नवंबर से उपयोगकर्ताओं के लिए कॉल करने वाले का नाम दिखाने की सेवा अनिवार्य कर दी है। दूरसंचार विभाग ने सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को 1 नवंबर से सभी सेवा क्षेत्रों में कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन सेवा शुरू करने का निर्देश दिया है। इस सेवा के अंतर्गत कॉल करने वाले दूरसंचार सेवा प्रदाता के ग्राहक डेटाबेस में दर्ज नाम कॉल प्राप्त करने वालों के मोबाइल पर दिखाई देंगे। वहीं जिन अंतर्राष्ट्रीय नंबरों को फोन में सेव नहीं किया गया है, उनसे आने वाली कॉल पर इंटरनेशनल कॉल लिखा दिखाई देगा। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR में कथित अनियमितताओं को लेकर अदालत परिसर तक मार्च निकालने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और अन्य को नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने टिप्पणी की कि कोई भी न्यायपालिका पर दबाव नहीं बना सकता। न्यायालय ने SIR प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाने जाने और अनियमितताओं के आरोप को लेकर राहुल गांधी तथा अन्य विपक्षी नेताओं की अलग याचिका पर निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधु तथा विवेक जोशी से भी जवाब मांगा है। निर्वाचन आयोग ने 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अगले वर्ष 1 जनवरी को अर्हता तिथि मानकर मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण SIR करने का निर्देश दिया है। इनमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरला, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पुदुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल है। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली के कनॉट प्लेस क्षेत्र में कल प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत पाबंदियां लागू की हैं। नई दिल्ली में आज आयोजित प्रेस वार्ता में DCP नेहा यादव ने प्रदर्शनकारियों और आम जनता से अपील की कि वे ऐसे किसी भी भीड़ में शामिल न हो जो धारा 163 के प्रावधानों का उल्लंघन करता हो। उन्होंने बताया कि नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने दिल्ली पुलिस को सूचित किया है कि प्रशासनिक कारणों से सेंट्रल पार्क अगले दो

दिनों तक बंद रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत वैश्विक खेल महाशक्ति बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। नई दिल्ली में आज वर्ष 2026 के एशियाई खेलों में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों ने तिरंगे का मान बढ़ाया है। उनकी उपलब्धियां दिखाती हैं कि जुनून, दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास से क्या कुछ हासिल

समय रात्रि के 11:10 हुए हैं और हमारी आज की सांध्यकालीन सभा यहीं समाप्त होती है। कल प्रातः 5:52 पर अपनी पहली सभा के कार्यक्रमों के साथ हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि, जय हिंद।